नमस्कार, FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 29 सितंबर 2026। सुबह के 5:55 और ठीक 48 सेकंड हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सभी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में सहायता करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में होगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के इस सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों के संचालक तथा क्षेत्रीय कमांडर भाग लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्री हितों की रक्षा में नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। श्री गोयल अन्य सदस्य देशों के व्यापार और उद्योग मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। श्री गोयल अमरीका के वाणिज्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसमें भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने तथा अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना DDPA की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा बढ़ाने को भारत का रुख स्पष्ट किया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत जिन मतदाताओं को त्रुटियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाताओं के लिए सुनवाई प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस बीच SIR के अंतर्गत आज से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई है। सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक गतिविधि का विस्तार जारी है। जुलाई की IIP वृद्धि दर पहले के 6.7% के अनुमान से बढ़कर 7.4% हो गई है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल 45 पदक प्रतियोगिता में जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, आचार्य विनोबा भावे का कथन है, ज्ञानी वो है जो वर्तमान को ठीक प्रकार समझे और परिस्थिति के अनुसार आचरण करे। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 6:35 से सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान भाग 326। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला विविध भारती के खजाने से। इसके अंतर्गत गायक हफीज अहमद खान से बातचीत सुनिएगा प्रस्तुति छाया गांगुली की।

सुबह 7 बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से सुनेगा हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 से आपको सुनाएंगे त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर दीपा माहेश्वरी का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 से चित्रलोक और सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनेगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता महमूद पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 बजे से पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा सुनिएगा। इसके अंतर्गत पीसीओडी और आईवीएफ इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत सुनवाएंगे, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे से रंग तरंग यादों की महफिल सुनेंगे दिन में 12:05 से सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे दोपहर 1 बजे से। दोपहर 2 बजे से त्रिवेणी,

सदाबहार नगमे। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 2:30 से। सखी सहेली इस कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 3 बजे से। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉयड के सितारे। इसके अंतर्गत अभिनेता लेखक शारिब हाशमी से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत सुनिएगा, प्रस्तुति जुबैर खान की। 6 गीत का पुनर्प्रसारण आप सुनते हैं शाम 5 बजे से। तराने नए पुराने शाम 5:30 से।

शाम 6:30 से झरोखा, शाम 6:35 से सुनेगा संध्या रंजन। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला प्रसारित किया जाएगा शाम 7 से। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनेगा पॉप एक्सप्रेस। रात 8 से हवा महल के अंतर्गत झलकी सुनिएगा प्रश्न तो यही है, लेखन वृंदा मंजीत का, निर्देशन अजीमुद्दीन का। चित्रलोक रात 8:15 से आपके लिए सुनवाएंगे रात 9 से।

छाया गीत, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 10 बजे से। आलेख एवं स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात, रात 10:30 से सुनिएगा, और रंग तरंग रात 11 बजे से। आपको याद दिला दे, आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता महमूद पर, जिसे आप सुन सकते हैं 9:30 से और 9:30 से। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान भाग 326।

रावण के मुख से सीता हरण तथा युद्ध का वृत्तांत सुनकर कुंभकर्ण अत्यंत दुखी हो गया। वह रावण को धिक्कारता है जो जगजननी का अपहरण करके अब अपना कल्याण चाहता है। कहता है, अब भी यदि अभिमान त्याग कर वह श्री राम की शरण जाए तो उसका कल्याण हो सकता है। नारद मुनि से मिला ज्ञान वह रावण को दे देता, किंतु अब बहुत देर हो चुकी है। अतः वह भाई से गले मिलकर युद्ध में जाने को तैयार हो जाता है, जहां उसे समस्त पापों का हरण करने वाले कमल नयन श्री राम के दर्शन होंगे। असंख्य घड़े मदिरापान और भैंसों का भोजन करके वज्र गर्जना करता कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आ पहुंचा। वहां विभीषण उसके पैरों पर गिर पड़ा और अपने अपमान और निष्कासन की कथा कह सुनाई। कुंभकर्ण ने छोटे भाई विभीषण का साधुवाद किया, फिर बोला, रावण पर काल सवार है, अब भला वह सदुपदेश क्या सुनेगा। धन्य है तू जो अपने सत्कर्म से राक्षस कुल का भूषण हो गया, किंतु अब मैं भी काल के वश में हूं।

0: गीत सरिता।
1: मित्रों नमस्कार, विविध भारती के खजाने से आज हम लाए हैं सहसवान घराने के गायक हाफिज अहमद खान से राम सिंह पवार की बातचीत।
2: खान साहब नमस्कार।
3: नमस्कार पवार साहब।
2: खान साहब आज आपसे मुलाकात करके बहुत खुशी हो रही है और
3: मुझे भी ऐसे ही मसरत हो रही है।
2: एक संगीत चर्चा हम लोग करेंगे।
3: जरूर
2: खान साहब, जैसा कि ज्ञात है जिला बदायूं यूपी के सहसवान कस्बे के नाम से इस घराने का नाम सहसवान घराना पड़ा।
3: जी हाँ।
2: तो इस घराने को सहसवान रामपुर घराना भी कहते हैं।
3: जी हाँ।
2: इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे।
3: जी हाँ, ऐसा है कि इस कस्बे में यानी कि सहसवान में
2: जी
3: बहुत अच्छे अच्छे गायक हुए हैं और इसी वजह से इसका नाम सहसवान घराना है, लेकिन चूंकि ये सारे कलाकार रामपुर दरबार में थे तो इस वास्ते इसका नाम सहसवान रामपुर घराना पड़ गया। क्योंकि जहाँ तक आपको तो मालूम है कि राजा और नवाब ये जितने भी गुजरे हैं ज़्यादातर उन्होंने कलाकारों की बड़ी सरपरस्ती की है
2: जी।
3: और उनके आश्रय में ले रहकर हमारे कलाकारों ने यानी बहुत ही तरक्की जो है वो पाई है। तो इस लिहाज से ये सहसवान रामपुर घराना जो है ये कहलाता है
2: जी। खास साहब, जैसा कि अनुमान या ख्याल है कि प्रारंभिक दिनों में इस घराने में ध्रुपद धमार गाया जाता था
3: जी,
2: और शायद 17वीं 18वीं शताब्दी में ख्याल गायन की शुरुआत हुई।
3: जी हाँ, 17वीं शताब्दी में। और जहाँ तक के सहसवान घराने का ताल्लुक है, इसमें आला से आला ध्रुपद धमार के गायक भी पैदा हुए हैं और बीनकार भी पैदा हुए हैं। यानी ये सोचिए कि हमारे खानदान के मतलब जो स्तंभ थे या इस घराने के स्तंभ थे वो थे उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब और

0: तो खान साहब, जैसे तो ये ध्रुपद धमार से शुरुआत हुई और ख्याल गायकी के क्षेत्र में भी बहुत महान कलाकार इस घराने में हुए हैं
1: जी,
0: तो रबाब सुरसिंगार भी का भी वादियों का भी
1: जी हाँ, ऐसा है कि जहां तक रामपुर का बुनियादी जो घराना है उसमें सुरसिंगार और रबाब भी काफी मशहूर हुआ और उस्ताद बहादुर हुसैन खान साहब जो थे रामपुर के, वो बहुत बड़े रबाब वादक थे
0: जी
1: जी हाँ। तो इस तरह से इन साजों पर भी उनको बड़ा उबूर हासिल था।
0: तो वादन का गायन पर प्रभाव पड़ा अथवा गायन का भी वादन के साथ कुछ संबंध रहा है, इस बारे में
1: देखिए, ऐसा है कि गायन और वादन
0: जी
1: इन दोनों का चोली और दामन का साथ है, लेकिन असली बात तो ये है कि ये जो खुदा ने इंसान को एक साज दिया है जिसको हम गले का साज कहते हैं, तो समझिए कि गाना पहले आया और उसके बाद में वाद्यों का आविष्कार बाद में हुआ और इस तरह से गाने की छाया साजों पर पड़ती रही, लेकिन एक ऐसी मंजिल भी आई कि वाद्यों की छाया जो थी वो गायन पर पड़ने लगी।
0: पूछना चाहता
1: हूं, अभी जो आपने एक हवाला दिया है ना बीन का
0: जी,
1: तो हमारे घराने में चूंकि बीनकार भी हुए हैं तो बीन के बहुत ही खूबसूरत अंग जो हैं वो हमारे यहाँ की गायकी में सम्मिलित हैं।
0: तो बीन के जो अंग की जो खूबसूरती है
1: जी हाँ,
0: मेरे ख्याल आपका मतलब मीन से,
1: मीन से है। मीन तो समझिए उसकी रूह है और अच्छा। मीन एक ऐसी चीज है कि जैसे हमारे ज्योमेट्री में होता है ना रेखा गणित में स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन, तो अब जैसे हम सुर दो कहेंगे सा गमा पा गमा गरे सा, ये अलग अलग नोट्स हैं
0: जी
1: या स्वर हैं, लेकिन अगर इनको हम मीन से कहेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत लहर आपके सामने उठेगी और उसका आप जैसे कि आवाज का चित्र बना सकते हैं।
0: अच्छा।

0: ख्याल गायकी में
1: जी
0: बीन का जो ये अंग है यानी मींड
1: जी
0: हमारे यहाँ की गायकी में साफ झलकता है
1: जी हाँ, तो इससे गायन के सौंदर्य में वृद्धि हुई है
0: जी हाँ।
1: ऐसा
0: यानी मनहरण लगता है सुनने को, यानी जो हमारे यहाँ एक एस्थेटिक्स है
1: जी
0: सौंदर्य
1: जी
0: जिसको हम उर्दू में जमालियाती पहलू कहते हैं
1: जी,
0: तो एक तो इसका असर जो है इस मीन का असर आपका दिल जो है वो मुतासिर होगा, लेकिन और जो सरगम वगैरह का सारी चीजें जो है
1: जी
0: उससे वो आपका दिमाग जो है वो प्रभावित होगा या उससे वो उसका रस स्वादन करेगा।
1: खास साहब इस गायन शैली की और भी तो कई विशेषताएं हैं
0: जी हाँ।
1: जैसे गमक बहलावा
0: जी हाँ, बहलावा भी खास है क्योंकि विलंबित और तान के दरमियान
1: जी
0: एक तरह से ये एक पुल समझिए, सेतु समझिए।
1: अच्छा,
0: और वो ऐसा है कि बहलावा का मतलब ये है कि बहलाना, जैसे बच्चों को बहलाया जाता है
1: जी,
0: तो सुरों को बहलाया जाता है, और इस तरह से बहलावा अगर आप सुन लें तो आप तैयार हो जाइए कि थोड़ी देर के बाद में तानों का सिलसिला जो है वो शुरू
1: होने वाला है।
0: अच्छा, आप कह

0: इसमें खास इस बहलावे में आपने देखा होगा कि जिस वक्त एक सुर से दूसरे सुर पे हम जाते हैं तो एक चीज का इस्तेमाल होता है जिसको हम समझिए हिक्का कहते हैं
1: जी,
0: हिक्का यानी सॉफ्ट जर्क।
1: अच्छा।

0: ये हिक्का है।
1: जी
0: तो इस तरह से मींड, बहलावा, हिक्का।
1: जी
0: और इसके अलावा इस घराने की एक विशेषता ये भी है, क्योंकि इस घराने में टप्पा भी बहुत ही खूबसूरती से गाया गया है।
1: अच्छा।
0: इनायत हुसैन खान साहब ने बहुत अच्छा टप्पा गाया, मुश्ताक हुसैन खान साहब ने, उस्ताद फिदा हुसैन खान साहब ने, और आज के युग में जो हमारे यानी घराने के सबसे मशहूर और यानी उम्र रसीदा कलाकार हैं उस्ताद निसार हुसैन खान साहब, तो उसमें खास तौर से मतलब उनकी गायकी में भी

0: अब ये आपने देखा टप्पांग हो गया।
1: खान साहब, अभी आपने उस्ताद निसार हुसैन खान साहब का नाम लिया, उनका भी गायन के साथ साथ तराना गायन में बहुत
0: जी हाँ, मैं तो ये कहूंगा कि
1: योगदान रहा है।
0: जी हाँ, कि सही तराना गायकी के वो एकमात्र कलाकार
1: हैं,
0: एक प्रतिनिधि हैं, क्योंकि उसके जो कुछ बोल हैं दृढ़तम, तो वो सफाई से निकलना चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो तराने का मजा नहीं आएगा। तो ये एक तराने की एक मुख्तसर से मैंने आपके सामने पेश किया, तो ये भी एक मुख्य अंग जो है। एक मैं और बताना चाहता था, सरगम का भी एक अंदाज एक बहुत ही निराला अंदाज है
1: जी,
0: क्योंकि आवाज तानों में तो जाती तीनों सप्तकों में, तीनों सप्तकों में सरगम का भी जो जो है प्रेजेंटेशन वो भी बड़ा खूबसूरत रहा है, और उसको हम छूट की सरगम कहते हैं
1: जी।
0: गामा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा नी नी नी नी नी नी दा पा मा गा रे सा सा गा रे सा गा रे सा नी दा पा मा गा रे सा दा नी सा रे सा रे सा नी दा पा मा गा रे सा। तरतीब और एक बेतरतीब, सा रे सा नी दा पा मा गा रे सा नी सा गामा पा गामा गा रे सा नी दा पा मा गा रे सा पा मा पा गामा गा रे सा नी दा दा दा दा दा दा पा मा गा रे सा नी सा गा रे मा गा पा मा दा पा दा मा पा गामा गा पा मा पा गामा गा दा पा मा गामा पा गामा गा रे सा नी दा पा पा पा मा गा रे सा नी दा पा मा गामा पा रे सा।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर खान साहब। आपने सहसवान गायन शैली की खूबसूरतियों विशेषताओं को बहुत ही सुंदर ढंग से हम लोगों को समझाया, और हमारे श्रोताओं को निश्चित ही पसंद आएगा। एक प्रश्न और खान साहब आपसे करना चाहेंगे,
0: फरमाइए,
1: कि ट्रेडिशनल जो हमारे राग हैं,
0: यह पारंपरिक
1: पारंपरिक जो राग हैं, कामोद काफी और बिहाग आदि अन्य राग, तो जब उन्हें पारंपरिक ढंग से गाया जाता है तो उसकी तस्वीर हमें स्पष्ट नजर आती है समझ में, और आजकल बहुत से कलाकार नए रागों को भी रच रहे हैं
0: जी हाँ,
1: तो आपका क्या ख्याल है कि उससे हमारी संगीत में क्या कुछ नवीनता आ रही
0: जी हाँ,
1: और हमारे जो आजकल के जो कलाकार हैं सीखने वाले विद्यार्थी
0: जी,
1: उन पर उस इस प्रयोग का अथवा इस बात का क्या प्रभाव पड़ता है, आपके क्या ख्याल है
0: जी? पवार साहब, ऐसा है कि आज जो राग प्रचलित हैं वो किसी जमाने में कुछ लोगों ने उनका आविष्कार किया होगा,
1: अच्छा,
0: और धीरे धीरे वो प्रचलित हुए और अति लोकप्रिय भी हो गए
1: जी।
0: अच्छा, तो असल में बात ये है कि कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं
1: जी,
0: जिसकी रोशनी में रागों का निर्माण होता है। अगर वो नियम सामने रखकर नए रागों का आविष्कार किया जाता है
1: जी,
0: तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें हमारे यहाँ जो रागों की सूची है उसमें वृद्धि होगी, लेकिन कम से कम मैं ये देख रहा हूँ कि जो नए राग आज जो लोग यानी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं
1: जी,
0: वो इन उसूलों पर पूरे नहीं उतरते। कुछ भी नाम रख दिया और कुछ भी यानी जो स्वर समूह है उसको तैयार कर दिया, तो जो ज्यादातर जो नए नए रागों का जो प्रयोग किया जा रहा है मेरी निगाह में वो संगीत को उससे हानि पहुंच रही है।
1: खैर, तो खान साहब आपसे मिलकर आपसे बातचीत करके बहुत खुशी हुई, हम आपका आभार प्रदर्शित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने श्रोताओं को जो मेरे यानी छोटे मोटे विचार हैं उनको भी प्रकट करने का मैंने प्रयास किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाबर से।
2: सहसवान घराने के गायक हाफिज अहमद खान से राम सिंह पवार की बातचीत आप सुन रहे थे। संगीत सरिता के लिए यह कार्यक्रम वर्ष 1985 में विजय शंकर चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब सुनते हैं हाफिज अहमद खान का गाया राग बिहाग में तराना।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 7 बज चुके हैं और अब समय है कार्यक्रम महाकाल वंदन का।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं।

सुबह 7:20 पर होगा प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का विशेष प्रोग्राम उज्जैनी आरजे। नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स आप सुनेंगे 9:30 पर। 10:00 सुनिए आपकी फरमाइश के नगमे। 11:00 आप सुनेंगे रंग तरंग कार्यक्रम।

कार्यक्रम यादों की महफिल आप सुनेंगे 12:05 पर। सुरीला सफ़र आप सुन सकेंगे 1:00। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 2:00। 2:30 पर सदाबहार नगमे सुने जा सकेंगे। 3:00 सखी सहेली कार्यक्रम सुना जा सकेगा। 4:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

आकाशवाणी उज्जैन से संध्याकालीन सभा में सुनिए शाम 5 बजे युवा श्रोताओं का अपनी पसंद का प्रोग्राम युववाणी। शाम 6 बजे भजन संध्या का कार्यक्रम होगा। 6:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। अपने केंद्र से आपको चौपाल पर ले चलेंगे। शाम 7:21 पर कार्यक्रम होगा मालवी गीतारी गूंज, जिसमें मालवी समाचारों के साथ आनंद लीजिए मालवी गीतों का। रात 8 बजे आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा।

30 मिनट पर फिल्म संगीत सुना जा सकेगा। रात 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम कहकशां सुना जा सकेगा। रात 10:00 20वें एशियन गेम्स पर विशेष कार्यक्रम डेली हाइलाइट्स कैप्सूल सुना जा सकेगा। 10:20 पर फिल्म संगीत सुन सकेंगे। रात 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम राग रजनी। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रबी तैयारियों में केंद्र राज्य समन्वय पर दिया जोर। सारंगपुर में सेवा यात्रा का राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने किया स्वागत और प्रदेश की चार ऐतिहासिक धरोहरें यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल। अब समाचार विस्तार से। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता, जबकि पिंकी बलहारा ने कुराश के 78 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। प्रधानमंत्री ने तीनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उनके आगे के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों से रबी सीजन की तैयारियां समय पर पूरी करने और खेती की योजना आंकड़ों के आधार पर बनाने को कहा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित करते हुए उन्होंने जलवायु परिवर्तन, अनियमित बारिश और पानी की कमी के बीच केंद्र और राज्यों के बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में सूखे जैसी स्थिति को देखते हुए केंद्र की टीमें जमीनी आकलन करेंगी। श्री चौहान ने कहा,
1: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए।
0: प्रदेश की सारंगपुर में वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रही सेवा यात्रा का राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने कल स्वागत किया। उन्होंने पचोर से सारंगपुर तक यात्रा में हिस्सा भी लिया। ये यात्रा काशी विश्वनाथ और वडनगर के हाटकेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक

0: के लिए निकाली जा रही है। इस दौरान उड़नखेड़ी में यात्रियों का सम्मान किया गया और पौधे लगाए गए। राज्य मंत्री ने स्वसहायता समूह की महिलाओं और लखपति दीदियों से भी बातचीत की। भोपाल में उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी के प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों ने डीजीपी कैलाश मकवाना से मुलाकात कर पुलिसिंग के अलग अलग पहलुओं पर मार्गदर्शन लिया। डीजीपी ने तकनीक के इस्तेमाल, साइबर अपराध, सामुदायिक पुलिसिंग, नक्सल समस्या और कानून व्यवस्था से जुड़े अनुभव साझा किए। उन्होंने सिंहस 2028 की तैयारियों और नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की भी जानकारी दी। डीजीपी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से संवेदनशीलता के साथ काम करने और जरूरत के समय जनता की मदद के लिए हमेशा पर रहने को कहा। इंदौर में ग्रामीण इलाकों में कचरा प्रबंधन को लेकर नई कार्ययोजना तैयार की जा रही है। कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले के सभी 610 गांवों में घर घर से कचरा उठाने और उसके वैज्ञानिक तरीके से निपटारे पर चर्चा हुई। इसके लिए गांवों को 56 क्लस्टर में बांटकर पीपीपी मॉडल पर काम करने की योजना है। कलेक्टर ने अधिकारियों को इसे जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इंदौर में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए जल संरक्षण के कामों की भी समीक्षा की गई। भोपाल में कक्षा 6वीं से 8वीं तक की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के 153 विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें नई शिक्षा नीति और एनसीईआरटी की नई किताबों के मुताबिक पढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की जा रही है। गतिविधियों के जरिए बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाने और पढ़ाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश के 4 ऐतिहासिक धरोहरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में जगह मिली है। इनमें उदयगिरी गुफाएं, बाघ गुफा चित्रकारी, गिन्नौरगढ़ किला और चंबल घाटी के मंदिर समूह शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों को अब वैश्विक पहचान मिल रही है। मुख्यमंत्री ने विरासत के संरक्षण और उसे दुनिया तक पहुंचाने के प्रयासों को और मजबूत करने का आह्वान किया। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के जल्द समाधान के लिए चलाए जा रहे संपर्क अभियान 2026 को अच्छी सफलता मिली है। 14 मई से भोपाल और ग्वालियर रीजन के 16 जिलों में करीब 6000 शिविर लगाए जा चुके हैं। इन शिविरों में 2,66,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। इनमें गलत बिजली बिल, मीटर, वोल्टेज और ट्रांसफार्मर से जुड़ी समस्याओं के साथ नाम बदलने और नए कनेक्शन जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। झाबुआ में सेवा संकल्प अभियान के तहत कल आंगनवाड़ी मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के केंद्र के रूप में विकसित करने का संदेश दिया गया। महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कार्यकर्ताओं, हितग्राही महिलाओं से संवाद किया। प्रदेश में 26 सितम्बर से 5 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्वास्थ्य और नेत्र जांच, पोषण जागरूकता, मातृ संवाद और रचनात्मक गतिविधियां हो रही हैं। इंदौर में राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण सम्मान से सुप्रसिद्ध संगीत निर्देशक शांतनु मोइत्रा को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की वर्चुअल मौजूदगी में हुए समारोह में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लता मंगेशकर के संगीत और उनकी बहुमुखी प्रतिभा को याद किया। प्रदेश में खरीफ फसल की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन जारी है। अब तक 40,454 किसान पंजीयन करा चुके हैं। किसान 10 अक्टूबर तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए प्रदेश में 1100 से ज्यादा पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के विकास में सीएसआर की भागीदारी बढ़ाने के लिए कल भोपाल में राज्य स्तरीय सीएसआर कॉन्क्लेव होगा। इस सम्मेलन में आंगनवाड़ी, पोषण, स्वास्थ्य, शुरुआती शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में कॉरपोरेट निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में तेज बारिश का दौर अब थमने वाला है। अगले 4 दिन किसी बड़े मानसूनी सिस्टम के सक्रिय होने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर संभाग में तेज धूप का असर ज्यादा रहेगा। बुधवार गुरुवार से प्रदेश में मानसून की विदाई भी शुरू होने वाली है। सबसे पहले उज्जैन और ग्वालियर संभाग से मानसून लौट सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज कुछ जिलों में तेज धूप खिलेगी जबकि बाकी हिस्सों में बादल और हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। भोपाल में सहकारिता क्षेत्र की पहली अत्याधुनिक राज्य स्तरीय डेयरी परीक्षण प्रयोगशाला तैयार हो गई है, जहां आम लोग भी दूध और दुग्ध उत्पादों की जांच करा सकेंगे। करीब 12 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनी इस लैब में 100 से ज्यादा मानकों पर जांच की जाएगी, जिसमें मिलावट, कीटनाशक, एंटीबायोटिक्स और हैवी मेटल्स जैसी चीजें शामिल हैं। जल्द ही यहाँ जांच की सुविधा शुरू होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज विश्व हृदय दिवस है और इस बार संदेश है कि आप दिल की धड़कन से जुड़े किसी भी संकेत को नजरअंदाज ना करें। WHO के मुताबिक 2022 में दुनिया में करीब 2 करोड़ लोगों की मौत हृदय संबंधी बीमारियों से हुई है। कटनी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ईवीएम और वीवीपैट के जिला स्तरीय वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण आज शाम 5 बजे किया जाएगा। खंडवा में नवचंडी मंदिर परिसर में 2 दिवसीय निर्माण की कलाओं का उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान निर्माण की लोक कला, लोक संगीत और सांस्कृतिक परंपराओं की प्रस्तुतियां दी जा रही है। धार में अल्प वर्षा की स्थिति को देखते हुए रवि 2026-27 की तैयारियों के संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र में उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सतना जिला खनिज प्रतिष्ठान की कल संपन्न हुई बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 में जनप्रतिनिधि सदस्यों से प्राप्त सुझाव पर चर्चा की गई। उप निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार आगरमालवा जिले की नलखेड़ा जनपद पंचायत वार्ड क्रमांक 6 और 11 में सदस्य और सुसनेर नगर परिषद सुसनेर के अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान होगा। झाबुआ के गौतम गामण ने भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना का लाभ लेकर वाहन चालक से स्वयं के व्यवसाय के मालिक बनने तक का सफर तय किया है। मुरैना में निराश्रित गौवंश को लंपे स्किन डिसीज से बचाव के लिए व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। डिंडौरी में 1 अक्टूबर को जिला चिकित्सालय स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व के कान्हा परिक्षेत्र की नकती घाटी बीट के कक्ष क्रमांक 138 में कल एक 11 माह की मादा बाघ शावक का शव मिला है। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर जांच की और डॉग स्क्वाड की मदद से साक्ष्य जुटाए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है और मैं गोपाल गर्वित लेकर आया हूँ सुबह की ताजगी, शहर की महक और कुछ ऐसी बातें जो आपको इस उज्ज्वल प्रभात से और भी गहराई से जोड़ देंगी। सूरज की पहली किरण जैसे ही क्षिप्रा की लहरों पर सुनहरी रेखा खींचती है, उज्जैन जाग उठता है। घंटों की मधुर ध्वनि के साथ, बाबा महाकाल की भस्म आरती की ऊर्जा के साथ और इस शहर की उन अनगिनत कहानियों के साथ जो हर सुबह को एक नई शुरुआत बनाती है। तो आइए शुरू करते हैं आप सभी का बेहद पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

श्रोताओं, महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकार और गरिमा से जुड़ी जानकारी का सही समय पर मिलना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से 28 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस के अवसर पर उज्जैन में उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में संशोधित MTP एक्ट 2021, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम और PCPNDT एक्ट के प्रावधानों की जानकारी दी गई। अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षित एवं कानूनी गर्भपात सेवाओं, पात्रता, आवश्यक प्रक्रियाओं और सेवा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही महिलाओं को गोपनीय गरिमा और अधिकारों के सम्मान करते हुए जरूरतमंद महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने पर भी जोर दिया गया। पुलिस महिला एवं बाल विकास, बाल कल्याण समिति और पंचायत राज विभाग सहित संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता भी बताई गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। महिलाओं के सुरक्षित स्वास्थ्य और जागरूकता से जुड़ी इस महत्वपूर्ण खबर के साथ आइए सुनते हैं आज के सुप्रभात उज्जैन कार्यक्रम का पहला गीत।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी उज्जैन से अब प्रस्तुत है स्थानीय समाचार। उज्जैन जिले में पंचायत उपचुनाव के लिए आज 26 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। 4 सरपंच और 1 जनपद सदस्य पद के लिए 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। मानसून की 2 दिन में विदाई की संभावना, जिले में औसत बारिश का आंकड़ा पूरा करने के लिए अब 11 इंच से अधिक बारिश की आवश्यकता। कृषि उपज मंडी में सोयाबीन की सीजन की पहली बड़ी आवक, 10,000 बोरी से अधिक की आवक और करीब 4 करोड़ रुपए की बिक्री। अखिल भारतीय कालिदास समारोह के नांदी कार्यक्रम के लिए जया किशोरी और हंसराज रघुवंशी सहित कई नामों के प्रस्ताव आए हैं। और थाईलैंड में एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में उज्जैन के अफराज और अबराज ने जीता स्वर्ण पदक। आइए अब समाचार विस्तार से। उज्जैन जिले में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा। 4 ग्राम पंचायतों में सरपंच और तराना जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 25 में 1 जनपद सदस्य पद के लिए कुल 14 उम्मीदवार मैदान में है। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक 26 केंद्रों पर होगा। सरपंच पद के लिए कचनारिया में 2, नाग गुराड़िया में 3, खरसोत खुर्द में 4 और चिरोला में 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। 5 के 587 रिक्त पदों के लिए 3 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ, जबकि 584 पदों पर प्रत्याशी नहीं मिलने के कारण चुनाव नहीं हो सका। सरपंच और जनपद सदस्य पद के लिए कुल 13,623 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। मतगणना 3 अक्टूबर को होगी। बॉलीवुड अभिनेत्री शशि कपूर के सदाबहार गीतों पर आधारित शशि कपूर हिट्स सांगीतिक निशा आज शाम 7 बजे कालिदास अकादमी के संकुल हॉल में आयोजित होगी। वॉइस ऑफ फ्रेंड्स क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुंबई के जूनियर शशि कपूर विशेष आकर्षण होंगे। वे नृत्य, गायन और संवाद के माध्यम से शशि कपूर की यादों को ताज़ा करेंगे। 70 mm स्क्रीन पर मूल गीतों के लीप सिंकिंग के साथ लाइट, साउंड और स्टेज इफेक्ट्स भी प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। थाईलैंड में आयोजित 58वीं एशियाई बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में उज्जैन के अफराज और अबराज ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया। अफराज इससे पहले भूटान में आयोजित साउथ एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर साउथ एशिया का खिताब और स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं। उज्जैन लौटने पर आयरन गेम्स परिवार की ओर से दोनों खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय में भारत में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर विशेष व्याख्यान हुआ। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के डॉक्टर राकेश ढंड ने कहा कि हिंदी विचारों के आदान प्रदान के साथ संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय चेतना को आगे बढ़ाने का माध्यम भी है। महाविद्यालय में हिंदी भाषा को लेकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। नयापुरा शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल और डिवाइन हायर सेकेंडरी स्कूल में सुंदर लेखन, श्रुत लेखन, कहानी और आंखों देखा वर्णन जैसी प्रतियोगिताएं भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार उज्जैन में मानसून की विदाई अब 2 दिन में होने की संभावना है। जीवाजी वेधशाला में 28 सितंबर तक मानसून सीजन में 28.28 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि औसत 36 इंच है, यानी शहर में औसत से 8.72 इंच बारिश कम हुई है। जिले में 28 सितंबर तक औसत 24.92 इंच बारिश हुई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 33.91 इंच बारिश दर्ज हुई थी। जिले में औसत कोटा पूरा करने के लिए अब भी 11.08 इंच बारिश की आवश्यकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज जिले में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछार और हल्की बारिश की संभावना जताई है। अखिल भारतीय कालिदास समारोह को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। 21 से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले समारोह की केंद्रीय समिति की बैठक में कलाकारों और विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर प्रस्तावों पर चर्चा होगी। 20 नवंबर को होने वाले नांदी कार्यक्रम के लिए कथावाचक जया किशोरी, गायक हंसराज रघुवंशी, सिद्धार्थ मोहन सहित अन्य कलाकारों के नाम प्रस्तावित किए गए हैं। नांदी कार्यक्रम में भक्ति संगीत, पारंपरिक नृत्य और मंगल वाद्य की प्रस्तुतियां होंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा के श्री राम की प्रत्यंचा और स्वामी विवेकानंद का पुनर्पाठ नाटकों के प्रस्ताव रखे जाएंगे। देशभर से प्राप्त 90 से अधिक कलाकारों के प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। उज्जैन कृषि उपज मंडी में सोयाबीन सीजन की पहली बड़ी आवक सोमवार को दर्ज हुई। मंडी में 10,000 बोरी से अधिक सोयाबीन पहुंचा और अनुमानित बिक्री करीब
4 करोड़ रुपए रही। 12 से 15% नमी वाली सोयाबीन के भाव 5,500 से 5,700 रुपए क्विंटल रहे। व्यापारियों के अनुसार महाराष्ट्र की ओर भेजे जाने वाले सोयाबीन की खरीदी अधिक होने से किसानों को प्रति क्विंटल करीब 200 रुपए अतिरिक्त भाव मिलने की बात कही गई है। आने वाले दिनों में मंडी में सोयाबीन की बंपर आवक की संभावनाएं जताई जा रही है। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय गर्ग ने बदलती जीवन शैली और पर्यावरण से जुड़े जोखिमों पर ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और तंबाकू के साथ मोटापा, वायु प्रदूषण और लंबे समय तक बैठे रहने को भी हृदय स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बताया। अंतिम खबर आप सभी की जानकारी के लिए रेलवे से जुड़ी खबर है। इंदौर कोटा एक्सप्रेस का संचालन 29 सितंबर से 18 अक्टूबर तक प्रभावित रहेगा। कोटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर निर्माण कार्य के चलते ट्रेन संख्या 22984 इंदौर कोटा एक्सप्रेस इस अवधि में कोटा के बजाय सोगरिया स्टेशन तक जाएगी। इसी के साथ स्थानीय समाचार समाप्त होते हैं। चलिए सुप्रभात उज्जैन कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, नवजात शिशु के स्वास्थ्य की शुरुआती जांच कई गंभीर समस्याओं की समय पर पहचान में मददगार साबित होती है। उज्जैन जिले में इसी दिशा में मिशन कोमल स्पर्श के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा नर्सिंग अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सिविल अस्पतालों में कार्यरत नर्सिंग अधिकारियों को नवजात शिशुओं की स्क्रीनिंग और जांच की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण का उद्देश्य जन्मजात विकृतियों, सिकल सेल और थायराइड संबंधी विकारों जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की प्रारंभिक अवस्था में पहचान करना है, ताकि बच्चों को समय पर आवश्यक जांच और उपचार मिल सके। जरूरत पड़ने पर उन्हें उच्च स्वास्थ्य संस्थान में रेफर करने की प्रक्रिया को भी बताया गया। जिला चिकित्सालय के चरक भवन में आयोजित प्रशिक्षण में जिले के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से नर्सिंग अधिकारियों ने सहभागिता की। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य की दिशा में उठाए गए इन कदमों के साथ, इसी जानकारी के साथ चलिए बढ़ते हैं सुप्रभात उज्जैन कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, खेल का मैदान केवल जीत और हार का मंच नहीं बल्कि अनुशासन, सद्भावना और खेल भावना सीखने का भी माध्यम है। इसी भावना के साथ उज्जैन के महानंदानगर स्पोर्ट्स एरिना में उच्च शिक्षा विभाग की संभागीय बैडमिंटन पुरुष प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय माधव महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर कल्पना सिंह ने विद्यार्थियों को, खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जो भी खिलाड़ी मैदान पर आया है वो विजेता है और खेल को सद्भावना के साथ खेलना ही सच्ची खेल भावना है। आइए इस खेल और युवा प्रतिभाओं से जुड़ी इस जानकारी के साथ बढ़ते हैं सुप्रभात उज्जैन कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों, उज्जैन शहर में लगातार धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी रोजाना यहाँ पर बहार रहती है। इसी को लेकर हिंदी भाषा पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती, बल्कि वो हमारी संस्कृति, परंपरा, विचार और पहचान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का माध्यम भी होती है। इसी विचार के साथ उज्जैन के शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत भारत में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी चुनौतियाँ और संभावनाएँ विषय पर विशिष्ट व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर राकेश धण ने कहा कि भाषा हमारी अस्मिता और अस्तित्व का अभिन्न अंग है। उन्होंने हिंदी की व्यापकता और उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए छात्राओं से अध्ययन, लेखन, शोध और दैनिक व्यवहार में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर वंदना गुप्ता ने कहा कि हिंदी हमारे भावों की सहज अभिव्यक्ति के साथ हमारी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी भाषा है। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राध्यापकगण और छात्राएं उपस्थित रही। हिंदी और भारतीय भाषाओं से जुड़ी इस सार्थक चर्चा के बाद आइए सुनते हैं आज का सुप्रभात उज्जैन कार्यक्रम का अंतिम गीत।

तो दोस्तों, इसी के साथ आज का सुप्रभात उज्जैन कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की समसामयिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष CBSE की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की। अमेरिका ने भारत और 19 अन्य देशों से आयातित विशेष दवाओं पर टैरिफ हटाया और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के मौजूदा सत्र में कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 7 के विद्यार्थियों की तरह त्रिभाषा नीति से छूट देने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र सरकार तथा CBSE की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी वही छूट दें जो कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को CBSE से कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए 2027 से शुरू होने वाले अगले शैक्षणिक सत्र से भारतीय मूल की दो भाषाओं सहित तीन भाषाओं के अनिवार्य अध्ययन वाली अपनी नीति को लागू करने पर विचार करने को कहा था। ये विवाद CBSE के अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2023 के अनुरूप बनाने के निर्णय से संबंधित है। इस रूपरेखा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात के ई चालान की राशि को बिजली बिलों से जोड़ने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि प्रभावी वसूली की व्यवस्था में इस पहल से सुधार किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस और PUC प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्र हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समुद्री हितों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को सुदृढ़ करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना की समीक्षा के लिए कल एक उच्चस्तरीय बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक में अब तक उठाए गए कदमों और सर्दियों के मौसम से पहले उसके दौरान जरूरी उपाय की समीक्षा की गई।
1: कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर PUCC नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए जागरूकता अभियान और नियमों का पालन सुनिश्चित कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत पहले नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण, सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण कार्य में तेजी लाई जाएगी और मलबा ऐप पर पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। सर्दियों की कार्य योजना के तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 और परिवर्तन योजना को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण अभियान और जन भागीदारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 37 चिन्हित प्रदूषण स्थलों पर 10 अक्टूबर तक जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि निर्णयों तथा चिन्हित कार्रवाई बिंदुओं का धरातल पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नितिका गुप्ता के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम नजर डालेंगे कि कैसे मिशन लाइफ की सहायता से इस सोच को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
2: देश का 40% खनिज संसाधन समेटने वाले झारखंड में औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने युवाओं को पर्यावरण अनुकूल आदतें सिखाने के लिए अपने सभी कॉलेजों में स्नातक स्तर पर 2 क्रेडिट और 10 सप्ताह का अनिवार्य कोर्स शुरू किया है। इस आंदोलन के मूल विजन को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
3: हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से इतना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का।
2: प्रधानमंत्री के इसी विजन को कोडरमा जिले की जरगा पंचायत ने सच कर दिखाया है। यहाँ के कझाटांड गांव की कभी बंजर रही भूमि को जल योद्धा पार्वती देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सामूहिक भागीदारी से हरा भरा कर दिया है। पार्वती देवी को इसके लिए राष्ट्रपति से सम्मान भी मिल चुका है।
4: पहले बारिश के पानी सीधे जंगल चल जाता था, कुछ नहीं होता था यहाँ पे। अभी जिसके घर जाइएगा सब सारा अनाज मिलेगा, बहुत ही अच्छा फसल होता है बारिश के पानी जब से रुका है।
2: साहिबगंज के आदिवासी इलाकों में इस साल 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर जल, जंगल और वन्य जीवों को नया जीवन दिया गया है। इससे स्थानीय आदिम जनजातियों को गांव में ही रोजगार और पत्तों और बांस से अतिरिक्त आय मिल रही है।
5: नाम है चुन्ना हल्दा। इस जंगल में हम लोग आम भी लगवाए हैं और केन भी है, फल उल दर है। उससे हम लोग गाँव वाला को भी यहाँ उस बेच उच करके हम लोग का सुविधा होगा।
2: ये बदलाव सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है। झुमरी तिलैया जैसे शहरी क्षेत्रों में भी 10,000 से अधिक घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में गठित इको क्लब्स बच्चों को बचपन से ही ऊर्जा और पानी की बचत सिखा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा और साहिबगंज से अनंत ओझा के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
0: सरकार ने कहा है कि देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर इस वर्ष मार्च में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। इसमें करीब 61% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से विस्तार से संपर्क सुविधाएं मजबूत हुई है और बाजारों तक भी पहुंच बेहतर हुई है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित बनाने का काम ग्रीन हाईवेज नीति 2015 के तहत किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा की जाएगी। इस यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
3: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में भारत और 19 अन्य देशों से आयात होने वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज के में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विशेष दवाओं और उनके संबंधित घटकों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने इन देशों की सूची फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित की है। अमेरिका 29 सितंबर से कुछ पेटेंट दवाओं और उनके संबंधित घटकों के आयात पर 100% शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
7: जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को 2 पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्रीशंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस बीच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक है।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरलम, माही, कोंकण, गोवा और ओडिशा में भी आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
8: धन्यवाद जया। महिला सुरक्षा पर शीर्ष अदालत द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान की खबर को आज सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है कि किशोरियों से गैंगरेप, पूरे तंत्र की विफलता, रेप मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कई निर्देश जारी, स्थिति रिपोर्ट तलब, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। आम लोगों से जुड़े 4 और मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। जनसत्ता ने यूपीआई भुगतान से जुड़े फैसले को प्रमुखता से दिया है। सुप्रीम कोर्ट का एमडीआर पर रोक लगाने से इंकार, केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब। बवाल के बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 10 दिन के लिए बंद, पंजाब केसरी की खबर है। नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट का सुझाव लिखा है, ट्रैफिक चालान ना भरें तो बिजली बिल में जोड़ दें। बच्चों की सोशल मीडिया पहुंच को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी सुरक्षा तंत्र तैयार करे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट का बयान अमर उजाला में है। हिंदुस्तान ने विश्व हृदय दिवस पर भारत समेत एशिया प्रशांत क्षेत्र के 39 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण दिया है। प्रदूषण दिल के मर्ज को जानलेवा बना रहा, हर साल 17 लाख लोगों की हार्ट अटैक से होती है मौत। लोकसत्य ने मौसम का मिजाज शीर्षक से लिखा है, सितंबर की बारिश ने तोड़ा 57 साल का रिकॉर्ड, फिर भी 11.8% कम वर्षा। एशियाई खेलों में विथ्या रामराज के नए रिकॉर्ड को भी अखबारों ने सचित्र दिया है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष CBSE की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: Supreme Court asked Center to consider exempting Class 6 students from CBSE's three-language policy this year. Indian Navy to host second edition of Commanders Conference 2026 in New Delhi from today till Thursday. Delhi government prepares tougher action plan to control air pollution in the national capital during winter season. US waives tariff on specialty drugs imported from India and 19 other countries. An Indian men's cricket team advanced to the semi-finals at the Asian Games in Japan. The Supreme Court has directed the Centre and the Central Board of Secondary Education, CBSE, to consider extending to the current Class 6 students the exemption from the three-language framework that has been granted to students of Class 7. We have more from a correspondent.
10: A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justices Joymalya Bagchi and V. Mohana asked Solicitor General Tushar Mehta and Additional Solicitor General Aishwarya Bharti, appearing for the Centre and the CBSE, to grant the same relaxation granted to students of Classes 7, 8 and 9 to students of Class 6 this year. On September 17, the top court had asked the CBSE to consider implementing its policy mandating the study of three languages, including two native Indian languages, for Class 6 students from the next academic session starting 2027. According to CBSE statement, the current batches studying in classes 7, 8 and 9 would not be required to give board examination in third language when they progress to class 10. The Solicitor General has submitted that about 99% of schools have adopted the third language policy and have been provided the necessary facilities, and only about 1.2% of the schools have not. During the hearing, the Centre, however, maintained that it was not inclined to exempt the current class 6 batch from the policy and said students should pursue the new language framework from the current academic year itself. Yashasvi Kiryal for Akashvani News, Delhi.
9: Indian Navy will host the second edition of the Commanders Conference 2026 in New Delhi from today till Thursday. The three-day conference will provide an avenue for senior naval leadership, including outstation operational and area commanders. It will undertake a comprehensive review of operational preparedness at the military strategic level and engage with senior government functionaries through an institutionalized mechanism. The conference will be pivotal in underscoring Indian Navy's contribution towards safeguarding India's maritime interests, including security of energy amidst the ongoing conflicts in West Asia. On the opening day of the conference, Defence Minister Rajnath Singh will share his vision and guidance on national maritime perspectives and expectations from Indian Navy. Delhi government has prepared a tougher action plan to control air pollution in the national capital during the winter season. Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav chaired a high-level meeting with Delhi Chief Minister Rekha Gupta to review the air pollution mitigation action plan in the national capital. We have a report.
11: Under the action plan, no PUCC, no fuel will be implemented at all automatic number plate recognition enabled fuel stations through awareness and enforcement. There will be a complete ban on dust generating demolition activity and outdoor civil construction activity between the 1st of November and 31st of January. A public campaign will promote the Delhi Metro Sarthi app to strengthen last mile connectivity. The government will also focus on increasing plantations and greening identified brown areas. vehicles. The winter protocol will include restrictions on polluting vehicles, higher parking charges, staggered office timings and work from home arrangements. The EV policy 2026 and Parivartan scheme will also be promoted through registration drives and Jan Bhagidari camps. During the meeting, the Union Environment Minister called for organizing Jan Bhagidari events at the 37 identified hotspots in Delhi by the 10th of next month. Delhi Chief Minister stressed the need to ensure that decisions taken and action points identified translate into effective implementation on the ground. With Nitika Gupta, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
9: Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards the goal of a developed India by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in a special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the vision of Mission Life.
2: The state of Jharkhand, which accounts for about 40% of the country's mineral resources, faces the challenge of maintaining environmental balance alongside industrial development. Prime Minister Narendra Modi's Mission Life movement is taking shape on the ground across the state. Jharkhand has become the first state in the country to introduce a mandatory 10-week, 2-credit course at the undergraduate level in all colleges to promote environment-friendly practices among the young people. Prime Minister Narendra Modi explains the vision behind the movement.
3: हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से जितना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए. इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं. ये मार्ग है मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट का.
2: द प्राइम मिनिस्टर्स विजन इज आल्सो बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन इन जरगा पंचायत ऑफ कोडरमा डिस्ट्रिक्ट. इन काझाटांड विलेज बैरन लैंड हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ग्रीन एरिया थ्रू community participation led by water conservation activist Parvati Devi. She led villagers in digging thousands of trench combined structures for water conservation and has been honored by the president for her efforts.
12: Earlier, the rainwater used to flow directly into the forest and nothing much used to grow here. Now, whichever house you visit, you will find all kinds of grains. Paddy, rice, wheat, mustard, lentils, ragi, barley and gram. The crops have been very good ever since the rainwater started being conserved here.
2: The initiative has also helped improve the groundwater level in Kodarma. In the tribal areas of Sahibganj, more than 5 lakh saplings have been planted this year, helping conserve water, forests and wildlife.
5: Is jungle mein hum log aam bhi lagwaye hain.
13: Mango trees and various other fruit bearing trees have been planted in this forest. Once the trees start bearing fruit, we will be able to sell the produce to the villagers and generate some income for ourselves. The trees planted by the forest department will also provide us with firewood during dry spells. We would like to tell the government that this initiative will create significant employment opportunities for the rural population in the future. We thank the government for this.
2: The change is not confined to rural areas. In urban centers such as Jhumri Talaiya, water harvesting structures are being constructed in more than 10,000 households. Eco clubs in schools are encouraging children to conserve water and energy from an early age. With ecosystems such as Palamu Tiger Reserve and Betla National Park, sustainable living is increasingly becoming a people's movement in Jharkhand. With Gajendra Bihari Sinha from Kodarma and Anant Ojha from Sahibganj, this is Mahvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
9: This is Akashwani giving you the news.
6: Want more news? Follow us on X at AIR News Alerts and subscribe to News on Air Official on YouTube.
9: In Uttar Pradesh, heavy rainfall over the past several days, coupled with the release of water from barrages, has led to flood-like conditions in several districts. We have more from a correspondent.
14: द राम गंगा रिवर इन शाहजहानपुर एंड घाघरा रिवर इन बाराबंकी अयोध्या एंड तुर्तीपार इन बलिया आर फ्लोइंग अबव द डेंजर मार्क द क्वानो रिवर इन गोंडा एंड गंडक रिवर इन कुशीनगर आर ऑल्सो फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल इन कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट एन एम्बैंकमेंट अलोंग द नारायणी रिवर पासिंग थ्रू द तमकुही राज तहसील एरिया ब्रिज लेट नाइट ड्यू टू हैवी वाटर प्रेशर द एम्बैंकमेंट ब्रोक ओवर अ स्ट्रेच ऑफ अराउंड 25 मीटर्स ट्रिगरिंग पैनिक अमंग लोकल रेजिडेंट्स फॉलोइंग द ब्रिज Nearly two dozen villages of the district are facing the threat of flooding. The NDRF and SDRF teams have been directed to carry out extensive rescue operations in the affected areas. Meanwhile, the meteorological department has forecast thunder showers and rain in some parts of the state today as well. Authorities are closely monitoring the situation in the affected districts. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
9: In Uttarakhand, the Chardham Yatra has resumed after improvement in weather conditions. Garhwal Commissioner Anand Swaroop said the necessary directions have been issued to the concerned district magistrates. The Chardham Yatra had been suspended from the afternoon of September 26th until September 27th in view of the weather forecast and the safety of pilgrims. Meanwhile, repair and strengthening work is underway on the Kedarnath Dham trekking route near Chirbasa. The route was damaged by debris and boulders following heavy rainfall near Chirbasa, about 2.5 kilometers above Gori Kund. A flood-like situation is developing in the Mahanadi system in Odisha following heavy rainfall in the upper catchments and increased water release from Hirakud Dam. 26 sluice gates of the Hirakud Dam are open, releasing about 5 lakh cubics of water. The discharge at Mundali near Cuttack has risen to around 8 lakh cubics and has been closely monitored. The Water Resources Department has warned of inundation in low-lying areas of Cuttack, Khorda, Puri, Jagat Singhpur and parts of Kendrapara districts. FICCI Frames 2026 will begin in Mumbai today. The theme of this year's FICCI Frames is India's Media Moment, Creating Value in an Age of Infinite Content. We have more from a correspondent.
15: Union Minister for Tourism and Culture Gajendra Singh Shekhawat will deliver the inaugural address of the FICCI Frames 2026. FICCI Frames ambassador and actor Ayushman Khurrana will also address the gathering. The inaugural session will also feature the FICCI Frames Lifetime Achievement Award, which will be presented to former FICCI President and GeoStar Vice Chairman Uday Shankar. The program will include discussions on India's screen economy, cinema, digital creators, sports viewing, artificial intelligence and copyright, among other issues. Prarthana, Akashwani News, Mumbai.
9: The US will not charge any tariff on certain specialty drugs and associated ingredients used for treatment of rare medical conditions imported from India and 19 other countries. The US Commerce Department published the list of countries in the Federal Register as it prepares to impose a 100% tariff on certain patented pharmaceutical imports and the associated ingredients from September 29th. Eligible products for the 0% tariff rate include all drugs designated for rare diseases, infertility treatments, cell therapies, gene therapies, antibody drug conjugates, and animal pharmaceuticals. Components of these drugs also subject to 0% tariff rate. Besides India, the other countries in the zero tariff rate category include European Union, Indonesia, Japan, Malaysia, South Korea, Switzerland, Taiwan, Thailand, Britain, and Vietnam. Indian men's cricket team advanced to the semi-finals without taking the field. Their quarter-final against Afghanistan was abandoned due to inclement weather in the Aichi Nagoya. Meanwhile, India continued its impressive medal-winning run at the Asian Games in Aichi Nagoya, Japan, with athletes and shooters adding several medals to the country's tally. In athletics, India secured a double podium finish in the men's javelin throw. Yashveer Singh won the silver medal with a personal best effort of 85.72 meters, while Rohit Yadav claimed bronze with a throw of 84.35 meters. In the men's long jump, Sri Shankar Murli secured the silver medal with a best effort of 8.07 meters. Gulveer Singh also added another silver to his tally after finishing runner-up in the men's 1500 meters. He had earlier won silver in the men's 10,000 meters. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
16: Thank you, Abhishek. Ensure automated counter-terrorism response, Amit Shah tells top cops, leads the Statesman. To a worth listing, Noel submits Tata Sons revamp plan to Reserve Bank of India, reports the Times of India. Be selective in what you consume online, Nitin Nabin tells youth in Kolkata, reports the Tribune. How can children have social media accounts, asks Supreme Court, notes the Hindu. Government to pause 15.8 million unused Russian cards, states Hindustan Times. And finally, Taylor Swift becomes most awarded artist in MTV Video Music Awards history, writes the Indian Express, adding that the pop powerhouse dedicated her award to the ultimate showgirl, the late Dolly Parton. And with that, it's back to you, Abhishek.
9: Thank you, Shagun. And now, before we

0: the bulletin, the headlines once again. Supreme Court asked Centre to consider exempting Class 6 students from CBSE's three-language policy this year. Indian Navy to host second edition of Commanders Conference 2026 in New Delhi from today till Thursday. Delhi government prepares tougher action plan to control air pollution in the national capital during the winter season. US waives tariff on specialty drugs imported from India and 19 other countries. An Indian men's cricket team advanced to semi-finals at the Asian Games in Japan. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: FM 102.5 MHz और साथ ही News on AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है और मैं हूँ आपका अपना RJ गर्वित और आप सुन रहे हैं आपकी हर सुबह को और अधिक सुरीली और अधिक ताज़ा और अधिक खूबसूरत बना देने वाला आपका बेहद पसंदीदा कार्यक्रम उज्जैनी RJ। तो दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है विश्व स्वास्थ्य दिवस के अंतर्गत विश्व हृदय दिवस पर। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का उज्जैनी RJ कार्यक्रम।

नमस्कार श्रोताओं, आज का दिन उस अंग के नाम है जिसकी धड़कन के साथ हमारी पूरी जिंदगी चलती है, हमारा हृदय। हम अक्सर दिल को सिर्फ मोहब्बत का घर समझते हैं, लेकिन यही छोटा सा अंग दिन रात बिना रुके हमारे शरीर के हर हिस्से तक रक्त पहुंचाने का काम करता है। हम सो रहे होते हैं तब भी ये जागता है, हम खुश होते हैं तब भी धड़कता है, और हम परेशान होते हैं तब भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। शायद इसलिए दिल की देखभाल सिर्फ बीमारी से बचने की बात नहीं, बल्कि जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने की बात है। थोड़ा चलना, संतुलित भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना, तनाव को कम करना और समय समय पर स्वास्थ्य की जांच कराना, ये छोटी आदतें दिल के लिए बड़ी सौगात बन सकती है। तो आज अपने दिल को सिर्फ महसूस मत कीजिए, उसकी सुनिए भी। और इस खूबसूरत एहसास के साथ चलिए सुनते हैं आज के उज्जैनी आरजे कार्यक्रम का पहला गीत।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: कहते हैं दुनिया की सबसे पुरानी भाषा शायद दिल की भाषा है। इसमें शब्द कम होते हैं, एहसास ज़्यादा। किसी अपने की आवाज़ सुनकर चेहरे पर मुस्कान आ जाना, किसी की चिंता में मन बेचैन हो जाना या किसी कहे किसी का हाल समझ जाना, ये सब दिल के अपने अंदाज हैं। लेकिन इस खूबसूरत दिल को हमारी थोड़ी सी जिम्मेदारी भी चाहिए। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम हर काम, मोबाइल, तनाव और भागदौड़ के बीच अपने शरीर की आवाज़ सुनना भूल जाते हैं। कई बार थकान को सामान्य समझ लेते हैं और लगातार तनाव को जिंदगी का हिस्सा, जबकि शरीर हमें लगातार संकेत देता है कि थोड़ा ठहरिए, थोड़ा आराम कीजिए। विश्व हृदय दिवस हमें यही याद दिलाने का अवसर है कि जिंदगी की दौड़ में दिल को पीछे मत छोड़िए। काम ज़रूरी है, सपने ज़रूरी है, रिश्ते ज़रूरी है, लेकिन इन सबको जीने के लिए स्वस्थ धड़कन भी ज़रूरी है। आइए दिल की इसी प्यारी भाषा के साथ सुनते हैं अगला गीत।

दिल सिर्फ हमारे सीने में नहीं धड़कता, कभी कभी वो रिश्तों में भी धड़कता है। माँ की आवाज़ में, पिता की चिंता में, दोस्त की हंसी में, किसी अपने के इंतज़ार में। हमारे जीवन के कितने ही खूबसूरत पल दिल की धड़कनों से जुड़े होते हैं, मगर रिश्तों की तरह दिल को भी समय चाहिए। जिस तरह किसी अपने से बात करने के लिए हम कुछ पल निकाल लेते हैं, उसी तरह अपने शरीर के लिए भी थोड़ा समय निकालना ज़रूरी है। आज विश्व हृदय दिवस पर एक छोटी सी बात याद रखिए, अपनों का ख्याल रखने से पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना सर्वार्थ नहीं, जिम्मेदारी है। क्योंकि जब हम स्वस्थ होते हैं तभी अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांट पाते हैं। इसलिए आज किसी अपने से प्यार कीजिए, किसी को मुस्कुराने की वजह दीजिए और अपने दिल को भी थोड़ा सुकून दीजिए। आखिर ज़िंदगी केवल सालों की गिनती नहीं, उन धड़कनों की कहानी है जिनमें हमने अपने लोगों को महसूस किया है। इसी भाव के साथ सुनते हैं उज्जैनी आरजे कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, हमारी ज़िंदगी में कई चीज़ें ऐसी है जिनके लिए बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं होती, बस शुरुआत की ज़रूरत होती है। स्वास्थ्य भी उन्हीं में से एक है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा पैदल चलना, सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, लंबे समय तक लगातार बैठे रहने से बचना और अपनी दिनचर्या में शारीरिक सक्रियता बढ़ाना, ये छोटी छोटी बातें हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकती है। हमें हमेशा किसी बड़ी चुनौती की तलाश नहीं करनी चाहिए। कभी कभी शाम की छोटी सी सैर भी अपने आप से मिलने का सुंदर बहाना बन सकती है। चलते हुए पेड़ों को देखिए, हवा को महसूस कीजिए, शहर की आवाज़ों को सुनिए और कुछ देर मोबाइल को जेब में रहने दीजिए। दिल को सिर्फ दवाओं की नहीं, एक संतुलित जीवन शैली की भी ज़रूरत होती है। आज विश्व हृदय दिवस पर खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए, दिन में थोड़ा वक्त अपने शरीर के नाम भी होगा। और इसी के साथ, अगर आप अपने दिन को और खुशनुमा बनाना चाहते हैं तो आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र पर अपने रेडियो को ट्यून करके सुनिए हमारे विशेष कार्यक्रम। तो आइए, जीवन की इसी सक्रिय और खुशनुमा चाल के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
3: कभी कभी दिल की थकान शरीर से ज़्यादा मन में जमा होती है। काम का दबाव, जिम्मेदारियां, भविष्य की चिंता, लगातार स्क्रीन पर बने रहना और खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीदें, ये सब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं। तनाव हमेशा पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे संभालना ज़रूर सीखा जा सकता है। कुछ पल शांत बैठना, गहरी सांस लेना, संगीत सुनना, किसी दोस्त से बात करना, प्रकृति के बीच समय बिताना या अपनी पसंद का काम करना मन को राहत दे सकता है। और सबसे ज़रूरी, हर वक्त मजबूत बने रहने की ज़रूरत नहीं है। कभी थक जाना भी इंसानी है, कभी रुक जाना भी ज़रूरी है। दिल को केवल तेज़ धड़कने के लिए नहीं, सुकून महसूस कराने के लिए भी समय चाहिए। तो आज विश्व हृदय दिवस पर अपनी ज़िंदगी की रफ्तार में थोड़ा विराम लगाइए और ख़ुद से पूछिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। शायद इस सवाल का जवाब ही आपके लिए आज का सबसे ज़रूरी स्वास्थ्य संदेश हो। इसी एहसास के साथ चलिए सुनते हैं उज्जैनी आरजे कार्यक्रम का अगला गीत।

दिल की सेहत की कहानी हमारी थाली से भी होकर गुजरती है। हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और कितनी नियमितता से खाते हैं, इन सब का हमारी सेहत पर असर पड़ता है। स्वाद जिंदगी की खूबसूरती है, लेकिन संतुलन उसका आधार है। ताजे फल, सब्जियां, साबुन, अनाज, दालें और संतुलित आहार को दिनचर्या का हिस्सा बनाना और अत्यधिक नमक, चीनी तथा बहुत ज़्यादा संतृप्त और ट्रांस वसा वाले खाद्य पदार्थों को सीमित

करना हृदय स्वास्थ्य के लिए मददगार हो सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जिंदगी से स्वाद गायब कर दिया जाए, बल्कि बात इतनी है कि स्वाद और सेहत के बीच एक खूबसूरत समझौता हो। कभी पसंदीदा खाना भी खाइए, मगर रोज की थाली में संतुलित रहिए। आखिर हमारा शरीर वही बनाता है जो हम उसे देते हैं। आज अपने दिल की खातिर अपनी थाली को थोड़ा और रंगीन, थोड़ा और संतुलित बनाने का संकल्प लें और इसी स्वास्थ्य स्वाद के साथ अब सुने ये सुंदर गीत।

किसी ने खूब कहा है, मुस्कान चेहरे की छोटी सी रोशनी है लेकिन उसका असर बहुत दूर तक जाता है। ज़िंदगी में परेशानियां आती रहेंगी, जिम्मेदारियां रहेंगी, कभी दिन अच्छे होंगे तो कभी मुश्किल, मगर इनके बीच छोटी छोटी खुशियां तलाशना भी हमारी जिम्मेदारी है। किसी दोस्त को फ़ोन कर लेना, परिवार के साथ बैठकर खाना, किसी पुराने गीत को सुनना, सुबह की धूप में कुछ देर बैठना या किसी अनजान व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करना, ये छोटी बातें ज़िंदगी को हल्का बना देती है। अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी समग्र स्वास्थ्य का हिस्सा होता है। हालांकि यदि किसी को लगातार तनाव, उदासी या चिंता महसूस हो रही हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना महत्वपूर्ण है। आज विश्व हृदय दिवस पर अपने दिल के लिए एक छोटी सी खुशी बचा कर रखिए, क्योंकि ज़िंदगी केवल लंबी नहीं खूबसूरत भी होनी चाहिए। और अब इसी खूबसूरती को संगीत में पिरोकर आप सभी के बीच परोस रहे हैं ये सुंदर सा गीत।

दोस्तों, संकेतों को नज़रअंदाज न करें। दिल की देखभाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने शरीर के संकेतों को समझना। सीने में दबाव या दर्द, सांस लेने में परेशानी, अचानक अत्यधिक पसीना, बेहोशी या असामान्य कमजोरी जैसे लक्षण गंभीर हो सकते हैं। ऐसे संकेतों को केवल थकान मानकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत चिकित्सा सहायता भी लेनी चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में अनुमान से ज़्यादा ज़रूरी है सही समय पर सही सलाह। इसी तरह नियम स्वास्थ्य जांच भी महत्वपूर्ण है, खासकर यदि किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान की आदत या परिवार में हृदय रोग का इतिहास हो तो याद रखिए, सावधानी डर नहीं है, सावधानी अपने जीवन के प्रति सम्मान है। आज विश्व हृदय दिवस पर अपने शरीर की आवाज़ सुनने का संकल्प लें, क्योंकि ज़िंदगी हमें बहुत कुछ देती है और बदले में हमसे सिर्फ इतना चाहती है कि हम उसका ख्याल रखें। इसी संदेश के साथ संगीत की ओर बढ़ते हैं। इस गीत के साथ

0: हे मन्नु भाई मोटर चली पाम पाम पाम
1: मन्नु भाई मोटर चली पाम पाम पाम।
2: जब भी हम सड़क पर निकालें वाहन तो रखें इन बातों का ध्यान।
3: स्कूटर मोटरसाइकिल जैसे दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें
2: और चार पहिया वाले वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर बांधें।
3: चौराहे पर हमेशा वाहन को जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें और ट्रैफिक सिग्नल का पालन अवश्य करें।
2: वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें।
3: वाहन हमेशा निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलाएं।
2: नशे की हालत में कभी वाहन न चलाएं।
3: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों को वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित न करें।
2: दो पहिया वाहन में दो से अधिक व्यक्ति न बैठें।
3: चार पहिया वाहन में भी सीट की संख्या के अनुरूप ही लोग बैठें।
2: वाहन के इंडिकेटर, हेडलाइट, ब्रेक, पहिए इत्यादि को हमेशा दुरुस्त हालत में रखें।
3: वाहन के सभी कागजात अपने साथ जरूर रखें।
2: थोड़ी सी सावधानी
3: दूर करे सभी परेशानी।
4: बाजू बाबू।

तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम की संपूर्णता की ओर बढ़ने से पहले एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाइए। अपने सीने पर हाथ रखिए और महसूस कीजिए वो आवाज़ कितनी साधारण लगती है, लेकिन इसके भीतर पूरी ज़िंदगी छिपी है। बचपन से लेकर आज तक न जाने कितनी खुशियाँ, कितने दुखों, कितनी मुलाकातों और कितनी यादों की गवाह रही ये धड़कनें। हमने अपने सपने देखे, अपने लोगों को पाया, कुछ खोया, फिर संभले और आगे बढ़ते रहे। इसलिए दिल का ख्याल रखना सिर्फ स्वास्थ्य का विषय नहीं, ज़िंदगी के प्रति आभार व्यक्त करने जैसा भी है। आज विश्व हृदय दिवस पर अपने लिए, अपने परिवार के लिए और उन तमाम लोगों के लिए एक स्वास्थ्य जीवन का संकल्प लें जिनकी मुस्कान हमारे जीवन को अर्थ देती है। कम तनाव, संतुलित भोजन, नियमित गतिविधि, पर्याप्त नींद और समय पर स्वास्थ्य जांच, इन छोटी आदतों से बड़ी तस्वीर बनती है। याद रखिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और हर धड़कन उसकी एक नई पंक्ति। अपने दिल का ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और हर सुबह इस एहसास के साथ शुरू कीजिए कि आज की धड़कन जिंदगी की तरफ से मिला हुआ एक खूबसूरत तोहफा है। मैं हूं गोपाल गर्वित, आपसे इजाज़त चाहता हूं। फिर मुलाकात होगी उज्जैन आरजे कार्यक्रम में, एक नई सुबह, एक नए कार्यक्रम के साथ, कुछ नए किस्सों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

का उज्जैन केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी पर सुबह के ठीक 9:30 हुए हैं और अब समय है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स का।

दोस्तों, ज़िंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर अपने आसपास की दुनिया को बहुत तेज़ी से पार करते चले जाते हैं। काम, जिम्मेदारियां, रिश्ते और रोज़मर्रा की व्यस्तता के बीच अचानक कोई एक ऐसा इंसान या एहसास ज़िंदगी में आता है जो हमारे देखने का नज़रिया ही बदल देता है। वही शहर, वही रास्ते, वही दिन, लेकिन अचानक कुछ अलग लगने लगता है। फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो का ये गीत ऐसे ही बदलते हुए मन और नए नए एहसासों की कहानी कहता है। सोहम चक्रवर्ती की आवाज़ में ये गीत एक सहज रोमांटिक माहौल बनाता है, वहीं प्रीतम का संगीत इसे और भी सुरीला रंग देता है। तो आइए, ज़िंदगी के इन्हीं बदलते रंगों के साथ सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

हर रिश्ते की शुरुआत किसी बड़े वादे से हो ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी किसी के साथ यूं ही चलना, यूं ही बातें करना और बिना किसी खास वजह के साथ वक्त बिताना ही रिश्ते को खूबसूरत बना देता है। ऐसा ही बेफिक्र पलों में अपनापन धीरे धीरे अपनी जगह बना लेता है। फिल्म तनु वेट्स मनु का गीत इसी सहजता और साथ होने की खुशी को अपने अंदाज में सामने लाता है। मोहित चौहान और स्वाति शर्मा की आवाज़ें इस गीत को एक सरल, हल्का और आत्मीय एहसास देती है। इसकी धुन में वो सुकून है जो किसी खास इंसान के साथ बिना किसी मंजिल की चिंता के चलते रहने में मिलता है। तो चलिए कुछ पल बिना किसी वजह के बस यूं ही संगीत के नाम करते हैं और सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

चलिए दोस्तों, बॉलीवुड बीट्स के इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। ज़िंदगी में हम भविष्य की चिंता और अतीत की यादों के बीच इतना उलझ जाते हैं कि वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी का असली आनंद शायद उसी पल में है जो अभी हमारे सामने है। दोस्तों के साथ सफ़र, खुला आसमान, रास्तों की आज़ादी और अपने मन की आवाज़ सुनने का एक मौका। ये पल बार बार नहीं आते। फिल्म ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा का ये गीत इसी बेफिक्र जीवन को और खुलकर जीने की ऊर्जा को आवाज़ देता है। सूरज जगन और जॉय बरुआ की आवाज़ में सजा ये गीत प्रीतम और शंकर एहसान लॉय के संगीत का जोश लेकर आता है। तो अब थोड़ा रफ्तार बढ़ाते हैं और दिल को उसकी अपनी लय में धड़कने देते हैं इस गीत के साथ।

0: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
1: आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
2: प्रेम में सबसे खूबसूरत एहसासों में से एक है किसी को अपना मानना और उसके साथ अपने भविष्य की कल्पना करना। जब कोई शख्स हमारे ज़िंदगी में इतना ख़ास हो जाए कि उसकी मौजूदगी हमारे हर ख्याल का हिस्सा बनने लगे, तो रिश्ते की गहराई शब्दों से कहीं आगे निकल जाती है। फिल्म हिट स्टोरी 4 का ये गीत इसी रोमांटिक जुड़ाव और अपनेपन के भाव को सामने लाता है। जुबिन नोटियाल और अमृता सिंह की आवाज़ों में सजा ये गीत भावनाओं को एक नरम और सुरीला अंदाज देता है। मिथुन का संगीत इसकी रोमांटिक फीलिंग को और

तो चलिए दोस्तों, बॉलीवुड बीट्स के इस सफ़र में अंतिम मोड़ पर आपको सुनाते हैं फिल्म जिस्म 2 का एक गीत, जो नए एहसासों, आकर्षण और उसके भाव के कारण जाना जाता है। केके की आवाज़ में गीत को एक ख़ास गहराई मिलती है, ऐसी आवाज़ जो भावनाओं को बहुत सहजता से श्रोताओं तक पहुंचाती है। आर्को प्रावो मुखर्जी का संगीत गीत के रोमांटिक मूड को और उभारता है। तो आइए उस एहसास, उस महसूस करते हैं इस गीत के साथ।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। दोस्तों, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी पर सुबह के 10 बज चुके हैं और अब समय है हमारे प्यारे श्रोताओं के प्यारे फरमाइशी पत्रों का। तो चलिए शुरू करते हैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

तो चलिए दोस्तों, पिटारे में से निकालते हैं हमारा पहला फरमाइशी पत्र जो हमको प्राप्त हुआ है देवास से, जहाँ से सुमित, निरंजन, आदित्य, देवद्रत और रानी ने ये पत्र हमको भेजा है और सभी ने सामूहिक रूप से इस सुंदर से गीत की फरमाइश हमसे की है। तो चलिए इनकी फरमाइश पर आप सभी को सुनवाते हैं ये सुंदर सा गीत।

तो दोस्तों अगली फरमाइश युवाओं की ओर से हमारे बीच पहुंची है, जिसमें रूनी जाके युवाओं ने हमसे इस गीत की फरमाइश की है, जिसमें फरमाइशकर्ताओं में नाम है सुमित का, आशीष, विशाल, शेखर, सभी ने सामूहिक रूप से इस गीत की फरमाइश की है और कहा है कि ये गीत उनका दिन बना देता है। तो चलिए इन सभी युवा श्रोताओं की फरमाइश पर आप सभी को सुनवाते हैं ये सुंदर सा गीत।

चलिए दोस्तों, अगले फरमाइश पत्र की तरफ चलते हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया ने सुंदर से गीत की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। आप सभी के हम तक पहुंचने वाले फरमाइशी पत्र ही हमें और अधिक मेहनत करने और अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो हमें पत्र भेजते रहिए। फिलहाल चलिए इन सभी श्रोताओं की मांग पर ये सुंदर सा गीत आप सभी को सुनवाते हैं।

दोस्तों, अगर दिलों में आत्मीयता हो तो रास्ते सिमट जाते हैं, और इसी का उदाहरण है हमारा अगला फरमाइशी पत्र। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, राजवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज, इन सभी श्रोताओं ने इतनी दूर से उज्जैन आकाशवाणी के केंद्र के तक ये पत्र पहुंचाया है और इस सुंदर से गीत की फरमाइश की है। तो चलिए, इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आप सभी के लिए ये सुंदर सा गीत।

दोस्तों, ये कार्यक्रम आप सभी के फरमाइशी पत्रों से ही सजता है, संवरता है। अगला पत्र जो हमको प्राप्त हुआ है वो भेजा है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री और रमेश गोड़ सहित मोहम्मद शादाब खत्री ने। इन सभी श्रोताओं ने इस सुंदर से गीत की फरमाइश हमसे की है, तो चलिए इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत आप सभी को सुनवाते हैं।

चलिए दोस्तों, फरमाइश के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा अगला पत्र कहाँ से आया है। तो ये पत्र नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हमें प्राप्त हुआ है, जिसे भेजा है अब्दुल गफ्फार खुशनसीब अब्दुल हक डावर जियाउल हक डावर मोहम्मद उमर डावर ने। इन सभी ने आज की सुबह का ये सबसे खूबसूरत गीत चुना है, तो चलिए इन सभी श्रोताओं की ओर से आप सभी को सुनवाते हैं ये सुंदर सा गीत।

इस सुंदर से गीत के बाद चलिए फरमाइशी अगले पत्र की ओर बढ़ते हैं। लगातार सुंदर सुंदर गीतों की फरमाइशें हम तक पहुंच रही है और उसी कड़ी में अगला पत्र हमें भेजा है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरव शर्मा और साइना शर्मा ने। इन सभी श्रोताओं ने सपरिवार इस गीत की फरमाइश हम तक पहुंचाई है, तो चलिए इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत आप सभी की सुबह को और अधिक सुरीला बनाने के लिए आपको सुनाते हैं।

दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो जी हाँ, ये छत्तीसगढ़ से हम तक पत्र पहुंचा है, जिसे भेजा है दतरेंगी से भागवत वर्मा ने, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी ने, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू ने और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू ने। इन सभी श्रोताओं ने आज सुबह को और खुशनुमा और संगीतमय बनाने के लिए इस गीत की फरमाइश हम तक पहुँचाई है। तो चलिए, इन सभी प्यारे श्रोताओं की ओर से ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

श्रोताओं का प्यार ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम को और अधिक सुंदर बनाता है। लेवा खेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से ये फरमाइश हम तक पहुंची है, जिसे भेजा है नारायण भाव, विठल राव खर्चे, ललिता रानी खर्चे, परी संजना खर्चे, गणेश, कार्तिक, ब्रोनो, उषा, सोरना, स्वाति, प्रयाग और मालती चौधरी ने। आइए इन सभी श्रोताओं की पहली पसंद ये गीत आप सभी को सुनवाते हैं।

तो चलिए दोस्तों, फरमाइशों के इस आखिरी मुकाम पर जो पत्र हमारे हाथ में है वो बड़ी लंबी दूरी तय कर हम तक पहुंचा है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार और जय किशन साहू ने ये पत्र हम तक पहुंचाया है और इस सुंदर से गीत की फरमाइश हमसे की है। तो चलिए आज के आपकी फरमाइश कार्यक्रम के इस अंतिम गीत के साथ आपके दिन को और सुहाना बनाते हैं।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 11 बजने को है। अब हमारा अगला कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित होगा।

0: इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: करो वादा,
3: हाँ जी वादा।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।

रंग तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। कार्यक्रम की शुरुआत बेगम अख्तर की आवाज से, शायर हैं तस्कीन कुरैशी।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।

0: ये आवाज़ें थी उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की, शायर नसीम रिफत, संगीत ललित का और एल्बम आगोश।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आंखों में तेरा ही चेहरा, ये एल्बम का नाम है। आवाज और गीत जय वालिया का, संगीत ललित का।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपकी आशा, इस एल्बम का गाना आशा भोसले की आवाज में, बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी।

0: तरंग तरंग।
1: पिनाज मसानी की आवाज है, शायर है गालिब, संगीत मधुरानी का एल्बम आपकी बज्म में।

लीजिए अब सुनिए साधना सरगम और उत्कर्ष शर्मा की आवाजें, लता विनोद नोवाल का लिखा हुआ गाना, संगीत है गोविंद बत्री का।

रंग तिरंग कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं जुबिन नौटियाल और पायल देव की आवाजों में। कुणाल वर्मा का लिखा हुआ गाना, पायल देव का संगीत, एल्बम का नाम है दिल लौटा दो।

फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत आपने सुना, दिल झूम झूम नाचे, इस एल्बम का गाना, गीत और संगीत ललित सेन का। इसी के साथ आज का रंग तरंग ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। जापान में एशियाई खेलों में नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किया। भारतीय टीम ने कुल 328 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। चीन पहले और कुवैत तीसरे स्थान पर रहा। एशियाई खेलों में भारत कुल 47 पदकों के साथ 11वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें 5 स्वर्ण, 21 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ADGPI पर पोस्ट कर इस मुलाकात की जानकारी दी। अमेरिकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा हालात पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सऊदी अरब भारत का भरोसेमंद और महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, संस्कृति और पारस्परिक आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने दोहा में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2026 वार्षिक बैठक के दौरान सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान से मुलाकात की। श्री जदान ने भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और बेहतर निवेश माहौल के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को बधाई दी। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत के सफल समापन का स्वागत भी किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पारादीप बंदरगाह दल के त्वरित संयुक्त बचाव के प्रयासों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत के बंदरगाह हर समय पूर्ण समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ओडिशा के पारादीप तट के पास जहाज लगभग 9000 मीट्रिक टन पाम ऑयल ले जा रहा था और उसमें 23 चालक दल के सदस्य सवार थे। रविवार सुबह मुख्य इंजन के फेल होने और गिट्टी टैंक में तेजी से पानी भरने के कारण जहाज एक तरफ झुक गया, जिसके बाद जहाज ने आपातकालीन संकट कॉल जारी की थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी पदाधिकारियों की ये पहली बैठक है। इसमें पार्टी की संगठनात्मक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आज विश्व हृदय दिवस है। हृदय रोगों, उनकी रोकथाम और वैश्विक प्रभाव के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 257 अंक गिरकर 72,514 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे दिल, हृदय, दिल शब्द के गाने। आज विश्व हृदय दिवस है तो दिल शब्द के गाने। 24 घंटे इस फिल्म का ये पहला गाना आशा भोसले और तलत महमूद की आवाजों में। राजा मेहंदी अली खां के बोल हैं, संगीत है बिपिन बाबुल का।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गाना अब आपको सुनवाते हैं। शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम आह।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आज विश्व हृदय दिवस पर दिल शब्द के गाने आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में आईना फिल्म का ये गाना, समीर के बोल, दिलीप सेन समीर सेन का संगीत।

शकील बदायूनी का लिखा और सी रामचंद्र का संगीतबद्ध किया। ये गाना महेंद्र कपूर की आवाज में, फिल्म का नाम जिंदगी और मौत।

ब्रेक के बाद अब यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं अमरदीप फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत को लिखा राजेंद्र कृष्ण ने और संगीतबद्ध किया सी रामचंद्र ने।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: प्रभात, बहुत बड़ी तालियां उनके लिए।
1: आकाशदीप फिल्म का गाना लीजिए, अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है चित्रगुप्त का।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: आंधी और तूफान इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, फारूक कैसर के बोल, संगीत है रॉबिन बनर्जी का।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब सुना जाए अलबेला फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और इसकी धुन बनाई श्री रामचंद्र ने।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अब आपको सुनवाते हैं तलत महमूद की आवाज में आरजू फिल्म का ये गाना। इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई अनिल बिस्वास ने।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आस का पंछी, इस फिल्म से सुबीर सेन की आवाज, शैलेंद्र के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

सुरीला सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हूं मैं मंजू द्विवेदी। आज सबसे पहले आपको जो इबारत हमने फेसबुक पर पोस्ट की है वो पढ़ के सुना देते हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने तो पढ़ ली है और पढ़ने के बाद उन्होंने बहुत सारी बातें लिख भेजी है। पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं। कहते हैं कि हंसने हंसाने से हमारी और हमारे दिल की सेहत अच्छी रहती है। हंसता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है। किसी को हंसाना ये बड़ा कठिन काम है, पर कुछ लोगों को इसमें महारत हासिल होती है। जी हाँ, कुछ लोगों को इसमें महारत हासिल होती है। जीवन में अगर हंसी का खजाना ना हो तो जीवन खाली डिब्बे की तरह होता है। जो दिल वाले होते हैं, हमारे चाहने वाले होते हैं, उनके लिए रुपया सबसे बड़ा नहीं होता, बल्कि उनके लिए तो किसी की सादगी, किसी का बांकपन दिल पर तीर चला देता है। कोई चतुर जब हंस की चाल चलता है तो भी माहौल ठहाकों वाला हो जाता है। कभी कुछ अटपटे और चटपटे शब्द जब घोड़ा गाड़ी या रिक्शा निराली पर लिखे हों तो भी हंसी आ जाती है ना। तो

0: बताइए किसने चुराई है आपकी निंदिया। ये है आज की इबारत या टेक्स्ट, जिसमें बहुत सारे शब्द छुपे हैं, जिसमें बहुत सारे गाने छुपे हैं। और विषय की अगर बात करें तो आज अभिनेता महमूद को हम याद कर रहे हैं। और आज विश्व हृदय दिवस भी है। हृदय यानी कि दिल, दिल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो हम सुन भी रहे हैं कि दिल ने धोखा दे दिया, या दिल हमारे वश में नहीं रहा, दिल पर काबू नहीं रहा, दिल ने अचानक ये कर दिया, वो कर दिया। तो बहुत सारी बातें हैं दिल को लेकर, हृदय को लेकर। तो अपने हृदय का, अपने दिल का ख्याल रखिए। और भी बहुत सारे सवाल हमारे होंगे आगे, लेकिन एक साथी की ये बात आपको पढ़ के सबसे पहले सुना देते हैं कि हंसना और हंसाना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये आत्मा का उल्लास है। बिना हंसी या मुस्कुराहट के जीवन को नीरस, रसहीन या मूर्छित कहा गया है। हंसी के बिना मानव पाषाण हृदय के स्वरूप हो जाता है, जिसमें संवेदनाओं और भावनाओं के अंकुर नहीं फूटते। जैसे वर्षों से कोई भूमि बंजर पड़ी हो, श्रृंगार रस में मुस्कान लिए हुए चेहरे की सुंदरता के लिए अनेकों उपमाएं हैं। कहीं पर खिलते हुए कमल या दामिनी से चपलता, कहीं चांद सा रोशन चेहरा जैसे शब्द गढ़े गए हैं। मुस्कान, हंसी आंतरिक सौंदर्य का बाह्य प्रकटीकरण है। दूसरों को हंसाना बहुत कठिन होता है, ये एक उत्कृष्ट कला और साधना है। जी हां, ये कला है जो बहुत कम लोगों में होती है। तो हो सके तो आप भी किसी के चेहरे पर हंसी लाइए, मुस्कुराहट लाइए, किसी के हंसने की वजह बनिए, और फिर देखिए आपके चेहरे पर अपने आप हंसी या मुस्कुराहट आ जाएगी, और उससे आपके दिल की सेहत भी तो अच्छी रहेगी ना। चलिए गीत सुनते हैं। नीलकमल फिल्म का ये गाना सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे। मन्ना डे की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत।
1: खाली डब्बा, खाली बोतल,

एक साथी की बात है कि आज तो सुरीला सफर हम सब हंसते हंसाते तय करने वाले हैं। आज कॉमेडी किंग महमूद जी की याद का दिन है, उनको मेरा शत शत नमन। हंसना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितनी कि श्वास लेना। हंसने से तनाव दूर होता है, पॉजिटिविटी आती है और मानसिक शांति एवं ऊर्जा का संचार होता है। यदि हम किसी रोते हुए को हंसा देते हैं तो दिल को बेहद सुकून और खुशी मिलती है। हंसते गाते कट जाए ये दिन। और एक साथी लिख रहे हैं कि हास्य अभिनेता महमूद जितने बेहतरीन कॉमेडियन थे उतने ही गहरे भावुक अभिनेता थे। फिल्म कुंवारा बाप में एक दिव्यांग बच्चे के गरीब पिता के रूप में उनके मार्मिक अभिनय ने हर दर्शक की आंखें नम कर दी थी। महमूद सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक संपूर्ण कलाकार थे। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज वर्ल्ड हार्ट डे है तो दिल की और हंसने हंसाने की बात ही होनी चाहिए। कुछ दिनों पहले धर्म पत्नी पास बैठकर बोली कि सगाई के बाद और शादी के शुरू के दिनों में आप दिल से मेरी कितनी तारीफ करते थे। मैंने कहा कि वो तो अभी भी मैं करता हूं। फिर धर्म पत्नी ने कहा कि पहले ज्यादा तारीफ करते थे, तो मैंने कहा देखो जब हम नया मोबाइल लाते हैं शुरू करते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने लिखी है। चलिए आज हंसने हंसाने की बातें भी हैं और दिल की सेहत की बातें भी है। तो आज हम आपसे विश्व हृदय दिवस पर ये पूछना चाहते हैं कि आजकल लोगों के हृदय की जो सेहत है वो गिरती चली जा रही है, तो आपको क्या कारण नजर आते हैं और किस तरह से हृदय की सेहत को हम पहले की तरह अब भी ठीक रख सकते हैं, इस बारे में अगर आपको कोई जानकारी है तो आप हमें बताइए। और चलिए अगला गाना आपको सुनवाते हैं, जौहर महमूद इन गोवा, इस फिल्म का ये गाना है। मन्ना डे और मोहम्मद रफी की आवाज़ है, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि मैं अपनी योग क्लास में रोज हास्यासन करवाती हूँ, पहले नकली हंसी लेकिन बाद में वो असली हंसी में परिवर्तित हो जाती है। दिल को दुरुस्त रखने वाले आसन भी हम लोग डेली करते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा, हंसते हंसते कट जाए रस्ते। और आज सुरीला सफर की प्रस्तुति जो है उसमें इस तरह के गीतों की इन्होंने बात की है। और लिखा है कि आज सुबह में 8 बजे जो उठा हूँ दिन के, तो उसके बाद में अब हंस सका हूँ, अच्छा लग रहा है। अध्यापक को भी वर्ग में थोड़ा बहुत बच्चों के साथ हास्य और विनोद करना चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि सच खाली में ही तो समूचा विश्व ही अवस्थित है। और यह खालीपन तो सभी के हृदय में पाया ही जाता है। सोचिए अगर यह खालीपन नहीं रहता तो फिर हम कहाँ रहते। जी, आपकी ये बात है। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि हंसना सेहत के लिए और खास करके हृदय के लिए बहुत लाभदायक है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अक्सर हंसते रहते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल हंसते नहीं। उनको पूछना पड़ता है कि तेरी हंसी की कीमत क्या है, बता दे तू। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जहाँ तक मुझे जानकारी है, महमूद जी अपना मेहनताना मुख्य अभिनेता से केवल 1 रुपये कम लेते थे। उनका किसी भी फिल्म में किरदार जो भी रहे, पूरी फिल्म की जान रहते थे और फिल्म में कॉमेडी तो को उन्होंने बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने का काम भी किया है। जी हाँ, धन्यवाद आपको। चलिए अब सबसे बड़ा रुपया इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवाएंगे। महमूद और साथियों की आवाजें हैं और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना है। संगीत किसका है अगर आपको पता है तो हमें बताइए।

दिया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता भी न मिलती अगर, तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट भैया सबसे

साथी फ्रॉम वेयर दिस इंग्लिश बैंड, आज कहां का नेशन, काहे की धरती मैया, द होल थिंग इज दैट भैया सत्य।

सबसे बड़ा रुपया इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें संगीत बासु मनोहारी का। अब आपको तय करना है कि सबसे बड़ा क्या है आपके जीवन में, रुपया, पैसा, सेहत, हंसी या खुशी, या अपने सगे संबंधी। चलिए, महमूद विनोद मेहरा और मौसमी चटर्जी पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज हमारे खान पान में शुद्धता की कमी है और लोग अक्सर खाद्य पदार्थों के पैकेट पर दी गई जरूरी जानकारी को अनदेखा कर देते हैं, जैसे कि कुकिंग ऑयल के बारे में, जिससे दिल के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आजकल के रहन सहन का तरीका बहुत तनावपूर्ण रहता है, खान पान भी ठीक नहीं होता है, कभी भी कुछ भी खा लेते हैं जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, मनोरंजन में कमी मिलकर तनावपूर्ण जीवन बनाते हैं, फिर दिल के डायबिटीज आदि रोग भी हो जाते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ मानव प्राणी ही ऐसा है जो हंस सकता है और पड़ोसन एक चतुर नारी है जो हमें हंसाती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि हमारे शरीर में जो कोई सबसे ज्यादा प्रामाणिक अवयव है वो हृदय है, जो अपनी जान की बाजी लगाकर भी हमारी रक्षा करता है। विमान में 4 इंजन लगाए जाते हैं, लेकिन भगवान ने हृदय में 6 गुना ज्यादा ताकतवर बनाया है। एक साथी लिख रही कि हंसिए और दिल को तंदुरुस्त रखिए, क्योंकि आज 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस है। लोग भूल गए हैं कि दिल को वेंटिलेटर की नहीं, सिर्फ थोड़ी सी खुली हंसी की जरूरत है। हंसने से फेफड़े तो फूलते ही हैं, साथ ही दिल को भी लगता है कि आप अभी जिंदा दिल हैं। इसलिए पार्क में जाकर कृत्रिम रूप से हा हा हा करने वाले लाफ्टर क्लब की जरूरत पड़े उससे पहले ही घर में बीवी के चुटकुलों पर या खुद के हालातों पर हंस लीजिए। जी हाँ, हंस लीजिए। हम आज अभिनेता महमूद को याद कर रहे हैं, उनके द्वारा जो एक हास्य कलाकार के रूप में उन्हें ज्यादा जाना जाता है, लेकिन उन्होंने और भी मतलब अभिनय के क्षेत्र में जो है उन्होंने अपना एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि दूसरी तरह की जो भूमिका है उन्हें भी उन्होंने बहुत संजीदगी से पूरा किया है या निभाया है। चलिए, शबनम फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, जावेद अनवर के बोल हैं, संगीत है उषा खन्ना का।

0: शीतलम।
1: बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि सबसे बड़ा धन तो अपना स्वास्थ्य होता है, हेल्थ इज वेल्थ। सेहत अच्छा है तो आप धन कमा सकते हैं, पर धन से आप सेहत नहीं खरीद सकते। ये बात हमारे एक साथी ने लिखी है जो हमने आपको पढ़ के सुनाए। एक साथी लिख रहे हैं कि आज सुबह सुबह गैस सिलेंडर खत्म हो गया। जब मैं सिलेंडर बदलने के लिए नया सिलेंडर लेने लगी तो पतिदेव ने पूछा कि क्या गैस खत्म हो गया है, तो मैंने कहा नहीं, इस वाले सिलेंडर को घुमाने ले जा रही हूँ। फिर दोनों ठहाके मारकर हंस पड़े और दिन बन गए। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अनिद्रा सबसे बड़ा कारण है दिल के लिए। जब भी रात को नींद ना आए तो लंबी लंबी सांस ले और श्वासासन में थोड़ी देर लेटे और मोबाइल से तो दूरी ही बना ले तो आपको लाभ अवश्य होगा। एक साथी लिख रहे हैं कि आज जो आपने टॉपिक लिया है बड़ा अच्छा है, हंसना मुस्कुराना और अपने दिल का ख्याल रखना, ये जिंदगी की बहुत बड़ी जरूरत हो गई है। सबसे बड़ा रुपया, इस गाने पर मुझे याद आ गया कि कॉलेज के एनुअल फंक्शन में हम लोगों ने 4-5 लड़कियों ने मिलकर इस गाने पर डांस किया था। वो फोटो आज भी देखती हूं तो अपने आप चेहरे पर हंसी आ जाती है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अब हृदय को पहले की तरह स्वस्थ नहीं रख सकते हृदय, क्योंकि हृदय ही क्यों बल्कि पूरे शरीर को ही नहीं रख सकते, क्योंकि अब वो चूल्हे की रोटी नहीं खा सकते। अब तो गैस आ गई है जिससे पेट में गैस बनना शुरू हो गई और पहले की तरह फिट रहना एक सपना है। यदि व्यक्ति गैस की पकी रोटियां खाना बंद कर दे तो स्वास्थ्य पुनः लौट आएगा, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है क्योंकि आजकल कोई कुछ करना नहीं चाहता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल की दुनिया में हंसी और चाहत का अपना ही रंग है। किसी की मुस्कुराहट दिल को सुकून देती है, किसी की सादगी मन को छू जाती है और किसी का माकपन दिल पर तीर सा असर कर जाता है। अपनों के साथ हंसी के ठहाके जीवन में खुशियों के रंग भर देते हैं, कभी अटपटे चटपटे पल भी चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। चलिए धन्यवाद आपका। इसी के साथ एक सवाल और मैं आपके हवाले करती हूँ कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बात बात पर बहुत हंसता है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी मुस्कुराता नहीं है, चाहे कितनी ही हंसी की बात हो वो न कभी हंसते हैं न मुस्कुराते हैं। तो ऐसे लोगों को जब आप देखते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में, बताइएगा। चलिए अगला गाना गुमनाम फिल्म से मोहम्मद रफी और महमूद की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, महमूद और हेलन पर फिल्माया गया ये गाना।

0: ख्यालों में, ख्यालों में, ख्यालों में, ख्यालों में। जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हमें काले हैं।

बाला चंदाना, ये सोला साला तंदाना है तेरे ख्याला चंदाना, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या।

आतई तंदाना, क्यों पास न आतई तंदाना, जा मारिए बाता तंदाना, दिल तोड़िए घाता तंदाना।

चाली तक धुमी तक ताली तक जमी तक झाला आंबो ताक झुगी ताक ताली गे नाक ताक नाक ताक झुमी ताक नाक नाक झुमी ताक नाक नाक झुमी ताक नाक नाक झम तारी ता झग तारी ता झन झाले कोको तारी दाबो तारी गेटे ताली झम तारी ता झग तारी ता झन झाले कोको तारी दाबो तारी गेटे झम तारी झग तारी ताक नाक ताक झिंड ता झिंड ता झिंड ता झम तारी झग तारी झाले झाले को

0: ऐसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।
1: गुमनाम फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि जो बिल्कुल हंसते नहीं, ऐसे लोग तो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, हमारे परिवार में हम सब हंसते हंसाते रहते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि परिवार में है तो मैं रिश्ते की बात नहीं करूंगी, शायद रेडियो पर सुन ले तो संबंध खराब हो जाएगा, पर 40-42 सालों से मैंने कभी उन्हें ठहा के लगाकर हंसते हुए नहीं सुना। अगर वो कभी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं तो सोचती हूं कि आज निश्चित कुछ अजीब होने वाला है। परिवार के लोग उनके इस एटीट्यूड से वाकिफ है और पीछे से जो है उनके बारे में ये बात भी होती है। तो आज

अच्छी बात हो तो 1-1.5 इंच वो मुस्कराएंगे जरूर। एक साथी ये लिख रहे हैं कि अक्सर बहुत से कॉमेडियन की असली जीवन जो है वो बहुत तनावपूर्ण रहता है, दूसरों को हंसाकर खुद अंदर से वो दुखी रह होते हैं। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि गुजराती मुहावरा है कि हंसे तेनू घर वसे, मतलब जो सदा हंसता मुस्कुराता रहता है उसका घर आसानी से बस जाता है। वैसे अच्छी तंदुरुस्ती यानी सेहत के लिए हंसना मुस्कुराना बहुत जरूरी है, भले ही वो अपने मित्र सगे संबंधी हो या कोई और हो। एक साथी ने ये बात लिखी कि महमूद अपने पूरे शरीर से अभिनय करते थे। एक समय ऐसा था कि वे पर्दे पर आते और हंसी का जो दौर दर्शकों के मन में चलता वो खत्म ही ना होता। एक जमाना तो ऐसा था महमूद अकेले अपने दम पर पर्दे तक दर्शकों को खींच कर ले आते थे। वैसे तो फिल्मी दुनिया के पिटारे में अनेक हास्य कलाकार आए और गए, मगर महमूद एक रत्न थे। वे उस अनमोल मोती की तरह थे जो हर फिल्म निर्माता अपनी अंगुली में पहनना चाहता था। ऐसे रत्न सदियों में एक बार ही जन्म लेते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए आरती फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, रोशन का संगीत। एक बार फिर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बात बात पर ठहाके लगाकर हंसते हैं और माहौल खुशनुमा हो जाता है? कोई ऐसे व्यक्ति जो चाहे कितनी भी हंसी की बात हो बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराते? चलिए गीत सुनिए।

गीत सुनते सुनते और आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं ये पढ़ते पढ़ते गीत कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, और बहुत सारे कमेंट्स हमारे सामने हमें नजर आ रहे हैं। एक साथी हमारी लिख रही है कि बिहार में कहते हैं कि हंसे तो फंसे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हंसिए मत। किसी की नाकामियों पर, शारीरिक दुर्बलता पर मजाक उड़ाते हुए मत हंसी, ऐसी हंसी किस काम की। जी हाँ, किसी के ऊपर हंसने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी की कमियों पर हंसे, हंसे हंसने वाली बातों पर हंसे, या अपनी ही किसी गलती पर हंसे, या कोई मूर्खतापूर्ण कार्य जब हम स्वयं कर लेते हैं तो हमें अपने आप पर हंसी आ जाती, हम उस हंसी की बात कर रहे हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ रखने का हंसने के अलावा एक और बहुत ही दिल के लिए लाभदायक बात है, वो है अपने हृदय में कोई भी बात दबाना नहीं चाहिए, कह डालना चाहिए, हृदय हल्का भी होगा और स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। साथ में विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम का आनंद भी हम ले सकते हैं। और एक साथी की ये बात है कि खुशी से खिला हुआ चेहरा सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि दिल, दिमाग और शरीर का हर अंग खिल जाता है। पता नहीं हम हंसने में भी कंजूसी क्यों कर देते हैं, पहले हम खुद मुस्कुराएं तभी तो हम दूसरों के होठों पर मुस्कान ला पाएंगे। एक साथी ये लिख रहे हैं कि एक वाक्य याद आ गया जो विविध भारती पर किसी प्रोग्राम में सुना था कि महमूद साहब के घर पर कोई पार्टी हो रही थी जिसमें जूनियर महमूद साहब को नहीं बुलाया, उन्हें पार्टी में जूनियर महमूद साहब बिना बुलाए पहुंच गए, वैसी टी शर्ट और ड्रेस पहनकर जैसी महमूद साहब ने पहन रखी थी। इस गीत में हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले, इस गीत में जो पहन रखी और ये गीत गाने लगे, बस फिर क्या था, महमूद साहब ने जूनियर महमूद को अपने गले से लगा लिया। और एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि हंसना केवल होठों का व्यापार नहीं, आत्मा की औषधि है। जो व्यक्ति हंसना जानता है वो दुखों में भी रास्ता निकाल लेता है, और जो हंसाना जानता है वो दूसरों के जीवन में दिया जला देता है। तनाव, बीमारी, अकेलेपन से भरी इस भागदौड़ भरे जीवन में एक सच्ची हंसी दिल हल्का कर देती है और रिश्तों में जमी धूल को साफ कर देती है। हंसने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता और हंसाने वाला व्यक्ति कभी भुलाया नहीं जाता। इसलिए हंसिए ताकि आपका मन स्वस्थ रहे, और हंसाइए ताकि आपका होना दूसरों के लिए उत्सव बन जाए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बचपन में जब छोटे थे तो कक्षा 8वीं में था तो मेरे क्लास टीचर बहुत ही अच्छे थे, उनके चेहरे पर हमेशा हंसी ही दिखाई देती थी, चाहे वो हमें मारते भी थे लेकिन उस मार के पीछे भी एक हंसी छुपी रहती थी। और हमारे प्राचार्य थे, उनको कभी भी हमने हंसते हुए नहीं देखा था। तो ये बातें हमारे साथियों की है, और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। अब एक ऐसा गीत हम सुनने जा रहे हैं जिसके बारे में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, जितनी भी बार ये गीत सुनो चेहरे पर हंसी आए बिना नहीं रहती। सुनिए ये गाना।

0: अरे
1: गारे
0: गारे
1: दूर बता
0: गारे।

पड़ोसन फिल्म का ये गाना अभी हमने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि हृदय प्रसन्न कर दिया आपने चतुरनार, ये गाना सुनवा के जो कि पड़ोसन फिल्म से हमने सुना। और एक साथी लिख रहे हैं कि मैं तो हंसता हूँ अपने हालातों पर, क्योंकि लोग कहते हैं कि हंसने वाले लोग ज़्यादा जिंदा रहते हैं। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है, एक पड़ोसी थे जो किसी को हंसते हंसाते या बच्चों को खेलते हुए देख करके बहुत भड़क जाते थे। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि मेरे जो पति हैं बहुत कम ठहाका लगाकर हंसते हैं, बहुत सीरियस वो रहते हैं। और एक ये भी लिखा है साथी ने कि पड़ोस में बहुत पहले एक परिवार आया था, उसमें उनकी जो श्रीमती थी बहुत हंसमुख थी और जब भी मिलती थी तो ऐसा लगता था कि वो अभी हंस देंगी या जो है एक स्माइल।

एक दे देंगे। इस तरह की बात इन्होंने लिखी। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हंसना हंसाना एक कला है, किसी किसी को ये इसमें महारत हासिल होती है। कई कलाकार हैं जो दूसरों को आसानी से हंसा देते हैं। महमूद जी भी उनमें से एक हैं जिन्हें आज हम याद कर रहे हैं। हंसना सेहत के लिए जरूरी है, जिसमें शरीर में उत्पन्न तनाव को वो दूर करता है, आंतरिक खुशी मिलती है। और कुछ गानों का जिक्र उन्होंने किया है। चलिए अगला गाना, बेटी बेटे, इस फिल्म से।

एक साथी ने ये बात लिखी कि दिल में खुशी और सुकून हो तो चेहरे की मुस्कान और भी खूबसूरत हो जाती है, और बस यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए, आपके मुस्कान किसी के दिल में उजाला कर सकती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ हुई भारी बरसात से बिजली आपूर्ति 5 दिन से बाधित है, किसी तरह मोबाइल चार्ज कराकर विविध भारती के कार्यक्रमों को हम सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, आपका ये जो प्यार है, ये जो मोहब्बत है विविध भारती से, बस ये मोहब्बत हमारे दिल में घर कर जाती है, दिल तक पहुंचती है कि चाहे हालात कुछ भी हो, लेकिन आप कोशिश जरूर करते हैं कि हम किसी तरह विविध भारती के कार्यक्रम सुन सकें। धन्यवाद आपका इस प्रयास के लिए। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि मेरा ये जो अभी गाना हमने सुना ना पड़ोसन फिल्म का, एक चतुर नार बड़ी होशियार, इस गाने के बारे में उन्होंने लिखा है कि मेरा खुद का नाम चतुर है और इस गाने में गाने की वजह से मेरे दोस्त जो है वो हमेशा ये हम फरमाइश करते थे कि चतुर नार करके सिंगार ये गाना आप गुनगुना कर सुनाइए, और मैं उन्हें गुनगुना कर सुनाता हूँ, गाकर सुनाता हूँ और मन ही मन बहुत खुश भी होता हूँ। चलिए, आपकी खुशी हमारे लिए बहुत अनमोल है। और अब हम आपको दो फूल इस फिल्म का

0: एक साथी की ये बात है कि हृदय के स्पंदन को हृदयंगम कर हृदय हेतु हंसिए और हंसाइए। हृदय की अदला बदली सिर्फ प्रेम और साहित्य में होती है, भौतिकी नहीं। विश्व हृदय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिल आपके पास ही रहेगा, कोई और नहीं ले सकता, अतः उसकी सुरक्षा संरक्षण आपके ही हाथों में है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अपने दिल का ख्याल रखना, अपने दिलों को जोड़ना, इसका ध्यान रखिए। चलिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, कुंवारा बाप इस फिल्म का गाना।
1: Uriah!

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बजने को हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जंजीर का एक गाना। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की हैं। गुलशन बावरा ने इस गीत को लिखा है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

0: अब हम आपको सुनवा रहे हैं पुरानी फिल्म साजन का एक गाना, और आवाज़ें हैं इसमें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।
1: रेशम की डोरी

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेल 2026 में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि यह असीम गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में नीरू ढांडा की जीत ने नया एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया है। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी यह जीत भारतीय युवाओं को निशानेबाजी में जाने के लिए प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। कैबिनेट बैठक में लगभग 24,500 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी।
1: आज की कैबिनेट ने 24,500 करोड़ के कामों को स्वीकृति दी। दमोह कटनी 105 किलोमीटर का मार्ग जिसकी लागत 4,470 करोड़ रुपए है, इसकी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा सिंगरौली में पूर्व में 450 बेड का हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के साथ बनता था, वहां पर 150 सीटें MBBS की होने के बाद 155 स्तरीय का अस्पताल एक नया जो उसके साथ में रिविजन होगा, 372 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई।
0: बुरहानपुर जिले में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शाहपुर स्थित सांदीपनी विद्यालय में नुक्कड़ नाटक का मंचन कर विद्यार्थियों एवं नागरिकों को जनसेवा, सामाजिक सहभागिता और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं नेपानगर के शासकीय महाविद्यालय में भी छात्र छात्राओं ने आकर्षक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर आमजनों को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक एवं प्रेरित किया। कटनी में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा मेरा योगदान विशेष अभियान का 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आयोजन किया जाएगा। इस दौरान स्वच्छता, स्वास्थ्य, वृद्धजन एवं अनाथालय सेवा तथा नेत्र परीक्षण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण और सैनिक परिवारों का सम्मान तथा जरूरतमंद विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री वितरण जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। बालाघाट में आत्मसमर्पित नक्सलियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत पुलिस लाइन में बनाए गए प्रशिक्षण केंद्र में महिला और पुरुष आत्मसमर्पित नक्सलियों को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। बालाघाट के पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने ड्राइविंग, जेसीबी ड्राइविंग और सिलाई कढ़ाई में प्रशिक्षण लेने की इच्छा जताई थी। उन्हें कौशल प्रशिक्षण के साथ मुख्य धारा से जोड़कर सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार किया जा रहा है।
2: मध्य प्रदेश में जो पुनर्वास एवं राहत नीति है उसके पे भरोसा करके करीबन 13 नक्सलाइट्स ने मध्य प्रदेश में और सीमावर्ती MMC क्षेत्र में करीबन 45 नक्सलाइट्स ने सरेंडर किया। में जितने भी नक्सल्स यहां पर सरेंडर किए उन लोगों के बैंक खाते भी खुले हैं और उसमें उनको जो फाइनेंशियल राहत वो मुहैया कराई जा चुकी है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो भविष्य में अपना जीवन यापन कर सकता है। अधिकतर लोगों की गाँव के रहने वाले हैं और काफी लंबे समय से गाँव को छोड़ चुके थे, तो वहां पर खेती किसानी करना, अन्य चीजों को करने के लिए जो स्किल्स की जरूरत होती है, जैसे हार्वेस्टर चलाना, ट्रैक्टर चलाना, कोई जो बीज है उसकी देखरेख करना, फर्टिलाइजर्स का यूज,
0: प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बारिश का दौर कमजोर रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल कोई सक्रिय मानसूनी सिस्टम नहीं है, जिससे भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर सहित कई हिस्सों में तेज धूप निकल सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा के सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद उपनिर्वाचन में सुबह 11 बजे तक 47.88% मतदान दर्ज किया गया है। कटनी जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में विश्व रेबीज दिवस पर रेबीज प्रबंधन विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। मुरैना में चंबल नदी में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन रोकने के लिए कलेक्टर और SP ने देर रात विभिन्न गांवों का दौरा कर SAF चौकियों का निरीक्षण किया। शिवपुरी में श्रीमंत माधवराव सिंधिया जिला खेल परिसर में 30 सितंबर से इंटर स्कूल U-14 डायरेक्टर कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। झाबुआ में शहीद चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित 25 दिवसीय कंप्यूटर प्रशिक्षण का समापन हुआ। बुरहानपुर कृषि विज्ञान केंद्र में 1 से 7 अक्टूबर तक बकरी एवं पोल्ट्री पालन पर 7 दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए पंजीकरण जारी है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा, भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में आज बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से चीन से कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हितों में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के हित में नहीं है। एक रिपोर्ट।
5: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। उन्होंने कहा कि व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य और बारीकी से विचार विमर्श की जरूरत है। डॉ जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अमरीकी पक्ष की ओर से पर्याप्त समझ या संवेदनशीलता नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमरीका में कल से शुरू होने वाली दो दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर भी चर्चा की। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। अमरीकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
4: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया 2027 के बारे में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य 2047 तक यात्रियों की संख्या मौजूदा लगभग 24 करोड़ से बढ़ाकर 130 करोड़ करना है। श्री नायडू ने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के बारे में श्री नायडू ने कहा कि इस योजना ने देश भर में हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अगले वर्ष 16 मार्च से नई दिल्ली के भारत मंडपम में रूट्स एशिया 2027 के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये सुविधा मयूर विहार फेज 1 और सराय कालेखां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करेगी। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच आवागमन बेहतर होगा। श्री शाह ने मुखरबा चौक अंडरपास का भी उद्घाटन किया। गृहमंत्री श्री शाह ने मोदी मिल, सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर तथा लोनी अंडरपास के निर्माण की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं की लागत 1,900 करोड़ रुपए से अधिक रहेगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारत की विविध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, प्रलेखन, डिजिटलीकरण, अनुसंधान और संवर्धन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि ये साझेदारी मंत्रालय के जनजातीय अनुसंधान तंत्र और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के नेटवर्क को इस केंद्र की अकादमिक, अभिलेखीय और अनुसंधान तथा क्यूरेटोरियल विशेषज्ञता के साथ जोड़ेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को प्रथम प्रमाण से सम्मानित किया। प्रमाण राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विश्वसनीय और पारदर्शी ढांचा है जो वनों, लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रमाणित वनों और कृषि वानिकी उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नागरिकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने और नई तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्री नायडू ने आज विजयवाड़ा में क्षमता निर्माण आयोग द्वारा आयोजित मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत साधना श्रृंखला 2026 की दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि कैसे वक्फ संशोधन अधिनियम से बदलाव आया है।
7: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 एक ऐसा ऐतिहासिक विधायी कदम है जिसके माध्यम से सरकार ने सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद को दोनों सदनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का पारित होना एक ऐतिहासिक क्षण है। दाऊदी बोरा समुदाय के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समुदाय के अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के साथ हुए अन्याय का संज्ञान लेने और उसके समीक्षा करने के बाद बनाया गया है।
8: 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि हमें न्याय दो, वक्फ वालों ने हमारे साथ ये किया। उसमें ज्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा रियलिटी क्या है खोजो, तो ये रातों रात नहीं आया है। लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की सब। तो मुझे मालूम था कि बोरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब को तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबत है, इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया।
7: कोलकाता उच्च न्यायालय की वकील शिवली शाह ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को उनके संपत्ति की अधिकार प्राप्त हुए हैं।
9: इस अमेंडमेंट एक्ट में 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस है। महिला लोगों के लिए एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। नॉर्मली महिलाओं लोगों का वाकब बोर्ड और वाकब काउंसिल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये मास्ट कर दिया गया है कि वाकब बोर्ड में कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए और वाकब काउंसिल में भी कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए।
7: आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कुल्लन लहा की रिपोर्ट।
10: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आज राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी के इन पदाधिकारियों की ये पहली बैठक थी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, बसपा के रामजी और 6 अन्य नेताओं का कार्यकाल 25 नवम्बर को समाप्त हो रहा है। उत्तराखंड से नरेश बंसल का कार्यकाल भी इसी दिन समाप्त हो रहा है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की है। ये सीट तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मलिक के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुंबई में फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र में उन्होंने ये बात कही।
11: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूं कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
10: असम के सोनितपुर जिले में सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में सोनाई रूपाई जंगल और हाथियों के लौटने का उल्लेख किया था।
12: हिमालय की तलहटी में स्थित सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य 220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4 सितंबर 1998 को इसे आधिकारिक रूप से वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। असम वन विभाग की 2024 की हाथी गणना के अनुसार इसकी सीमाओं के भीतर 140 हाथी दर्ज किए गए थे। यह अभयारण्य कभी सैकड़ों हाथियों का घर हुआ करता था, लेकिन बढ़ती मानवीय गतिविधियों और भूमि अतिक्रमण के कारण हाथियों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। हालांकि अतिक्रमणकारियों को हटाने और वनीकरण के माध्यम से हरियाली बहाल करने के लिए किए गए विशेष प्रयासों ने जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नतीजतन अब उन क्षेत्रों में भी हाथियों के झुंड देखे जा रहे हैं जहां वे कई वर्षों से दिखाई नहीं दिए थे। सोनितपुर से रजत भरद्वाज के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी न्यूज, गुवाहाटी।
10: और जापान एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
13: निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों 2026 में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिला दिया है। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीन ने रजत पदक हासिल किया। उधर मुक्केबाजी की बात की जाए तो नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
10: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
14: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना आंचल फिल्म से है। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें, प्रदीप का लिखा हुआ गाना, श्री रामचंद्र का संगीत।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती है दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अब सुनते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। इस फिल्म का गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में, कैफी आजमी के बोल हैं, संगीत है SD बर्मन का।

आइए अब सुनते हैं अनुराधा फिल्म का गाना, जिसे लता मंगेशकर ने गाया है, शैलेंद्र ने लिखा है और रविशंकर का संगीत है।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: ये है बाबर फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल है और संगीत है रोशन का।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। और अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं, राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, इकबाल कुरैशी का संगीतबद्ध किया ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम बिंदिया।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में अब आपको सुनवा रहे हैं कमर जलाल आबादी का लिखा हुआ गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, फिल्म का नाम छलिया।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में छलिया फिल्म का ये गाना आपने सुना। और अब सदाबहार नगरी में कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बम्बई का बाबू। इस फिल्म का गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने गाया है, मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है और धुन बनाई है SD बर्मन ने।

इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सखी सहेली कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

0: की सहेली।
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंजू द्विवेदी
2: और मंजरी वर्मा का
1: नमस्कार।
2: बहुत दिनों बाद सखी सहेली के मंच पर आपके साथ वक्त मिला है कुछ बातें करने का, कुछ विषयों पर चर्चा करने का। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि समय कितना गुजर जाता है जब हमारा मिलना वैसे तो होता है, लेकिन हाँ इस मंच की देखिए अलग ही बात होती है ना। तो हमारे साथी भी इंतजार कर रहे होंगे कि आज तो भाई मंजू जी भी हैं और मंजरी भी है और ये लोग क्या दिल की बातें करते हैं ना।
1: बिल्कुल। और देखिए दिल की बातों की आपने बात की, तो जब भी मिलते जुलते हैं तो दिल की बातें करते हैं और कर ही लेना चाहिए।
2: बिल्कुल।
1: कहते हैं कि दिल की बातें कर लेने से मन जो है हल्का हो जाता है और हमें थोड़ा सुकून भी मिलता है कि हमारी सखी ने, हमारे साथी ने, हमारे दोस्त ने, हमारे मित्र ने हमारे दिल की बात सुन ली। हो सकता है वो कोई उस चीज का कोई सोल्यूशन दे सके, कोई उसका निर्णय निकल सके।
2: बिल्कुल।
1: और एक मन को तो सुकून मिलता ही है, साथ ही साथ हृदय की जो या दिल की जो सेहत है वो भी दुरुस्त रहती है।
2: बिल्कुल दुरुस्त रहती है और बातों का कोई राय का पहाड़ भी नहीं बना पाता है।
1: सही बात है।
2: और आज
1: के विषयों की बात कर ले हम सबसे पहले।
2: देखिए हमने तो बातों में आपने दिल की बात करी, उसमें अभी विषय आपने निकाल दिया, तो मैंने कहा भाई मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे दिल से तो कोई राय का पहाड़ भी नहीं बना पाएगा।
1: तो तुमने भी विषय की बात
2: कर दी मुहावरों की दुनिया में, है ना।
1: बिल्कुल। तो आज का हमारे जो विषयों में सबसे पहला विषय होगा स्वस्थ दिल लंबा जीवन। चूंकि आज विश्व हृदय दिवस है तो हम दिल की या हृदय की बात करेंगे। और इसके अलावा सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करेंगे महिला उद्यमी अदिति बलबीर की।
2: जी। और इसके साथ हल्की फुल्की बातें में होगा कि अन्न का दाना व्यर्थ ना जाने दे। यानी ये जो सारी चीजें है ना आज की, दिल की बात है, फिर अन्न की बात है और राई के पहाड़ बनाने की बात है, तो ये सब चीजें एक दूसरे से मिली हुई है। क्योंकि दिल से हम अगर खाना खाएंगे, अन्न खाएंगे तो हम पूरा ठीक से खाएंगे, और दिल से नहीं खाएंगे तो हम थोड़ा थाली में छोड़ देंगे, है ना।
1: बिल्कुल
2: जी। तो इस तरह की बात
1: है, अन्न को व्यर्थ ना होने दे, जितना जरूरत हो उतना ही बनाए, और अगर बच जाए और किसी तरह आप अगले दिन उसका उपयोग कर सके तो अच्छी बात है। या जैसे किसी समारोह में अगर बच जाता है तो आपको किस तरह से दूसरों को वो दे देना चाहिए ताकि उसका उपयोग हो सके, इस के अंतर्गत हम यही बातें जो है करने वाले हैं। इसके अलावा मुहावरों की दुनिया में जैसा तुमने बता ही दिया है कि राई का पहाड़ बनाना, यानी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना करके बता देना, जितनी बड़ी वो है भी नहीं बात।
2: बिल्कुल। तो, और मंजू जी राई को अगर हम चाहें भी कि एक पहाड़ की जैसे खड़े करने की सोचे, कल्पना भी करें तो राई
1: नहीं
2: रुकेगी नहीं, वो भरभरा के गिरी जाएगी।
1: हाँ। तो इसी तरह से जब छोटी सी बात को कोई बहुत बड़ा बना देता है तो जैसे राई भरभरा के गिर जाती है, वैसे उसी तरह वो बातें भी कभी न कभी सामने आकर के गिर जाती है।
2: बिल्कुल सही।
1: तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है। तो स्वस्थ दिल लंबा जीवन, दिल की बातें हम करते हैं तो दिल हमारे शरीर का इंजन है, और जब इंजन सही चलेगा तभी जिंदगी की गाड़ी लंबी और सुहानी चलेगी। तो प्रतिवर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे हम मनाते हैं ताकि हम सब इसकी अपनी इस धड़कन की कद्र करना सीखें।
2: बिल्कुल। और आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, खराब खान पान और लगातार बढ़ते तनाव का जो सबसे बड़ा असर होता है वो हमारे दिल पर ही पड़ता है। लेकिन अच्छी बात ये होती है मंजू जी कि अपने दिल को मजबूत और सेहतमंद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। रोजमर्रा की जीवन शैली में थोड़े से बदलाव करके हम बीमारियों से भी बच सकते हैं और अपने दिल को भी संभाल सकते हैं।
1: बिल्कुल। और दिल को सेहतमंद रखने के कई सारे ऐसे तरीके हैं जो आसान भी हैं और कारगर भी है। इस बारे में हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें हमें लिख करके भेजी है, तो उन आसान तरीकों के बारे में हम बताएंगे और श्रोताओं के कमेंट्स की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दिल को सही रखने का एक और तरीका है संगीत। कितना दिल को है ना खुशी से भर देता है, मन को खुशी से भर देता है, उससे भी तो हमारी सेहत अच्छी होती है।
2: बिल्कुल आपका इशारा हम समझ गए।
1: चलिए सुनते गाना।

0: मंजरी ये गाना हमने सुना, दिल मेरा बस में नहीं, लेकिन दिल को बस में रखना पड़ता है,
1: बिल्कुल रखना पड़ता
0: है। कई बार हालांकि हालात बड़े मुश्किल हो जाते हैं, नहीं रख पाते हैं, लेकिन दिल को बस में रखना या वश में रखना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल, वो भी एक कला है मंजू जी।
0: हाँ,
1: कि हम अपने हर परिस्थिति में, चाहे वो खुशी के दिन हो, चाहे गम के दिन हो, दुखी वाले दिन हो, हर समय हमें अपने दिल को बहुत मजबूती से रखना पड़ता है, कि तभी हम सामने जो भी हमारी समस्याएं होती, चाहे खुशियों के दिन, उनका सामना हम कर पाते हैं। और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश लिखकर भेजे हैं।
0: एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल केवल हमारे शरीर का एक अंग नहीं बल्कि जीवन की धड़कन है। स्वस्थ दिल हो तो जीवन में ऊर्जा, उत्साह और खुशियों की रौनक बनी रहती है। इसलिए अपने दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अतः संतुलित भोजन, नियमित हल्की फुल्की कसरत, पर्याप्त नींद और तनाव को कम करना, ये छोटी छोटी आदतें दिल को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन दिल की सेहत के साथ मन की सेहत भी उतनी ही जरूरी है। खुलकर हंसिए, अपनों के साथ समय बिताइए, छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए और मन में प्यार व सकारात्मकता बनाए रखिए, क्योंकि जब दिल स्वस्थ रहता है तो जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं होती बल्कि वो अधिक सुंदर और खुशहाल बनती है। कितनी प्यारी बातें और सटीक बातें इन्होंने लिखी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और एक हमारे साथी ने छोटी सी बात लिखी है कि दोस्तों के साथ दिल खोलकर हंसिए, ऑपरेशन थिएटर में दिल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: बहुत सही बात लिखी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो यही हमने कहा था ना कि जब हम सखियां मिलती है तो दिल की बात करती है, तो बस ऐसे ही अपने दोस्तों मित्रों से
1: गागर में सागर भरने वाली बात है ना। और एक साथी और लिखते हैं कि कोई माने या ना माने, पहले कभी हृदय को बीमार होते हुए सुना था, कभी ब्लड प्रेशर की कोई बात सुनी थी, कभी शुगर की कोई बीमारी सुनी थी, कभी किडनी की कोई इतनी बीमारी सुनी थी। इसकी सच्चाई सिर्फ इतनी है, हजारों सवालों का एक जवाब, जनसंख्या बहुत ज्यादा है इसलिए मौसम का अनियंत्रित वातावरण हो रहा है। ईश्वर ने तो हमें, ये प्रकृति ने तो हमें 4 महीने का हर मौसम दिया था, मगर हमने अपनी स्वार्थ और कायरता से उस मौसम को बिल्कुल बदल दिया। ना गर्मी आएगी तो 7-8 महीने गर्मी पड़ेगी, ठंड जाए 4 महीने पड़नी थी वहां 4-5 दिन में चली जाती। यानी कि इनका कहने का मतलब यह है कि इतनी सारी पॉपुलेशन हो गई है कि समस्याएं होती जा रही है इंसान की जिंदगी में, चाहे वो भागा दौड़ी की हो कि कमाने धमाने की चिंता है या घर परिवार को पालने की चिंता है, तो और मौसम का भी उस पर असर पड़ता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें अब जल्दी ज्यादा सुनाई देने पड़ गई कि तनाव की वजह से हो जाता है लोगों को, तो इस तरह की बीमारियां सुनाई देने लग गई हैं।
0: हाँ, इन्होंने ये लिखा कि पहले के जमाने में इन बीमारियों के बारे में हमने सुना ही नहीं था, लेकिन अब ये बहुत आम हो चुकी है। हाँ, ये तो सही बात है कि मौसम का बहुत असर हुआ है, हमारे खान पान का असर हुआ है, हमारी दिनचर्या का भी बहुत असर हुआ है। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग तो बहुत देर तक सोते नहीं है और सुबह बहुत देर तक सोते रहते हैं, जल्दी उठते नहीं है, और खान पान का असर तो हुआ ही है। जंक फूड खाते हैं हम, मसालेदार और तेज मिर्च वाले, और इसके अलावा तेल बहुत होता है उनमें, बहुत सारा बटर चीज वगैरह डाल करके इस तरह की चीजें जब हम खाते हैं तो इसका दिल पर असर तो होता ही है।
1: बिल्कुल।
0: तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है ताकि हमारा दिल जो है वो स्वस्थ रहे। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि स्वस्थ दिल और लंबा जीवन पाने के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाना सबसे जरूरी है। स्वस्थ दिल और दीर्घायु के लिए मुख्य उपाय जो है वो भी इन्होंने लिखे हैं कि नियमित व्यायाम करें, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता से व्यायाम करें, और उन व्यायाम में आप जो है तेज चलना, साइकिल चलाना या तैरना ये आप कर सकते हैं। संतुलित आहार, अपने खाने में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और नट्स जैसे कि अखरोट, बादाम, ये शामिल कर सकते हैं। तनाव प्रबंधन कर सकते हैं, योग, ध्यान और मेडिटेशन से आप जो है तनाव को दूर कर सकते हैं, और धूम्रपान और शराब से दूरी बना सकते हैं। इसके अलावा पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है, रोज 7 से 9 घंटे की नींद लें, नियमित जांच कराएं, जैसे अगर रक्तचाप जैसी कोई बीमारी है या शुगर है या नहीं है, उसके कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं तो भी आप जो है जांच करवा सकते हैं, और इस तरह से जो है आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हंसिए और दिल को तंदुरुस्त रखिए, क्योंकि आज 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस है। लोग भूल गए हैं कि दिल को वेंटिलेटर की नहीं बल्कि सिर्फ थोड़ी सी खुली हंसी की जरूरत है। हंसने से फेफड़े तो फूलते ही हैं, साथ ही दिल को भी लगता है कि आप अभी जिंदा दिल हैं।

0: इसीलिए पार्क में जाकर कृत्रिम रूप से हा हा हा करने वाले लॉफ्टर क्लब की जरूरत पड़े और उससे पहले ही घर में बीबी के चुटकुलों पर या खुद के हालातों पर हंस लिया कीजिए, यानी कि अपने आसपास हंसी खुशी का माहौल रखेंगे तो ये समस्याएं आएंगी ही नहीं और आपका दिल और आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे।
1: बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम की सेहत के लिए भी कुछ बातें बहुत जरूरी हो जाती है मंजरी, और इसमें एक बात है कि हमको समय समय पर छोटा सा एक ब्रेक लेना होता है। तो कार्यक्रम में इस वक्त समय हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है, देखिए हम फिर से हाजिर हैं और हम दिल की बातें कर रहे थे। तो एक साथी ने बहुत दिल से ये बात लिखी कि दिल एक ऐसा इंजन है जो बिना किसी ब्रेक के जिंदगी भर लगातार चलता रहता है। हमने अभी कार्यक्रम में ब्रेक लिया लेकिन दिल की बात जब आती है तो वहां ब्रेक का कोई काम ही नहीं होता है। जब तक ये धड़कता है तब तक सांसें चलती है और जीवन मुस्कुराता है। इसलिए कहा भी जाता है रखेंगे जब दिल का ख्याल तभी जीवन बनेगा खुशहाल। एक मजबूत और सेहतमंद दिल सिर्फ हमें बीमारियों से बचाता नहीं है बल्कि हमारी उम्र को भी बढ़ाता है। दिल स्वस्थ होगा तभी जीवन का हर पल लंबा, ऊर्जावान और खुशनुमा बना रहेगा।
1: क्या बात है। और एक साथी लिखते हैं कि आजकल के व्यस्त रहन सहन के तौर तरीकों के कारण, खान पान, नींद में कमी के कारण बहुत से असाध्य रोग पैदा हो जाते हैं जिनमें डायबिटीज और हृदय रोग मुख्य हैं। इसके साथ ही एक साथी और लिखते हैं कि विश्व हृदय दिवस की सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। सालों साल तक दिल स्वस्थ और लंबा जीवन जीने के लिए मुख्य रूप से ताजा, संतुलित और पौधों पर आधारित आहार लेना चाहिए। दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोगों के खान पान और के सुझावों के अनुसार उनकी थाली में हर चीजों को शामिल करना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है। आप सादा भोजन करें और खूब सारा पानी पिए और हरी सब्जियां, फल वगैरह खाएं तो आप हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे।
0: कुल मिलाकर हम वर्षों से जो परंपरागत तौर तरीके जो हम अपना रहे हैं या खान पान जो अपना रहे हैं, बस उन्हीं को अगर हम अपनाते चलेंगे और समय से सोना, समय से उठना, थोड़ा व्यायाम करना, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इन बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो स्वस्थ रहा जा सकता है।
1: और हमारी मंजू जी बहुत ध्यान रखती हैं।
0: देखिए रखना तो जरूरी है ही क्योंकि हमें शरीर के साथ साथ अपनी आवाज का भी ख्याल रखना पड़ता है और सेहत दुरुस्त रहेगी तभी तो हम अपने काम को समय से आ पाएंगे और जा पाएंगे।
1: और आपको से ही तो हम लोग प्रेरणा लेते हैं देखा जाए तो।
0: एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार, नियमित रूप से व्यायाम और धूम्रपान जैसी आदतों से बचाव करना चाहिए। इसी तरह की बात हमारे एक साथी ने पहले भी लिखी है तो जो हमने आपको पढ़ के सुनाई है। एक साथी और लिख रहे हैं कि स्वस्थ दिल लंबा जीवन का आधार है, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार लें और व्यायाम करें। और इसी तरह की और भी बातें हमारे साथियों ने लिखी।
1: एक लिखते हैं कि मंजू जी कि मुस्कान और ठहाकों का सफर ही जिंदगी को खुशनुमा बनाता है क्योंकि बिना हंसी के इंसान का दिल एक उदास और बंजर जमीन की तरह हो जाता है। किसी के चेहरे पर खुशी लाना एक जादुई हुनर है जो हर किसी के पास नहीं होता। जो लोग दिल के अमीर होते हैं वे दौलत और पैसों से नहीं बल्कि किसी मासूमियत, उसकी तिरछी चितवन और दिलकश अदाओं से ही अपना सब कुछ हार बैठते हैं। जब कोई अपनी ही धुन में मगन होकर अजीबोगरीब हरकतें करता है तो महफिल में अपने आप हंसी के फव्वारे फूट पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते जब ऑटो रिक्शा या ट्रकों के पीछे लिखे वो मजेदार और तीखे डायलॉग्स नजर आते हैं तो इंसान चाह कर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाता है। बिल्कुल वो दृश्य उभर आया जब जाते हैं लंबे सफर पर तो दिखता
0: एक
1: है।
0: हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि दिल दुरुस्त तो जिंदगी दुरुस्त, एक स्वस्थ हृदय लंबा और स्वस्थ जीवन बिताने में हमारा सहायक होता है। आप सभी को हृदय दिवस की शुभकामनाएं। और एक और साथी लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ और दुरुस्त रखने के लिए प्रतिदिन योग प्राणायाम अपनी दिनचर्या में शामिल करें, संतुलित आहार लें, सकारात्मक सोच रखें। तो आप सभी का धन्यवाद और अब हम एक गीत सुनते हैं।

0: गीत हमने सुन लिया मंजरी, और अब हम बात करेंगे, एक हमारी सखी की बात करेंगे जिन्होंने क्या किया है और किस तरह से उन्होंने जो है दुनिया को राह दिखाई है उसके बारे में बात करेंगे, अदिति बलबीर की बात करेंगे। हम कुछ अपनी तरफ से बात बोले उससे पहले हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने उनके बारे में कुछ बात लिखी है, तो पहले वही पढ़ के हम सुना देते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहावत एकदम सटीक बैठती है अदिति बलबीर पर, जो कि वी रिसोर्ट्स के सीईओ और फाउंडर है। उनकी गिनती आज भारत की सबसे सफल बिजनेस वुमेन में होती है।
1: बिल्कुल सही बात इन्होंने लिखी है। और एक ने लिखा है कि बचपन से ही अदिति को घूमने का शौक था। अदिति इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद की एक पूर्व छात्र हैं। उन्हें बचपन से घूमने फिरने से प्यार था, जिसको उन्होंने अपने लिए करियर में बदल लिया, जिसके बाद उन्होंने वी रिसोर्ट की शुरुआत की। अदिति 2014 में वी रिसोर्ट की सीईओ बनी। 5 साल से कम समय के भीतर ही अदिति ने भारत के 21 राज्यों में 120 से ज्यादा रिसोर्ट्स के लिए कंपनी के विस्तार का नेतृत्व किया। ये रिसोर्ट्स ऑफबीट यात्रा श्रेणी में अपनी तरह का पहला ब्रांडेड रिसोर्ट बन गया है। बहुत अच्छी सी जानकारी भेजी हमारे साथियों ने।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि हमने कहा कि अदिति बलबीर जो है वो भारत की एक प्रमुख महिला उद्यमी और वी रिसोर्ट्स की संस्थापक है, और उन्होंने भारत में ऑफबीट और इको टूरिज्म के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है। अदिति बलबीर का जन्म नई दिल्ली में हुआ। उन्होंने मुंबई के वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से फाइनेंस में पीजीडीएम यानी कि एमबीए की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद और ड्यूक यूनिवर्सिटी के फुकुआ स्कूल ऑफ बिजनेस से उच्च प्रबंधन शिक्षा प्राप्त की है।
1: अदिति ने अपने करियर की शुरुआत फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर से की। उन्होंने बेरिंग प्राइवेट इक्विटी पार्टनर्स और बेडरॉक वेंचर्स जैसी प्रमुख प्राइवेट इक्विटी और वेंचर्स कैपिटल फर्मों में काम किया। इस दौरान उन्होंने रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्रों में बड़े निवेश का प्रबंधन किया, जिससे उन्हें इस उद्योग की बारीकियों, बाजार की कमियों और अवसरों की गहरी समझ मिली।
0: बिल्कुल, और वी रिसोर्ट्स की जो नींव है वो कैसे पड़ी इस बारे में भी हम आपको बता दें। प्राइवेट इक्विटी के काम करते समय अदिति ने देखा कि भारत में कई खूबसूरत और ऑफबीट यानी कि कम लोकप्रिय या प्राकृतिक ऐसी जगहें हैं जहां छोटे बुटिक रिसोर्ट्स मौजूद हैं। हालांकि ये रिसोर्ट्स असंगठित थे, इनके पास न तो उचित ब्रांडिंग थी और न ही मार्केटिंग और पहुंच और न ही पेशेवर प्रबंधन। इसी अंतर को खत्म करने के लिए 2014 में उन्होंने वी रिसोर्ट्स की नींव रखी। उन्होंने एक ऐसा एसेट लाइट मॉडल तैयार किया जिसके तहत स्वतंत्र रिसोर्ट मालिकों के साथ साझेदारी करके उन रिसोर्ट्स का माननीकरण और प्रबंधन वी रिसोर्ट्स के बैनर तले किया जाने लगा।
1: बिल्कुल, और माइक्रो और ऑफ बीट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को शहर की भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के बीच अद्वितीय और प्रामाणिक अनुभव प्रदान करना है, और मानकीकरण दूर दराज के इलाकों में स्थित रिसोर्ट्स में भी मेहमानों को उच्च गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षा और पेशेवर सेवाएं देना उनका एक मुख्य उद्देश्य है। और स्थानीय रोजगार और सशक्तिकरण के लिए उन्होंने रिसोर्ट में 90% से अधिक कर्मचारी स्थानीय ग्रामीणों को नियुक्त कर उन्हें प्रशिक्षित करना, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, यानी कि उन्होंने आसपास के लोगों को ही इसमें आगे बढ़ाया।
0: हाँ, ताकि लोकल लोग जो है वहाँ के वो एक तो होता यह है कि उनको काम मिलता है, रोजगार मिलता है, दूसरा जो वहाँ के लोग होते हैं उनको उस एरिया के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी होती है, दूसरा जब उनका घर वहीं है तो वहाँ उन्हें काम करने में भी कोई मुश्किल नहीं होती है। वो अपने घर परिवार के साथ रहते हुए रोजगार भी मिल जाता है, काम मिलता है, पैसा मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। और सतत पर्यटन, पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना और स्थानीय संस्कृति व व्यंजनों को पर्यटकों तक पहुँचाना, ये भी इस चीज का एक उद्देश्य रहा है। अब हम बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान की। तो पर्यटन और उद्यमिता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अदिति बलबीर को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनमें है फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस, ये अवार्ड उन्हें मिला है। दूसरा है द इकोनॉमिक टाइम्स, इनकी तरफ से वुमेन अहेड ट्रॉफी से इन्हें सम्मानित किया गया। और इसके अलावा CNBC TV18 यंग टर्क्स, इनकी तरफ से भारत की उभरती हुई दूरदर्शी उद्यमी के रूप में प्रदर्शित ये अवार्ड इन्हें दिया गया। डेल विमेंस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क की तरफ से वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली चुनिंदा महिला उद्यमियों में उन्हें शामिल किया गया और वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप उत्कृष्ट महिला उद्यमी और हॉस्पिटैलिटी लीडरशिप अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया।
1: इतना सारे उन्हें पुरस्कार मिले, ये सब उनकी मेहनत का ही और सोच का नतीजा है, जो जब उन्होंने इस चीज पर ध्यान दिया कि हमें इस तरह के सुविधाएं देनी चाहिए, इन पर काम करना चाहिए, तो उनके काम की तारीफ हुई और ये जो चीजें उन्हें मिली हैं सम्मान पुरस्कार वो उसका ही एक परिणाम है। तो ऐसी सोच सबकी अगर हो, अपने ही आसपास के चीजों को हम अच्छा करने के लिए सोचे तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम सभी।
0: बिल्कुल कर सकते हैं। होता क्या है ना कि हम बड़ी बड़ी चीजों की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, कोई बड़ी कंपनी है, कोई बड़ा काम है जिसका नाम है, हमें लगता है कि जब हम वहां काम करेंगे तो हमारी वैल्यू होगी
1: जी,
0: या फिर वहीं जाकर के हम पैसा कमा सकते हैं या अच्छा जीवन तो एक वहीं पर बिताया जा सकता है। लेकिन अगर हम आसपास नजर डालें या जो पढ़ाई हमने की है, या फिर ऐसा भी होता है कि जिस क्षेत्र में हमारी रुचि है, अगर उन क्षेत्रों की तरफ हम ध्यान दें और हमारी पढ़ाई का उपयोग उन चीजों को बढ़ावा देने में अगर हम करें, तो हो सकता है कि हमारे क्षेत्र में ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। इसमें ये कोई शर्म की बात नहीं है या ये कोई कमतरता आंकने की भी बात नहीं है कि अगर हम यहाँ ये छोटा सा काम करेंगे तो अरे हमको कौन पूछेगा, या हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, या पैसा हम कैसे कमा पाएंगे, या घर कैसे चला पाएंगे। लेकिन अगर आप इन बातों की तरफ नजर डालें, और कई बार क्या होता है जिससे कई महिलाओं को या पुरुषों को जिनको भी बहुत किसी क्षेत्र में रुचि होती है, जैसे किसी महिला की बात करें, उसे कशीदाकारी बहुत पसंद है या उन्हें भोजन बनाना बहुत पसंद है,
1: किसी को अचार पापड़ इन सब का भी शौक होता है, तो भाई आप अपनी ही उस कला को आगे जाने दीजिए।
0: हाँ, तो ये बहुत सुनने में शायद हो सकता है या कहने में बहुत छोटी बात ही लगती हो, लेकिन अगर कोई महिला कोई व्यक्ति इस चीज को ठान ले कि नहीं मुझे इसी क्षेत्र में कुछ करना है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की जरूरत है।

और थोड़ा सा उस क्षेत्र में कुछ काम करने की जरूरत है। जैसे हम अदिति की बात कर रहे थे, ऐसा अगर इन्होंने नहीं सोचा होता तो क्या ये काम ये कर पाती, इन्हें पुरस्कार मिल पाती या आगे बढ़ पाती? तो ऐसा हम सब सोच सकते हैं और सब कर सकते हैं। और अब हम ये सोच रहे हैं कि कार्यक्रम में एक ब्रेक ले लें।

0: तो मंजी, गीत हमने सुन लिया और अब कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बहुत जरूरी होती है कि जब हम अच्छी सारी हल्की फुल्की बातें करते हैं तो मन भी थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता है। और लेकिन जब बात हो भाई अन्न के दाने की, तो अन्न का नाम सुनते मन प्रसन्न होता है, लेकिन जब उसकी कोई कद्र नहीं करता है तब मन दुखी होता है ना।
0: बातें हल्की फुल्की है लेकिन ये जो विषय है ये बड़ा भारी।

0: है,
1: बिल्कुल
0: देखिए कि अन्न से हमारा वास्ता रोज पड़ता है, अन्न के बिना तो हम रह नहीं सकते, कोई दिन
1: बिल्कुल
0: ऐसा नहीं जब हम अन्न के बिना रहते हों, कुछ तो हम
1: बिल्कुल
0: खाते ही हैं, पीते ही हैं, तो उसकी जो अहमियत है वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। अन्न केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन का आधार होता है। हमारे संस्कारों में भी अन्न को ईश्वर का रूप माना जाता है, और हर साल 29 सितंबर को दुनिया भर में खाद्य हानि और बर्बादी के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट ये मनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा जो मकसद होता है या उद्देश्य होता है वो ये याद दिलाना होता है कि अन्न का एक भी दाना व्यर्थ ना जाने
1: ना
0: दें।
1: जाने दे, बिल्कुल। और आज एक तरफ लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ खेतों से लेकर हमारी थालियों तक ढेरों खाना बर्बाद हो जाता है। जब खाना बर्बाद होता है तो सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि उसे उगाने लगी उस व्यक्ति की मेहनत यानी किसान की मेहनत, पानी, ईंधन और जमीन जैसे अनमोल संसाधन भी बर्बाद होते हैं। क्योंकि दिन
0: बिल्कुल
1: रात अपने खेत को सींच कर बीज डालकर बोना, फसल को देखना पल पल बढ़ते हुए, फिर उसमें अन्य लगता हुआ दाने लगते हुए देखना, उनकी जो कहते हैं बालियां लगती हैं, गेहूं की बालियां लग रही हैं, तो देख के वो कितने हर्षित होते हैं। और जब या तो प्राकृतिक गड़बड़ी हो तो अलग बात है, लेकिन जब हमारे पास तक वो खाना आ रहा, अन्न आ रहा है और हम उसको कदर नहीं कर रहे हैं, तो फिर मन खराब होता है कि नहीं, एक गेहूं के दाने से हम कितना अन्न उपजा सकते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: किसान की मेहनत तो अपनी जगह है ही मंजरी, लेकिन उसके बाद हम भी तो उसे बाजार जाते हैं, खरीद कर लाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, घर में लाते हैं, उसके बाद उसे बनाने का जो एक प्रोसेस है बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है, उस तरीके से हम भोजन को पकाते हैं, और उसके बाद जब हम खाते भी नहीं है उसे यूं ही फेंक देते हैं, तो ये एक मतलब मुझे लगता है कि सही बात
1: सही
0: नहीं है।
1: बात नहीं
0: हमारे
1: है।
0: साथियों ने ये बात लिखी है कि अन्न केवल हमारी भूख नहीं मिटाता बल्कि ये किसान की महीनों की मेहनत, पानी, मिट्टी की उर्वरता और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। जब हम अपनी थाली में भोजन छोड़ते हैं तो हम केवल एक निवाला नहीं फेंकते बल्कि उस तक पहुंचने में लगे अनगिनत संसाधनों और प्रयासों को व्यर्थ कर देते हैं।
1: बिल्कुल। और इसी तरह हमारे एक साथी और लिखते हैं कि व्रत लिखते कि हल्की फुल्की बात है, ना जाए व्यर्थ उनका एक भी दाना, अंक एक ही दाना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें ऐसा करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे किसान इस अंक को, इस मतलब अन्न को उगाने में कितनी मदद करते हैं। इसलिए अपनी थाली में जितना लेना है, जितना आपको खाना है उतना ही आपको लेना चाहिए, जितना आप खा सकते हैं, और उतना ही आप थालियों में डालें। अगर आप शादी या पार्टियों में जैसे जाते हैं देखते हैं, वहां पर बहुत सारी चीजें आप ले लेते हैं, या गिलास भी उसमें लेके थाली भर के उसमें जूठा छोड़ देते हैं, मतलब लिया थाली में और जूठा छोड़ दिया, तो अनाज की जो होती बर्बादी ही हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि आप बिल्कुल उसी हिसाब से ले जितना आप खा सकते हैं।
0: एक हमारी सखी ने लिखा है कि हम जब अपने गुरुओं के मंदिर की में जाते हैं, वहाँ की बात है कि इतनी अच्छी लगती है वहाँ की उनकी बात की, वहाँ 2 लोग सबकी थाली चेक करते हैं कि किसी ने खाना बचाया तो नहीं है, उसे वही पूरा खाना पड़ता है, तो अब सब लोग उतना ही लेते हैं जितना उन्हें खाना होता है। वैसे भी हम पहले थोड़ा कम लें और फिर चाहिए तो और ले लें। और देखो जो भोजन व्यर्थ होता है ना उसका एक कारण ये भी होता है, कोई भी जैसे समारोह हुआ, शादी समारोह या कोई भी ओकेजन होता है, तो वहाँ खाने में बहुत सारी वेराइटी बहुत होती, बहुत तरह के व्यंजन बनते हैं, और व्यक्ति चाहता है कि मैं सारे व्यंजनों को चख तो लूं कम से कम,
1: खा सकते हैं
0: जबकि उसके पेट में उतनी जगह होती नहीं है, लेकिन वो सब ले लेके चखना जरूर चाहता है, और उस चक्कर में जब कोई भी चीज थोड़ी सी भी उसको कम पसंद आती तो वो लेता है और छोड़ देता है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी राय है, कि हम थोड़े अगर व्यंजनों की संख्या अगर कम रखेंगे तो शायद भोजन की बर्बादी कम हो, ऐसा मुझे लगता है।
1: वो तो खैर ये अपना सोचना, लेकिन आजकल लोग दिखावे के चक्कर में तरह तरह की चीजें रखते हैं, और सलाद के भी इतने सारे वैरायटी होती है, फ्रूट्स की भी होते हैं, स्टाल होते हैं कि सब तो नहीं खा सकता कोई, तो ठीक है आप उन्होंने लगाया ये आप उनको अपना अपनी तरह से सबको स्वागत करना है, लेकिन हम अपने लिए अपनी थाली में अन्न का स्वागत हिसाब से करें वो ज्यादा सही है। और हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे मंदिर में जहाँ खाना होता है वहाँ दीवारों पर लिखा होता है खाओ मन बचाओ नकन, और और इतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। बहुत सुंदर सी बात है। इसी तरह एक साथी और लिखते हैं कि अन्न का दाना व्यर्थ ना जाए, इसके लिए घर या सामूहिक भोजन के वक्त ये बात ध्यान में रखें, इतना लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। सभी ने ऐसी बात लिखी है। और थाली में लिया हुआ खाना झूठा होकर या बचकर बर्बाद ना हो, शादी या पार्टियों में अक्सर देखा गया है कि बुफे सिस्टम में कुछ लोग थाली में इतना ज्यादा भोजन ले लेते हैं कि दूसरी बार लेने जाना ना पड़े। इस ना लेने जाने की मानसिकता से

0: ये आलस ही खाने की बर्बादी का कारण अक्सर बनती है। तो इन चीजों का भाई ध्यान रखें कि जिसने भी आपको बुलाया है स्वागत सत्कार में, आपके लिए भोज का इंतजाम किया है, आयोजन किया है, तो उसके खाने की आप कद्र करें,
1: बिल्कुल
0: उसको व्यर्थ ना जाने दें।
1: एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि अन्न का एक एक दाना कीमती है और इसे व्यर्थ होने से बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जब हम भोजन बर्बाद करते हैं तो सिर्फ खाना बर्बाद नहीं होता बल्कि उसे उगाने में लगी किसान की मेहनत और भी जाती है। और यहाँ कुछ छोटी और व्यावहारिक आदतें दी गई हैं जिसके बारे में उन्होंने लिखा है कि थाली में उतना ही ले जितनी भूख हो और बचे हुए भोजन का सही उपयोग, यदि खाना बच जाता है तो उसे फ्रिज में सुरक्षित रखें और अगले समय किसी नई रेसिपी बनाने में उसका उपयोग करें। और एक ये भी बात लिखी है कि जरूरतमंदों की मदद करें, यदि किसी पारिवारिक समारोह या पार्टी में भोजन अधिक मात्रा में बच जाए तो उसे फेंकने के बजाय पास के किसी शेल्टर होम या जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। खरीदारी की योजना जो है उसके बारे में बाजार जाने से पहले घर में मौजूद सामान की सूची बना ले ताकि जरूरत से ज्यादा सामान खरीद कर खराब ना हो। और लिखा है कि अन्न ही जीवन है, आइए मिलकर यह संकल्प लें कि हम न तो खुद भोजन बर्बाद करें और न ही दूसरों को करने दें।
0: और हम लोग पहले एक गीत सुन लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।

0: होश उड़ने की यहाँ पर बात हो रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम कई लोगों को देखते हैं बहुत सारा भोजन बनाते हैं, फेंक देते हैं, तो उनको जब फेंकते हुए हम देखते हैं ना, तब भी हमारे होश उड़ जाते हैं। हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई इस भोजन को लाने में, बनाने में इतना पैसा खर्च, इतनी मेहनत खर्च, इतना इसके अंदर संसाधन लगते हैं, और जब फेंका जाता है तो कैसे लोग इतना आराम से फेंक देते हैं।
1: बिल्कुल
0: हमारा दिल नहीं करता है
1: बिल्कुल फेंकना,
0: तो
1: बिल्कुल भी
0: तब हमारे भी होश उड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल सही आपने कहा है। और देखिए हम लोग समय समय पर बताते भी रहते हैं अपने व्यंजन वाले में कि अगर कोई चीज है आपके पास घर में बची है, जैसे चावल बचा है, तो आप उसका चावल को भी दूसरी तरह से बना सकते हैं, चाहे उसको फ्राई कर लीजिए, चाहे आप चावल को पीस करके उसमें थोड़ी सूजी बेसन मिला करके आप उसमें डोसा जैसा बना सकते हैं। चावल की भजियां भी बहुत अच्छी बनती है, कच्चे चावल की।
0: हाँ,
1: तो वो चीजें भी आप कर सकते हैं।
0: हाँ।
1: तो अन्न आप दिमाग लगाएंगे ना, तो आपका अन्न जो है बेकार नहीं जाएगा। और अगर आपको जैसे, और किसी को देना है, मंजू जी एक बात मुझे यहाँ पर याद आई कि अगर आपको खाना किसी को देना है, तो देने से पहले एक बार खाने को आप चेक जरूर कीजिए।
0: हाँ,
1: कि वो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो गई, बासी तो नहीं, बासी में गंध तो नहीं आ रही है, वो खराब तो नहीं होने लगा है। अगर ऐसा खाना अगर आपके पास है और आप चाह रहे हैं नहीं इसको दे दे, नहीं वो काम बिल्कुल मत करिए। आप उस अन्न को आप मिट्टी में आप दबा दीजिए, जिससे वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाए, वो फिर भी ठीक है एक बार, लेकिन खाना कभी किसी को गलत मत दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: ऐसा ना सोचे कि चलो हम जो नहीं खा सकते तो दूसरों को दे दें। जो भोजन आप खा सकते हैं, जो खाने लायक है, उसी को आपको दूसरों को देना है। ऐसा नहीं है कि जो खराब हो चुका है वो हम दे दें और वो खा करके बीमार हो जाए, ऐसा हमें नहीं करना है। चलिए अब हम अपने दूसरी बात की तरफ चलते हैं। राई का पहाड़, ये एक कहावत है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि राई का पहाड़ बनना बड़ा ही अनूठा मुद्दा है। राई का पहाड़ बनना से तात्पर्य है कि छोटी छोटी बातों को एकदम लंबा बना देना। और एक और साथी यही लिख रहे हैं कि राई का पहाड़ बनाना यानी कि बात का बतंगड़ बना देना, जैसे किसी साधारण सी बात या छोटी सी समस्या को बेवजह तूल देना और उसे बड़ा मुद्दा बना देना, ये एक बात है। और इसी से संबंधित एक और एक ऐसी कहावत है कि गरम तेल में राई की तरह उछलना, ये भी इन्होंने
1: मतलब जैसे कोई बात चल रही है और किसी ने थोड़ी सी बात शुरू करी और वो आपके मन के या लोगों के मन के खिलाफ है, लेकिन आप उसमें उसको थोड़ा सा और हवा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो भाई तेल में जैसे राई चटकती ना वैसी चटकेगी। कई बार ऐसा होता भी है कि साथ में सारी सहेलियां या सारे दोस्त खाना खा रहे हैं और एक कुर्सी की वजह से आपस में हो जाए कि नहीं ये कुर्सी पे हम बैठेंगे, उस पे हम बैठेंगे, तो ये भी राई के पहाड़ वाली जैसी हालत हो जाती है।
0: वैसे
1: तो,
0: देखो मंजरी, अगर हम अपने आसपास नजर डालें तो इससे कई लोग हमें मिल जाते हैं जो राई का पहाड़ बनाना उन्हें बहुत पसंद होता
1: है, उन्हें मजा आता है चटकारे लेके। हाँ। उसमें किससे अपने डालेंगे उसकी बात को, कहते ना मुंह से बात निकली।
0: हाँ।
1: किसी ने कहीं कहीं तक कही लेकिन दूसरा उसको मिर्च मसाला लगा के आगे तक बढ़ा देता है। और जैसे राई के उछलने वाली बात होती है, एक बार इसने कहा, उससे कहा, उससे कहा, हर समय बदलते हुए दूसरे रूप में वो सामने आ जाती है।
0: हाँ, जब एक ही बात अगर मतलब 5-6-10 लोगों तक पहुंचती है तो उसका स्वरूप थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बदलता जाता है, और जब वापस पहले व्यक्ति तक वो बात आती है तो उसमें बहुत कुछ बदलाव आ चुका रहता है। यानी जो बात उसने कही होती है और जो बात लोगों तक पहुंची है, इन दोनों बातों में बहुत अंतर हो जाता है।
1: तो बड़ी समस्या होती है ना मंजू जी की, अब वो जो हमने जो सच बोला है उसको हम कैसे साबित करें, वो बड़ी एक समस्या होती है। कि फिर या तो लगता है कि जिसने बात फैलाई है ना उसी को सामने बुलाओ और आमना सामना कर लो,
0: लेकिन ये संभव नहीं हो पाता।
1: किसने
0: किससे कहा, क्या कहा, कैसे कहा, ये सब समझना। और दूसरी बात यह है कि ये सब करने में तो हमारा बहुत सारा समय भी चला जाएगा और हमारी बहुत सारी ऊर्जा भी खर्च हो जाएगी। हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, आप घर का काम करते हैं, आप बाहर का काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो उसके लिए समय की भी जरूरत होती है और ऊर्जा की। अगर हम यही सब करते रहेंगे तो फिर तो हम अपना काम ही नहीं कर पाएंगे।
1: अच्छा है कि उन्हीं को छोड़ दो, तुम्हें फैलाने दो जिसको फैलाना है।
0: सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन जो जिन बातों पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत ना है उन बातों पर ध्यान ना दें। और जो लोग राई का पहाड़ बनाते हैं उनसे भी यही कहना चाहेंगे कि इन व्यर्थ बातों में अपनी ऊर्जा को खर्च ना करें, बल्कि जो आपके पास समय है, जो ऊर्जा है, उसको किसी सकारात्मक कार्य में आप लगाएं। ये आपके लिए फायदेमंद होगा, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी सेहत बनाने के लिए भी हम ये समय दे सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात,
0: थोड़ा व्यायाम कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा ईश्वर भक्ति में अपना समय लगाइए। और किसी और काम में जिससे आपको थोड़ा कुछ अर्जित हो सके अगर उसका उपयोग उसमें करें तो ज्यादा बेहतर होगा।
1: बिल्कुल सही बात। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि छोटी सी बात को इतना बड़ा ना बना दे कि रिश्तों में दूरी आ जाए। बात चाहे राई जितनी हो, समझदारी यही है कि उसे पहाड़ ना बनने दे। रिश्तों की बात जहां तक है मंजू जी, कि अगर आपके रिश्तों में ऐसे मनमुटाव हो गए आपको पता भी नहीं चला है कि किसने क्या किससे कह दिया, तो जब मिले तो वो बात आप क्लियर जरूर कर लें जिससे कि ऐसी दूरियां ना बने। और एक लिखते हैं कि राई का पहाड़ कितना ही बड़ा हो पर खामोशी रूपी एक गोटी ही काफी है। बहुत सही बात कही है कि वो कितना भी राई का पहाड़ बना ले उसकी बातों का जवाब ही मत दे, खामोश हो जाए। तो मौन की तलवार जिसे कहते हैं ना वो बहुत तेज होती है। तो बड़ी अच्छी सी बात इन्होंने लिख करके भेजी है। तो कहना चाहिए कि राई, एक और लिखते हैं कि राई का पहाड़ बनाना यानी छोटी सी बात को इलास्टिक की तरह खींच करके बड़ा करना है जिससे दिल और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। और ये क्या कहते हैं कि जल्दी से ही जिसे कहते हैं कि आप नॉर्मल होने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा आप खींचे मत, इलास्टिक की तरह मत खींचे बातों को, वहीं पर थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करें तो ज्यादा ठीक है। तो हम लोग एक गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

0: थोड़ा बना देना होता है।
1: क्या बात है, भाई किताब देनी चाहिए किसी की भी ले जाओ तो देनी चाहिए। और देखिए
0: पुस्तक जो कई बार है ना, होता क्या है ना, पुस्तकें किसी को बड़ी प्रिय होती है इसीलिए वो खरीदते हैं
1: बिल्कुल,
0: और वो संग्रह करके रखते हैं और आपको इतने उदार मन से वो पढ़ने के लिए देते हैं, और जब आप उनकी पुस्तक उन्हें नहीं लौटाते हैं, और कई बार तो क्या जैसे किसी की आदत होती कि पुस्तक किसी ने मांगी दे दी और उसे याद भी नहीं रहता कि मैंने कौन सी पुस्तक किसको दी, और इसी बात का लोग फायदा उठाते हैं और वापस नहीं देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है, उन्होंने इतनी उदारता दिखाते हुए आपको कोई पुस्तक दी, उन्हें पढ़कर वापस लौटा दीजिए।
1: आप भी तो उदारता दिखाइए, उदारता
0: जब वो मांगने आए तो राई का पहाड़ मत बनाइए।
1: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके मन में अफसोस तो होगा, ग्लानी तो देखिए होगी कि आपके पास किताब है, आपको पता है कि आपके पास किताब है, आपने वापस नहीं करी, तो आप अपनी ग्लानी को क्यों बढ़ा रहे हैं। आप
0: बिल्कुल
1: सहृदय उन्हें उदारता के साथ वापस कीजिए। और देखिए बहुत सारे हमें कमेंट्स और भी मिले हैं, अलग अलग विषयों के मिल गए, तो हम उनको भी ले लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। कि ये लिखते हैं कि अन्य के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि मेरी नानी हमेशा हम लोगों को बोलती थी बार बार कि संत का एक क्षण भी और अन्य का एक भी कर्ण बर्बाद नहीं करना चाहिए। कभी तो हम लोगों को वो सब सिखाया गया, लेकिन इसलिए हम लोगों ने भी अपने बच्चों को सिखाया है कि जितना खाना हो उतना ही लें, अन्य का एक दाना भी थाली में ना छोड़ें, और ईश्वर की कृपा है कि बच्चे भी उतना ही लेते हैं जितना खाते हैं, कभी मेरे घर में कोई खाना बर्बाद नहीं होता है। कितना सुंदर आपका घर का स्वरूप होगा, हम कल्पना कर सकते हैं कि आप एक भी दाना अन्न का वहां पे बर्बाद नहीं हो रहा है, तो बहुत अच्छी सी बात है।
0: एक हमारे साथी लिख रहे है कि अन्न में ही ब्रह्म ही नहीं अपितु इसमें अन्नपूर्णा देवी का वास भी माना गया है, और इस दृष्टिकोण से उसकी बर्बादी, वो भी आज के महंगाई वाले युग में, तो ये तो जानकर के अज्ञानता का ही परिचायक है। फिर वैसे ही अन्य प्राण के दृष्टिकोण से अन्न की बर्बादी से बचते रहना ही श्रेयस्कर है।
1: बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि अन्न का हर दाना सिर्फ खाना नहीं, किसी के मेहनत पसीने और उम्मीद का फल है। थाली में उतना ही ले जितना खा सके, क्योंकि अन्न का सम्मान मेहनत का सम्मान है। बहुत सुंदर सी बात है, मुझे तो लगता है ये वाला जो संदेश है ना, ये लिख करके अपने घरों में लगा लेना चाहिए।
0: एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान या अपने आते हैं और वो पूरा खाना फिनिश करते हैं, ये फिर उतना ही लेते हैं जितना वो खा सके, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, और जो भी झूठा खाना छोड़ते हैं हम उन्हें जरूर कहते हैं कि आप ऐसा ना करें, उतना ही ले जितना आपको खाना है।
1: और एक हमारे साथी और लिखते हैं कि भोजन करते समय थोड़ी देर के लिए सोचे कि ये भोजन जो हम लोगों को आसानी से मिला है और खा रहे हैं, उसको पैदा करने में किसानों ने कितना पसीना बहाया है, कितनी कठिनाइयों से होकर हमारी थाली में आया, तो अन्न का एक भी दाना नहीं फेंका।
0: चलिए अब हम अपनी बातों को थोड़ा विराम दे देते हैं, नहीं तो लोग हमें ये कहेंगे कि अरे आप तो छोटी बातों को राई का पहाड़ बना रहे हैं। तो अब घड़ी की तरफ हमने नजर डाली और समय हमें आज्ञा नहीं दे रहा है, तो अब हम श्रोताओं से आज्ञा लेते हैं, कार्यक्रम को विराम देते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता और लेखक शारिब हाशमी से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बरसों के संघर्ष और नामुमकिन हालातों के बावजूद अपनी मेहनत और सच्चाई से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। फिल्मिस्तान के सनी से लेकर द फैमिली मैन के जे के तलपड़े तक, इन्होंने हर किरदार में वो आम और सहज व्यक्तित्व दिखाया जिससे हम सब खुद को जोड़ पाए। और आज जैसे जैसे हम बातचीत में आगे बढ़ते जाएंगे, मुझे यकीन है कि हम ये समझ पाएंगे कि ये कहानी जो है सिर्फ कामयाबी की नहीं है, ये धैर्य और डटे रहने की मिसाल भी है। तो बिना देरी किए आज स्टूडियो में, विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं हमारे मेहमान शारिब हाशमी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर आके बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि विविध भारती के साथ में काफी नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है।
1: जी, जब हम आ रहे थे और लाइब्रेरी के दौरान जब आप देख रहे थे, साथ में फोटोग्राफ्स देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा जुड़ाव तो है। हाँ। किस तरह का जुड़ाव है रेडियो से या विविध भारती से, वो हमारे साथ साझा कीजिए प्लीज।
2: हाँ, कि मतलब क्योंकि बचपन हमारा तो रेडियो पर ही पूरा गुजरा है और खासकर उस वक्त तो मतलब मैं आई एम एन 80s किड, तो उस वक्त तो ज्यादा रेडियो लोग ज्यादा सुना करते थे।
1: जी जी।
2: और शुरुआत ही विविध भारती के कार्यक्रम से होती थी सुबह की, जिसमें नए गाने आते थे और रात को जो है वो थोड़े पुराने गाने होते थे, वो बेला के फूल। और तो मैं सारे सुना करता था। मैंने कभी पुराने गाने जो है वो बैठ के कभी मैंने याद नहीं किए, वो रेडियो पे गाने सुन सुन के अपने आप याद हुए हैं, जो अब तक याद हैं सारे गाने, किशोरदा के, रफी साहब के, मुकेश जी के, जो भी गाने मैंने याद किए हैं, तो वो सब थैंक्स टू विविध भारती है।
1: जी जी, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे लगता है दिलचस्प बातें होगी और गीत भी हम आपसे सुनेंगे क्योंकि आप गाते भी बहुत अच्छा है।
2: हाँ, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन हाँ, शौकिया तौर पे।
1: जी हाँ, शुरुआत रेडियो की बातें से हुई, तो बचपन की यादें कुछ कैसा रहा परिवेश घर का? आपके पिता एक पत्रकार थे, जाने माने पत्रकार, तो क्या उनकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री में आपका एंट्री हुआ या किस तरीके से, या आपने खुद ही अपना ये रास्ता चुना?
2: चुना तो मैंने खुद ही रास्ता, लेकिन ये उनका जो प्रोफेशन था वो मतलब उसने मुझ पर बहुत असर छोड़ा था, तो उसी वजह से मैंने डिसाइड किया था कि मुझे भी इस फील्ड में आना है। उन्होंने मतलब मुझे, मैंने उनसे हेल्प भी नहीं मांगी थी कि मुझे कहीं पर लगवा दीजिए या कर दीजिए, तो वो मैंने अपने फ्रेंड के थ्रू कहीं पर मुझे एज एन असिस्टेंट के तौर पर जॉब मिला, एडी। तो हाँ, तो वैसे करियर की शुरुआत हुई थी, लेकिन मैंने उनसे कभी ये नहीं बोला था कि मुझे कहीं पर मतलब ये एज एन असिस्टेंट या कहीं कुछ काम दे।
1: पर फिल्मी हस्ती हुआ आपने देखा है अपने घर?
2: हाँ,
1: बचपन
2: वो देखा था, तो उस वजह से मतलब मेरा मतलब अगर मैं इस लाइन में हूँ तो वो मेरे डैड की बदौलत ही हूँ, उनकी वजह से हूँ।
1: जी, उस बारे में कुछ बताएं, बचपन की कुछ यादें, उस टाइम आप सेट पे जाते थे या किसी से मुलाकात हुई या उस वक्त किसी ने कहा कि हाँ आप इसी लाइन में जाएंगे, कुछ उस टाइम नजर आए?
2: उस टाइम एक्चुअली किसी ने मुझसे कहा नहीं। अब मैंने वैसे बचपन में एक सीरियल आता था आफ्टरनून ट्रांसमिशन में दूरदर्शन पे, कैसे बना मुहावरा कैसे बनी कहानी।
1: अच्छा।
2: तो उसके एक एपिसोड में मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया था, हमने SL स्टूडियो में शूट किया था उसको ट्रॉम्बे में, बहुत दूर, जब बचपन में तो बहुत ज्यादा दूर लगा था, अब और ज्यादा दूर हो गया ट्रैफिक की वजह से। तो हम वहां पर गए थे और मेरा मतलब मैं बांसुरी बजाते हुए घर में घुस रहा हूँ और मेरे डैड जो है बने हुए थे उसमें डांटते हैं और मैं डरता हूँ, मुझे डरने का वो रिएक्शन देना था। तो वो जब शूट हो रहा था तो उन्होंने जब मुझे डांटा मैं डरा, तो उनको लगा कि मैं सच में डर गया हूँ और वो अपने डायलॉग भूल गए। उनको लगा, मुझे लगा ये बच्चा सच में डर गया है, मतलब मुझे डरना ही था इसके लिए मैं डरा। तो तब लोगों ने बोला अरे ये अच्छा एक्टर है, लेकिन वो स्कूल के टाइम पे किया हो गया और ऐसा कोई वो नहीं था तब कि, लेकिन वो टाइम मेरा बड़ा ये था कि बड़े होके तो मुझे एक्टर ही बनना है, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो वो उतना बड़ा हुआ नहीं। तो उस वजह से तब मैंने सोचा था कि एक्टिंग मेरे लिए नहीं है, और क्योंकि मैंने पूरा बचपन ये सोचकर गुजारा कि बड़ा होऊंगा तो हीरो बनूंगा, अब हीरो वाली तो पर्सनालिटी है नहीं और मुझे बाकी कुछ करना नहीं है।
1: नहीं, आप जो हैं, जिस भी पात्र में ढलते हैं हमें बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। और जानना चाहेंगे आपके स्कूल और कॉलेज का वक्त, क्या आपने स्ट्रीम्स ली थी, क्या पढ़ाई की?
2: स्कूल तो नॉर्मल यहीं पर SSC बोर्ड में था, और उसके बाद में मैंने आर्ट्स में, मतलब मैंने ग्रेजुएशन किया, BA किया, और 2 साल पहले मैंने कॉलेज के बाद इस्माइल यूसुफ में जूनियर कॉलेज किया, और बाद में 3 साल भवंस कॉलेज अंधेरी में था
1: जी।
2: तो वहां पर मतलब मेरी पूरी काया पलट हुई एकदम। वहां काफी बहुत सारे दोस्तों से मिला, बहुत लोगों से मिला, इस्माइल यूसुफ में भी काफी शुरू हो गया था
1: जी। अच्छा, थिएटर और ड्रामा?
2: थिएटर ड्रामा तो पता नहीं मेरे नसीब में कुछ, मुझे नाटक मुझे हुआ ही मिला ही नहीं ना, स्कूल में मैं कुछ कर पाया, इस्माइल यूसुफ में जब मैं गया वहां पर नाटक हुआ नहीं, एक प्ले की रिहर्सल शुरू हुई और वो प्ले बंद हो गया। कॉलेज मैंने चेंज किया इसी वजह से कि मुझे नाटक करने थे। मैं जिस साल भवंस कॉलेज में मैंने एंट्री ली, वहां पर एक नए प्रिंसिपल उस साल मेरे साथ में, उन्होंने भी एंट्री मारी थी।
1: अच्छा।
2: और उन्होंने नाटक वाटक सब बैन करवा दिए थे पता नहीं क्यों। तो मेरा मतलब पूरा कॉलेज का जो टाइम था जब मैंने सोचा था कि यार मैं नाटक वाटक करूंगा, वो हुआ ही नहीं। फिर थिएटर कभी मैं कर ही नहीं पाया, थिएटर के साथ में मेरा जुड़ाव हो ही नहीं पाया। फिल्में करने के बाद में मैंने नाटक किए।
1: जैसे कि अभी आप कर रहे हैं। हाँ, उस बारे में भी हम
2: जी,
1: बात करेंगे। फिलहाल हम अपने श्रोताओं को आपकी पसंद का कोई गीत सुनवाना चाहते हैं।
2: मेरी पसंद का कोई गीत? यार बहुत सारे गीत हैं मेरी पसंद के। आपकी याद आती रही रात भर अगर।
1: अच्छा।
2: गमन से
1: थोड़ा सा गुनगुना देंगे?
2: अरे वो तो बहुत मुश्किल गाना।

0: क्या बात है
1: थैंक यू।
0: सुनवाते हैं गीत
1: अभी से मैं
0: अपने
1: ऐसे गाने बोलूंगा जो मैं अच्छे से गा सकूं।
0: नहीं, हर गीत पे
1: जैसे
0: हम
1: वो
0: नहीं
1: कहते हैं ना
0: गवाएंगे
1: कि
0: आपको अगर
1: बच्चों
0: आप
1: को,
0: ऐसा चाहेंगे तो।
1: हाँ कि बच्चों के बोलते हैं कि
0: जी
1: महाराष्ट्र कौन से स्टेट में रहते हो, तो मैं महाराष्ट्र उसकी स्पेलिंग बताओ, तो मैं नहीं मैं गोवा में रहता
0: नहीं, आप
1: हूँ। तो
0: बेफिक्र
1: अब मैं सिंपल वाले गाने बताऊंगा।
0: रहिए।

0: अच्छा, 1999 में हम तुम पे मरते हैं फिल्म में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर आपने काम किया, तो वहां से जुड़ाव कैसे हुआ? और आपने नौकरी भी कुछ की है, तो
1: हाँ
0: उससे
1: हाँ
0: पहले की बात है या उसके 99 के बाद की बात है?
1: नहीं, नौकरी बाद नहीं हुई, पहले मैंने,
0: अच्छा,
1: मेरा पहला काम जो है
0: पहला
1: वो
0: काम
1: एज
0: जो
1: एन
0: था.
1: असिस्टेंट डायरेक्टर, वो भी नौकरी थी,
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: मेरी पहली नौकरी वो थी।
0: तो वो कैसे जुड़े, कैसे?
1: वो मेरे कॉलेज में मेरे एक दोस्त रहे हैं, अभी भी हैं, मतलब हम काफी क्लोज फ्रेंड हैं, राजुल मिश्रा। तो वो उस वक्त सूरज जी को असिस्ट करते थे, वो मेरे से कॉलेज में 2 साल सीनियर थे, और हम साथ में काफी गाने वाने गाया करते थे, और वो कॉलेज में मतलब ही वॉज अ स्टार सिंगर। तो उन्होंने बाद में रांची प्रोडक्शंस ज्वाइन किया, सूरज जी को वो असिस्ट कर रहे थे, और हमारी फिर मुलाकात फिर भी होती रहती थी। और उनके जरिए मुझे उनके ही एक एक्स कलीग जो थे, नव कुमार राजू जी, जो सूरज जी को पहले असिस्ट किया करते थे, तो वो एक फिल्म शुरू कर रहे थे, और उन्होंने मुझे, राजुल ने मुझे उनसे मिलवाया, और मेरा एक इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया, और इस तरीके से पहली फिल्म मिली हम तुम पे मरते हैं, जिसमें गोविंदा जी, उर्मिला जी, डिंपल कपाड़िया मैम, बहुत बड़ी कास्ट थी, परेश
0: जी.
1: रावल साहब थे, जॉनी लीवर जी थे, गुलशन ग्रोवर जी, तो बहुत मज़ा आया था, मेरा पहला काम था वो, और काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा था वो, लाइफ का पहला एक्सपीरियंस ही बहुत कमाल था।
0: उसके बाद आपने दूसरी नौकरियां भी की है.
1: हाँ, उसके बाद मैंने एक और फिल्म में असिस्ट करना शुरू किया, लेकिन 20 दिन में मैंने वो फिल्म छोड़ दी थी, और उसके बाद फिर 1-1.5 साल तक फिर काफ़ी काम की तलाश चली, और फिर फाइनली कुछ फ्रीलांस काम मिलने लगा एज ए राइटर, वो भी राजुल की बदौलत, मतलब राजुल मिश्रा का मेरे करियर में बहुत ही बड़ा
0: अच्छा
1: योगदान है। तो
0: जी,
1: उन्होंने मुझे असल में राइटिंग की तरफ झुकाव जो है वो
0: झुकाव,
1: उस तरफ
0: रुझान.
1: बढ़ाया, रुझान। तो वो उन्हें पहले एक कोई डिस्कवरी के लिए कोई एक शो मिला था,
0: जी.
1: जिसको वो हिंदी में उनको ट्रांसलेट करना था, तो मैं उस वक्त मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ था, राजश्री प्रोडक्शंस में, वह हमेशा जब ऑफिस आवर्स ख़त्म होते थे तो मैं शाम को वहाँ पहुँचता था, हम गप्पे वप्पे मारते थे और काम वाम की बातें भी करते थे।
0: जी.
1: तो उनको वो ट्रांसलेट करने के लिए मिला था, तो राजुल ने मुझे कहा कि यार एक बार तू भी ट्राई कर, तेरी भी भाषा तो ठीक ठाक ही है। तो मैंने जब एक पैराग्राफ लिखा तो वो उन्हें बहुत पसंद आया, तो और बोला अरे यार तू तो मतलब सिर्फ ट्रांसलेट नहीं, तू तो मतलब अच्छे से उसे, मतलब तेरी लैंग्वेज पे काफ़ी अच्छी कमांड है।
0: कमांड है.
1: तो मुझे तो ये पता नहीं था ऐसा कि मतलब मैं कुछ लिख विख भी सकता हूँ। फिर उन्हें एक एक कॉमेडी टाइप थोड़ा सा, मतलब एमटीवी के लिए एक शो था जो रागेश्वरी होस्ट किया करती थी,
0: अच्छा.
1: उसमें उस वक्त वीजे थी वो, उस वक्त एमटीवी में, तो वो शो लिखना था, उनके एंकर लिंक्स, वीजे लिंक्स जो होते हैं
0: जी.
1: कि वो जो बोलते हैं फिर उसके बाद गाना आता है, तो वो लिखने के लिए दिया, और वो मैंने लिखा, वो भी साथ में उनके, वो भी पसंद आया, उन्हें भी पसंद आया, रागेश्वरी को भी अच्छा लगा, तो फिर और शोज लिखने लगे, फिर एक शो से दूसरा शो, फिर ईटीसी, मैं, राजुल और हमारे एक और दोस्त है कॉलेज का, रेंजी वर्गिस, हम तीनों ने फिर मतलब लिखना शुरू किया काफ़ी, और धीरे धीरे कब मैं मतलब एकदम से राइटर बन गया मुझे खुद पता नहीं चला, साल 2 साल गुजर गए, राइटर का तमगा लग गया।
0: जी.
1: फिर नौकरी की मैंने एमटीवी में 4 साल इन हाउस राइटर के तौर पे, और फिर 1 साल चैनल वी में था, तो ऐसे फिर शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, तो यही लाइफ हो गई थी, मुझे लगा कि अब ऐसे ही चलता रहेगा। अब बाद में मैं क्रिएटिव हेड बन गया एक दूसरे चैनल में, बॉलीवुड चैनल था वो, इमेजिन शोबिज,
0: जी.
1: तो फिर मतलब ऐसे लाइफ शुरू हो गई। बट ये नौकरी के जो मेरे साल थे उसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने इंजॉय किया वो एमटीवी के जो 4 साल थे, वो मेरे लिए बेहद खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा मैंने वहाँ पर सीखा, बहुत अच्छे दोस्त बनाए, प्यारे दोस्त बनाए, जो अब तक जिनके मैं टच में हूँ, जिनके साथ,
0: जी
1: तो
0: जी
1: वो मेरे मतलब बहुत ही खूबसूरत 4 साल रहे हैं एमटीवी में।
0: बिल्कुल. यहाँ पर आपके गीत पसंद के, कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे? और हो सके अगर वो गीत अगर आप गाना चाहें तो गा सकते हैं.
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सावरिया, ओए होए, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सावरिया, ओए होए होए, ओ जाने सारी नगरिया, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए होए होए, ओ जाने सारी नगरिया।
0: आके सीधी. क्या बात है, क्या बात है,
1: थैंक यू।
0: बहुत खूब.

0: गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय नटखट रंगीले आवरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: हम बात कर रहे हैं शारिब जी से, और बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में और बैनर आपके फेहरिस्त में हैं, आपके खाते में शामिल हैं। हम बात करते हैं अगर स्लम डॉग मिलेनियर की, काफी
1: जी
0: चर्चित पॉपुलर फिल्म रही है, उसके साथ कैसे जुड़ना हुआ?
1: उस वक्त एक्चुअली मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। तब मैं चैनल वी में काम कर रहा था, 4 साल एमटीवी में गुजारने के बाद मैंने चैनल वी ज्वाइन किया था। और उस वक्त मेरे एक दोस्त, मेरे एमटीवी के ही एक मतलब एक्स कलीग जो है स्वप्निल कोरे, तो वो उसमें असिस्ट कर रहे थे कास्टिंग में, और उन्होंने मुझे एक रोल के लिए बुलाया। रोल क्या, वो तो मतलब एक सीन था जो मतलब अगर कोई हिंदी फिल्म होती तो वो किसी असिस्टेंट डायरेक्टर से या कोई जूनियर आर्टिस्ट से करवा देते, बट मेरा उसके लिए बाकायदा ऑडिशन लिया गया। और डैनी बॉयल साहब मेरे ऑडिशन में मौजूद थे, वो मुझे क्यूज दे रहे थे दूसरे कैरेक्टर का, तो मैं मतलब एकदम हक्का बक्का था कि यार इतना इन्वॉल्वमेंट किसी डायरेक्टर का, मतलब मैं आकर चला भी जाऊंगा, कुछ वो नहीं था उस
0: जी
1: ऐसे रोल के लिए डायरेक्टर कभी रहते भी नहीं है, वो तो सेकेंडरी तक भी नहीं पहुंचते। तो
0: जी
1: बट इतना उन्होंने मुझे उस वक्त अप्रिशिएट किया था मेरे काम को, और इतनी तारीफ की थी, और मतलब डैनी बॉयल साहब हैं
0: बिल्कुल
1: वो
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल भी मतलब रत्ती भर भी मतलब उनमें कोई मतलब एयर नहीं था, ना कोई ईगो था, ना कोई ऐसे अहम था कुछ। इतना प्यारा इंसान, बहुत मतलब मेरे लिए स्लम डॉग मिलेनियर में मेरा शूट एक ही दिन हुआ था,
0: जी
1: लेकिन उन्होंने 2 दिन का रखा था बफर। फर्स्ट डे जो है मैं शूट नहीं कर पाया था और नेक्स्ट डे शूट हुआ था, तो फर्स्ट डे जब पूरा दिन मैंने बैठने के बाद में उन्होंने बोला पैकअप हो गया, तो पैकअप के वक्त डैनी साहब मुझे मिले और पहले उन्होंने माफी मांगी कि हम शूट नहीं कर पाए।
0: अच्छा
1: उनको कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने,
0: बिल्कुल
1: मुझसे मिलने की जरूरत थी, बट उसके बावजूद वो आए। और मैंने ऑडिशन के टाइम एक लाइन ऐसी इम्प्रोवाइज की थी कुछ, तो वो उन्होंने स्क्रिप्ट में डाली थी, वो लाइन उन्होंने स्क्रिप्ट में ऐड कर दी थी।
0: जी
1: तो उन्होंने मुझसे कहा कि डिड यू गो थ्रू द स्क्रिप्ट, वी एडेड योर लाइन, यू आर इवन पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट नाउ। मतलब मैं कभी जिंदगी भी नहीं भूल सकता कि इतने बड़े आदमी ने मतलब इतने प्यार से और इतनी रिस्पेक्ट दी मुझे, जो मैं मतलब हमेशा याद रखूंगा। मैं 50 बार ये किस्सा मैं 1000 लोगों को सुनाता
0: और जब तक है जहां उससे भी
1: हूँ।
0: आप रिलेट किए, उससे कैसे
1: हाँ,
0: जुड़ना हुआ?
1: उसमें मैं असल में जब मैंने डिसाइड किया 2008 एंड मतलब 2009 के आसपास में मैंने नौकरी छोड़ छाड़ के एक्टिंग करने का डिसीजन लिया था, और फिर 3 साल तक बहुत सारे ऑडिशन हुए, सैकड़ों, और सिर्फ रिजेक्शन मिले। एक ऐड किया था, एक शॉर्ट फिल्म की थी, उसके अलावा और कुछ नहीं मिला था।
0: जी
1: तो फिर से मुझे, क्योंकि कर्जे चढ़ गए थे बहुत ज़्यादा, तो मुझे दोबारा नौकरी करनी पड़ी। एक चैनल था यूटीवी बिंदास, वहां पर मैंने ज्वाइन किया एज एवीपी प्रोग्रामिंग, और वहां कुछ 3 महीने ही हुए थे कि मुझे शानू शर्मा जी का फोन आया,
0: अच्छा
1: जो YRF में कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो। तो उन्होंने मेरी जो शॉर्ट फिल्म मैंने की थी वो यूट्यूब पर देखी, और वो देखकर फिर उन्होंने मुझे जब तक है जान के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया। तो शुरुआत में 3 राउंड जो हुआ उसमें सिर्फ मैंने रब ने बना दी जोड़ी में जो विनय पाठक साहब का जो कैरेक्टर था उनके
0: जी
1: सीन्स के साथ
0: अच्छा
1: ऑडिशन दिया, फिर वो हुआ। उसके बाद मुझे जब वो पड़ाव पार हो गया उसके बाद मुझे जो जैन के जो जो मैं प्ले करने वाला
0: जी
1: था
0: जैन
1: उसके सीन्स दिए, और फिर उसके 3 राउंड हुए। और मेरा सबसे पहला ऑडिशन भूमि पेडनेकर ने लिया था, उस वक्त
0: अच्छा
1: वो शानू की असिस्टेंट थी,
0: हाँ।
1: तो वो बहुत मतलब मेरे लिए तो ये चीजें जो मेरे साथ में हो रही थी, और उस वक्त मैं नौकरी कर रहा था, और थैंकफुली जो मेरी इमीडिएट बॉस जो थी वो ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी, तो मैं आराम से मतलब
0: मौका
1: कल्टी
0: मिल गया
1: मौका मिलते ही मतलब
0: आपको
1: मैं मतलब ऑफिस से चला जाता था
0: जी
1: और ऑडिशन देके आ जाता था। तो फिर एक दिन रात को 12 बजे मुझे इन्होंने फोन किया, शानू ने, कि यार नहीं हो पा रहा है और किसी और एक्टर को कास्ट कर लिया है। तो मुझे लगा ठीक है, अब इतने सारे रिजेक्शन हुए हैं, मैं वैसे भी मतलब मैंने सोचा था कि ये भी रिजेक्ट ही होने वाला हूँ। तो मैंने फिर एक और थोड़ा सा उदास हुआ और फिर काम पे लग गया अपने, क्योंकि नौकरी थी एटलीस्ट। बट एक हफ्ते बाद फिर से मुझे फोन आया, और इस बार यशराज के ऑफिस से आया था, और अक्षत कपिल जो उस वक्त यश जी के चीफ थे उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया कि आप एक बार और ऑडिशन दे सकते हैं क्या। तो मैंने बोला ठीक है एक बार और ले लो। तो मैं ऑफिस गया उनके YRF में, और वहां पर एक बार फिर से ऑडिशन दिया, और मैं फिर वापस अपने ऑफिस आ गया। तो ऑफिस पहुंचा ही था मैं कि आधे घंटे में फोन आया कि आप सेलेक्ट हो गए, 4 दिन बाद शूट है, दो
0: अच्छा
1: दिन बाद
0: उसी
1: या
0: के लिए जिसमें पहले नहीं हुआ था।
1: हाँ, सेम रोल का ही
0: अच्छा,
1: मैंने इतनी बार
0: हाँ
1: ऑडिशन
0: हाँ
1: लिया,
0: हाँ
1: और वो फिर फाइनली मतलब हो गया, क्योंकि शायद वो उसके पहले जिसको कास्ट किया था वो भी थोड़ा हैंडसम और गुड लुकिंग टाइप था, तो दोनों हैंडसम और गुड लुकिंग दोनों, शाहरुख खान साहब भी हैंडसम तो ये भी हैंडसम, तो उन्हें शायद कुछ कॉन्ट्रास्ट चाहिए
0: हाँ,
1: था,
0: वो कुछ
1: और
0: अलग
1: मैं
0: क्लिक
1: उस
0: कर
1: वक्त
0: गया।
1: एकदम ऐसा था 90 किलो का
0: तो हमेशा
1: तो
0: ये जो मूवीज का जो प्रोसेस है, ये ऑडिशंस क्या इतना लंबा होता है या अलग अलग प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, बार
1: अलग
0: बार
1: अलग
0: राउंड्स देने
1: प्रोजेक्ट पे,
0: पड़ते हैं?
1: हाँ जितनी बड़ी फिल्म होती है उतने ज़्यादा राउंड्स होते हैं फिल्म
0: अच्छा।
1: में ऑडिशंस के। अभी तो मैं वो ऑडिशन प्रोसेस तो अब नहीं रहा, लेकिन हाँ अगर कभी कोई ऐसी फिल्म होती है जिसके लिए ऑडिशन की बहुत ज़रूरत हो तो वो भी मैं करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो मतलब जो वो फर्स्ट 3 साल जो मैंने ऑडिशंस दिए थे उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। ऑडिशन मेरा रियाज था एक्चुअली, क्योंकि मेरी कोई फिल्म में या एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ना मैंने थिएटर किया था, ना कोई एक्सपीरियंस था एक्टिंग करने का। सिर्फ मैं एमटीवी में मैंने मतलब काफ़ी जो हम स्केच कॉमेडीज करते थे वो उसमें मैं कुछ कुछ कभी एक्टिंग कर लेता था, बकरा, एमटीवी बकरा करता था, अदरवाइज मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो वो उन ऑडिशंस में मैंने बहुत कुछ सीखा उसके दौरान, और उसके जरिए मेरा रियाज हुआ एक्टिंग
0: बिल्कुल
1: का।
0: बिल्कुल। लेकिन ये ऑडिशंस में, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़े बड़े बैनर्स के साथ आप जुड़े, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट से रिजेक्शन भी मिला कहीं ना
1: बहुत
0: कहीं,
1: सारे,
0: बहुत
1: हाँ
0: सारे। तो कैसा महसूस हुआ, या वो हिम्मत कहाँ से आती है, मोटिवेटेड कहाँ से रहते हैं आप कि नहीं अभी चलते जाना है आगे, कोई बात नहीं, रिजेक्ट हुआ कोई बात नहीं, आगे और कोशिश
1: वो
0: करेंगे? कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं छोड़ देते हैं, अभी मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ होगा?
1: नहीं, मैं वो एक तो अब मैंने अच्छी खासी नौकरी छोड़ के ये सब इसीलिए किया था क्योंकि मुझे इस प्रोफेशन से प्यार है बहुत, और अगर वो मतलब वो लव फॉर द जॉब जो है ना वो मतलब छोड़ने नहीं देता, और मैं थोड़ा बचपन से ही काफ़ी पॉजिटिव रहा हूँ, और मेरे आसपास भी काफ़ी एनकरेजिंग फ्रेंड्स और फैमिली, खासकर मेरी बेगम, तो
0: बिल्कुल।
1: वो बहुत हमेशा सपोर्टिव रही, और उनकी ही बदौलत एक्चुअली मैं कंटिन्यू कर पाया, वरना एक दो बार ऐसा आता था मौका कि मतलब मन करता था कि यार बेकार में मैं सबको परेशान कर रहा हूँ इसके चक्कर में, बट उन्होंने बोला कि ये सिर्फ तुम्हारी अकेले की मतलब वो नहीं है, हम सब
0: हम सब
1: इसमें
0: साथ
1: तुम्हारे
0: में।
1: साथ में हैं, तो वही, और खुद पे भरोसा था कि यार टैलेंट तो अपने में है, कूट कूट के भरा है, बस
0: बिल्कुल।
1: जनता तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग रहा है, वो हो जाएगा।
0: वो जो कूट कूट के भरा है टैलेंट, वो नजर आया फिल्मिस्तान फिल्म
1: जी
0: में, तो
1: हाँ
0: वहां पर ऐसा लगा कि बस आप तो एंटरटेनमेंट के लिए बने। उसमें डायलॉग भी है
1: हाँ
0: ये
1: हाँ
0: कि
1: उसके
0: मेरा
1: डायलॉग
0: जन्म
1: मैंने
0: ही,
1: लिखे हैं फिल्म में।
0: हाँ वो आप ही ने लिखे हैं कि मेरा जन्म ही एंटरटेनमेंट के लिए हुआ
1: यस
0: है।
1: यस,
0: तो ये कैसे इसके साथ जुड़ा हुआ, कैसे लिखे, इसके बारे में
1: फिल्मिस्तान
0: थोड़ा सा।
1: मैं असल में जब मैं तब ये यूटीवी मंदास में ही नौकरी मेरी चल रही थी, उसी दौरान जब जब तक है जान के ऑडिशंस में दे रहा था, तो वो जब जो मेरे वहाँ पे 3-4 महीने जो मैंने वहाँ पर गुजारे थे उस वक्त नितिन ने उस पर काम करना शुरू किया था स्क्रिप्ट पर फिल्मिस्तान की, तो मैं ऑफिस खत्म होने के बाद मैं नितिन के घर जाता था और जो भी उन्होंने लिखा होता था वो मुझे सुनाते थे, और मैं आई वुड वर्क एज अ बाउंस बोर्ड, मैं कहता था हाँ ये अच्छा है, बहुत सही है, ज़्यादातर वो सब अच्छा ही होता था। नितिन बहुत ब्रिलियंट राइटर है, बहुत कमाल जब भी वो लिखता है। फिर हमने साथ में थोड़ा थोड़ा और वो करना शुरू किया, और नितिन को भी जब मैं जब तक ये जान में सेलेक्ट हुआ उसी दौरान नितिन को एक प्रोड्यूसर मिल गए, और जब हम लिख रहे थे तब नितिन बोलता था कि ये जो रोल है ये मतलब तेरे लिए एकदम करेक्ट है। और मैं सोचता था कि कहाँ वो मुझे कास्ट करेगा अपनी पहली फिल्म में मेन लीड में वो भी, बट जब उन्हें प्रोड्यूसर मिला उन्होंने मुझे ऑडिशन करवाया सनी अरोरा के किरदार के लिए, और मैं उसमें भी सिलेक्ट हो गया। तो वो एक जब मैंने मतलब सब छोड़ छाड़ के 3 साल नौकरी पे मैं जब ज्वाइन किया, और 3 महीने में मुझे जब तक है जान मिल गई और उसी दौरान फिल्मिस्तान भी आ गए,
0: फिल्मिस्तान।
1: तो वो मैं मतलब बड़ा अचंभित था कि मतलब जिस तितली के पीछे इतने साल दौड़ा और उसको पकड़ने की कोशिश की वो मेरे हाथ ही नहीं आई, जब थक हार के कहीं बैठ गया तो अपने आप मेरे कांधे पे आके मतलब जो है वो बैठ गई।
0: बिल्कुल। कहते हैं ना, जिसे आप चेज करते हैं वो मिलता नहीं है, जब आप छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मिल
1: वो
0: जाता
1: मिल
0: है,
1: जाता है, तो वही
0: ऐसे
1: हुआ
0: ही कुछ
1: मेरे
0: हुआ।
1: साथ में। और इस तरीके से फिल्मिस्तान ही हुई, और फिल्मिस्तान ने फिर मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल दी एकदम।
0: बिल्कुल। यहां पर आपकी पसंद का गीत?
1: जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो मुझे बहुत पसंद है, मतलब मेरे ख्याल से मैंने कहीं पढ़ा भी था जावेद अख्तर साहब के इंटरव्यू में, उनसे पूछा गया था कि फिल्मों में मतलब आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ सबसे फेवरेट गाना उनका कौन सा है, तो उन्होंने बोला था जिंदगी के सफर में, और मुझे भी ये गाना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है।
0: बिल्कुल, ये सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को।

0: हम बात कर रहे हैं आज शारिब हाशमी जी से। तो फिल्मिस्तान की जब बात चली है तो उसका सुर कैसे पकड़ा और कितना करीब है सनी शारिब से?
1: सनी और शारिब वैसे तो काफी, मतलब बहुत, मैंने जितने भी किरदार निभाए हैं उसमें सनी अरोड़ा मतलब मेरे सबसे ज्यादा नजदीक है, और उसी लिए मुझे उसे परफॉर्म करते वक्त मुझे लगा रही ये तो बहुत आसान होगा, यही सब मिमिक्री करना है, डांस करना है, नाचना गाना है और मस्ती
0: उसके
1: करनी
0: डायलॉग भी
1: है।
0: आपने लिखे हैं।
1: उसके डायलॉग मैंने लिखे हैं। हाँ, तो मुझे लगा ये तो बहुत ही आसान होगा, बट जब हमने शूट करना शुरू किया तब सिंपल चीजें भी, क्योंकि पहली बार एक तो मैं मेन लीड कर रहा था, वो एक प्रेशर भी था, और मैं कर रहा हूं तो वो लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे उसका एक प्रेशर था, और नितिन का जो मुझ पे भरोसा था, मैं उससे मतलब उस भरोसे पे पूरा उतरूंगा नहीं उतरूंगा, मैं बहुत उस तरीके से उस वक्त पता नहीं थोड़ा एक प्रेशर था, और वो शायद फिर परफॉर्मेंस में नजर आने लगा, और नितिन मुझे बार बार कह रहा था कि थोड़ा शांत हो जा, थोड़ा ठंडा हो जा थोड़ा। तो मुझे एक दो दिन लगे थोड़ा अपना सुर समझने में, अपने किरदार में, मतलब पूरी तरह से थोड़ा ढलने में, और सही तरीके से मतलब जो रिक्वायरमेंट थी किरदार की वो
0: उन्हें
1: परफॉर्म
0: पेश
1: करने
0: करने
1: में
0: में।
1: जो है मुझे थोड़ा 2 दिन लगा सेम पेज पे आने में नितिन के साथ।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जब मैं आया तो फिर, और जब नितिन कुछ अच्छा बोलता था तो मेरा पूरा ऐसे मैं बच्चों की तरह
0: जो कि
1: नाचता
0: हमने उसमें भी देखा, परफॉर्मेंस भी देखा, बिल्कुल दिल खोल के, जिसे बोलते हैं ना कि बस यही मेरी, यही सब कुछ है, उस तरह से आपने सब कुछ उसमें डाल दिया था,
1: जी
0: पूरा
1: थैंक
0: एंटरटेनमेंट। और वो
1: यू।
0: डायलॉग भी है उसमें कि
1: हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ
0: पैदा
1: हूँ, और जब मैं
0: हुआ।
1: लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: जी हाँ। फिल्मिस्तान के बाद आपने राम सिंह चार्ली करके भी फिल्म की है, और उसमें भी
1: जी
0: नितिन कक्कड़ जी हैं और कुमुद मिश्रा, उन्हीं के
1: हाँ
0: साथ काम किया है।
1: बिल्कुल,
0: तो फिर से एक टीम के साथ फिर से काम करना इजी भी होता है, और
1: बहुत।
0: कैसा यह
1: हाँ,
0: अनुभव है?
1: नितिन के साथ तो मेरा अलग कंफर्ट लेवल ही अलग है, हमारी हम बहुत गहरे दोस्त भी हैं, और साथ में मैंने राइटिंग का काम तो सिवाय नितिन के और किसी के साथ किया ही नहीं है, फिल्म राइटिंग तो मैंने उनके लिए, और मित्रों एक फिल्म है उसके लिए भी डायलॉग्स
0: हाँ
1: लिखे हैं,
0: जी।
1: नोटबुक के लिए भी डायलॉग्स लिखे हैं, और राम सिंह चार्ली तो हमने तकरीबन साथ में लिखी है, बट मेजर काम हमेशा राइटिंग में नितिन का ही होता है, वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ब्रिलियंट माइंड है। हमने सबसे पहली बार मुझे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में नितिन ने मुझे बताया था जब हम बुसान फिल्म फेस्टिवल में गए थे फिल्मिस्तान को लेकर, वहां पर फिल्मिस्तान का वर्ल्ड प्रीमियर था, और तब नितिन ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बोला था कि एक चार्ली चैपलिन के इम्पर्सोनेटर कि अगर कोई कहानी हो और उसको अगर हम लोग कुछ करें तो कैसा रहेगा, और मैं तो सुन के ही बहुत खुश हो गया था यार ये तो कमाल होगा। और फिर हमने धीरे धीरे, नितिन ने थोड़ा उसको डेवलप करना शुरू किया, फिर हम साथ में बैठ के उस पर काम करने लगे, और करते करते करते राम सिंह चार्ली की स्क्रिप्ट तैयार हो गई, और हम बहुत खुश थे स्क्रिप्ट के साथ, और पिच करना शुरू किया तो कोई तैयार नहीं हो रहा था प्रोड्यूस करने के लिए, या कोई कह रहा था कि कोई नाम लेकर आओ, कोई बड़ा एक्टर लेकर आओ। फिर हमने डिसाइड किया कि यार जब हमको इस चीज़ पे इतना भरोसा है तो हम खुद ही क्यों ना प्रोड्यूस करें, और हमने फिर, मैंने, नितिन ने और हमारे एक और पार्टनर है उमेश पवार, हम तीनों ने मिलके अपने पैसे लगाकर हमने फिल्म प्रोड्यूस की, और कुमुद जी को हमने टाइटल रोल में कास्ट किया, दिव्या दत्ता, फर्रुख सियार, और बहुत अच्छी कास्ट जमा की, आकर्ष खुराना, और बहुत कमाल एक्सपीरियंस रहा वो फिल्म बनाने का। एक ही फिल्म प्रोड्यूस की है मैंने, और आगे शायद पता नहीं कब करूंगा या करूंगा भी, यानी वो भी नहीं पता, लेकिन अगर सिर्फ जिंदगी में सिर्फ एक ही फिल्म मैंने प्रोड्यूस की तो वो भी मैं छाती ठोक के कह सकता हूं कि यस, मैंने राम सिंह चार्ली प्रोड्यूस की है।
0: मैं प्रोड्यूसर
1: मैं प्रोड्यूसर हूं तो राम
0: हूं।
1: सिंह चार्ली का हूं, ये
0: जी।
1: एक खूबसूरत फिल्म है, और
0: बिल्कुल।
1: यस।
0: तो जब हम बात करते हैं आपकी नोटबुक राम सिंह चार्ली की, 47 डिग्री की, तो कहीं ना कहीं बहुत ही सिंपल और सहज मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ी फिल्में हैं ज्यादातर, तो ये कहीं ना कहीं कहां से आता है? ये शायद आपने अनुभव किया हुआ है, या ज्यादातर आपकी शॉर्ट फिल्म्स या कहानियां या लेखनी जो है कहीं ना कहीं इसी तर्ज पर है?
1: मे बी शायद मैंने वही लाइफ जी है, मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता हूं मैं,
0: जी।
1: वही रचा
0: और हम
1: बसा है
0: उससे
1: अंदर।
0: काफी रिलेट कर पाते
1: हाँ,
0: हैं।
1: टोटली रिलेट कर पाते हैं, और मैं, क्योंकि आप कितने भी अच्छे एक्टर हो या कितना भी कुछ भी हो, आपको काम तो वैसे ही मिलेगा जैसे आप दिखते हैं। तो मैं, मेरे ख्याल से वही मिडिल क्लास वाला मतलब चेहरा भी वही है आम आदमी वाला, तो वैसे किरदार भी मुझे मिलते हैं, इसीलिए फिल्मिस्तान का

0: सनी अरोरा या तरला का नलिन दलाल या जो भी मैंने ज्यादातर किरदार निभाए हैं उस हिसाब से, जो शॉर्ट फिल्म्स में भी मैंने, अगर मेहरूनी में जो
1: हाँ,
0: किया है,
1: महरूनी की बात करते हैं। हाँ
0: हाँ,
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो वो सब वैसे ही हैं। इट्स ओनली 47 डिग्रीज में भी वैसा ही एक ट्रैफिक हवलदार का एक किरदार है।
1: जी जी जी जी
0: तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैसे तो हम जितने अलग किस्म के किरदार निभाएं उतना अच्छा होता है, और थैंकफुली मुझे मिलते भी हैं डिफरेंट किस्म के किरदार निभाने को, बट ज्यादातर जो है वो एक, वो हाँ, मिडिल क्लास वाला क्या
1: और
0: कहेंगे
1: दर्शकों
0: उसको,
1: से भी वो कहीं ना कहीं
0: इमेज
1: जुड़ाव
0: तो
1: आ
0: है।
1: जाता है।
0: हाँ
1: यहां पर आपकी पसंद का कोई गीत?
0: ये मिडिल क्लास से मुझे याद आया, मतलब
1: हाँ।
0: काफी, एक तो जो अमोल पालेकर साहब की जो फिल्में होती थी ना उस वक्त की, वो मुझे बहुत, खासकर छोटी सी बात मेरी बहुत ही पसंदीदा फिल्म है, और घरौंदा, घरौंदा में जो एक गाना है वो मुझे बहुत पसंद है, वो प्लीज तुम्हें हो ना हो मुझको तो
1: बिल्कुल,
0: इतना यकीन, वो
1: वो
0: मुझे
1: सुनवा देते हैं, वो गीत
0: प्लीज।
1: हम जरूर सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को।

0: बात तरला की जैसे आपने की, बहुत ही सपोर्टिंग हस्बैंड के रूप में वो किरदार है, तो कहीं ना कहीं निजी जिंदगी में भी काफी सपोर्टिंग रहे हैं आप कहीं ना कहीं. और जब आप एक चुनौती भरा वो फेज से गुजर रहे थे, वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, तो आपकी वाइफ जो है नसरीन जी आपके साथ रही हैं, कैसे उस दौर से आप निकले हैं? अगर आप अपने निजी कुछ अनुभव बताना चाहें तो कैसे वो आपकी सपोर्ट रही हैं?
1: वो तो मतलब जब मैं ऑडिशन देना शुरू किया था और तब अच्छी खासी एक नौकरी कर रहा था मैं, एक लाइफस्टाइल थी, अब उसको बच्चा भी हो चुका था, तो उसके हिसाब से जो है उसको मेंटेन करने के चक्कर में और साथ में दाल रोटी के लिए और स्ट्रगल भी कंटिन्यू रखना है, तो वक्त गुजरता जा रहा था, पैसे कम होते जा रहे थे, कम क्या खत्म हो गए एक पॉइंट के बाद, और जो सेविंग्स थी सारी उड़ गई, जेवर भी

0: मैंने मतलब उनसे मांगने शुरू कर दिए और उन्होंने कभी उफ तक नहीं की। घर जो खरीदा था नौकरी के दौरान वो भी बेच दिया, बट उन्होंने एक बार भी ऐसे नहीं कहा कि ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो मतलब मेरे पैशन को और मेरे ड्रीम को और मेरे टैलेंट पर उनको काफ़ी भरोसा था। उनको ये था कि यार कुछ ना कुछ तो इसका होने वाला है इस बंदे का, और जितना मुझे खुद पे भरोसा था शायद उससे कहीं ज़्यादा उनको मेरे काम पर यकीन था। लेकिन उस वक्त जब गुजर रही थी तब मुझे पता है कि कैसे उन्होंने उसको हैंडल किया, कैसे घर मैनेज किया, कैसे मुझको हैंडल किया और कैसे हमने वो मुश्किल दौर गुजारा है साथ में, वो हम दोनों को ही पता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे बड़ी ताकत रही
0: जी हाँ, वो मेरी मतलब उस वक्त की सबसे बड़ी हिम्मत, सबसे बड़ी ताकत रही हैं, और उनके बगैर वो पॉसिबल ही नहीं होता। और जब मतलब चीज़ें होनी शुरू हुई अच्छी और थैंकफुली मतलब ऊपर वाले ने साथ दिया, तो फिर वो उन्होंने बोला भी कि मैंने सही घोड़े पे पैसा लगाया था।
1: अभी उस सीरीज की बात करते हैं जिससे आपको सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, द फैमिली मैन।
0: जी
1: इससे जुड़ना कैसे हुआ, और ये जेके का किरदार आपको लगा था उस वक्त कि कुछ तो कमाल कर जाएगा, मुझे लोग जेके के नाम से पुकारने लगेंगे, ज्यादा जानने लगेंगे?
0: जेके जब मतलब हुआ तब मैं जिस पॉइंट पे आया ये किरदार मेरी ज़िंदगी में, उस वक्त मुझे उसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। बहुत करियर मेरा एकदम लो पर था, बहुत डाउन था मैं फाइनेंशियली, कि फिल्मिस्तान हो चुकी थी जब तक जान हो चुकी थी, उसके बावजूद मैं फिर से ऑडिशंस दे रहा था, फिर रिजेक्शंस हो रहे थे, फिर काम नहीं मिल रहा था, एक दो फिल्में हो जाती थी और फिर मतलब लंबा एक गैप होता था, पैसे फिर ख़त्म होने लगे थे, तो वो बहुत अजीब सा मतलब दौर था। और ये और ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि अब मैंने थोड़ा सा सक्सेस का टेस्ट चखा था फिल्मिस्तान के ज़रिए, जब तक है जान के ज़रिए, और अब फिर से फिर ऑडिशन देना पड़ रहा था, फिर भाग दौड़ करनी पड़ रही थी, फिर पैसों के बारे में सोचना पड़ रहा था कि अब कहाँ से करें क्या करें, तो वो बहुत मुश्किल टाइम था। उस वक्त मुझे एक कॉल आया मुकेश छाबरा भाई के ऑफिस से, और ये जेके जो है, उस वक्त जेके नाम तो नहीं था उसका, घोष था उस कैरेक्टर का नाम, बंगाली कैरेक्टर था। तो मैंने ऑडिशन दिया वो, और जब ऑडिशन दिया तो उन्होंने कहा था कि फिलहाल तुम न्यूट्रल उसमें ही करो, कोई बंगाली एक्सेंट की जरूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से कर दो, बाद में हम देखते हैं। और जब ऑडिशन हुआ तो मुझे लगा कि यार आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है। आपको थोड़ा पता चल जाता है कि अगर कुछ अच्छा हुआ है तो, और अच्छा अगर ऑडिशन होता है तो आप फिर फोन का इंतजार भी करने लगते हैं कि यार अब घंटी बजेगी, अब घंटी बजेगी। और हफ्ता 10 दिन लग गया और उसके बाद लेकिन फोन आया। और मेरी पहले डीके साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आपका ऑडिशन तो अच्छा था लेकिन ये बंगाली में मतलब मुझे नहीं लगता है कि आप बंगाली में एज ए बंगाली फिट होंगे, नेचुरली आपको कौन सा कोई एक्सेंट या डायलेक्ट जो है आप में, मतलब नेचुरली आप किस में वो कर सकते हैं, आप अपने आप को कंफर्टेबल हैं। तो मैंने बोला मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ, मराठी बोल लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कि यार हाँ महाराष्ट्रन कर सकते हैं। फिर नाम की तलाश शुरू हुई कि इसका नाम क्या होगा, घोष हट गया अब। तो फिर बहुत सारे नामों के ऑप्शंस मैंने भी निकाले, तांबे और ये वो बहुत सारे मात्रे, फाइनली फिर वो जेके जो है, जेके तड़पदे नाम जो है लॉक किया गया। और फिर जब आया, जब हम शूट कर रहे थे तभी भी एक, इनफैक्ट ऑडिशन के वक्त ही मुझे एक इंट्यूशन हुआ था, मतलब मैं उसमें एंटर हो गया, काम मिल गया मुझे, तो लाइफ में कुछ तो एक बदलाव आने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। और वो इंट्यूशन मेरा बिल्कुल करेक्ट था। जैसे ही फैमिली मैन आया सीजन 1 और वो OTT पर, मतलब एक अलग ही किस्म की मतलब एक्साइटमेंट आई लाइफ में मेरे।
1: बिल्कुल।
0: और लोगों ने बहुत देखा उसे और फैंस बढ़ने लगे, फॉलोअर्स बढ़ने लगे सब जगह। सीजन 2 आया और रिस्पॉन्स जो है वो डबल हो गया। तो वो मेरे लिए मतलब फैमिली मैन के बाद असुर आया, असुर को भी लोगों ने पसंद किया, स्कैम आया जबकि उसमें मेरा एक सीन था, उसको भी लोगों ने बहुत प्यार दिया
1: जी।
0: और फिर काम और मिलता गया, लेकिन शुरुआत उसकी फैमिली मैन से हुई। और मतलब वो मेरी जिंदगी में बहुत एक अहम जगह रखता है फैमिली मैन, और जेके ने मुझे बहुत प्यार दिया है।
1: तो इसकी जो स्क्रिप्ट है, अगर फैमिली मैन की अगर हम बात की करें बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज आप खुद करते हैं वहां पर, क्योंकि बहुत सारे डायलॉग ऐसे सुनने को आते हैं कि ऐसा लगता है इंस्टेंट आ गया ये, तो कुछ तो अलग आ गया है, तो क्या वो सब लिखा रहता है या?

0: नहीं, तो लिखी भी होती है स्क्रिप्ट पूरी बाकायदा, और सुमन कुमार जो हैं वो हमारे जो राइटर हैं, और फर्स्ट सीजन में सुमित अरोरा ने डायलॉग्स लिखे थे और सेकंड में सुपन और सुमन भी थे, तो वो पूरा सब कुछ लिखा होता है, लेकिन राज एंड डीके जो है ना, वो कभी कट नहीं करते हैं, जब सीन खत्म हो गया जो पेपर पे था उसके बाद भी वो कभी कट नहीं करते, और मनोज सर मतलब इम्प्रोवाइजेशन के किंग हैं एकदम। तो वो कुछ बोलते हैं तो फिर मैं कुछ बोलता हूँ, फिर वो कुछ बोलते हैं तो मैं कुछ बोलता हूँ, और वो जब तक कोई हंसता नहीं तब तक वो कट नहीं होता।
1: मुझे लगता है उनके साथ वो केमिस्ट्री कुछ अलग ही है।
0: हाँ, और उनके साथ बहुत मजा आता है, उनके साथ आपको मतलब आपके एकदम टोस पे रहना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे एक के बाद एक मतलब कमाल के डायलॉग्स कहाँ से लेकर आते हैं। कमाल, बहुत ही मजा आता है उनके साथ काम करने में, और इम्प्रोवाइजेशंस होती हैं और उसमें से कुछ जमती हैं कुछ नहीं जमती हैं, वो तो हमारा काम है, मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ छूट मिलती है वो करने की। राजेंद्र के बहुत हमें मतलब आजादी देते हैं, जहां पे हम कुछ ज्यादा ही करने लगते हैं तो बोलते जरा कंट्रोल। फैमिली मैन का जब शूट आता है तो मैं मतलब बहुत एक्साइटेड रहता हूँ लाइफ में। मैं मतलब एकदम आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन द सेट्स कि अरे यार आज फिर से कुछ बढ़िया सा शूट होने वाला है, आज मनोज सर के साथ शूट है, राज एंड डीके हैं और मैं जेके बनूंगा और मजेदार कुछ कमाल करेंगे, और हर दिन मैं उसी माइंडसेट में रहता हूँ जब भी फैमिली मैन का शूट होता है। तो अब मैं सीजन 4 का शूट जल्दी से शुरू हो उसका इंतजार कर रहा हूँ।
1: हमें भी इंतजार है, बहुत बेसब्री से इंतजार है हमें।
0: थैंक यू।
1: अच्छा, इन सीरीज में जहाँ पे एक्शन सीरीज होती है तो पहले कुछ वर्कशॉप होती है या फिर जैसे स्टंट्स किए जाते हैं वहां पर कैसे हेल्प होती है? स्टंट्स आप करते हैं, कुछ एक स्टंट्स आप करते हैं या फिर?
0: नहीं, जो डिफिकल्ट होते हैं तो वो हम खुद ही हाथ उठा लेते हैं। और वो कोई बोलता भी नहीं है कि आप करो, अगर डिफिकल्ट होते हैं तो वो उसके लिए जो स्टंटमैन है वो आपका पूरा वो सीन करते हैं, और जहाँ पे जो हम खुद कर सकते हैं भागना दौड़ना थोड़ा सा पंच और वो सब होता है तो वो वहां पर आप 3-4 बार प्रैक्टिस करते हैं और रिहर्सल होती है, और उसके बाद में फिर आप भी ग्रूव में आ जाते हैं,
1: यूज्ड टू हो जाते हैं।
0: कहीं पर थोड़ा गिरना पड़ना थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जैसे हैवान में था, मतलब मुझे वो टेबल पे जो है वो मतलब फेंकते हैं और उसी से लुढ़क कर मुझे नीचे गिरना था, और वहीं तो वो पूरा शॉट था, तो मैं टेबल पे गया फिर वहां से जमीन पे गिरा, लेकिन वो ये भी बहुत बेसिक है।
1: बिल्कुल।
0: तो वो हम कर लेते हैं, बट अदरवाइज जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं वो तो स्टंटमैन ही कर सकते हैं, हमारे बस की बात भी नहीं है, मेरे तो नहीं है।
1: और हैवान में आपका किरदार अगर आप कुछ बताना चाहें किस तरह से, कुछ अलग है अभी तक के किरदारों से?
0: बिल्कुल, हैवान में मेरा काफी मतलब एक नेगेटिव शेड है मेरे कैरेक्टर में, लेकिन उसमें मैं ह्यूमर भी है, मस्ती भी है, कॉमेडी भी कर रहा हूँ। दो सीन्स हैं मेरे जो काफी, जिसमें एक असरानी साहब के साथ है, एक राजपाल जी के साथ में। तो असरानी साहब के साथ तो जब शूट हो रहा था मतलब मेरे लिए, दोनों ही मेरे बहुत पसंदीदा एक्टर्स हैं और उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। असरानी जी का आखिरी सीन था वो, मेरे ख्याल से उसके बाद, उसके 10 दिन बाद उनका देहांत हुआ।
1: जी, जी, जी, जी।
0: तो मैं मतलब अब खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं हैवान का हिस्सा बन पाया, प्रियदर्शन जी के साथ काम किया, सैफ अली खान साहब के साथ, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा वो।
1: कोई गीत जो आप हमारे सुनने वालों को सुनाना चाहते हैं?
0: किशोरदा का एक और काफी रेयर सॉन्ग है जो लोग कम सुनते हैं, जो कि है सैड सॉन्ग, लेकिन उसमें भी उन्होंने थोड़ा यॉडलिंग का चीज उन्होंने की है, जो आगले लग जा फिल्म से है, ना कोई दिल में समाया, वो मुझे बहुत पसंद है, अगर वो आप प्ले करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: बिल्कुल।

0: दिलचस्प बातों का सिलसिला चला है शारिब जी के साथ, और जैसे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का आपने नाम लिया ही है, अब जुड़े हुए हैं, असुर की बात हुई, स्कैम की बात हुई, हैवान अभी आई है, द फैमिली मैन, बहुत सारी फिल्मों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के पीछे रिजेक्शन भी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट
1: हाँ
0: पार्ट है। तो जब कभी ऐसा कुछ हुआ, उससे कैसे आपने अपने ऑडिशन के तरीके को, या फिर नए प्रोजेक्ट में जब आप जाते हैं, उस तरीके को कुछ बदलाव आया? और ये मैं इसलिए भी जानना चाहती हूँ क्योंकि जो हमारे नए एस्पायरिंग एक्टर्स आना चाहते हैं, बाहर से आते हैं, फिल्मी दुनिया में कदम रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है जब बार बार रिजेक्शन झेलते हैं, या एक वक्त लंबा गुजर जाता है कि अब हम यहाँ टिके रहें या बस हमारे लिए ये फिल्मी सफर नहीं है। तो किस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए, आप अपने अनुभव से हमें बता सकते हैं?
1: उसको तो मतलब हैंडल करने के लिए आपको अपनी चमड़ी जो है थोड़ी मोटी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत इतनी बार ना सुनना ना आप पर वो असर कर सकता है बहुत गलत तरीके से। लेकिन क्योंकि जो ऑडिशन होता है ना, अब उसके पीछे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं सिलेक्ट करने के। अगर आपको वहाँ पर एक तो ऑडिशन पे बुलाया है, यानी कि वो समझते हैं कि आप काबिल हैं, लेकिन उसमें आप उसमें फिट भी हो रहे हैं और दूसरे कास्ट में भी वो आप सबके साथ में मैच कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कास्ट करने से पहले, तो आपकी काबिलियत का टेस्ट नहीं हो रहा है, आप उस रोल में कितना फिट बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं उसका टेस्ट लिया जा रहा है। तो अगर रिजेक्शन होता है तो उसको दिल पर नहीं लेना चाहिए, और अच्छा करने का सोच कर आगे बढ़ना चाहिए और मेहनत करते ही रहनी चाहिए, अपने हुनर को, अपने स्किल्स को, नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, नया नया काम लोगों का देखना चाहिए, नाटक करना चाहिए, देखने चाहिए। तो वो उससे मेरे ख्याल से जो है वो जब ये ऑडिशन वाला दौर है ना, वो आपका बेहतर होगा। और टिके रहना एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, कोई टिक पाता है, कोई कभी किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जैसे मेरी खुद की, मुझे 3 साल बाद फिर से नौकरी करनी पड़ी थी। तो अगर ऐसा भी हुआ तो ठीक है, कर लेनी चाहिए, कोई ज़िंदगी जो है वो सिर्फ एक काम नहीं होता है। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो आपके साथ में या आपके साथ लोग हैं, वो जिम्मेदारियां भी आप ही की हैं और उनको निभाना भी आपका कर्तव्य है। अगर वो है तो करिए, काम करना ज़रूरी है, आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है। उसके लिए कभी जो है दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि मैं इसमें रिजेक्ट हो गया या मैं उसमें हो गया, काम करते रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए। मतलब किसी तरीके से आप टिके रहेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप गेम में जमे हुए हैं तभी आप आगे बढ़ेंगे, अगर
0: तभी
1: गेम में हैं
0: मौके।
1: ही नहीं तो आपको आगे कोई मौका मिलेगा ही नहीं।
0: आजकल बायोपिक का जमाना है, कोई ऐसा किरदार जो आप करना चाह रहे हैं या लुकिंग फॉरवर्ड टू, कोई खास एक दो किरदार ऐसे कि ये तो मुझे करने का मन है?
1: मैं तो मतलब वैसे मेरा डील डॉल वैसा है नहीं, ना चेहरा है ना कद है, लेकिन मेरा किशोरदा की बायोपिक तो मेरी बड़ी मतलब क्या कहते हैं उसको,
0: कमाल हो जाएगा।
1: बहुत। हाँ, लेकिन वो खाली वो सपना है, वो तो मुझे पता है। लेकिन हाँ, अगर किशोरदा की बायोपिक बने तो मैं उसमें किसी भी तौर पे किसी न किसी किरदार में उसमें रहना
0: जुड़ना
1: चाहूँगा,
0: चाहेंगे।
1: जुड़ना चाहूँगा। जैसे अभी

0: म्यूजिक बहुत पसंद है,
1: म्यूजिक तो हम जानते ही आपको
0: फिल्में बहुत पसंद है,
1: जी
0: तो मतलब टाइम तो बहुत कम है
1: बिल्कुल
0: एक्चुअली।
1: बिल्कुल। तो सर, आपने अपनी फिल्मी सफर के साथ साथ जिंदगी के बहुत से अनुभव साझा किए हमारे साथ,
0: जी
1: और बहुत मजा आया बातचीत करके।
0: थैंक यू
1: हम चाहेंगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं ढेर
0: थैंक
1: सारी,
0: यू थैंक
1: और आप
0: यू
1: बार बार आएं और हमें बार बार आपसे बातें करने का मौका मिले विविध भारती के जरिए।
0: थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत मजा आया, मेरे लिए मतलब आई एम रियली ऑनर्ड दैट आई एम सिटिंग हियर। और पूरा एक बहुत बड़ा नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है विविध भारती के साथ में जी। मतलब आंख जिससे खुलती थी और सोने से पहले जिसको सुना करते थे, आज मैं
1: जी
0: वहां बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी, और शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा फिर से
1: जी
0: आएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेता और लेखक शारिब हाशमी से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:00 और ये समय है युवा श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का।

0: नमस्कार श्रोताओं, 102.5 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी उज्जैन के युववाणी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो साथी कौमुदी।
1: और मैं हूं रिद्धि। तो जनाब, वक्त हो चुका है आपकी अपनी पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का, और आज का दिन थोड़ा खास है क्योंकि हमारे पास आज बात करने के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि कई दिलचस्प

0: विषय है।
1: बिल्कुल रिद्धि, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी सवाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का ख्याल भी रख रहे होंगे।
0: अरे बिल्कुल, मौसम को देखकर तो लगता है कि सूरज ने भी आज ओवर टाइम करने का फैसला कर लिया है।
1: मौसम का मिजाज ही कुछ ऐसा है, सुबह की ठंडक हो या दोपहर की गर्मी, बाहर निकलते ही अंदाजा हो जाता है कि मौसम ने आज क्या तय किया है।
0: लेकिन मौसम चाहे जितना गर्म हो, ये वाणी की बातचीत में थोड़ी गर्माहट आपकी तरफ से और थोड़ी हमारी तरफ से, तो माहौल ही बना रहता है।
1: और आज की शुरुआत करते हैं एक ऐसे विषय से जो सीधे हम सभी से जुड़ा है, हमारा दिल। आज यानी 29 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे, और विश्व हृदय महासंघ के अनुसार इस वर्ष की थीम है डोंट मिस अ बीट, यानी अपने दिल की सेहत को नजरअंदाज मत कीजिए।
0: और दिल की बात करें तो सिर्फ प्यार वाला दिल नहीं, असली वाला दिल, क्योंकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काम, पढ़ाई, मोबाइल और भागदौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना ही भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल, तो आज थोड़ी बात होगी अपने दिल का ख्याल कैसे रखा जाए, हमारी छोटी छोटी लाइफस्टाइल हैबिट्स हमारी हार्ट हेल्थ से कैसे जुड़ती हैं, और क्यों कभी कभी शरीर के सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए।
0: और इसके बाद हम थोड़ा पीछे भी चलेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया की, और आज हम याद करेंगे उस कलाकार को जिसने अपनी कॉमेडी, अपनी टाइमिंग और अपने अलग अंदाज से दर्शकों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी।
1: यानी एक तरफ हमारे हृदय के स्वास्थ्य की बात, और दूसरी तरफ एक ऐसा कलाकार जिसकी कॉमेडी ने लोगों के चेहरे पर हंसी ला दी।
0: और हंसी की बात हो रही है तो आज के कार्यक्रम में थोड़ी हंसी हम भी बांटेंगे, आखिर युवाणी है कोई बहुत गंभीर कॉन्फ्रेंस थोड़ी है।
1: बिल्कुल नहीं, लेकिन इसके बाद बात करेंगे देश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना की, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की। ये कार्रवाई 18 सितंबर 2016 के उरी हमले के बाद हुई थी।
0: इस घटना को आज 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो इस हिस्से में हम जानेंगे कि उस समय क्या हुआ था और भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में इस घटना को किस तरह देखा गया।
1: और फिर आएंगे आज के आखिरी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, रिसाइकल और सस्टेनेबल फैशन,
0: यानी कपड़े भी फैशनेबल रहे और हमारी धरती भी परेशान ना हो।
1: बिल्कुल रिद्धि, क्योंकि फैशन में ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, आज कुछ नया ट्रेंड है, कुछ महीनों बाद वही पुराना लगने लगता है, लेकिन सवाल ये है कि हर बार नया खरीदना ही ज़रूरी है क्या?
0: शायद पुराने कपड़ों को नया अंदाज देना, रीयूज़ करना, रिसाइकल करना और सोच समझकर खरीदारी करना भी फैशन का ही हिस्सा बन सकता है।
1: तो आज का युवाणी लेकर आया है सेहत से लेकर सिनेमा तक और इतिहास से लेकर फैशन तक कई रंग, कई बातें और ढेर सारी बातचीत,
0: और इन सब के बीच आपका साथ तो रहेगा ही।
1: लेकिन अब इतनी बातें हो गई तो शुरुआत एक खूबसूरत गीत से क्यों ना की जाए।
0: बिल्कुल, तो चलिए है आज के इस खास कार्यक्रम का पहला गीत।

0: अभी आपने सुना फिल्म काइट से ये मधुर गीत। केके की आवाज़ में संगीत था राजेश रोशन का और बोल नासिर फराज के। रिथि, हमारी आज की बातचीत की शुरुआत एक ऐसे अंग से करते हैं जिसका नाम लेते ही सबसे पहले प्यार याद आ जाता है, दिल। लेकिन हमारे दिल को सिर्फ प्यार से जोड़ने की बजाय ये याद रखना ज़रूरी है कि हमारे पूरे शरीर को चलाए रखने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है।
1: बिल्कुल कौमुदी, हमारा हार्ट लगातार काम करता रहता है। हम सो रहे हों, पढ़ रहे हों, काम कर रहे हों या आराम से सिर्फ बैठे हों, दिल अपना काम कभी बंद नहीं करता। और शायद इसी वजह से हम कई बार उसके बारे में तब सोचते हैं जब वो कोई परेशानी महसूस करने लगे।
0: और इसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। इस साल यानी 2026 में वर्ल्ड हार्ट डे की कैंपेन फिर से एक बहुत मीनिंगफुल मैसेज लेकर आई है, डोंट मिस अ बीट, यानी दिल की सेहत से जुड़े संकेतों को नज़रअंदाज मत कीजिए।
1: और मुझे इस थीम की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कौमुदी कि हार्ट डिसीज़ हमेशा ऐसी चीज़ नहीं होती जिसे हम बाहर से देखकर पहचान लें। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन भी इस साल इस बात पर जोर दे रहा है कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के कई वार्निंग साइंस अननोटिस या इग्नोर्ड रह जाते हैं।
0: बिल्कुल, हम अक्सर सोचते हैं ना कि मैं तो बिल्कुल ठीक

0: मुझे क्या होगा। लेकिन हेल्थ के मामले में सिर्फ बाहर से ठीक दिखाई देना ही काफ़ी नहीं है। अपने शरीर की बात सुनना, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाना, इन सब चीज़ों को सीरियसली लेना, अपनी लाइफस्टाइल को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है।
1: और हार्ट की बात हो तो लाइफस्टाइल भी बहुत मायने रखती है। हमारी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, हम क्या खा रहे हैं, स्मोकिंग तो नहीं कर रहे, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी चीज़ों पर ध्यान देते हैं या नहीं, इन सब का हार्ट हेल्थ से बहुत गहरा संबंध है। WHF के अनुसार कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के बहुत से रिस्क फैक्टर्स प्रिवेंट या मैनेज किए जा सकते हैं।
0: यानी हृदय को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा कोई बहुत बड़ा बदलाव करना ज़रूरी नहीं है। रोज़ थोड़ा चलना, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना, खाने पीने की आदतों पर ध्यान देना और अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करना, ये छोटी छोटी चीज़ें भी फ़र्क डाल सकती हैं।
1: हाँ, और वर्ल्ड हार्ट डे की 2026 कैंपेन में भी कीप द बीट के ज़रिए छोटे छोटे एक्टिव चॉइसेस को एनकरेज किया जा रहा है, जैसे थोड़ी ज़्यादा वॉकिंग करना, स्टेयर्स लेना या दिन में मोमेंट के छोटे मौके बनाते रहना।
0: अरे वाह। तो दोस्तों, अगर आज हम आपसे पूछें कि आपने आखिरी बार अपने हृदय के स्वास्थ्य के बारे में कब सोचा था, तो आपका जवाब क्या होगा?
1: मेरा जवाब तो ये होगा कि इस सेगमेंट के बाद ही मैं अपने डॉक्टर के पास जाऊंगी और बोलूंगी कि भाई मेरा दिल तो ठीक है कि नहीं। ये तो बहुत ज़रूरी बात हो जाती है, क्योंकि हम अपने फ़ोन की बैटरी कितनी है ये दिन में कई बार चेक कर लेते हैं, लेकिन अपने शरीर की बैटरी कैसी चल रही है ये चेक करना भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल रिद्धि। और अपने हृदय के मामले में बाद में देखेंगे वाली आदत हमेशा अच्छी नहीं होती, खासकर अगर शरीर कोई अनयूजुअल संकेत दे रहा हो तो उसे इग्नोर करना बहुत गलत है, उसके बजाय मेडिकल एडवाइस लेने में समझदारी है।
1: लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है, अगर हार्ट डिसीज से जुड़े कई रिस्क फैक्टर्स को हम जानते हैं और उनमें से कई को प्रिवेंट या मैनेज भी किया जा सकता है, तो फिर आजकल यंग एडल्ट्स में हार्ट हेल्थ को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है?
0: रिद्धि, इसके पीछे हमारी लाइफस्टाइल, जिसमें घंटों बैठना, लगातार स्क्रीन पर रहना, स्ट्रेस, स्लीप स्केड्यूल और खाने पीने की बदलती आदतें शामिल हैं जो हमारी हेल्थ को प्रभावित करती हैं।
1: इसी सवाल पर हम अगले सेगमेंट में थोड़ी और बात करेंगे। क्या यंग एज में भी हार्ट डिसीज का रिस्क हो सकता है? कौन सी लाइफस्टाइल हैबिट्स चिंता की वजह बन सकती है? और क्या हमें अपने रोज़मर्रा की रूटीन में कुछ छोटे बदलाव करके अपने हार्ट को बेहतर ख्याल रख सकते हैं कि नहीं?
0: तो दोस्तों, इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आगे हम बात करेंगे यंग एडल्ट्स में हार्ट डिजीजेस बढ़ने के पीछे आखिर कौन कौन से कारण सामने आ रहे हैं।
1: और इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन से पहले सुनते हैं खूबसूरत गीत।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ, 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले?
1: ना, पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और?
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
1: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: श्रोताओं, दिल से जुड़ा हुआ ये बेहद खूबसूरत गीत आपने सुना है, जिसके बोल लिखे हैं गुलजार ने, जिसे गाया था अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा ने, और संगीत दिया था प्रीतम ने।
6: रिद्धि, अभी हमने बात की कि हमारा दिल कितना ज़रूरी है और क्यों हमें इससे जुड़े संकेतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन अब एक और सवाल है जो थोड़ा ज़्यादा ध्यान मांगता है। क्या दिल की बीमारियाँ सिर्फ उम्र बढ़ने के साथ होती हैं, या फिर हमारी आज की लाइफस्टाइल भी हमारे दिल पर असर डाल रही है?
5: बिल्कुल सही सवाल पूछा, क्योंकि आज की ज़िंदगी में हमारी दिनचर्या ही कुछ ऐसी हो गई है, सुबह उठते ही फ़ोन, दिन भर पढ़ाई या काम के लिए स्क्रीन, घंटों बैठे रहना, और फिर थकान के नाम पर बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं, ऊपर से खाने का समय तय है नहीं, और नींद का तो पूछो ही मत।
6: और यही छोटी छोटी आदतें अगर लंबे समय तक बनी रहें तो शरीर पर असर डाल सकती हैं। WHO के अनुसार फिजिकल इनएक्टिविटी, अनहेल्दी डाइट, टोबैको और हार्मफुल अल्कोहल यूज जैसे फैक्टर्स हमारे हृदय संबंधित बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर और हाई कोलेस्ट्रॉल भी बहुत महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर्स हैं।
5: यानी सिर्फ यह सोच लेना कि अभी तो मैं यंग हूँ, मेरे हार्ट को क्या ही होगा, ये सही नहीं है। दिल की सेहत का ध्यान रखने के लिए किसी खास उम्र का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जितनी जल्दी अच्छी आदतें शुरू हो उतना बेहतर।
6: और इसीलिए अब जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए दोस्तों, पिछली बार आपने बिना किसी मजबूरी के कितनी देर लगातार बैठने के बजाय उठकर थोड़ा वॉक किया था, और दिन में आपकी थाली में हेल्दी फूड कितना होता है और सिर्फ स्वाद के लिए खाया जाने वाला खाना कितना?
5: और एक और सवाल ये है कि क्या आपकी नींद पूरी होती है कि नहीं, क्योंकि नींद तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी फंक्शनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नींद, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में स्लीप, स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी को अक्सर सबसे आखिर में जगह मिलती है। हम कहते हैं पहले काम पूरा कर लेते हैं फिर आराम करेंगे, लेकिन शरीर भी तो लगातार काम कर रहा है, उसे भी तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए।
6: बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी ज़िंदगी से हर टेस्टी चीज़ या हर आराम को निकाल देना है। बात दोस्तों बैलेंस की है। रोज़ थोड़ा चलना, फिजिकल एक्टिविटी को रूटीन का हिस्सा बनाना, बैलेंस डाइट लेना, टोबैको से दूर रहना, और ज़रूरत के अनुसार ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों की जांच करवाते रहना।
5: और अगर परिवार में हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर जैसी समस्या रही है तो अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ी एक्स्ट्रा अवेयरनेस रखना और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार रिस्क फैक्टर्स बिना किसी साफ वार्निंग के भी मौजूद हो सकते हैं।
6: तो क्यों ना आज एक छोटा सा चैलेंज लेते हैं रिद्धि, आज से अपने दिन में ऐसा कौन सा एक बदलाव करेंगे जो हमारे हृदय के लिए अच्छा है? शायद 10-15 मिनट की वॉक हो सकती है, थोड़ा कम जंक फूड हो सकता है, सीढ़ियों का इस्तेमाल, या फिर रात में समय पर फोन कोने में रखकर सो जाना।
5: कौमुदी, मैं तो चलना शुरू कर दूंगी, रनिंग करना, ये सारी फिजिकल एक्टिविटी मैं बिल्कुल स्टार्ट कर दूंगी अपने हार्ट के लिए। श्रोताओं, बातें बहुत सारी हो गई, थोड़ा सा म्यूजिक हो जाए, क्यों कौमुदी?
6: बिल्कुल, तो अब दिल की बातें तो हो ही चुकी हैं, तो दिल को थोड़ा संगीत भी सुनाते हैं, और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
7: जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
8: हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम काले हैं तो

हमें माना गरीब है तंदाना, सूरत से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे हरीब है तंदाना। हमें माना गरीब है तंदाना, सूरत से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे हरीब

0: हटूंगा वही हिला को हटा लूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह मेरी मदद कर अल्लाह, मैं कुर्सी को छोड़ूंगा नहीं मैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
1: अभी आपने सुना फिल्म गुमनाम से मोहम्मद रफ़ी और महमूद की आवाज़ में ये गीत शंकर जयकिशन के संगीत के साथ, और बोल थे शैलेंद्र के।
2: श्रोताओं, अब वक्त आ गया है उस हस्ती को याद करने का जो भारतीय सिनेमा में जिनका नाम आते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, महमूद अली। लेकिन महमूद को सिर्फ कॉमेडियन कह देना शायद उनके साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी होगी।
1: बिल्कुल, महमूद की खासियत सिर्फ उनके लोगों को हंसाना नहीं था बल्कि उनका पूरा अंदाज़ ही अलग था। उनका चेहरा, उनके एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी, उनका अंदाज़ और सबसे बढ़कर उनकी कॉमिक टाइमिंग, इन सब का ऐसा कॉम्बिनेशन था कि कई बार उनके आते ही सीन का पूरा मूड चेंज हो जाता था।
2: और शायद यही वजह है कि वह सिर्फ हीरो के दोस्त या कहानी के छोटे कॉमिक कैरेक्टर बनकर नहीं रह गए। कई फिल्मों में उनका किरदार इतना यादगार होता था कि फिल्म ख़त्म होने के बाद भी दर्शकों को वही कैरेक्टर और उसकी बातें याद रह जाती थी। यानी कॉमेडी उनके लिए साइड रोल नहीं, एक पूरी कला थी।
1: आज 29 सितंबर को सिर्फ वर्ल्ड हार्ट डे ही नहीं बल्कि उनका जन्मदिन भी है, और उनकी वर्सिटैलिटी आज हम याद कर रहे हैं। कभी मास्टर पिल्लई जैसा कैरेक्टर, कभी बॉम्बे टू गोवा का कंडक्टर, कभी अलग अलग आवाज़ और बोलियों का इस्तेमाल। महमूद हर किरदार में सिर्फ डायलॉग नहीं बोलते थे, कैरेक्टर को जीते हुए दिखाई देते थे।
2: और मुझे लगता है कि उनकी सबसे बड़ी यूनिकनेस यही थी कि वह कॉमेडी को सिर्फ मजाक तक सीमित नहीं रखते थे। उनके कैरेक्टर्स में अलग अलग इंसानी रंग दिखाई देते थे, जैसे शरारत, इनोसेंस, इमोशन, एनर्जी और कभी कभी सोशल मैसेज भी। इसलिए उनका ह्यूमर आज भी सिर्फ पुराना कॉमेडी लगकर नहीं रह जाता।
1: और सोचिए, वो सिर्फ एक्टर नहीं थे, उन्होंने सिंगिंग, डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी काम किया। पड़ोसन और बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्मों से जोड़ना दिखाता है उनका सिनेमा के प्रति रिश्ता सिर्फ कैमरे के सामने खड़े होने तक सीमित नहीं था। वो फिल्म मेकिंग को कई स्तरों पर समझते और उसमें योगदान देते थे।
2: यही तो थी उनकी लेगेसी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में कॉमेडियन की जगह को छोटा नहीं रहने दिया। उनके दौर में कॉमेडी करने वाला कलाकार भी फिल्म की पहचान बन सकता है, ऑडियंस को थिएटर तक खींच सकता है और अपनी अलग फैन फॉलोइंग बना सकता है। महमूद ने यह बात अपने काम से साबित की, और मुझे उनका कैरेक्टर पड़ोसन मूवी में तो बहुत पसंद है।
1: और शायद इसी कारण आज भी महमूद की कॉमेडी को याद करते हुए हम सिर्फ जोक्स याद नहीं करते बल्कि उनकी पूरी परफॉर्मेंस याद करते हैं। उनकी आवाज़, उनका अंदाज, उनके एक्सप्रेशंस, वो एक ऐसा सिग्नेचर था जिसे कॉपी करना आसान नहीं है।
2: तो अगर आज की जनरेशन उनसे कुछ सीख सकती है तो शायद यही कि अपने टैलेंट को एक ही कैटेगरी में मत बांधिए। महमूद ने एक्टिंग की, कॉमेडी की, सिंगिंग की, डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया। उनकी क्रिएटिविटी एक ही रास्ते पर नहीं चली।
1: और अब दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं हमारा आज का अगला गीत।

0: श्रोताओं, आपने सुना ये गीत छल्ला, जिसके गायक थे रोमी विवेक हरिहरन, संगीतकार थे शाश्वत सचदेव और गीतकार थे कुमार।
1: दोस्तों, वैसे इस गीत से तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारी चर्चा आज किस ओर बढ़ रही है। जी हाँ, बात हो रही है हमारे वीर जवानों की, उनके साहस और उस घटना की जिसने पूरे देश को एक साथ गर्व से भर दिया। हम बात कर रहे हैं 2016 के उरी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसकी आधिकारिक घोषणा 29 सितंबर 2016 को की गई थी।
0: 29 सितंबर का दिन भारतीय इतिहास के एक ऐसे सैन्य अभियान की याद दिलाता है जिसकी चर्चा आज भी होती है, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स। लेकिन इस घटना को सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन के रूप में देखना शायद काफ़ी नहीं होगा। इसके पीछे सोल्जर्स की तैयारी, इंटेलिजेंस और बेहद कठिन परिस्थितियों में लिया गया एक बड़ा ऑपरेशनल डिसीजन भी था।
1: बिल्कुल, 18 सितंबर 2016 को उरी में हुए आतंकी हमले के बाद 28 और 29 सितंबर की रात भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार आतंकवादी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाकर कार्रवाई की।
0: और यहाँ सर्जिकल शब्द भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ऐसी कार्रवाई में सिर्फ ताकत ही महत्वपूर्ण नहीं होती श्रोताओं, बल्कि टारगेट की पहचान, प्लानिंग, टाइमिंग और मिशन को बेहद सावधानी से पूरा करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। यानी पीछे बहुत बड़ी तैयारी और प्रिसिशन काम करती है।
1: और दोस्तों, इस घटना के बाद याद करते हैं एक और बात सामने जो हमारी आई है, सीमा पर तैनात सैनिकों का काम कितना चैलेंजिंग होता है। आम जिंदगी में हम शायद किसी कठिन रात को बस एक मुश्किल रात कह दें, लेकिन सोल्जर्स के लिए वही रात अलर्टनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने साथियों की सुरक्षा से जुड़ी है।
0: सर्जिकल स्ट्राइक्स की चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने नेशनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म को लेकर देश में एक बड़ी सार्वजनिक चर्चा को जन्म दिया। सरकार ने उस समय इस आतंकवादी इन्फिल्ट्रेशन और हमलों को रोकने के उद्देश्य से की गई कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया था।
1: और किसी भी सैन्य कार्रवाई को याद करते समय सिर्फ उसके परिणाम नहीं, बल्कि उसमें शामिल जवानों की मेहनत और जोखिम को भी समझना चाहिए। उनके लिए ये हेडलाइंस की खबर नहीं होती, ये एक वास्तविक ऑपरेशन होता है जहाँ ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और टीमवर्क की असली परीक्षा भी होती है।
0: शायद इसी वजह से 29 सितंबर हमारे लिए सिर्फ एक तारीख नहीं रह जाती है, यह हम उन लोगों को याद दिलाती है जो देश की सुरक्षा के लिए कठिन परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी निभाते हैं, अपना काम करते रहते हैं। ऐसी घटनाएं हमें प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी की अहमियत पर सोचने का मौका भी देती है।
1: तो आज जब हम 2016 की उस रात को याद करते हैं, हमारी बातचीत का केंद्र सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि उसके पीछे की प्लानिंग, सैनिकों का साहस और देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी भी है। यही बातें इस दिन को आज भी विशेष बनाती हैं।
0: और अब इस गंभीर विषय के बाद चलिए माहौल में संगीत की एक धुन शामिल करते हैं, एक ऐसा गीत जो वतन, सैनिक और उनसे जुड़े जज्बातों को अपने शब्दों में सामने लाता है।

0: अभी आपने सुना फिल्म बॉर्डर से सोनू निगम और रूप कुमार राठौर की आवाज़ में ये गीत, बोल थे जावेद अख्तर के। दोस्तों, शायद इस गीत के साथ हम उन जवानों और उनके परिवारों को भी याद कर पाए जिनके लिए देश सेवा सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है।
1: बिल्कुल कौमुदी। चलिए श्रोताओं, अब हमारे अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और हमारे अगले सेगमेंट में ये बात होने वाली है एक ऐसी चीज़ की जो शायद हम सबकी फेवरेट है, यानी फैशन। कपड़े सिर्फ पहनने की ज़रूरत नहीं रही, आजकल हमारा पहनावा हमारी पर्सनालिटी और स्टाइल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो कपड़े हम खरीदते हैं, कुछ समय पहनते और फिर अलमारी में रख देते हैं, उनका आगे क्या होता है?
0: और यहीं से आती है हमारी आज की दिलचस्प बात, रिसाइकल फैशन और थ्रिफ्टिंग। सुनने में थोड़ा मॉडर्न लगता है दोस्तों, लेकिन विचार बहुत आसान है। जो कपड़ा किसी के लिए पुराना हो गया, ज़रूरी नहीं कि उसकी कहानी वहीं ख़त्म हो जाए। हो सकता है वही कपड़ा किसी और की वार्डरोब का सबसे फेवरेट हिस्सा भी बन जाए।
1: ज़रा अपनी अलमारी के बारे में सोचिए, कितने कपड़े ऐसे होंगे जिन्हें आपने पिछले कई महीनों में पहना ही नहीं। कोई ऐसी शर्ट जो कभी बहुत पसंद आती हो, कोई जीन्स जो आप स्टाइल में नहीं लगती, या फिर कोई ड्रेस जिसे देखकर हम कहते हैं इसे फेंकेंगे नहीं, कभी तो पहनेंगे ही।
0: और शायद फिर वही कभी महीनों और सालों तक नहीं आता। अलमारी भरी हुई होती है, लेकिन सामने खड़े होकर हमें फिर वही लगता है, मेरे पास तो पहनने के लिए कुछ है ही नहीं। ऐसे में शायद समस्या कपड़ों की नहीं बल्कि हमारी खरीदारी और इस्तेमाल करने की आदतों में है।
1: और यहीं से थ्रिफ्टिंग, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वो आ जाता है। इसका सीधा सा मतलब है पहले इस्तेमाल किए जा चुके कपड़ों और चीज़ों को दोबारा खरीदना और इस्तेमाल करना। और इसमें एक मज़ेदार बात यह है कि आपको हर दुकान पर एक ऐसे कपड़े मिल जाएंगे, जो कोई पुरानी जैकेट हो सकती है, कोई विंटेज शर्ट, या फिर कोई बहुत ही अलग डिज़ाइन का कपड़ा हो सकता है, जिससे आप अपने कपड़ों के साथ स्टाइल कर सकते हैं, कुछ ज्वेलरीज मैच कर सकते हैं उनके साथ, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है।
0: हाँ, और यही वजह है कि थ्रिफ्टिंग को सिर्फ पैसे बचाने का तरीका समझना थोड़ा गलत होगा। ये अपना अलग स्टाइल बनाने का भी तरीका है। सोचिए, कोई पुरानी जैकेट आपको पसंद आ गई, आपने उसे अपने हिसाब से स्टाइल किया और अचानक वही चीज़ आपके पूरे लुक की सबसे खास बात बन गई।
1: और श्रोताओं, ज़रूरी नहीं कि हम ट्रेंड फॉलो करें, हम कभी कभी ट्रेंड बना भी सकते हैं। और अगर कोई कपड़ा पहले से बना हुआ हो और हम उसे दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हर बार नया कपड़ा खरीदने की ज़रूरत थोड़ी कम हो जाती है। यही सोच रिसाइकल फैशन और सस्टेनेबल फैशन के पीछे है, चीज़ों को जल्दी बेकार समझने के बजाय उनका इस्तेमाल ज़्यादा समय तक करना।
0: लेकिन यहाँ एक बात समझना भी ज़रूरी है, हर पुराने कपड़े को तुरंत रिसाइकल कर देना ही सबसे अच्छा रास्ता नहीं होता। अगर कोई कपड़ा अभी अच्छी हालत में है, तो उसे पहनते रहना, किसी और को दे देना या उसका इस्तेमाल किसी नए तरीके से करना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। रिसाइकलिंग बाद का रास्ता है।
1: यानी किसी कपड़े की कहानी कुछ ऐसी हो सकती है, पहले उसे खरीदने से पहले सोचिए, फिर उसे ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए, ज़रूरत हो तो रिपेयर कराइए, फिर किसी और के काम आ सकता है तो उसे दे दीजिए या बेच दीजिए। और जब उसका इस्तेमाल कपड़े की तरह करना मुश्किल हो जाए, तो आप रिसाइकलिंग के बारे में सोच सकते हैं।
0: और रिद्धि, रिसाइकल फैशन सिर्फ पुराने कपड़ों को किसी जगह जमा कर देना नहीं है, इससे बहुत क्रिएटिव चीज़ें हो रही हैं। पुरानी जीन्स से टोट बैग बन रहा है, किसी शर्ट को नया शेप दिया जा सकता है, पुराने कपड़े से कुशन कवर बनाया जा सकता है, यानी जो चीज़ हमें बेकार लग रही है उसमें कुछ नया रंग छिपा है।
1: बिल्कुल, और इसके लिए आपको स्टिचिंग आना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है यही हिस्सा हमारी जनरेशन के लिए सबसे मज़ेदार है, जो कि है, क्योंकि यहाँ सस्टेनेबिलिटी और क्रिएटिविटी दोनों साथ आ जाते हैं। आपको सिर्फ यह नहीं सोचना है कि इसे दोबारा कैसे इस्तेमाल करूँ, बल्कि यह सोचना है कि इसे कुछ नया और मेरे स्टाइल का मैं कैसे बना सकती हूँ, उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करा जा सकता है।
0: और अगर आप थ्रिफ्ट शॉपिंग कर रहे हैं, तो वहाँ भी थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। कपड़ा खरीदने से पहले उसकी हालत देखिए, कहीं दाग तो नहीं, सिलाई ठीक है या नहीं, ज़िप या बटन सही है या नहीं, और सबसे ज़रूरी, सिर्फ इसीलिए कोई चीज़ मत खरीदिए कि वो सस्ती है या वो दिखने में अच्छी है। अगर आप उसे पहनेंगे ही नहीं, तो फिर खरीदना ही बेकार हुआ।
1: लेकिन सस्टेनेबल फैशन का मतलब ये भी नहीं है कि अब हमें कोई नया कपड़ा खरीदना ही नहीं है। बात इस बात की है कि खरीदते समय थोड़ा सोचिए, कपड़ा अच्छा है या नहीं, कितना चलेगा, क्या इसे अलग अलग तरह से पहना जा सकता है, या क्या हम इसे सिर्फ इसलिए तो नहीं खरीद रहे क्योंकि अभी ये ट्रेंड में है।
0: क्योंकि ट्रेंड्स तो आते जाते रहते हैं। आज कोई कलर बहुत चल रहा है, कुछ महीने बाद कोई दूसरा। अगर हम एक नए ट्रेंड के साथ अपनी पूरी वार्डरोब बदलने लगे तो कपड़े भी बढ़ेंगे और खर्चा भी। कभी कभी कुछ अच्छे बेसिक कपड़े लेकर उन्हें अलग अलग तरीके से पहनना ज़्यादा समझदारी वाली बात हो सकती है दोस्तों।
1: बिल्कुल, शायद सस्टेनेबल शॉपिंग का सबसे आसान सवाल यही है कि क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है, चाहे कपड़ा नया हो या सेकेंड हैंड। अगर वह बस अलमारी में पड़े रहने वाला है तो हमें अपनी कंजम्पशन कम नहीं की। हाँ, कभी कभी सबसे अच्छी शॉपिंग वही होती है जो हम करने से पहले थोड़ा रुक कर सोच लेते हैं।
0: और अगर आपकी वार्डरोब में ऐसे कपड़े हैं जिन्हें आप अब नहीं पहनते तो उसे बस फेंकने के बजाय दूसरे रास्ते भी हैं। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को दे सकते हैं, कपड़े को एक्सचेंज कर सकते हैं, ज़रूरतमंद को दे सकते हैं या उन्हें किसी दूसरे काम में इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: चलिए श्रोताओं, बातें बहुत सारी हो गई है, अब सुनते हैं एक और गीत।

0: श्रोताओं, आपने सुना ये बेहद खूबसूरत गीत जिसे जिस जो फिल्म जुग जुग जियो से है, जिसके गायक थे कनिष्क सेठ, संगीतकार थे कनिष्क सेठ और गीतकार थे ट्रेडिशनल।
1: रिद्धि, अब जरा उन श्रोताओं की ओर रुख करते हैं जो अपने करियर को लेकर लगातार नए अवसरों की तलाश में हैं। समय है आज की रोजगार सूचना का।
0: बिल्कुल कौमुदी, शुरुआत करते हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC से। आयोग ने केंद्र के विभिन्न विभागों में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/26 जारी किया है।
1: इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और 16 अक्टूबर 2026 तक किए जा सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संबंधित विज्ञापन में पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी देख सकते हैं।
0: और अगर आपकी रुचि बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में है तो आपके लिए भी एक अवसर मौजूद है। बैंक ऑफ इंडिया में विभिन्न स्ट्रीम्स में ऑफिसर्स की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं।
1: इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू हुई है और 5 अक्टूबर 2026 तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने से पहले पद के अनुसार निर्धारित योग्यता और अन्य शर्तों को जरूर जांच लें।
0: इसी कड़ी में एक और भर्ती की जानकारी मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड यानी MECL में नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी की है। आवेदन 12 सितंबर से शुरू होकर 11 अक्टूबर 2026 तक चलेंगे।
1: तो अगर आप सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ परीक्षा की तैयारी ही नहीं बल्कि नई नोटिफिकेशंस पर नज़र रखना भी और आपकी तैयारी का हिस्सा है।
0: बिल्कुल, और एक ज़रूरी बात यह है कि आवेदन की अंतिम तारीख, एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हर भर्ती में अलग अलग हो सकती है, इसलिए किसी भी आवेदन से पहले संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना ना भूलें।
1: श्रोताओं, अवसर सामने हैं, अब ज़रूरत है सही जानकारी के साथ सही समय पर कदम उठाने की।
0: और इसी के साथ आज की रोजगार सूचना में इतना ही। नौकरी और करियर से जुड़ी ऐसी उपयोगी जानकारियों के साथ हम फिर लौटेंगे।
1: और अब इसी के साथ सुनते हैं हमारा आज का आखिरी गीत।

0: अभी आपने सुना फिल्म दिल्ली 6 से ये मधुर गीत मोहित चौहान की आवाज़ में, संगीत था AR रहमान का और बोल प्रसून जोशी के।
1: तो कौमुदी, आज का कार्यक्रम भी देखते देखते अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है।
0: हाँ रिद्धि, और आज तो सच में बहुत ही अलग अलग टॉपिक्स थे। दिल की सेहत से शुरुआत हुई, महमूद अली की यादों तक पहुँचे, तो 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को याद किया, और फिर फैशन की दुनिया में भी थोड़ी देर सैर कर ली।
1: बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात ये रही कि हर टॉपिक अपने आप में कुछ ना कुछ सोचने के लिए छोड़ गया। अब देखना यह है कि आज की कौन सी बात आप अपने साथ रखेंगे।
0: हो सकता है आज घर जाकर कोई अपनी वार्डरोब देखे और सोचे, अरे ये कपड़ा तो मैंने कितने समय से नहीं पहना। या फिर कोई अपने रूटीन में हृदय के लिए थोड़ा सा समय निकाले।
1: और अगर ऐसा हुआ तो हमारी आज की बातचीत सच में सफल हो गई, क्योंकि युवाणी में हम सिर्फ बातें करने नहीं आते, कोशिश यही रहती है कि आपसे जुड़ी कोई छोटी सी बात आपके दिन का हिस्सा बन जाए।
0: तो दोस्तों, आज हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ ही हमारी इस रेडियो महफिल को खास बनाता है।
1: अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं हूं रिद्धि, आज के लिए आपसे इजाज़त लेती हूँ।
0: और मैं कौमुदी भी लेती हूँ आपसे विदा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन का युवाणी कार्यक्रम,
0: जहाँ बातें होंगी आपकी, हमारी और उन तमाम विषयों की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़े हैं।
1: तो फिर अगली मुलाकात तक के लिए
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 6 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या।

नमस्कार। आकाशवाणी उज्जैन से भजन संध्या के इस पावन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का मैं दुर्गा शंकर सूर्यवंशी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी के चरणों में जब श्रद्धा का एक फूल भी अर्पित किया जाए तो जीवन में अलौकिक शांति और आनंद का प्रवाह होने लगता है। आज की इस संध्या को और भी पावन बनाने के लिए हम लेकर आए हैं जगदम्बा के कुछ अति मन भावन और भक्तिमय भजन। आइए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं माता रानी के प्रथम पावन भजन के साथ। सुनते हैं ये भेंट।

श्रोताओं, कहते हैं कि माँ की महिमा अपरंपार है। जो भी सच्चे मन से माँ के द्वार पर आता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। माँ की अनुकंपा जब बरसती है तो जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए इसी भक्ति भाव में थोड़ा और डूबते हैं और सुनते हैं माँ दुर्गा की महिमा में रचा बसा ये अगला भजन।

सुंदर और भावपूर्ण प्रस्तुति माँ के दरबार की यही तो खासियत है। यहाँ पहुंचकर मन शांत हो जाता है और हृदय में श्रद्धा की ज्योत जल उठती है। श्रोताओं, भक्ति की यह अविरल धारा इसी तरह बहती रहे। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर। सुनते हैं माता रानी का अगला सुमधुर सा भजन।

माँ जगदम्बे के चरणों में समर्पित इस मन भावन भजन को सुनकर आनंद आ गया। श्रोताओं, आकाशवाणी उज्जैन के माध्यम से प्रसारित इस भजन संध्या में आज हम माँ

शेरावाली के विभिन्न स्वरूपों का स्मरण कर रहे हैं। माँ की एक एक मनमोहक मूरत, उनके जयकारे हमारे भीतर एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करते हैं। इसी भक्ति रस को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं आज का अगला भजन।

अद्भुत और भक्तिमय आनंद। माँ के भजनों का यह प्रवाह मन को कितना सुकून देता है, इसका एहसास तो बस वही कर सकता है जो भक्ति में लीन हो जाए। समय का पहिया निरंतर चल रहा है और अब हमारी इस भजन संध्या की घड़ी भी अपने अंतिम चरण की ओर पहुंच रही है। लेकिन कार्यक्रम का समापन हो उसके पहले क्यों ना माँ के चरणों में एक अंतिम भक्ति पुष्प और अर्पित किया जाए। तो आइए सुनते हैं आज की भजन संध्या का अंतिम भजन।

अभी आप सुन रहे थे माँ की महिमा का आज के भजन संध्या का अंतिम भजन। इसके साथ ही आकाशवाणी उज्जैन के आज के इस विशेष कार्यक्रम भजन संध्या का समय अब यहीं पर पूर्ण होता है। आशा है माता रानी के इन भक्तिमय भजनों ने आपकी इस शाम को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर दी होगी। माँ जगदम्बा से यही प्रार्थना है कि वे आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आपके जीवन को सुख समृद्धि से आलोकित करें। अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। अपने मित्र दुर्गा शंकर सूर्यवंशी को दीजिए अनुमति। आप सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

0: FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 6:30 होने को हैं और ये समय है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का। तो आइए सुनते हैं किसान वाणी।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
3: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुन बेवारे सभी जनों को रीता बहन की दो हाथ जोड़ के राम राम। किसान भैया हरो और बिन्ना हरो। बीज केवल खेती की शुरुआत नहीं होते है बल्कि जे हमारी कृषि विरासत को भी महत्वपूर्ण हिस्सा होते है। अपने क्षेत्र के उपयोग बीज को संरक्षण सही तरीका से भंडारण करवो और जरूरतमंद किसानन के लाने उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करवो सामुदायिक प्रयास से ही संभव हो सकत है। और जे प्रयास करवे को कहो जात है सामुदायिक बीज बैंक। अगर हम ये संक्षेप में कहें सो सामुदायिक बीज बैंक एक ऐसा स्थानीय भंडारण केंद्र है जी में किसान पारंपरिक और स्वदेशी बीज को सुरक्षित रखते हैं और आपस में आदान प्रदान करते हैं। जलवायु के अनुकूल पुरानी और लगभग विलुप्त हो रही देसी किस्मन के बीजन को बचा के इनको संरक्षण करो जाते हैं। इन बैंकों से किसान खेती के लाने बीज लेते और फसल पकवे के बाद जैसे कि नियम है उनके अनुसार डेढ़ गुना बीज वापस बैंक को कर देते हैं। ऐसो करवे से

0: किसानन की महंगे हाइब्रिड और रासायनिक बीज पर निर्भरता कम होते और विपरीत मौसम प्राकृतिक आपदाओं के बीच भी खेती सुरक्षित और टिकाऊ बनत है। सो किसान भैया हरो, सहेज है हर एक अनोखो बीज, कैसे के जेई है प्रकृति की अनमोल चीज। किसान भैया हरो, खेती किसानी तो सब करत है, लेकिन एक ऐसी खेती जो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखवे के संगे किसान को अतिरिक्त आय भी देत है, बाहोत है औषधीय पौधन की खेती। भारत जैसे देश में पुराने समय से तुलसी, अश्वगंधा, शतावरी, कालमेघ, सफेद मूसली, एलोवेरा जैसे अनेक पौधन को उपयोग पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियन के लाने करो जाते है। औषधीय पौधों की खेती से किसानन को पारंपरिक फसलों की तुलना में दोगुना से अधिक कमाई और बंजर भूमि को सही उपयोग जैसे कई बड़े लाभ मिलत हैं। वर्तमान समय में औषधीय सुगंधित पौधन की बाजार में भारी मांग होने के कारण किसानन को ऊंचे दाम भी मिलत हैं और किसान को कम लागत में भारी मुनाफा होते है। जिन जमीन पे हमारी पारंपरिक फसलें जैसे गेहूं, धान नहीं उग सकते हैं, उते अश्वगंधा, सतावर, खस या ब्रह्मी जैसे औषधीय पौधे आसानी से उग जाते हैं। ये उगाए में कम पानी की जरूरत होते है। ई फसल को बेचे के लाने किसानन को बाजार भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और किसान को कहीं भटकने नहीं पड़ते है। और अगर हम सरकारी सहायता की बात करें सो किसान भैया हरो, राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत औषधीय खेती को बढ़ाए के लाने सरकार द्वारा किसानन को 30% से 75% तक अनुदान और वित्तीय सहायता दी जाते है। किसान भैया हरो, औषधीय खेती अपनाओ, सेहत और समृद्धि दोनों पाओ। किसान भैया हरो, पिछले दिना हमने कृषि विज्ञान केंद्र देवास में जाके कृषि विशेषज्ञ से बातचीत करी और जे कृषि विशेषज्ञ भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर से आए हते और इनसे बातचीत करी है पूनम सरावगी बहन ने।
1: कृषि के क्षेत्र में जल उत्पादकता बढ़ाना भी बहुत जरूरी है और इसके लिए सरकार की तरफ से भी कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार पंडा जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्ते
1: सर, इसके बारे में कुछ बताइए कि जल प्रबंधन हम कैसे बढ़ा सकते हैं कृषि उत्पादकता क्षेत्र में।
2: देखिए, हमारा जो देश है ये वार्षिक औसतम जो वृष्टिपात है ये लगभग 1200 मिलीमीटर है, लेकिन जब वृष्टिपात का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आप हमारा पश्चिम में जो राजस्थान है उसका बाड़मेर जैसलमेर जिले को देखेंगे तो लगभग 250 मिलीमीटर रेनफॉल से शुरू होता है। आप पूर्वोत्तर राज्य की तरफ जब जाएंगे मौसन नाम जो मेघालय में है उसमें 11000 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो बारिश है उसको हम ऐसे प्रबंधन करें कि जैसे कि हमारा जल उत्पादकता भी बढ़े और फसलों का उपज भी बढ़े और किसान का लाभ वृद्धि हो और हमारा जो भूजल स्थल जो ह्रास हो रहा है वो भी न हो, हमारा जो भूतल जल है वो बरकरार रहे। ये सब चुनौती भरा क्षेत्र है जिसको हम वैज्ञानिकों, कृषि अधिकारी और किसान सब मिल करके, सिविल सोसाइटी ये सब मिल करके इसका हल निकालना है। आपको जो हम बताना चाहते हैं कि आप हमारा जो कृषि क्षेत्र में जो जल उत्पादकता जब देखा जाए लगभग 40% है, लेकिन इसको बढ़ा के हमको 60% तक लेना है, यानी जल उपयोगिता का जो स्टैटिस्टिक्स है उसको, वाटर यूज एफिशिएंसी हमको बढ़ा करके हमको लगभग 60% तक लेना है। इसके लिए कई प्रयास जरूरत है। प्रथम तो किसान भाई आप सब जानना जरूरी है कि हमारा जितना जल है समग्र धरती में उससे 97% जो है ये नमकीन पानी और खारी पानी
1: जी।
2: सिर्फ 3% जो मीठे पानी है जिसको हम लोग फ्रेश वाटर बोलते हैं, जो कि हमारा खाने और घरेलू उपयोग और कृषि कार्य में लग, ये 3% से फिर क्या है कि 88% हमारा अनुपलब्धता है। कैसे न, उसी 3% जो फ्रेश वाटर और मीठी जल है उससे 77% लगभग वो हमारा जो बर्फ मेरु खंड जो उत्तर मेरु है, दक्षिण मेरु है, हिमालय बर्फ खंड ग्लेशियर है उसमें सीमित है, जो उस उपलब्धता हम लोगों के लिए नहीं है, वो आम जनता के लिए अनुपलब्ध है। ऐसे और 11% जल जो कि भूपृष्ठ के नीचे 800 मीटर के नीचे है जो वो भी हमारा पास उपलब्ध नहीं है। सिर्फ हमारा पास 12% मीठा जल उपलब्धता है हमारा पास, वो क्या है कि भूपृष्ठ से नीचे 800 मीटर तक लगभग 11% जल है
1: जी।
2: और 1% सरफेस जल है जो नदी में है, तालाब में है, झील में है।

0: है, यानी 97% चला गया नमकीन में, कोई काम का नहीं है। वो जो 3% मीठे जल अच्छा जल बचा, उसी से भी 88% चला गया, वो भी काम का नहीं है, 12% रहा। किसान भाई, आप सब जानना जरूरी है कि ये जो मीठा जल कितने महत्वपूर्ण है। ये मीठा जल कुछ नहीं है, ये बारिश का पानी है
1: जी।
0: यही बारिश का पानी हमारा झील में, हमारा नदी में, तालाब में, खेत में रहता है। अब ये हमारा विभिन्न जरूरतों को पूरा करता है, फसल उत्पन्न होता है, और ये फिर भूजल जमीन के नीचे जाके भूजल बनता है, उसको है फिर हम लिफ्ट पॉइंट के माध्यम से उत्तोलन करके, एक्सट्रैक्शन करके, उसको रवि ऋतु में हम फसल में लेते हैं। और जो केनाल चलता है, ये भी यही वर्षा जल संरक्षण है। तो ये कुल मिला करके वर्षा जल जल का मुख्य स्रोत है
1: जी।
0: उसको हम लोगों को क्या करना है, ज्यादातर ज्यादा जैसे चाषी भाई, जो किसान भाई, ये लोग ज्यादा से ज्यादा जमीन को समतुल करें और जमीन का मेड बनाएं
1: जी।
0: और जहां नाली गुजर रहा है उसमें चेक डैम डालें, ज्यादा से ज्यादा जो तालाब पोखरी खोदें, वर्षा जल को उधर संरक्षित करें। उससे क्या होगा, भूजल भरण भी होगा और हमारा जल उपयोग के लिए जल भी मिलेगा, ये एक साइड है। और जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी भारतीय जल प्रबंधन संस्थान और विभिन्न गवेषणा प्रतिष्ठान जो सब वर्षा जल संरक्षण तकनीक विकसित किए हैं कृषि क्षेत्र में उपयोग के लिए, उसको अपनाएं। ये वर्षा जल संरक्षण करके हमको क्या करना है, फसल का पैदावार बढ़ाना है
1: जी।
0: ये एक साइड। दूसरा हमको क्या करना है, जो केनाल क्षेत्र है जहां हम लोग सब बृहत मध्यम क्षुद्र डैम बनाए हैं, जल भंडार बनाए हैं, उसी जल को हम क्या करें, ज्यादा मात्रा में फसल में न दे कि फसल के आवश्यकता के अनुसार, उसका विभिन्न स्तर में फसल का आवश्यकता अनुसार जल उपयोग करें। उपयोग करके हम क्या करें, जल उपयोगिता को बढ़ाएं, उसका सूचकांक को उसको बढ़ाएं, जैसे कि कम जल में हम ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले सकें और कम जल को हम ज्यादा एरिया में सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमको केनाल क्षेत्र में और जो हार्वेस्टेड संग्रहित जल में हमको सूक्ष्म सिंचाई यानी माइक्रो इरिगेशन, जो बूंदा जल सेचन है यानी फुहारा जल सेचन है, इसको काम में लेना है, जिससे कि हम कम जल को हम ज्यादा से ज्यादा फसल में प्रयोग कर सकते हैं और हमारा पैदावार बढ़ा सकते हैं। तीसरा चीज है, जब हम भूजल जल उपयोग करते हैं, वो ग्राउंड वाटर आप जानते हैं सबसे कीमती है, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर बूंद बूंद जाके भरता है, इसलिए हमको वो जल को संरक्षित करके रखना है। और उसको जब हम समरसिबल पंप से हम जब निकालते हैं बाहर से, उसको हम जितना आवश्यक है फसल का उतना तक हम काम में लें, क्योंकि ये भूतल जल जब खत्म हो जाएगा दुनिया में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रवि फसल नहीं हो पाएगा, बड़े बड़े पेड़ जो देख रहे हैं वो सब मर जाएंगे, फिर जो हमारा अच्छा एरिया है वो धीरे धीरे बंजर हो कि वो मरुस्थल बन जाता है। तो इसीलिए भूतल जल को बचा के रखना है और हमारा जो किसान भाई भूजल को निकल रहे हैं उसको भी फसल के जल आवश्यकता अनुसार कम कम सिंचाई कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फुहारा सिंचाई, बूंदा सिंचन, ये सब प्रणाली को अपनाइए, जैसे कि हमको कम भूजल जल निकालना पड़े भूगर्भ से
1: जी।
0: और तीसरा चीज है, जो शहर के आसपास क्षेत्र है, किसी गांव में जहां सब नाली निकल रहा है, बर्ज्य जल काफी मात्रा में हमारा देश में उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि आजकल गांव छोड़ के लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। हम लोग को ये देखना है, जो पर्याप्त मात्रा में बर्ज्य जल जो उत्पादन हो रहा है उसको कैसे विशोधन करके, उसको शोधन करके हम खेती में लगाएं, क्योंकि वो खेती में लगाने में एक फायदा क्या होगा, हमको जल पर्याप्त मिल जाएगा। दूसरा, ये जो हमारा नदी को, हमारा परिसंस्था परिवेश को जो प्रदूषित कर रहा है, वो पर्यावरण को जो प्रदूषित कर रहा है वो प्रदूषित नहीं करेगा, वो उपयोग में आ जाएगा, हमारा जो जल समस्या भी कुछ की तरफ सॉल्व होगा। और ये जो बर्ज्य जल जो वेस्ट वाटर है उसका भी सही इस्तेमाल हो पाएगा, लेकिन ध्यान यही रखना है, बर्ज्य जल को कभी सलाद वाली फसल में उपयोग नहीं करना है, उसको साग में जितना ग्रीन्स है उसमें उपयोग नहीं करना है, जैसे नॉन एडिबल पर्पस है, जैसे फूल है और पेड़ पौधा है, कोई ऐसा चीज है जिसमें पेपर बन रहा है, दूसरा कुछ हैंडक्राफ्ट बन रहा है उस टाइप का पौधा लगाना है, फाइबर क्रॉप्स है जैसे कपास है, दूसरा टाइप का है कि जैसे वो जो बड़े जड़ में आप जानते हैं काफी मात्रा में हैवी मेटल्स रहते हैं।

0: दूसरा उसमें बहुत सारा माइक्रोब्स भी रहते हैं। ये सब चीज जब फूड चेन को आता है वो ह्यूमन शरीर के अंदर में विभिन्न रोग पैदा करने का पोटेंशियल क्षमता रखता है, तो इसको भी हम कम कर सकते हैं। इन शॉर्ट आप जब कहेंगे कि ये जो जल है ये बहुत कीमती है, ये जल को हमको ऐसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि 1950 में जब हमको शुरुआत दौर पर आजादी मिली थी उसके आसपास में हमारा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता लगभग 5,577 मीटर क्यू था, जो घन मीटर था, लेकिन अभी घट करके 1,450 मीटर क्यू हो गया है। यानी हम जल संपद में स्वच्छल देश से अभी हम जल स्ट्रेस्ड नेशन हो गए हैं, यानी जल संकट के आसपास आ गए हैं। और जब ये स्तर 1,000 से नीचे आ जाएगा, यानी प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1,000 मीटर क्यू से कम हो जाएगा, हम जल संकट अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों आइए हम सब मिलकर ये देश को जल संकट अवस्था से बचा के रखें। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो कह रहे हैं आप, संग्रह की बात, ये दो तरीका से हो सकता है। एक, हमारा खेती बाड़ी में, हमारा जो कृषि में कैसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, उसका उपयोग करें। दूसरा, जो डोमेस्टिक एरिया है, जो शहर है और जो घर है, उससे जो छत से हमको जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है उसको कैसे हम संग्रहित करें। देखिए, छत से तो सिंपल तरीका है, हमारा पास अभी बहुत सारा पीवीसी पाइप है, हम ले आए छत से लगा के, उसको नीचे हमको कोई वाटर टैंक बनाना है, आरसीसी का बना सकते हैं, ईट का बना सकते हैं, और पीवीसी टैंक भी लगा सकते हैं। उसी पानी को हम पंप के द्वारा, हम क्या करते हैं कि जैसे गाड़ी सफाई है, हमारा ड्रेस का क्लीन साफ करना, और हमारा जितना किचन गार्डन का पौधा है उसमें सब सिंचाई करना, वो सब काम के लिए बहुत अच्छा है। बर्तन धोना, ये सब काम में
1: दिया जा सकता है।
0: उपयोग हो सकता है। इवन उसको हम फिल्टर करके, क्योंकि साफ छाप जब हम साफ रखेंगे, वो अच्छी पानी है, वो फिल्टर से उसको हम उपयोग में भी ले सकते हैं, घरों उपयोग में, जैसे हम उसमें नहा सकते हैं, ये सब काम करा सकते हैं, उसमें कोई वो खराब नहीं है। दूसरा चीज है कि ये जो पाइप है उससे जल को हम डायरेक्ट भूजल भरण के लिए भी भेज सकते हैं। हम क्या करें, छोटा सा टैंक बनाएं, नीचे हम ऐसे मिट्टी रखें पोरोस टाइप का, जब ऊपर से पानी आएगा ये मिट्टी के नीचे जाएगा और हमारा भूजल तक ये धीरे धीरे धीरे धीरे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता रहेगा, वो भी एक उपयोग है। तीसरा उपयोग है कि ये पानी को हम संग्रहित करी हम किचन गार्डन में छोड़ दें, किचन गार्डन में डिफरेंट फसल लगाएं कि जो कि वो इसी पानी से सिंचाई हो जाएगा बरसात के मौसम में, दूसरा सीजन में तो मिलता नहीं है, हम दूसरे सोर्स से उसको सिंचाई करें हमारा किचन गार्डन फसल को। इस तरीका से हम रेन वाटर का संग्रहित कर सकते हैं, उसका सदुपयोग भी कर सकते के लिए, और जीवन यापन करना बहुत मुश्किल और कष्टकर हो जाएगा।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी।
0: थैंक यू।
1: इसी क्रम में फब्बारा विधि से फसल उत्पादकता में वृद्धि, इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी दी भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर के ही प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर ध्रुव चरण साहू ने। वर्तमान समय में सिंचाई की बहुत सारी पद्धतियां हमारे किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी भी फब्बारा पद्धति थोड़ी सी उनके लिए नई है। जल के संरक्षण और संवर्धन के लिए फब्बारा पद्धति आज के समय में बड़ी ही महत्वपूर्ण पद्धति है, और इसी के संबंध में और हम जानकारी प्राप्त करते हैं, बातचीत करते हैं डॉक्टर ध्रुव चरण साहू के साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फब्बारा पद्धति क्या होती है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है?
2: एक्चुअली आज के दिन में अगर हमने कोई किसान भाई से अगर पूछे आपका खेती करने में क्या समस्या है, तो उनका पहला उत्तर आएगा पानी का अभाव। तो पानी का अभाव जब बोलते हैं तो ये चिंता का विषय है, क्या सच में पानी का अभाव है कि पानी का प्रबंधन का अभाव है
1: जी।
2: क्योंकि देखा जाए तो पूरा भारतवर्ष में जितना बारिश होता है, पर्टिकुलरली अगर हमने एमपी का बात करें, मध्य प्रदेश का बात करेंगे और देवास का बात करेंगे, तो देवास में लगभग 1,000 से 1,100 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है, और ये बारिश होता है मानसून की पीरियड में, जून जुलाई से लेकर सितंबर तक हम मान सकते हैं, उसका लगभग 90% बारिश हो जाता है, और बाकी जो रवि फसल के लिए बचता है केवल 10% पानी, तो 100-150 मिलीमीटर का बारिश होता है। तो इसीलिए हमेशा किसान भाइयों लोग बोलते हैं कि पानी का अभाव है, इसीलिए हमने खेती नहीं कर पाते। लेकिन ये प्रश्न आता है कि जब इतना बारिश हो जाता है, हमको जो रबी के टाइम में जो फसल उगाना है तो उसके लिए कितना पानी का जरूरत है। उदाहरण स्वरूप हम अगर देखेंगे अगर गेहूं लगाना है, गेहूं बोना है, तो उसमें 500 से लेकर 600 मिलीमीटर तक बारिश में पानी में पूरा खेती हो जाता है। ऐसा अगर चीकू

0: का बात करें तो उसमें भी 350-400 मिलीमीटर पानी का पानी में खेती हो जाता है, लेकिन हमारे पास जब 1100 मिलीमीटर का बारिश होता है तब इतना पानी का जो 500 मिलीमीटर हुआ कि 300 से 400 मिलीमीटर का हुआ तो गेहूं, चिकपी और सोयाबीन टाइप का जो फसल है उसके लिए पानी का अभाव क्यों आता है? तो अभाव इसीलिए आता है कि वो पानी का जो प्रबंधन, जो मैनेजमेंट है उसमें हमारा कुछ कमियां हैं। कमियां क्या है? जो बारिश के दिन में जो थोड़ा सा टाइम के लिए मानसून के पीरियड में इतना सारा बारिश हो जाता है वो पानी को हम उचित ढंग से संरक्षण नहीं कर पाते हैं, तो ज़्यादातर का पानी तो वेस्ट हो जाता है, नदी नाला में बह जाता है। तो वो पानी को हमने जितना अधिक संरक्षण करेंगे तो इतना ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमको रबी के टाइम में खेती करने में मिलेगा। और दूसरा बात है, अगर पानी का संरक्षण भी कर लेते हैं रबी सीजन में जब हमने खेती करने जाते हैं, हमने बहुत सारा फसलों में क्या सरफेस मेथड में सिंचाई करते हैं, तो ऊपर से पानी चैनल बना के चैनल में पानी दे के खेती करते हैं, बट उसमें जो एफिशिएंसी जो बात करते हैं उसका जो क्षमता है तो पूरा मात्रा में नहीं हो पाता है। सरफेस मेथड में क्या होता है, ओनली 30-40% पानी हमारा फसल के लिए काम में आता है और बाकी लगभग 60% तक 70-30% पानी वेस्ट चला जाता है। तो इसीलिए तो जब पानी रबी में तो कम तो मिलता है और जितना मिलता है अगर उसमें से हम 40% केवल फसल के लिए व्यवहार कर पाते हैं और बाकी वेस्ट चला जाता है, ये तो चिंता का विषय है। तो इसीलिए अगर हमको ज्यादा से ज्यादा जमीन पे खेती करना है तब हमको पूरा का पूरा पानी जितना मिलता है उसका कैसे फसल के लिए व्यवहार कर पाए, तो इसीलिए हमने जो सरफेस मेथड में जो सिंचाई करते हैं उसको छोड़ के अभी जो स्प्रिंकलर जो फुहारा मेथड बोल रहे हैं वो स्प्रिंकलर मेथड उसी में हमको इरिगेशन करना चाहिए, जिसमें हमने जो सरफेस मेथड का कंपैरिजन तुलना में उसका डबल से ज्यादा एरिया में भी खेती कर सकते हैं। यहाँ अगर हमने 30-40% एफिशिएंसी मानते हैं तो हमने स्प्रिंकलर मेथड में अगर खेती करेंगे तो वहाँ 85-90% तक कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर सरफेस इरिगेशन को हमने छोड़ के स्प्रिंकलर इरिगेशन करेंगे तो जितना जमीन हमने सरफेस इरिगेशन में कर पाते हैं उसका 2 गुना से ज्यादा एरिया हमने खेती कर सकते हैं।
1: ये कितनी कारगर साबित होती है, किसानों को ये समझ में आता है कि ये कैसे करना है?
0: हाँ, किसान को अभी तो समझ में आ गया लेकिन उसका जो एडॉप्शन जो बोलते हैं हमने तो उसको थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ चीज है जो किसान तक नहीं पहुंच पाता है और कुछ चीज है उसका जो बोलते हैं कि हमने जो इनिशियल जो खर्चा लगता है उसमें थोड़ा बहुत तो किसान सारे खर्चा उठाने के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए ये जो टेक्निक है स्प्रिंकलर इरिगेशन वो पहुंचने में टाइम लग जाता है। नहीं तो इस इरिगेशन मेथड जो स्प्रिंकलर का है उसमें तो कोई कमी नहीं है, बट कमी है कि जो किसान भाइयों का जो थोड़ा पैसा इनिशियली जो लगता है तो इतना खर्च करने का जब सक्षम नहीं हो पाते हैं तो फिर उसमें टाइम लग जाता है। और इसीलिए भी अभी सरकार की तरफ से बहुत सारे योजना है जिसमें किसान भाइयों को बहुत सब्सिडी मिलता है, अगर वो सब्सिडी को पूरा मात्रा से व्यवहार करें तो करके फिर वो स्प्रिंकलर मेथड को अपना सकते हैं।
1: किसानों को इसकी जानकारी आप लोग कैसे दें?
0: जानकारी हम लोग जैसे अभी जैसे ट्रेनिंग चल रहा है, हमने विभिन्न जगह पे जाके किसान भाइयों को ट्रेनिंग देते हैं उसका कैसे उसका यूज करें, उसका मेंटेनेंस रख रखाव कैसे करें और ये सब चीज कहाँ मिलता है, कितना खर्चे मिलता है, सरकार का क्या क्या सुविधा है, सब्सिडी किसमें मिलता है, कितना तक मिलता है, ये सब जानकारी हम किसानों को सीधा देते हैं। और जहाँ तक संभव फिर हमने जो विभागीय अधिकारी लोग है उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, उनके माध्यम से वो बात जाके भी किसान तक पहुंचेगा, वो भी उसका लाभ ले पाए।
1: इसके अलावा एक और चीज हमारे किसान भाइयों को जानने की जो जरूरी है वो ये है कि ये मेथड इसकी जानकारी अब किन माध्यमों से हमारे किसानों तक पहुंचाते हैं?
0: हम लोग का जो है हम तो डायरेक्ट ट्रेनिंग के माध्यम से पहुँचाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से पहुँचाते हैं। आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया है जैसे यूट्यूब हुआ और कुछ भी है, उसमें क्या करते हैं हम लोग कोई वीडियो होता है उसको भी अपलोड करते हैं, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, एक्स हुआ, तो टेलीग्राम, इसमें हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हैं। और तो डायरेक्ट फिजिकल मोड में ट्रेनिंग देते हैं, फिजिकल मोड में बताते हैं, किसान भाइयों को बताते हैं, ऑफिसर्स लोगों को बताते हैं। तो आजकल तो बात पहुंचाना थोड़ा आसान हो गया इतना सोशल मीडिया में।
1: आप हमारे किसानों को और क्या संदेश देना चाहते हैं ड्रिप इरिगेशन के फायदों को लेकर?
0: फायदा तो अभी अगर आपने ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन का देखेंगे फायदा अनेक है, अगर गिनेंगे तो एक दो में कुछ कुछ फायदा तो अभी आप बता सकता हूँ, जिसमें जैसे मान लीजिए आपका पहले तो जैसे बताया था आपने अगर स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन यूज किए हैं तो उसमें आपने बाकी मेथड में जितना जमीन सिंचाई कर पाते हैं इसमें 2 गुना से ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं उतने पानी में, और उसके साथ साथ आपका जो पानी का जो एप्लीकेशन रेट और यूनिफॉर्मिटी जो है तो इतना बढ़िया होता है कि उसमें आपका सारे क्रॉप का जो जर्मिनेशन है वो बढ़िया होता है, उपज बार 20-30% से ज्यादा हो जाता है। तो जो हम वाटर प्रोडक्टिविटी बोलते हैं पानी का व्यवहार करके हम कितना फसल उगा सकते हैं तो उसमें भी ज्यादा होता है नॉर्मल मेथड, तो उसके साथ कोई जमीन मान लो असमतल है तो उसमें सरफेस मेथड में करने में हमको बहुत सारे परेशानियां होता है। तो एक जगह पे ज्यादा पानी हो जाता है तो एक जगह पे पानी पहुंचता नहीं है, तो वो सब जगह पे स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन बड़ा आसानी से कर सकते हैं। उसके साथ जैसे दिन में कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई लेबर नहीं मिला, कभी और कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो ये सब सिस्टम के लिए हमको इतना लेबर इतना कुछ नहीं चाहिए जो आसानी से हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फायदा है।
1: बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद मैडम।
2: किसान भैया रो, आपने सुनी जे स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम। आप सुनत हैं लोकगीत, ये गांव है बलराम रैकवार ने।

0: किसान भैया हरो, अब हम आप औरन को मंडी भाव से भी अवगत करा देते हैं। आज के मंडी भाव में गेहूं न्यूनतम 2081 प्रति क्विंटल से लेके अधिकतम 3006 रुपया प्रति क्विंटल के भाव के हिसाब से और मॉडल भाव 2680 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से है। ऐसे ही सोयाबीन को भाव 4800 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से न्यूनतम 5460 प्रति क्विंटल है। सरसों में न्यूनतम 7200 रुपया प्रति क्विंटल से लेके 7700 प्रति क्विंटल तक भाव है। ऐसे ही अरहर में 7095 से लेके अधिकतम 7600 रुपया प्रति क्विंटल भाव है। और अंत में मूंग की बात करते हैं, सो मूंग के भाव हैं 7700 रुपया प्रति क्विंटल से लेके 8500 रुपया प्रति क्विंटल है। सो किसान भैया हरो, जे हती आज के मंडी भाव। जे कार्यक्रम आप और उनको कैसो लगा थे, सो हमें के बारे में जरूर आप सूचित करियो। और अब स्वीकार करें रीता बहन की राम राम।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम किसान वाणी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियां और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी देश की नौसैनिक क्षमता को दर्शाती है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र और उससे आगे भारतीय नौसेना की उपस्थिति भारत के महासागर दृष्टिकोण को और मजबूती प्रदान कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए कार्य कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
1: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें दोनों व्यवस्था, एक MSP और एक विदाउट MSP, हम बाजार से कैसे जोड़ दें किसानों को। ये तय किया तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत पहली पहल शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श शहरी ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों की ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों के तौर पर उभरेंगे। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीट के लिए द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना आज जारी कर दी। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव की भी अधिसूचना जारी की। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की जांच कर संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह

0: के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से भेंट की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव के बीच मुलाकात हुई थी। भारत और केन्या के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तरकश आज पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पहुंचा। INS तरकश की यह यात्रा 2 अक्टूबर तक चलेगी। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री नायडू नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे। जापान एशियाई खेलों में भारत ने महिलाओं की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं पुरुषों की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा और इसी स्पर्धा के मिक्स वर्ग में भी भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रचा। भारत 6 स्वर्ण 21 रजत 25 कांस्य सहित 52 पदक के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए आपको संध्याकालीन सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। शाम 7:21 पर गांव की चौपाल से होगा कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज, जिसमें आप सुनेंगे ग्रामीण जीवन की उपयोगी बातें और मालवी लोकगीत। रात 8 बजे हम पेश करेंगे विशेष कार्यक्रम देश सेवा से जनसेवा। 8:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। उर्दू कार्यक्रम कहकशा का प्रसारण होगा रात 9:30 पर। रात 10 बजे आप सुनेंगे 20वां एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 पर विशेष कार्यक्रम डेली हाईलाइट कैप्सूल। और फिल्म संगीत हम लेकर आएंगे रात 10:20 पर। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। श्रोताओं, अब आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की भी जानकारी देते हैं। कल सुबह 5:52 पर हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी। सुबह 6:05 पर आप सुनिएगा विविध भारती मुंबई से वंदन वार। सुबह 6:35 पर अनुप्रसारित होगा श्री रामचरित मानस गान। संगीत सरिता का अनुप्रसारण होगा सुबह 6:45 पर। सुबह 7 बजे आकाशवाणी उज्जैन से होगा भक्तिमय कार्यक्रम महाकाल वंदन। 7:20 पर उज्जैन की रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आएंगे सुप्रभात उज्जैन में। और उज्जैनिक आरजे कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। सुबह 9:30 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स। 10 बजे हम पेश करेंगे उज्जैन दर्शन। 10:30 पर आप सुन सकेंगे महिलाओं का विशेष कार्यक्रम महिला सभा सुबह 11 बजे

मुंबई का अनुप्रसारण होगा। कार्यक्रम होगा रंग तरंग। कार्यक्रम यादों की महफिल आप सुनेंगे दोपहर 12:05 पर। दोपहर 1:00 सुरीला सफर कार्यक्रम होगा। दोपहर 2:00 आपके लिए लेकर आएंगे फिल्म संगीत। सदाबहार नगमे हम पेश करेंगे दोपहर 2:30 पर। सखी सहेली आप सुन सकेंगे दोपहर 3:30 पर। शाम 4:00 हम पेश करेंगे आज के मेहमान। शाम 5:00 आकाशवाणी उज्जैन से सुनिएगा युववाणी। भजन संध्या आप सुन सकेंगे शाम 6:00। फिल्म संगीत हम आपके लिए पेश करेंगे शाम 6:30 पर। शाम 7:21 पर गांव के चौपाल से होगा कार्यक्रम माटीरी बात, जिसमें आप सुनेंगे ग्रामीण जीवन की उपयोगी बातें और निमाड़ी लोकगीत। 8:00 आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। रात 8:35 पर हम पेश करेंगे फिल्म संगीत। 9:30 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये थी आज के शेष कार्यक्रमों और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 7:10 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
1: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
0: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
1: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
0: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
1: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
0: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
1: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद ने अग्निवीरों को वर्दीधारी सेवाओं में 20% क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दी। एशियन गेम्स में नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। चित्रकूट की गुप्त गोदावरी गुफा में पत्थर गिरने के बाद श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद। विशेषज्ञों की जांच के बाद खुलेगी गुफा। और प्रदेश में अगले 4 दिनों तक कमजोर रहेगा बारिश का दौर। 2 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में करीब 24,500 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती में अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया गया। इनमें पुलिस आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वन रक्षक और आबकारी आरक्षक के पद शामिल हैं।
1: अग्निवीर हमारे युवाओं के लिए मध्य प्रदेश के 5 विभागों में जहां पर वर्दीधारी सैनिकों की भर्ती करी जाती है, वन विभाग के आरक्षक, गृह विभाग के सामान्य आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल के प्रहरी तथा आबकारी के आरक्षक, इन 5 विभागों में 20% का आरक्षण अग्निवीरों को दिया जाएगा। यह एक मध्य प्रदेश के अंदर एक नई शुरुआत है।
0: वहीं अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए अगले 5 वर्षों में 5,329 करोड़ रुपए और कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की गणवेश राशि के लिए 348 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। प्रदेश में विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु वर्ग के छात्रावासों, आश्रमों और सामुदायिक कल्याण केंद्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को अब 1 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं और चावल मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। वर्तमान में विद्यार्थियों को 12 किलो गेहूं 5 रुपए और 3 किलो चावल 6.5 रुपए प्रति किलो की दर से मिलता है। नई व्यवस्था से करीब 52 लाख रुपए सालाना अतिरिक्त का भार राज्य सरकार वहन करेगी। भोपाल की मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की खिलाड़ी नीरू ढांडा ने जापान में चल रहे एशियन गेम्स में महिला ट्रैप शूटिंग स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने एशियन गेम्स की व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नीरू ढांडा को इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नीरू की यह उपलब्धि देश और प्रदेश की बेटियों तथा युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। तो वहीं दूसरी तरफ आज भारत ने महिलाओं की 4x400 मीटर रिले में भी स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय टीम ने 3:29.69 के समय के साथ रेस पूरी कर पहला स्थान हासिल किया, जबकि बहरीन की टीम 3:30.21 के समय के साथ दूसरे स्थान पर रही। ये एशियन गेम्स 2026 में भारत का एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक है। प्रदेश में आज पंचायत उपचुनाव के तहत 103 पदों के लिए मतदान हुआ, जिसमें 79 सरपंच, 5 जिला पंचायत सदस्य और 4 पंच पद शामिल हैं। आगरमालवा की सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष के लिए भी मतदान कराया गया। वहीं झाबुआ और रायसेन जिलों में भी मतदान हुआ। अधिकांश स्थानों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न रहा। पंचायत उपचुनाव के लिए मतगणना 3 अक्टूबर को होगी, जबकि जिला पंचायत और पंच पदों के परिणाम 5 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ शुरू हुआ यह सफर निरंतर जारी है। आज हम आपको ऐसी ही एक योजना से रूबरू करा रहे हैं, जहां सरकार की सोच और काम ने जमीन पर बदलाव की तस्वीर को सामने रखा है। तो आइए जानते हैं कि आगरमालवा जिले में मुद्रा योजना कैसे लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है।
3: छोटा मोटा व्यापार व्यवसाय करने वाले कारोबारियों द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लेकर किए गए व्यापार से उनकी आर्थिक स्थिति तो सुधरी ही है, वहीं परिवार का जीवन स्तर भी ऊंचा उठा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के हितग्राही आगरमालवा निवासी राजेन सोलंकी ने आकाशवाणी को बताया कि
4: मैं पहले किसी और की दुकान पे टेलरिंग का काम किया करता था, उससे मुझे अपना घर चलाने में बहुत परेशानी आ रही थी। तो फिर मुझे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के बारे में पता चला, मैंने बैंक ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन अप्लाई किया, वहां से मुझे लोन मिला। फिर मैंने अपने खुद का टेलरिंग का बिजनेस डाला और उस बिजनेस में मैं अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हूं, मेरा काम अच्छा चल रहा है, घर चलाने में भी आसानी हो रही है।
3: जिले में ऐसे अनेक हितग्राही हैं जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेकर अपने व्यवसाय का विस्तार कर अपने जीवन में बदलाव की बहार देख रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए आगर मालवा से मैं महेश शर्मा।
0: वहीं सेवा संकल्प अभियान के तहत खंडवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं और भारतीय ज्ञान परंपरा का संदेश दिया। वहीं इस अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर तक निकाली जा रही जन जल यात्रा आज राजगढ़ के सारंगपुर पहुंची, जहां पर कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने यात्रा का स्वागत किया। इस अभियान के तहत मुरैना नगर निगम द्वारा विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया और धार जिले के धामनोत शहर के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगन मिलन उत्सव का आयोजन भी किया गया। प्रदेश में 2 से 10 अक्टूबर तक सेवा मेरा योगदान अभियान चलाया जाएगा। सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत आयोजित इस अभियान में स्वच्छता, स्वास्थ्य, वृद्धजनों और अनाथ बच्चों की सेवा, नेत्र परीक्षण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, वृक्षारोपण और सैनिकों के सम्मान तथा जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता जैसी 9 गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर को स्वच्छता ही सेवा से होगी। वहीं 3 अक्टूबर को स्वास्थ्य शिविर, 4 अक्टूबर को वृद्धाश्रम और अनाथालयों में सेवा गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, 9 अक्टूबर को वृक्षारोपण और सैनिक सम्मान तथा 10 अक्टूबर को विद्यार्थियों की सहायता की जाएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती एवं महानिदेशालय के निर्देशानुसार आकाशवाणी भोपाल में चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान 6.0 तथा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज पौधरोपण किया गया। आकाशवाणी भोपाल परिसर के उद्यान में 50 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साह के साथ पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लिया और पौधे रोपित कर उन्हें पानी से सींचा। इस अवसर पर आकाशवाणी भोपाल के क्लस्टर प्रमुख लोकेश कुमार, निदेशक समाचार पूजा वर्धन, उप निदेशक अभियांत्रिकी एस के श्रीवास्तव, स्वच्छता ही सेवा अभियान के नोडल अधिकारी सहायक निदेशक देवेंद्र कुमार सक्सेना, कार्यक्रम प्रमुख शुभम तिवारी, विज्ञापन प्रसारण सेवा प्रमुख आनंद सिंह उद्दे, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अब्राहम थॉमस, सहायक अनुसंधान अधिकारी दीपक कुमार सचदेव सहित केंद्र के अनेक अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे। प्रदेश में एमबीबीएस इंटर्न्स का स्टाइपेंड बढ़ाकर 21,500 रुपये किए जाने पर इंटर्न्स ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार माना है। इंटर्न्स के प्रतिनिधिमंडल ने आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पुष्पगुच्छ भेंट किया। वॉइस ऑफ इंटर्न्स के प्रतिनिधियों ने कहा कि स्टाइपेंड में वृद्धि उनके परिश्रम और मरीजों की सेवा में योगदान के प्रति सम्मान है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एमबीबीएस इंटर्न्स अस्पतालों में मरीजों की सेवा, आपातकालीन चिकित्सा और अन्य जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभाते हैं। सतना जिले के चित्रकूट स्थित प्रसिद्ध गुप्त गोदावरी गुफा मंदिर में पहाड़ी से पत्थर गिरने की घटना के बाद श्रद्धालुओं का प्रवेश 4 दिन से बंद है। लगातार बारिश के दौरान पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर गुफा में गिर गया था। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गुफा बंद रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन के अनुसार विशेषज्ञों और संबंधित अधिकारियों की टीम के निरीक्षण के बाद ही गुफा खोलने का निर्णय लिया जाएगा। वहीं रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बारिश का दौर कमजोर रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल कोई भी सक्रिय मानसूनी सिस्टम नहीं है, जिससे भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर सहित कई हिस्सों में तेज धूप निकल सकती है। बुधवार गुरुवार से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने के संकेत हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुरैना के शासकीय महाविद्यालय कैलारस में नशा मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया। सेवा सेतु अभियान के अंतर्गत इटारसी रोड स्थित कुनबी मंगल भवन में 30 सितंबर को प्रातः 10 बजे से विद्युत शिविर का आयोजन किया जाएगा। जबलपुर वनमंडल के अंतर्गत आने वाले 5 वनग्रामों कुदवारा, सौठी, दक्षिण बरेली पठार, गड़गोरखपुर और सेमरा को राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया जारी है। छतरपुर में 37वीं क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में दलखेड़ा के छात्र आदित्य ने 6 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता और गुना के रेलवे स्टेशन पर भोजनालय की निरीक्षण में अनियमितताएं पाए जाने पर खाद्य विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 7:21 हो रहे हैं। ये समय है कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज का। तो आइए सुनते हैं मालवी गीतारी गूंज।

राम राम मारा भाई बहनों, आकाशवाणी उज्जैन का मालवी गीतारी गुंज कार्यक्रम में हूँ तमारो भाई आदर्श ठाकुर, तमारो बहुत बहुत स्वागत करूँ। तो सबसे पहला सुनला आज का मालवी समाचार।

इना बुलेटिन का मुख्य समाचार। राज्य मंत्री परिषद ने अग्निवीर होने के वर्दीधारी सेवाना में 20% क्षेत्रीय आरक्षण की मंजूरी दी है। एशियन गेम्स में नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप

शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतियो। रतलाम में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे दो सड़क हादसाना में 4 जना की मौत, 8 घायल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में करीब 24,500 करोड़ रुपया का अलग अलग प्रस्तावना के मंजूरी दी गई है। बैठक में वर्दीधारी सेवाना की भर्ती में अग्निवीर होने के 20% क्षेत्रीय आरक्षण देने को फैसलो करो गयो है। इनमें पुलिस आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वन रक्षक और आबकारी आरक्षक का पद शामिल है। साथ ही अतिथि शिक्षक ना के मानदेय का लिए अगला 5 साल में 5,329 करोड़ रुपया और कक्षा 1 से 8 तक का विद्यार्थी ना की गणवेश राशि का लिए 348 करोड़ रुपया की स्वीकृति दी गई है। प्रदेश में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्ग का छात्रावास, आश्रम और सामुदायिक कल्याण केंद्र ना में रहने वाला विद्यार्थी ना के अब 1 रुपया प्रति किलो की दर से गेहूं और चावल मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लियो गयो है। वर्तमान में विद्यार्थी ना के 12 किलो गेहूं 5 रुपया और 3 किलो चावल 6.5 रुपया प्रति किलो की दर से मिली दिया है। नई व्यवस्था से विद्यार्थी ना के आर्थिक राहत मिलेगी और इकालिए करीब 52 लाख रुपया सालाना अतिरिक्त भार राज्य सरकार वहन करेगी। प्रदेश में आज पंचायत उपचुनाव का तहत 103 पद ना का लिए मतदान हुयो। इनमें 79 सरपंच, 5 जिला पंचायत सदस्य और 4 पंच पद शामिल है। आगरमालवा की सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष का लिए भी मतदान कराया गयो। मतदान का दौरान रायसेन और खरगोन में ग्रामीण ने सड़क, पुलिया और शमशान तक रास्ता की मांग के लिए मतदान को बहिष्कार करियो। आज अधिकांश स्थान पे मतदान शांतिपूर्ण रियो। पंचायत उपचुनाव का लिए मतगणना 3 अक्टूबर के होगी, जबकि जिला पंचायत और पंच पद का परिणाम 5 अक्टूबर के घोषित किया जाएगा। भोपाल की मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की खिलाड़ी नीरू ढांडा ने जापान में चली रिया एशियन गेम्स 2026 में महिला ट्रैप शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतियो है। उनने एशियन गेम्स की व्यक्तिगत स्पर्धा में पहलो स्वर्ण पदक जीती के इतिहास रच दियो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नीरू ढांडा के इन उपलब्धि पे बधाई और शुभकामना दी है। उनने बोलियो कि नीरू की यह उपलब्धि देश और प्रदेश की बेटी होन और युवा खिलाड़ी ना का लिए प्रेरणा है। प्रदेश में 2 से 10 अक्टूबर तक सेवा मेरा योगदान अभियान चलायो जाएगो। सेवा संकल्प अभियान 2026 का तहत आयोजित इना अभियान में स्वच्छता, स्वास्थ्य, वृद्धजन और अनाथ बच्चाना की सेवा, नेत्र परीक्षण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, वृक्षारोपण, सैनिक ना को सम्मान और जरूरतमंद विद्यार्थी ना की सहायता जैसी 9 गतिविधियां होगी। अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर के स्वच्छता ही सेवा से होगी, 3 अक्टूबर के स्वास्थ्य शिविर, 4 अक्टूबर के वृद्धाश्रम और अनाथालय में सेवा गतिविधि आयोजित करी जाएगी। 9 अक्टूबर के वृक्षारोपण और सैनिक सम्मान और 10 अक्टूबर के विद्यार्थी ना की सहायता करी जाएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती व महानिदेशालय का निर्देशानुसार आकाशवाणी भोपाल में स्वच्छता ही सेवा अभियान 6.0 और एक पेड़ माँ के नाम अभियान का तहत आज पौधारोपण करियो गयो। आकाशवाणी भोपाल परिसर का उद्यान में 50 से ज़्यादा अधिकारी और कर्मचारी ना ने उत्साह का साथ पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लियो और पौधारोपित करी के उनके पानी से सींचो। इन अवसर पे आकाशवाणी भोपाल का क्लस्टर प्रमुख लोकेश कुमार, निदेशक समाचार पूजा वर्धन, उप निदेशक अभियांत्रिकी एस के श्रीवास्तव, स्वच्छता ही सेवा अभियान का नोडल अधिकारी सहायक निदेशक देवेंद्र कुमार सक्सेना, कार्यक्रम प्रमुख शुभम तिवारी, विज्ञापन प्रसारण सेवा प्रमुख आनंद सिंह उदे, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अब्राहम थॉमस, सहायक अनुसंधान अधिकारी दीपक कुमार सचदेव सहित केंद्र का अनेक अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित था। रतलाम जिला में दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पे आज सुबह हुआ 2 अलग अलग सड़क हादसा में 4 लोगों की मौत हुई गई और 8 लोगों घायल हो गया।
दो हादसा में पंजाब और गुजरात का परिवार की

कारना एक्सप्रेस वे की रेलिंग से टकराई के करीब 30 फीट गहरी खाई में जाई गिरी। अब बात कर ला मौसम की। प्रदेश में अगला 4 दिन तक बारिश को दौर कमजोर रहने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुसार प्रदेश में फिलहाल कोई सक्रिय मानसून सिस्टम नहीं है, जिससे भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर सहित नरा हिस्साना में तेज धूप निकली सकती है। बुधवार गुरुवार से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने का संकेत है। मानसून की वापसी की रेखा प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा तक पहुंची गई है, इसलिए उज्जैन और ग्वालियर संभाग से सबसे पहला मानसून विदा हो सकता है। 2 अक्टूबर तक अधिकांश हिस्साना में मौसम साफ रहने को अनुमान है। तो भाई ना, आज का मालवी समाचार में फिलहाल इतना ही।

0: भाई बहन ना, कई तुम्हारे मालूम है कि आज भी दुनिया में करोड़ों लोग भूखा सोने के मजबूर है। इका पीछे एक बड़ो कारण है अन्न की हानि और बर्बादी। तो इन आज विषय पे आज काम की बात करांगा सामाजिक कार्यकर्ता सौरव शर्मा से।
1: आज हम आपके साथ एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसका सीधा नाता हमारे जीवन, हमारी रसोई, हमारे बजट और हमारी प्रकृति से है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर साल 29 सितंबर को खाद्य हानि एवं अपव्यय के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि अन्न जो होता है वो देवता का स्वरूप होता है, फिर भी खेत से लेकर डाइनिंग टेबल तक लाखों टन भोजन हर दिन खराब हो जाता है। इसी विषय पर गहराई से चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता सौरव शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद आदर्श जी, और आपके रेडियो के सभी श्रोताओं को भी मेरा सादर प्रणाम। आपने जो मुद्दा उठाया है, यह एक ऐसा गंभीर विषय है जिस पर आज हर नागरिक को सोचने और अपनी आदतें बदलने की सख्त जरूरत है।
1: जी सर, बातचीत की शुरुआत हम बुनियादी परिभाषा को समझने से करते हैं। आम बोलचाल में लोग फूड लॉस और फूड वेस्ट को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन तकनीकी और व्यावहारिक दृष्टि से इनमें क्या फर्क होता है?
2: देखिए, इस दोनों ही चीज़ों में बहुत ही बड़ा फर्क है, और इस फर्क को समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों के समाधान भी अलग अलग है। सबसे पहले हम बात करें फूड लॉस की, यानी कि खाद्य हानि। यह नुकसान जो सप्लाई चेन है उसके शुरुआती हिस्से में होता है, जैसे किसान के खेत में फसल कटने के तुरंत बाद से लेकर जब वो भंडारण के लिए गोदामों में जाता है, ट्रांसपोर्टेशन और थोक मंडी तक पहुंचने के बीच जो अनाज, फल या सब्जियां खराब हो जाती है, इसमें मौसम की मार, अच्छी सड़कों की कमी या फिर कोल्ड स्टोरेज न मिलना इसके प्रमुख कारण है। और दूसरी जो आपने बात कही, फूड वेस्ट यानी कि खाद्य का अपव्यय, यह बर्बादी सप्लाई चेन के आखिरी छोर पर होती है, यानी खाना जब सुपरमार्केट, रिटेल दुकानों, रेस्टोरेंट, दावतों और हमारे घरों के किचन तक पहुंच जाता है, यहाँ खाना पूरी तरह खाने लायक होता है, लेकिन हमारी गलत योजना, लापरवाही, जरूरत से ज़्यादा खाना पकाना या फिर थाली में जूठा छोड़ने की वजह से जो हम कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं, वो फूड वेस्ट होता है। तो सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो लॉस व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से होता है, जबकि वेस्ट हमारी खुद की आदतों और हमारे व्यवहार से होता है।
1: जी सर, बहुत

0: बहुत ही सही अंतर समझाया आपने। लेकिन सर, जब कोई व्यक्ति अपनी थाली में खाना छोड़ता है तो वह सोचता है कि यह तो बस थोड़ा सा खाना है, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इस बर्बादी की असली कीमत क्या होती है?
1: ये बहुत ही गंभीर सवाल पूछा है आपने। मैं आपको इसे समझाना चाहूँगा कि भोजन सिर्फ एक वस्तु नहीं है, वो प्राकृतिक संसाधनों का एक पूरा पैकेज है। थोड़ा सा खाना छोड़ने से भी बहुत नुकसान होते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। जैसे सबसे
0: जी
1: पहले अगर हम बात करें पानी के नुकसान की, तो 1 किलो गेहूं उगाने में लगभग 1500 लीटर पानी लगता है।
0: जी
1: वही 1 किलो चावल उगाने में करीब 3 से 4 हजार लीटर पानी खर्च होता है। तो जब हम एक रोटी या एक छोटी कटोरी चावल फेंकते हैं, तो असल में हम सैकड़ों लीटर शुद्ध पानी को हम नाली में बहा रहे होते हैं। दूसरे अगर हम नुकसान की बात करें तो वह है ऊर्जा और श्रम का नुकसान। उस फसल को तैयार करने में किसान की 4 महीने की मेहनत है, और उसके साथ ही बिजली, डीजल, खाद और ढुलाई में लगा ईंधन, ये सभी शामिल होते हैं। और सबसे जरूरी और मुख्य है इसका पर्यावरण पर असर। जब फेंका हुआ खाना कचरे के ढेर में सड़ता है, तो वहां पर बिना ऑक्सीजन के मीथेन गैस बन जाती है, और मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी 25 गुना ज्यादा खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है,
0: जी
1: और ये सीधे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग और बेमौसम बारिश के लिए जिम्मेदार है। तो यानी खाने की बर्बादी का सीधा मतलब है कि आप पर्यावरण पर वार कर रहे हैं।
0: जी सर, यह आंकड़ा वाकई आंखें खोल देने वाला है। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारे देश में खेत से मंडी तक होने वाले फूड लॉस की मुख्य वजह क्या है? आपको क्या लगता है?
1: देखिए, भारत दुनिया में फलों, सब्जी और अनाज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन हमारे देश की विडंबना यह है कि हम हर साल हजारों करोड़ रुपए का उत्पाद कटाई के बाद ही गंवा देते हैं। और इसकी प्रमुख वजह मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है कोल्ड चेन का अभाव।
0: जी
1: जैसे टमाटर, हरी सब्जियां, सेब जैसे जल्दी खराब हो जाने वाले जो उत्पाद होते हैं, उनको खेत के पास ही प्री कूलिंग और तापमान नियंत्रित वाहनों की जरूरत होती है।
0: जी
1: लेकिन हमारे यहाँ आज भी अधिकांश सब्जियां खुली बोरियों में सामान्य ट्रकों पर लाद कर ले जाई जाती है।
0: जी
1: दूसरा है पारंपरिक बोरिया और छंटाई। लकड़ी के बक्सों या जूट की बोरियों के नीचे जो फल होते हैं, तो नीचे वाले फल जो दबकर सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक भंडारण की भी कमी है। जैसे अनाज को खुले में रखने से कई बार बेमौसम बारिश में हजारों बोरियां भीग कर फफूंद का शिकार हो जाती है।
0: जी
1: हालांकि पिछले कुछ सालों में सरकार ने पीएम किसान संपदा योजना और मेगा फूड पार्क्स के जरिए ग्रामीण स्तर पर कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग का जाल बिछाना शुरू तो किया है, लेकिन अभी भी काफी लंबा सफर तय करना बाकी है।
0: जी सर, अब आते हैं फूड वेस्ट यानी उस बर्बादी पर जो हमारे समाज में उत्सवों और शादियों में देखी जाती है। बुफे सिस्टम और दिखावे के इस दौर में इसे कैसे सुधारा जाए सर?
1: ये हमारे सामाजिक विवाह
0: जी
1: जो है उसका एक बहुत ही दुखद पहलू है। मैं कहूंगा शादियों में 100 से ज्यादा व्यंजन का मेन्यू रखना एक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है। तो इसके मैं बहुत ही व्यावहारिक समाधान बताऊंगा। जैसे हम ये कर सकते हैं कि मेन्यू को छोटा रखें।
0: जी
1: जैसे हम 60, 70, 80 व्यंजनों की जगह अगर 20 से 25 बेहतरीन और ताजे व्यंजन रख सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: इसके अलावा सर्विंग प्लेट के साइज में हम बदलाव कर सकते हैं। जैसे बड़े साइज की प्लेट लेने पर हर लोग हर चीज प्लेट में भर लेते हैं, और उसमें यह होता है कि आधी से ज्यादा वो जूठी छोड़ देते हैं, वो वेस्ट हो जाता है। तो रेस्टोरेंट और आयोजकों को पोर्शन कंट्रोल और प्लेट साइज पर भी ध्यान देना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: इसके अलावा लाइव काउंटिंग, जैसे जो केटरर्स होते हैं उनको पूरी तैयारी एक साथ करने के बजाय जरूरत के हिसाब से बैच में खाना बनाना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: जिससे वो एक साथ बना खाना
0: वेस्ट
1: वेस्ट
0: ना
1: ना
0: हो।
1: हो। बचे हुए खाने का प्रबंधन, सबसे जरूरी बात यह है कि हर आयोजक का पहले से किसी स्थानीय एनजीओ या फिर नजदीकी शेल्टर होम से संपर्क जरूर होना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: जैसे पार्टी खत्म होते ही बचा हुआ ताजा खाना तुरंत उन भूखों बच्चों और जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सकता है।
0: जी सर। सर, हमारे बहुत से श्रोता गृहिणियां और परिवार के मुखिया हैं। घरेलू स्तर पर हमारी अपनी रसोई में खाने की बर्बादी रोकने के लिए क्या आसान और ठोस तरीके अपना सकते हैं हम?
1: देखिए, इसके लिए मैं आपको 5 बुनियादी नियम समझाऊंगा।
0: जी
1: सबसे पहला है स्मार्ट शॉपिंग लिस्ट। खरीदारी करने से पहले फ्रिज और पेंट्री जरूर देखें। बिना लिस्ट के आप सुपरमार्केट ना जाएं। जब आप बाय वन गेट वन के लालच में जरूरत से ज्यादा चीजें खरीद लेते हैं, तो अक्सर आधे से ज्यादा सामान वैसे ही एक्सपायर होकर बाहर फेंक जाता है। दूसरा मैं कहूँगा सही तापमान और रख रखाव। जैसे आलू प्याज को कभी साथ नहीं रखना चाहिए। प्याज से निकलने वाली गैस आलू को जल्दी सड़ा देती है
0: जी।
1: धनिया मिर्च हरी सब्जियों को धोकर सुखाकर और एयर टाइट डिब्बों में बंद करके रखना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: तीसरा मैं कहूँगा पहले आओ पहले पाओ। पुराना सामान आगे रखे, नया सामान पीछे रखे, ताकि जो पुरानी चीजें हैं उनका समय पे इस्तेमाल हो जाए और वो पीछे ही पड़े पड़े एक्सपायर ना हो जाए।
0: बिल्कुल सर।
1: इसके अलावा आपको एक्सपायरी डेट को भी समझना है। जैसे बेस्ट बिफोर का मतलब यह नहीं होता है कि खाना उस तारीख के अगले ही दिन जहरीला हो गया। इसका मतलब यह केवल गुणवत्ता में हल्की सी कमी हो सकता है। तो आप अगर वो डेट निकल जाती है तो भी आप सामान की जांच उसको देखकर सुनकर कर सकते हैं। बचे हुए खाने का हुनर जो भारतीय महिलाएं तो आजकल अच्छे से कर रही है, तो ये जो रिसाइकलिंग है, जैसे रात की सूखी सब्जी से सुबह सैंडविच बना देना, रोल बना देना, बची हुई दाल से मिसी के पराठे बना देना, तो ये चीजें कर कर भी हम खाने के वेस्ट को कम
0: घर पर बचा सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और जो छिलके या खराब हिस्सा बच जाता है घर पर, उसका क्या करना चाहिए हमें?
1: देखिए, उसे सूखे कचरे में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। हर घर में एक छोटी सी मटकी या बाल्टी में गीले कचरे की कंपोस्टिंग यानी कि खाद बनाना का कार्य हम कर सकते हैं। जैसे वह छिलका कुछ हफ्तों में आपके गमलों के लिए बेहतरीन जैविक खाद बन जाएगा, तो वो कचरे में भी नहीं जाएगा, वेस्ट भी नहीं होगा और उसका आप यूज भी कर पाएंगे अच्छे से।
0: सर, इस बातचीत के अंत में हमारे रेडियो श्रोताओं को आप क्या अंतिम विचार या अपील करना चाहेंगे श्रोताओं से?
1: मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि दुनिया में आज भी 70 से 80 करोड़ लोग हर रात भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ हम लाखों टन खाना ऐसे ही कचरे में फेंक देते हैं। इस खाई को पाटने की शुरुआत किसी कानून से नहीं, हमारी अपनी प्लेट से होगी। जब भी थाली में खाना ले तो याद रखे कि इसे उगाने में किसी किसान के माथे का पसीना लगा है, हजारों लीटर पानी लगा है, कितना ईंधन खर्च हुआ है। तो बस एक साधारण सा संकल्प ले कि थाली में उतना ही लूंगा जितना मैं खा सकूंगा और कभी जूठन नहीं छोड़ूंगा।
0: जी सर, बहुत खूब। अन्न का सम्मान जीवन का सम्मान होता है सर, और हमारे श्रोताओं के साथ इतनी व्यवहारिक और प्रेरणादायक बातें साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी, मुझे मौका देने के लिए। जय हिंद।
0: धन्यवाद। तो बहिना, यह बातचीत तुम्हारे समझ में आई होगी आशा करूं। अब सुन ला यो प्यारो सो मालवी गीत।

भाई ना, अब हम एक ऐसी योजना पे बात करने वाला हाँ जो हमारी खेती किसानी की दुनिया के पूरी तरह बदली रही है। यह योजना है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जो कि 2017 में शुरू हुई थी। इन योजना को मेन उद्देश्य तो फसल की बर्बादी के रोकनो। हम किसान दिन रात एक एक करी के फसल के करा पसीनों बहाएं और फसल उगाएं, लेकिन जब टमाटर, गोभी, संतरा, केला और दूध जैसी चीज ना जल्दी खराब होने वाली रहे है, तो हमारे डर सताने लगे कि अगर 2 दिन में यह चीज़ नहीं बिकी तो सब माल सड़ जाएगा। ऐसा में सरकार ने इन योजना की शुरुआत करी। इसके अलावा सस्ता में बेचने की जो मजबूरी थी हमारी मंडी में, एक साथ बहुत सारा माल आ जा रहा था और व्यापारी कम दाम लगा रहे थे, तो किसान के अपना माल 2 रुपया 3 रुपया किलो में बेचना पड़े और गुस्सा में सड़क पर फेंकना पड़े। तो सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत की। अब इन्हीं योजना में मेन 7 चरण है जिका तहत सरकार किसान ना के लाभ पहुँचाई है। सबसे पहलो है मेगा फूड पार्क। इनमें कम से कम 50 एकड़ की ज़मीन पे एक बहुत बड़ो आधुनिक बाजार या औद्योगिक क्षेत्र बनवाई है सरकार। एक ही 4 दीवारी का अंदर ही में कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, छटाई की मशीन, पैकेजिंग की मशीन और खाद्य फैक्ट्री ना सब कहीं मौजूद रहे। और गांव गांव में छोटा कलेक्शन सेंटर बनाया जाए, जाके जिन किसान सीधो माल खरीदी के इन पार्कों तक ले जा सकते हैं। इका अलावा एक कोल्ड चेन को दूसरा स्तंभ है। इनमें दूध, फल और सब्जी ना के खेत से निकालते ही ठंडा तापमान की जरूरत किसान के पड़े है, तो सरकार ऐसा प्री कूलिंग सेंटर बनाई रही है इन योजना के तहत, जहाँ की जगह फसल की गर्मी दूर करके उनके ठंडक दी जाइए। इन योजना को अगलो चरण है एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, यानी कि स्थानीय फसल केंद्र। भाई ना, हर इलाका की अपनी एक खास पहचान रहे, जैसे कहाँ की जगह मिर्ची मशहूर है, कहाँ की जगह संतरा, तो कौन सी जगह पे मखाना मशहूर है। तो सरकार ऐसा इलाका ना के चुनी के वहाँ की जगह 5-6 प्रोसेसिंग फैक्ट्री ना या क्लस्टर लगवाई। इससे उन्हें पूरा इलाका का किसान ना के स्थानीय फसल बेचने के लिए अपना जिला से बाहर नहीं जाना पड़े। अगली चीज़ है खेत और बाजार की सीधी कड़ी जोड़ने पे भी सरकार काम कर रही है। इसमें एक तो है बैकवर्ड लिंकेज, जिसको मतलब है कि खेत से फैक्ट्री तक की जो पक्की सड़क है वहाँ की जगह तुम्हारे साधन उपलब्ध करवाई दे, जिससे तुम खेत पे ही छटाई, ग्रेडिंग और सफाई की सुविधा किसान के मिली जाए और ख़राब माल वहाँ की जगह तुम छाट भी पाओ और अच्छा माल के सीधे फैक्ट्री तक पहुँचा दो। दूसरों है फॉरवर्ड लीकेज, मतलब कि फैक्ट्री से बाजार तक की कड़ी। फैक्ट्री में जैसे ही माल वहाँ की जगह तैयार हुई आए, वहाँ से सीधे दुकान पे, सुपर मार्केट पे और शहर का मार्केट तक पहुँचाने के लिए भी सरकार काम कर रही है। इन योजना को अगलो फायदो पहुंचा रही है सरकार, नई फैक्ट्री ना लगाई के और पुरानी फैक्ट्री ना के बड़ा करने पे ध्यान दे रही है। अगर कोई किसान समूह या ग्रामीण युवा अपना इलाका में आटा मिल, तेल मिल, दाल मिल या कौन सी भी फैक्ट्री खोलना चाहे, तो सरकारों के सब्सिडी दे रही है और अपनी तरफ से मदद दे रही है। शुद्धता और लेबल टेस्टिंग करने पर भी सरकार ध्यान दे रही है, क्योंकि आजकल हर ग्राहक साफ सुथरों और शुद्ध खाना चाहिए। इसलिए गांव में सरकारी लेब की शुद्धता की जांच पे सरकार ध्यान दे रही है, लेब ना बनवा रही है ताकि शुद्ध खानों घर घर पहुंच ही पाए। अगलो और आखिरी इन योजना को चरण है पढ़ाई, शोध और हुनर सिखानो। इसमें सरकार बड़ी बड़ी मशीनें नहीं लगवा रही है, उसका साथ ही किसान ना के ट्रेनिंग भी दे रही है, जिससे भी फायदों लिखे और अपनी फसल ना के बेहतर बना सके। आगे की बात करांगा, लेकिन उससे पहला सुन ला यो मालवी गीत।

तो भाई ना इन योजना का अंदर आर्थिक सहायता कैसे मिले वो तुम्हारा बता दूं। यदि तुम उत्तर प्रदेश या अपना मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार या हरियाणा जैसा राज्य में प्रोजेक्ट लगाओ तो कुल प्रोजेक्ट लागत की 33% से 35% तक की सरकारी सब्सिडी मिले हैं। पहाड़ी और विशेष क्षेत्र में भी तुम्हारे जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में 50% तक की भी फैक्ट्री लगाने पर सब्सिडी सरकार दे सकती है। इन्हीं योजना को लाभ अकेला किसान भी ले सकता है, समूह का अंदर भी तुम ले सकता हो, महिला ना भी ले सकती है और सरकारी समिति ना और निजी फैक्ट्री ना भी इको लाभ ले सकती है। तो भाई ना अगली बार तुम्हारे इन्हीं बात को ध्यान रखना है कि खेती जो है वह सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सिर्फ खेत में करी के मंडी

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा।

0: भावना से देश सेवा।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 13वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, बैंकिंग सुधार से मजबूत अर्थव्यवस्था तक। इसमें भाग ले रहे हैं 16वें वित्त आयोग और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति घोष। कार्यक्रम का संचालन कर रही है निहारिका भुवानिया।
2: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं जन सेवा से देश सेवा की। आज के हमारे खास अतिथि हैं डॉक्टर सौम्या कांति घोष, जो कि 16वें फाइनेंस कमीशन के सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के भी सदस्य हैं और साथ ही साथ SBI के चीफ ग्रुप इकोनॉमिक एडवाइजर भी हैं। नमस्कार डॉक्टर सौम्या कांति घोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
2: चर्चा शुरू करने से पहले इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं कि पिछले वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में किए गए सुधारों ने अर्थव्यवस्था को किस तरह नई गति देने में योगदान दिया है।
4: एक समय भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती थी। बैंकों की फाइलों में ऐसे ऋण बढ़ रहे थे जिनकी वापसी मुश्किल हो रही थी। इन्हें गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कहा जाता है। इसका असर सिर्फ बैंकों तक सीमित नहीं था। जब बैंक का पैसा फंसा रहता है तो नए ऋण देने की उसकी क्षमता भी प्रभावित होती है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बैंक और कंपनियों की कमजोर बैलेंस शीट ने मिलकर उस समय ट्विन बैलेंस शीट की समस्या को जन्म दिया था। इसी चुनौती से निपटने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की एक व्यापक प्रक्रिया शुरू हुई। इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था एसेट क्वालिटी रिव्यू, यानी बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता की विस्तृत जांच। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2015 में एसेट क्वालिटी रिव्यू शुरू किया। इसका उद्देश्य था कि बैंकों की किताबों में छिपे वित्तीय दबाव को स्पष्ट रूप से सामने लाया जाए और खराब ऋणों की सही पहचान की जा सके। खराब ऋणों की पहचान के बाद अगली चुनौती थी इनका समाधान कैसे किया जाए। इसी क्रम में वर्ष 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी IBC लागू किया गया। इसका उद्देश्य कंपनियों और अन्य संबंधित संस्थाओं के दिवालियापन और ऋण समाधान के लिए एक समयबद्ध और व्यवस्थित ढांचा उपलब्ध कराना था। IBC के तहत ऋणदाता और देनदार दोनों के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई। इस पूरी व्यवस्था में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT की महत्वपूर्ण भूमिका है। NCLT के समक्ष कॉरपोरेट दिवाला समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जबकि इसके फैसलों के खिलाफ अपील के लिए NCLT का प्रावधान है। वहीं IBC के क्रियान्वयन और उससे जुड़े पेशेवर तंत्र की निगरानी के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी IBBI की स्थापना की गई। IBBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक IBC के तहत कुल 1194 मामलों में समाधान योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी थी। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इस व्यवस्था के कारण कई मामलों में दिवाला प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही देनदारों ने अपने बकाए का निपटारा किया, लेकिन केवल खराब ऋणों की पहचान और समाधान ही पर्याप्त नहीं था। बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी होना भी जरूरी था ताकि वे

0: अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत कर सकें और नए ऋण उपलब्ध करा सकें। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की दिशा में कदम उठाए। पूंजी बढ़ने से बैंकों को अपने वित्तीय आधार को मजबूत करने और ऋण देने की क्षमता बनाए रखने में मदद मिली। RBI के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण ने भी बैंकों की पूंजी स्थिति मजबूत करने में योगदान दिया। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की प्रक्रिया आगे बढ़ी। इसका उद्देश्य बैंकों को अधिक मजबूत और सक्षम बनाना, उनकी परिचालन क्षमता बढ़ाना और बेहतर तरीके से जोखिम का प्रबंधन करना था। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2017 से 2020 के बीच कई बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय हुआ और वर्तमान में देश में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। बैंकिंग सुधारों का एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा बैंकों के कामकाज में बेहतर प्रशासन, जोखिम प्रबंधन और तकनीक का इस्तेमाल। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ईज यानी इनहैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस जैसे सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से शासन, जिम्मेदार ऋण वितरण, जोखिम प्रबंधन और तकनीक आधारित बैंकिंग पर जोर दिया गया। इन सभी कदमों का व्यापक उद्देश्य एक ही था, बैंकिंग व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना, वित्तीय जोखिम को कम करना और अर्थव्यवस्था में ऋण के प्रभाव को बेहतर करना। इन सुधारों के परिणाम बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न संकेतकों में भी दिखाई दिए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल NPA अनुपात मार्च 2016 में 14.5% था, जो मार्च 2024 तक घटकर 2.8% रह गया। सर्वेक्षण के अनुसार बैंकिंग नियमन को मजबूत करने, ऋण वसूली कानूनों में बदलाव, IBC और अन्य उपायों ने बैंक तथा कॉरपोरेट क्षेत्र की वित्तीय स्थिति को सुधारने में योगदान दिया। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि बैंकिंग क्षेत्र की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया 2018-19 से जारी रही और सितंबर 2023 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल NPA अनुपात एक दशक के निचले स्तर पर पहुंच गया था। यही बदलाव उस स्थिति की ओर संकेत करता है जिसे आर्थिक सर्वेक्षण ने ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज के रूप में रेखांकित किया है, यानी बैंक और कॉरपोरेट क्षेत्र दोनों की बैलेंस शीट में पहले की तुलना में सुधार। मजबूत बैंकिंग व्यवस्था का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि बैंक अर्थव्यवस्था में बचत को निवेश में बदलने का महत्वपूर्ण माध्यम है। जब बैंकों की वित्तीय स्थिति बेहतर होती है तो वे कारोबार, उद्योग और आम लोगों की ऋण जरूरतों को अधिक मजबूती से पूरा कर सकते हैं। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: डॉक्टर घोष, इससे पहले कि हम एसेट क्वालिटी रिव्यू, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड या फिर बैंक रिकैपिटलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर बैंक मर्जर्स के बारे में चर्चा करें, हम थोड़ी सी नजर हमारे अर्थव्यवस्था के हाल पर डालना चाहेंगे। 90 से लेकर अब तक हमारी अर्थव्यवस्था किस माहौल से, किस दौर से गुजर रही थी?
2: इंडियन इकोनॉमी ने, अगर आपने इसका जर्नी देखते हैं कि 1990 से अगर हम शुरू करते हैं, 1991 में जब पहले हम रिफॉर्म शुरू किया था, उसी टाइम में रिफॉर्म वाज बिकॉज ऑफ नेसेसिटी एंड कंपल्शन। नाउ रिफॉर्म इज बेसिकली एक पार्ट है, हमको रिफॉर्म करना है क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। उसी टाइम भी हमने रिफॉर्म किया था, काफी मार्केट में रिफॉर्म किया था, एक्सटर्नल सेक्टर में रिफॉर्म किया था, रूपी को हमने डिवैल्यू किया था, लाइसेंसिंग राज को खत्म करने का कोशिश किया था। लेकिन काफी सारे उसके बाद 1996 के बाद 1990 से 2004 का जो पहले जो सेशन था NDA, उसमें तो इतने सारे रिफॉर्म्स हुए थे। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उसमें आपको पता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बने थे, टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म हुआ थे, पावर सेक्टर में रिफॉर्म हुआ था, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म हुआ था, फिर उसी टाइम में आपको क्रेडिट ब्यूरो का भी आपका स्थापना हुआ था, और उसी टाइम इतने सारे रिफॉर्म्स हुआ था। उसी टाइम में आपको FRBM कमिटी का भी रिफॉर्म हुआ था, और मॉनेटरी पॉलिसी का जो होता है उसमें हमने पहले बार देखा था कि मार्केट में उसको एक जो बोलते हैं कि रिपोर्ट जो आदम जानते हैं, जहां से वो सब लोग उसको देख के बैंक्स बोरो करते हैं, तो ये सारे रिफॉर्म्स उसी टाइम में हुआ था। पावर सेक्टर का पहले जो रिफॉर्म था, क्योंकि आपको पता है कि पावर सेक्टर एक काफी सेंसिटिव इश्यू है, और अभी से लास्ट 30 साल से पावर सेक्टर को हम रिफॉर्म करने चाहते हैं, तो उसी टाइम खास पावर सेक्टर के भी रिफॉर्म हमने लेके आए थे। तो बहुत सारे रिफॉर्म उसी टाइम चालू हुआ था। फिर 2004 से अगर हम देखें, उसके बाद हमारा उसी जो 4 से 8 में ग्रोथ हमारा अच्छा था, उसी टाइम सबसे बड़ा मुद्दा था ग्रोथ का जो पुश था, बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी उसी टाइम बहुत अच्छा कर रहे थे। तो उसके लिए क्या हुआ था, ग्लोबल इकोनॉमी का मोमेंटम इंडियन इकोनॉमी को भी मिल गया था, इसके लिए उसी टाइम हम अच्छा किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2007-08 में एक फिनेंशियल क्राइसिस आ गया। जैसे ही फिनेंशियल क्राइसिस आ गया, हमारा जो बैंकिंग सेक्टर था 2000

0: 2009 में जो क्राइसिस के बाद उसी टाइम क्या हुआ था, उसी टाइम हम बहुत सारे एक्चुअली हमने बहुत फिजिकली एक्स्ट्रा वैकेंट हो गया था। आपको अगर याद है 2009 में हमने पे कमीशन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया था,
1: जी
0: हमने उसके साथ हमने जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है उसको भी हमने इम्प्लीमेंट किया था, और उसके साथ हमारा जो फिस्कल डेफिसिट जो बोलते हैं वो भी काफी बढ़ गया था। उसके लिए क्या हुआ, उसके बाद से इंडियन इकोनॉमी का प्रॉब्लम शुरू हो गया, और उसके बाद आपको उसी टाइम इन्फ्लेशन जो था वो 10% से ऊपर रहते थे। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, एक टैग आ गया कि हमने फ्रेजाइल 5 का हो गया, बैंकिंग सेक्टर का उसी टाइम एसेट क्वालिटी खराब होना शुरू किया, और ये क्या हुआ था कि उसी टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बैंक्स ने लेन किया था। लेकिन उसका इशू क्या था कि क्योंकि ग्लोबली जो कमोडिटी साइकिल था उसी टाइम बहुत ऊपर था, लेकिन उसके बाद उसका प्राइसेस का दाम कम हो गया, इसके लिए जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर था उसमें सारे उनका लोन्स काफी बिगड़ गया। फिर उसके बाद क्या किया, 2015 के बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड किया कि हमको सारे बैंक्स को क्लीन अप करके एक एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आना है। तो उन्होंने एक एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आए थे, फिर सारे बैंक्स को एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आए थे, जितना उसका लोन्स था और लोन्स को रिकॉग्नाइज किया, हाँ ये लोन्स बैड लोन्स है, ये हम वापस नहीं कर सकते है। उसके लिए बैंक्स का जो था प्रोविजन बढ़ गया था, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो गया था, और सारे जो नंबर्स था वो बिगड़ गया, और उसके बाद एक बहुत बड़ा रिकैपिटलाइजेशन भी गवर्नमेंट ने किया था, और उसके बाद उनका साथ उन्होंने ईज ऑफ बैंकिंग को रिफॉर्म्स किया था। तो इसके चलते क्या हुआ, 3-4-5 साल के बाद बैंकिंग सेक्टर का हालत, पैंडेमिक के बाद आपको पता है कि पैंडेमिक में पूरा इकोनॉमी बंद हो गया, लेकिन हमारा इंडियन इकोनॉमी एंड बैंकिंग सिस्टम उसमें एक्चुअली वो अच्छा किया उसी टाइम में। तो मैं आपको कुछ अगर नंबर बताऊं कि ये जो AQR हुआ, फिर बैंकिंग सेक्टर में लास्ट 10 साल में जितने उन्होंने रिफॉर्म्स लेके गवर्नमेंट आए हैं, उसको हम ईज रिफॉर्म्स बोलते हैं, उसमें बैंक्स को रिकैपिटलाइजेशन किया था, बैंक को कंसोलिडेशन किया है, बैंक्स नॉर्म्स को चेंज किया है, और बैंक्स को पूरा फ्रीडम दिया है कि आप इसको काम कीजिए। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, कुछ डेटा 2017-18 में बैंकिंग प्रॉफिट था नेगेटिव, मैंने 32,400 करोड़ सारे बैंक्स का प्रॉफिट था 2017-18। आज का दिन 2025-26 में बैंक का प्रॉफिट है 4 लाख करोड़। तो उसका मतलब ये प्रॉफिट आपको 5 गुना बढ़ गया, 5 से 6 गुना बढ़ गया। ग्रॉस एनपीए रेशियो रिकॉग्निशन हम AQR करने के लिए जो 11% था 2017-18 में, आज का दिन वो नंबर है 1.7%, तो सबसे अच्छा नंबर है 13 साल का। नेट एनपीओ रेशियो, उसका मतलब कितना जो लोन हमारा खड़ा था उसका हमने प्रोविजन किया, आज उसका रेशियो है 0.4%। उसका मतलब बैंकिंग सेक्टर का जो सारे लोन्स है वो सारे लोन्स एडिक्वेटली कवर्ड है। स्लिपेज रेशियो जो हम बोलते हैं कितना लोन, वो 7.5% था उसी टाइम में, आज वो 1% का आसपास है। प्रॉफिटेबिलिटी का जो ग्रोथ है, 2017-18 में प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 174% गिरा था, आज का दिन वो 2025-26 में और 26-27 में 10% से ऊपर से ग्रो कर रहे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.5% के आसपास है। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सारे नंबर्स आज काफी अच्छा है, और हमको अनुमान है कि ये बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स जो हुआ है, काफी सारे रिफॉर्म्स हुआ है, और एक जो सबसे बड़ा रिफॉर्म्स इसमें जो हुआ है अपार्ट फ्रॉम द AQR, सेक्टर वाइज अगर आप मुझे पूछे, SME जो सेक्टर है आपका, जो पता है जो बैंक सेक्टर जो क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है 18-19% हो रहा है, बहुत लोग हमको पूछते हैं कि आपको इतना क्रेडिट ग्रोथ कैसे होगा, आगे जाके ये चल सकते हैं कि नहीं। लेकिन इससे सबसे बड़ा चीज है कि इसमें ये SME क्रेडिट ग्रोथ 23-24% लास्ट 2 साल से चल रहा है, एंड दे आर ऑल सॉलिड ग्रोथ। एंड ये क्यों हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी सारे इंसेंटिव्स दिया इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने के लिए, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है और बैंकिंग सिस्टम में जुड़ा है, वैल्यू चेन में ऊपर गया है, और आज का दिन उसका हमने उसका बेनिफिट्स देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर एक ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिस पे गया है। पहले भी रिफॉर्म्स हुआ था 1998 में, अगर आप देखें उसी जो हमने आपके पहले बोला, उसी टाइम नरसिम्हन कमेटी रिकमेंडेशन आए थे, फिर उसके बाद बेसिल कमेटी रिकमेंडेशन भी उसी टाइम चालू हुआ था, फिर 2014 के बाद हमने काफी सारे रिफॉर्म्स किया, एक तो उसमें है जो रिकवरी के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो हमने किया है। तो मुझे चलते ये लगता है कि बैंकिंग सेक्टर इज नाउ पॉइज्ड फॉर अ वेरी गुड रन, बिकॉज इसका जो बेसिस है वो काफी सॉलिड है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी एंड अदर पैरामीटर्स।
1: जी बिल्कुल, और अब इन्हीं सब विषयों के बारे में थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं एसेट क्वालिटी रिव्यू से। हमारा मानना यह है कि हमारी जो सरकार है उनकी योजना हमेशा से रही है कि पहले समस्या को ढूंढा जाए, फिर उसका समाधान ढूंढा जाए और फिर बैंकिंग से

0: सेक्टर में मजबूती लाई जाए। तो एसेट क्वालिटी रिव्यू जो है वो पहले समस्या को ढूंढने पर निर्भर था और उसके जरिए बैंकों की जो स्ट्रेस लोन्स की स्थिति थी वो ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आई। तो आपके नजरिए से एसेट क्वालिटी रिव्यू जो है वो बैंकिंग सेक्टर में बाद में सुधार लाने में इसकी क्या भूमिका रही?
1: देखिए, एसेट क्वालिटी रिव्यू तो इनेविटेबल था। प्रॉब्लम ये था कि हम उसको पहले 2009 के बाद जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में गया था, हम हो सकते थे उसी टाइम जो लोन खराब है उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं। हम उसको 3-4 साल ऐसे जाने दिया कि उसको हम नहीं करे, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। लेकिन आगे जाके जो होना था वही हुआ। जैसे ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में डिक्लाइन हुआ था, ये सारे जो लोन्स था बिगड़ गया। और इसमें आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो बैंक्स का लोन था 20-30% सारे लोन मोस्टली उसी सेक्टर्स में उस पर बिगड़ गया था। रोड्स था, पावर था, ट्रांसपोर्ट था, इस पे काफी सारे लोन आपको बिगड़ गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही बिगड़ गया उसके बाद आरबीआई ने एक रिफॉर्म्स लाए, AQR रिव्यू। इसको हम बोलते हैं RRR, रिफॉर्म्स रिकैपिटलाइजेशन एंड रिजोल्यूशन। तो रिफॉर्म्स किया, रिकैपिटलाइजेशन गवर्नमेंट में 3 trillion रिकैपिटलाइज किया, फिर रिजोल्यूशन किया और रिफॉर्म्स किया। तो ये तीनों आरोप करके बैंकिंग सेक्टर में और जो ग्रोथ हुआ, सबसे बड़ा चीज की पब्लिक सेक्टर बैंक्स का आज जो क्रेडिट ग्रोथ है, जो नंबर्स है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से भी अच्छा है, ये पहले था नहीं। तो ये जो हम बीच बीच में आप काफी टाइम आपने ये बात सुनते हैं कि इतने सारे लोन्स को हमने बैंक्स का राइट ऑफ कर दिया, ये बेसिकली AQR था। ये लोन जो पहले था, ये लोन को आपको क्लीन अप करना था, क्लीन अप पहले हुआ नहीं, बाद में क्लीन अप हुआ। जो प्रॉफिटेबिलिटी बैंक का नेगेटिव था, आज वो 4 lakh crore प्रॉफिटेबिलिटी है। और मैं आपको बाकी भी जो नंबर्स दिया कि लिक्विडिटी देखिए, अर्निंग्स देखिए, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, सारे नंबर्स अब डिकेड हाई में है। तो मैंने यही कहना है कि AQR इनेविटेबल, एक नेसेसरी इविल था, हम उसको करना था, हमने कर लिया। दो तीन साल के लिए बैंक्स का प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव हो गया, लेकिन उसके बाद सारे बैंक्स इन इंडिया आर ऑन स्ट्रॉन्ग एंड वार्ड फुटिंग एंड स्ट्रॉन्ग फुटिंग। एंड मुझे लगता है कि जो अब इकोनॉमी आज ग्रो हो रहा है 18-19% में जो क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है, इसका रीजन हम उस रिफॉर्म्स के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि हमने सारे सेक्टर में रिफॉर्म्स किया। हमने SME में भी काफी रिफॉर्म्स किया, हम बाकी जो सेक्टर्स लोन से एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमने रिफॉर्म्स किया है, जो लोन्स का जो रूल्स है उसको भी हमने अच्छा किया, बैंक्स का अंडररैटिंग स्टैंडर्ड काफी इंप्रूव हो गया। तो सारे चीज अगर हम मिला, सारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी सब डिजिटाइज हो गया। अगर आपको आज का दिन आपको अगर कुछ लोन चाहिए तो आप उसको बहुत जल्दी कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा क्रेडिट स्कोर है। तो सारे चीज मिला के आई थिंक ये बहुत अच्छा, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आज बैंकिंग सेक्टर एक्चुअली एक ग्रोथ का बैकबोन हो गया एंड इट इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल कि हाउ कैन अ बैंकिंग सेक्टर टेक फॉरवर्ड एन इकोनॉमी एंड सपोर्ट द फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्रेडिट नीड्स।
0: आपने SMEs का भी जिक्र किया था अपने जवाब में, तो मैं चाहूंगी कि आप SME सेक्टर में जो रिफॉर्म आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, और साथ ही साथ 2016 में आए IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में भी बताएं, और IBC के आने के बाद कंपनियों के बैड लोन से निपटने के तरीके में किस तरह बदलाव आया?
1: देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तो मैं IBC लेके आता हूं। IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में आए थे और वो बेसिकली वो एक डिमांड था बैंकिंग सेक्टर का, क्योंकि अगर हमको कोई लोन को रिजोल्व करना है उसको हमको कोर्ट, अगर नहीं होता है उसको हम एक कलेक्टिव मैकेनिज्म में डालेंगे, उसमें उसका रिजोल्यूशन होगा। पहले क्या होता था कि अगर हम किसी को रिजोल्यूशन के लिए बैंकिंग सेक्टर किसी प्रोमोटर से किसी को बुलाते थे, वो करते नहीं था। तो ये कोड आने के बाद ये उनके लिए मस्ट हो गया, अगर आप सेटलमेंट नहीं करेंगे तो ये आपको मार्केट में चला जाएंगे, दूसरा किसी के हाथ में चला जाएंगे। ये जो हम बार बार बोलते हैं ना कि आप अगर ये देख डिबेट देखे, बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव डिबेट है कि इतना पैसा आपने लोन उसको मकूब कर दिया, लेकिन उनके साथ ये बात भी बोलना है कि लोन राइट ऑफ जो होता है बैंकिंग सेक्टर क्लीन अप के लिए, उसके बाद उनके हाथों से उस कंपनी का मैनेजमेंट चला जाते हैं, बिकॉज ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में एक बीडिंग होता है, जो सबसे अच्छा बीट करेंगे उसको कंपनी मिलेगा। इसके बाद हमने देखा कि काफी स्टील सेक्टर में, जो सबसे खराब सिचुएशन से गुजरा था, सबसे ज्यादा रिजोल्यूशन स्टील सेक्टर में हुआ था। कुछ कंपनीज का नाम आपको पता है, तो भूषण स्टील फॉर एग्जाम्पल, उसको टेक ओवर हुआ और उसी टाइम में करके वो कंपनी आगे चलते रहा। तो ये तो पहला बात है। दूसरा बात है कि अगर आप SME सेक्टर को बात करें, SME सेक्टर में काफी सारे रिफॉर्म्स आए। पहले रिफॉर्म जो आए थे कि वो जो ECLGS स्कीम, बेसिकली लोन गारंटी, गवर्नमेंट

0: स्टेटमेंट में बोला था कि जो लोन बैंक्स एक्सटेंड करेंगे पैंडेमिक टाइम्स पे उसके लिए कोई उसको रिस्क वेट नहीं लगेंगे, तो उसके लिए वो लोन काफी सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट में फिर ECLGS देके, आपको अगर पता है कि कुछ दिन पहले ये वेस्ट एशियन क्राइसिस में ECLGS में 2,50,000 करोड़ का लोन बैंकिंग सिस्टम ने दिया है, और उसके साथ SME सेक्टर में काफी सारे रिफॉर्म्स आए। एक तो फॉर एग्जांपल जो SME सेक्टर में अभी स्ट्रीमलाइंड हो गया, लोन अगर मिलना है तो आपको पास अगर पेपर्स है प्रॉपर, ये लोन आप 59 मिनट्स में मिल सकते हैं। उसके बाद जो क्रेडिट गारंटी स्कीम थे SME सेक्टर, उसको भी सिंप्लीफाई हुआ है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, एक पोर्टल खुला हुआ है, उसका आपको पता है कि उसका नाम है उद्यम पोर्टल। उसमें जितने सारे MSME सेक्टर का प्लेयर्स है जो फॉर्मलाइज नहीं हुआ है, वहां पर आप उसका अगर नाम डालेंगे तो बैंकिंग सेक्टर से आप जोड़ सकते हैं। तो सारे चीज अगर देखे, ये सारे चीज देख के आज का दिन मुझे आश्चर्य नहीं लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ SME सेक्टर का 24% चल रहा है। MSME सेक्टर का क्रेडिट ग्रोथ का पोटेंशियल काफी हाई है, क्योंकि जो उद्यम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन है वो 7 करोड़ का ऊपर है, और हमको 7 करोड़ में अगर पहुंचना है तो हमको और ज्यादा लोन MSME सेक्टर को हम दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपका डिजिटाइजेशन हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन हो जाते हैं, अब रिकॉर्ड आपके पास हो जाते हैं, आप दिन लोन देना आपके लिए आसान हो जाते हैं। तो यही चीज सबसे अच्छा हुआ है SME सेक्टर के लिए, क्योंकि पहले ये लोग का बीच जो पेपर्स था फॉर्मलाइज नहीं था, अभी फॉर्मलाइजेशन के चक्कर में इनका बैंकिंग सेक्टर में इससे जुड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एक छोटा सा चीज में इंसॉल्वेंसी कोर्ट के लिए बोलना चाहता हूँ। इंसॉल्वेंसी कोर्ट के लिए आपने सुना है कि बीच बीच में खबर आते हैं कि इसका जो रिकवरी हुआ है बहुत कम हुआ है, इसका रिकवरी और होना चाहिए था। हाँ, ये बात सही है, लेकिन इसमें एक बात आपको मानना चाहिए कि बीच में जब इंसॉल्वेंसी कोर्ट का दो फेज है, पैंडेमिक का पहले पैंडेमिक के बाद, पैंडेमिक का पहले क्या हो रहा था कि पैंडेमिक का पहले उन्हें कोर्ट पे बहुत अच्छा रिकवरी हुआ, लेकिन पैंडेमिक के बाद शायद 1-2 साल आपको पता है कि कोर्ट बंद था, काम नहीं हुआ, उसके लिए काफी सारे आपको बैकलॉग आ गया। तो हो सकता है कि इसमें हम और कुछ रिफॉर्म करें और कुछ सुधार लेके आए और ज्यादा कोर्ट्स बनाए और थोड़ा देर से मेकानिज्म है थोड़ा ठीक से देखे, तो इसमें इंप्रूवमेंट आनी है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कोई जब लॉ आते हैं उस लॉ में अमेंडमेंट्स लेके उसको हम कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हो सकते हैं फ्यूचर में इसका हम इम्प्रूवमेंट में इसका कुछ स्कोप है, बट ऑन द होल ये अच्छी रिफॉर्म्स है। एंड हमको जानना, आपको मानना पड़ेंगे कि इस रिफॉर्म्स के लिए जो कंपनी का कंट्रोल आपका हाथों में होता है वो चला जाते हैं दूसरा किसी का हाथों में। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है ये रिजोल्यूशन कोर्ट का।
1: इससे पहले कि मैं IBBI यानी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, NCLAT और NCLT की चर्चा करूं, मैं आपसे एक और विषय में बात करना चाहती हूं, जो कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है। यानी कि एक तरफ तो हमारे बैंक्स थे जो कि स्ट्रेस्ड बैलेंस शीट की प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, और दूसरी तरफ थी हमारी कंपनीज जो कि सेम समस्या से गुजर रही थी। तो ये जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, इसको एक साथ एड्रेस करना कितना जरूरी था, बजाय इसके कि दो अलग अलग हिस्सों में दो अलग अलग समस्याओं का समाधान होता। यानी एक तरफ हम बैंकों का समाधान ढूंढते और दूसरी तरफ हम कंपनियों के खराब हुए लोन्स का समाधान ढूंढते।
0: देखिए, ये दोनों चीज एक साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेके आए, बैंक्स ने रिकॉग्नाइज किया, लोन रिकवरी चालू हो गया, उसके साथ काफी सारे सेटलमेंट भी आ गया। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज हम बोलते हैं वन टाइम सेटलमेंट, मतलब आप टेबिल में आ जाओ, आप कितना पैसा आप दे सकते हैं उसके हिसाब से आपको सेटलमेंट होगा। तो क्या हुआ, उसके बाद ये सेटलमेंट चालू हुआ कंपनीज का बैलेंस शीट का भी काफी इंप्रूवमेंट हो गया। आपको आप सुनने में आश्चर्य हो जाएंगे, 2020 से 2026 तक आप देखे कंपनीज को जो मार्केट से जो पैसा उठाया 15-16 लाख करोड़, उनका ओवरऑल कैपिटल उन्होंने मार्केट से उठाया है। और अगर आपका कैश भी देखे, उसका कैश भी उसका काफी सारा अच्छा 14-15 लाख करोड़ कैश है। उसका मतलब कि कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में काफी क्लीन हो गया। उसका पैंडेमिक के टाइम में इंटरेस्ट रेट काफी नीचे चला गया, इसके लिए जो पुराना लोन उन्होंने लिया था वो सारे लोन उन्होंने रीपेमेंट कर दिया। उसका बैलेंस शीट में अभी कोई लेवरेज नहीं है। तो एक तरफ बैंक का बैलेंस शीट इज परफेक्टली फाइन नाउ, कॉर्पोरेट का भी बैलेंस शीट है वो काफी अच्छा अभी है, क्योंकि बैंक का कॉर्पोरेट का बैलेंस शीट में अभी कैश काफी हैंड में है, कैश इन हैंड अच्छे में है और पैसा भी उठा सकते हैं और उसका रेटिंग भी अच्छा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम हमारा ट्विन बैलेंस शीट के था, दिस इज नाउ अ प्रॉब्लम ऑफ द पास्ट।
1: हमारे श्रोताओं के लिए एक बार आप अगर संक्षिप्त में एवरग्रीनिंग का मतलब समझा सकें तो शायद हमें आगे की बात समझने में और आसानी होगी।
0: एवरग्रीन का जो प्रॉब्लम था, पहले ये बात होते थे कि पहले जब ग्लोबल क्राइसिस के बाद 2009-10 में क्या होते थे कि

0: एक लोन अगर खराब हो गया उसमें के उसी लोन को आप ठीक करने के लिए और लोन उस कंपनी ले रहा है किसी इंस्टीट्यूशन से, उसका मेवर रिनिंग बोलते हैं। जब आपको पता है कि ये लोन वापस नहीं कर पाएंगे, आप उसको और एक दूसरा लोन देंगे उसी लोन को वापस करने के लिए, तो उसका मेवर रिनिंग बोलते हैं। तो इसके लिए AQR रिव्यू हुआ था, देखना चाहते थे RBI गवर्नमेंट की कितना सारे स्ट्रेस बैंक के ऊपर है। ये अच्छा है कि वो हम चीज निकल लिया। बैंकिंग सेक्टर का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, मैं आपको दोबारा बार बार बोलना चाहता हूँ, राजा रिकॉर्ड प्रॉफिट ग्रोथ है और इसी आगे चलते भी बैंक का प्रॉफिट ग्रोथ ऐसे ही रहेगा।
1: जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि समस्या के तीन हिस्से हो गए। पहला हिस्सा हो गया समस्या को पहचानना, जो कि एसेट क्वालिटी रिव्यू ने किया। दूसरा हिस्सा हो गया समस्या का समाधान ढूंढना, और तीसरा हो गया उसे इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अगर हम देखें तो IBBI यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया और NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल की बहुत अहम भूमिका रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: 2016-17 में एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफी सारे लोन वेवर चलते थे। अगर कोई भी आ गया, बैंक्स कोई बोलते थे हम गवर्नमेंट पावर में आएंगे तो हमको लोन वेव कर देंगे। इसके लिए क्या होता है कि जो पहले जो लोन वापस कर रहे थे वो भी बंद कर देते, तो वो लोन वेवर खत्म हो गया। क्योंकि अभी बहुत सारे जो फार्म स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है उसके लिए आप उनको KYC उसका KCC नॉर्म्स हो गया और लोन का जो अमाउंट है वो भी बढ़ा दिया, तो इसमें भी काफी सारे रिफॉर्म्स हुआ है। एलाइड सेक्टर के लिए काफी सारे रिफॉर्म्स लेके आए फार्मर्स का इनकम बढ़ाने के लिए। तो ओवरऑल सारे सेक्टर्स अगर आप देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बात कर सकते हो, इंडस्ट्री है, रिटेल है, हर सेक्टर में कुछ ना कुछ हुआ है जिसके लिए आज बैंकिंग सेक्टर में जो क्रेडिट ग्रोथ है और डिपोजिट ग्रोथ है वो इतना अच्छा देख रहे हैं। और दुनिया में अनसर्टेनिटी भरे हुए है, आपको भी पता नहीं है आज US में क्या होगा, कल क्या होगा। आज हो सकता है कि टैरिफ लग गया, हो सकता है कि कल टैरिफ हट भी गया, हो सकता है कि टैरिफ फ्यूचर में नहीं भी आया। पर दुनिया बहुत तरफ से त्रस्त है कि क्या होने वाला है। इसका बीच में अगर इतना अच्छा परफॉर्म करना इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट है। और ये जो ग्रोथ भी हो रहा है इसके लिए क्रेडिट ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। 20% के करीब क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है लास्ट 2-3 साल में। ये सचमुच मुझे लगता है कि काफी सारा एक आश्चर्य नंबर है। वो समटाइम्स वी थिंक कि इतने सारे क्रेडिट ग्रोथ कैसे हो रहा है, बट इसके अगेंस्ट में सॉलिड मैक्रो फंडामेंटल्स भी बैठे हुए हैं।
1: अब वक्त आ गया है कि हम हमारी चर्चा को बैंकिंग सेक्टर की मजबूती की तरफ लेकर चलें। जब हम बैंकिंग सेक्टर की मजबूती की बात करते हैं तो इसमें दो अहम कदम उठाए गए थे। पहला था बैंक रिकैपिटलाइजेशन और दूसरा था पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करना। पहले हम रिकैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो रिकैपिटलाइजेशन जो है वो कितना अहम कदम था ताकि पुराने नुकसानों को आसानी से अब्सॉर्ब किया जा सके?
0: नहीं देखिए, रिकैपिटलाइजेशन तो करना था क्योंकि सेक्टर के लॉस था। और रिकैपिटलाइजेशन जब कैसे किया भी था, कोई इनोवेटिव उपाय से गवर्नमेंट ने किया था। रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स था तो उसके लिए क्या था, वो कैश न्यूट्रल था। उसके लिए क्या हुआ था, डेट बढ़े थे लेकिन फिस्कल डिफिसिट उस पर नहीं बढ़े थे। तो सबसे बड़ा पहले ये चीज है। तो उसपे आई थिंक ये मुझे इतना याद है कि 3 लाख करोड़ का अराउंड रिकैपिटलाइजेशन हुआ था 1-2 साल में। तो सबसे बड़ा चीज वो था। दूसरा जो चीज था कि रिकैपिटलाइजेशन के लिए क्या हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर उसमें बढ़ गया था। इसके लिए आगे चलते अगर गवर्नमेंट उसको स्टेक को नीचे करना चाहते हैं तो नीचे कर सकते हैं, उसको अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको अभी पता है कि वो थोड़ा सा दूसरा का बात है कि गवर्नमेंट IDBI बैंक को डिस इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पहले बात है। तो रिकैपिटलाइजेशन तो होना था। रिकैपिटलाइजेशन हमने 3 ट्रिलियन किया था, लेकिन रिकैपिटलाइजेशन हमने कैसे किया था, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड से किया था। इसके लिए हमारा ये कैश न्यूट्रल था, उसका मतलब फिस्कल डेफिसिट के ऊपर हमको इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन हमारा डेट के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। ये तो पहला बात है और ये बहुत सक्सेसफुल भी था रिकैपिटलाइजेशन एक्सरसाइज। लेकिन इसके साथ जो गवर्नमेंट ने किया है, जो मार्जर्स, आपको पता है कि हमारा ओवरऑल पब्लिक सेक्टर बैंक 27 था, लेकिन आज का दिन मार्जर होकर ये 12 था। आपको पता होगा कि एक गवर्नमेंट में अनाउंस किया कि एक बैंकिंग सेक्टर कमिटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसका रोल होगा कि बैंकिंग सेक्टर का रोड मैप देखने के लिए। इंडिया में एक डिबेट है, अगर आप इंडिया को चाइना के साथ कंपेयर करें, चाइना में जो 4-5 लार्ज बैंक्स है, इंडिया में अभी काफी 12 लार्ज बैंक्स है। उसमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो सबसे बड़ा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडियन जीडीपी का 22% होता है। तो ये जो 27 से 12 हो गया, इसके लिए आपको क्या हो गया था,

0: कि कंसोलिडेशन हुआ, आगे चलते हमारा कोशिश है कि हमारा बैंक दुनिया के सबसे अच्छा बन गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, अगर आप देखें वो बहुत ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक्स है, और इसका एसबीआई फॉर एग्जाम्पल उसका रैंकिंग भी काफी अच्छे है अगर आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक देखें। और आगे चलते हमारा यही कोशिश रहेगा, ये कंसोलिडेशन जो हमने 27 से 12 तक लेके आए, अगर हम और कुछ कंसोलिडेशन कर सकते हैं दुनिया का जो सबसे अच्छी बैंक्स है उसमें हमें इंडिया का बैंक्स का भी रहेगा, तो वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल अगर ऐसे हम चलते रहे तो अगले 4-5 साल से हम उसी तरफ जा सकते हैं।
1: डॉक्टर घोष, क्या मर्जर का मतलब हमेशा मजबूती और एफिशिएंसी होता है या इसका एक दूसरा पहलू भी है?
0: नहीं देखिए, इसका पहले तो बहुत सारे है लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको एफिशिएंसी, एंड इसको हम स्केल इकोनॉमीज बोलते हैं। जो काम आप समझ रहे हैं कोई एक बैंक कर रहे हैं, अगर दोनों बैंक एक साथ जुड़ जाए उसमें स्केल इकोनॉमीज काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बैंक एक एरिया में अच्छा है, दूसरा बैंक दूसरा जगह में अच्छा कर रहे हैं, प्रेजेंस दूसरा तरफ है, तो अगर दोनों बैंक को आप जोड़ दे उसका प्रेजेंस भी बढ़ जाएगा, और इसको हम स्केल इकोनॉमी बोलते हैं। और उसपे क्या होता है, उसपे खर्चा भी कम हो जाता है, बिकॉज अगर सारे बैंक एक साथ आते हैं तो डिजिटाइजेशन के चक्कर में उसका खर्चा भी कम होता है, तो खर्चा कम होता है, स्केल इकोनॉमीज इंप्रूव होता है, जो अलग अलग मार्केट्स होता है कंसोलिडेट हो जाते हैं, और विजन उसका एक साथ बन जाते हैं। तो आई थिंक ये बैंकिंग कंसोलिडेशन एक अहम मुद्दा है, तो फ्यूचर में भी ये शायद होगा। और इंडिया को जो मैं आपको पहले बोला कि फर्स्ट चीज हमको करना है कि बैंकिंग सेक्टर को हम आगे बढ़ाने के लिए हमको मर्जर का जरूरत है, और इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बैंक्स तभी हो सकते हैं जब बहुत सारे बैंक्स एक साथ जुड़ जाए।
1: जी बिल्कुल, और इसी के साथ साथ हमारी चर्चा अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गई है। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, और वो ये कि अगर हम इन सब रिफॉर्म्स को एक बड़े रूप में देखें, इफ वी लुक एट द बिगर पिक्चर, तो इनके पीछे जो व्यापक विजन था वो क्या था हमारी सरकार का, हमारी लीडरशिप का, और साथ ही साथ हमारी आगे की ग्रोथ स्टोरी, हमारे बैंकिंग सेक्टर की आगे की यात्रा किस तरह की दिख रही है?
0: बैंकिंग सेक्टर अगर आप मुझे देखे, बैंकिंग सेक्टर का आज फंडामेंटल साउंड है, स्ट्रांग है, एसेट क्वालिटी इज वेरी गुड, अंडररेटिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है, बैंक का कंसोलिडेशन हो चुका है, बैंक डिजिटाइजेशन एक्सरसाइज में बहुत आगे हो चुका है, बैंक्स का आज आप देखे एक फिजिटल एक्सपीरियंस है, बैंक का क्रेडिट ग्रोथ 20% तक जा रहा है, डिपोजिट ग्रोथ भी आप ज्यादा हो गए, एफसीएन में डिपोजिट मोबिलाइजेशन का आपको पता है कि एफसीएन डिपोजिट मोबिलाइजेशन में हमने 140 यूएस बिलियन की ज्यादा मोबिलाइज किया, बैंकिंग सेक्टर का स्ट्रेंथ है, और सारे चीज मिला के मुझे इंडियन बैंकिंग सेक्टर का जो विजन है वो 2047 तक एक रोड मैप है, जिसे रोड मैप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा बैंकिंग सेक्टर की कस्टमर फर्स्ट। इसके लिए इसमें अभी जो डिजिटाइजेशन है, कंप्यूटराइजेशन है, एआई का यूज करके बैंकिंग सेक्टर को उसका बेस को बढ़ा रहे हैं, और चैलेंजेस तो रहेगा, सबसे बड़ा चैलेंज जो बैंकिंग सेक्टर को रहेगा डिजिटाइजेशन का युग होगा साइबर सिक्योरिटी, उसके लिए बैंक्स को उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड विल कंटिन्यूअसली हैपन, और फ्यूचर बैंक्स का इंडिया में काफी अच्छा होता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैंकिंग सेक्टर में आई थिंक कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ बोला था, शायद बिल गेट्स बोले थे कि फ्यूचर इज नॉट अबाउट बैंक्स बट इज अबाउट बैंकिंग, सो बेसिकली बैंक्स का सर्विसेज के लिए एवरीबॉडी विल बी इंटरेस्टेड। ये जो करंट जेनरेशन था 10 साल 20 साल में हो सकता है बैंक्स में बैंक्स के तरफ लोग और ज्यादा डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके लिए इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजिकली बैंक को सेवी होना है, और ये एक प्रोसेस जो चलते रहेगा। तो मुझे लगता है कि भारत का ग्रोथ स्टोरी बैंक के साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर होश हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और आपने बहुत ही अच्छे आंकड़े हमें बताए और बहुत ही सफाई से हमें ये समझाया कि हमारा बैंकिंग सेक्टर कैसे मजबूती की ओर बढ़ा और हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में इसकी क्या भूमिका रही। इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 13वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, बैंकिंग सुधार से मजबूत अर्थव्यवस्था तक। इसमें भाग ले रहे थे 16वें वित्त आयोग और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति घोष। कार्यक्रम का संचालन

0: पालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSTtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं उत्सव फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में। वसंत देव का लिखा हुआ ये गीत है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
2: FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। रात के 8:35 हो रहे हैं। अब प्रसारित है फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का पहला गीत,

झूम बराबर झूम फिल्म का ये सुमधुर गीत आप सुन रहे थे राहत फ़तेह अली खान और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ में। गीतकार थे गुलजार और संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने। आइए सुनते हैं अगला गीत।

पद्मावत फिल्म का ये सुमधुर गीत आप सुन रहे थे शिवम पाठक की आवाज़ में FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

0: ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दवान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
3: किसान को ठीक दाम मिल जाए, हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसमें दोनों व्यवस्था, एक एमएसपी और एक विदाउट एमएसपी, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों। ये तय किया, तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
1: श्री चौहान ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों से उभर रहे नए बाजार अवसरों का लाभ उठाएगा।
3: FTA का जो हमारे कृषि समझौते हुए दुनिया के देश, वो भारत के किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जो 0% इम्पोर्ट ड्यूटी पर दुनिया के बाजारों में जा सकते हैं। हमारे फल, हमारी सब्जी, हमारे अनाज, अगर बाजार से किसान को ठीक कनेक्ट कर दिया तो उसको दाम ठीक मिलने की गारंटी है।
1: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 10 से ज्यादा राज्यों के कृषि मंत्रियों को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मंजूरी के पत्र भी सौंपे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलें शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों का उदाहरण बनेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए संशोधित ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल या उससे नीचे के मानक वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध अब सोनीपत में भी लागू होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान की टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
5: इंडिया रिजेक्ट्स दी अनवारंटेड रेफरेंसेस।
6: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
5: नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस इशू।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी।
7: अमेरिकी कांग्रेस के जो यहाँ पर डेलीगेशन आई हुई है उनकी मुलाकात फॉरेन सेक्रेटरी से हुई और उस मुलाकात में अन्य विषयों के अलावे जो हमारी चिंताएं हैं इसको लेके कि इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है हमारे द्विपक्षीय रिश्तों पर और उसके अलावे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ऊर्जा की स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन चिंताओं के बारे में उनको दोहराया उनसे।
1: फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। इन पर करीब 163 भारतीय नाविक सवार हैं। जहाजरानी मंत्रालय इन जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर रख रहा है। भारत बांग्लादेश गंगा जलसंधि से जुड़े सवाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त नदी आयोग है और नदियों से जुड़े सभी मुद्दों पर इसी आयोग के माध्यम से चर्चा की जाएगी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा करेगी और शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से संबंधित है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से मुलाकात की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष रूप से बल दिया गया। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार

0: से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
1: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर एक रुपये में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंचते हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि डीबीटी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुँच रहा है।
2: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के किसान दिनेश कुमार राठौर ने बताया कि डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये मिल रहे हैं।
3: अब हमारे खाते में सीधे सरकार द्वारा डायरेक्ट पैसे आ जाता है। साथ ही जब भी हम खाद या बीज लेने जाते हैं तो हमें डीबीटी के माध्यम से काफी छूट मिलता है। वहीं किसान सम्मान निधि के द्वारा अब सालाना 6,000 रुपये मिलता है।
1: इस साल अगस्त तक डीबीटी के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। डीबीटी ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज दोहा में एशिया अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की वार्षिक बैठक के दौरान कतर के वित्त मंत्री अली बिन अहमद अल कुवारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कतर में भारत की UPI भुगतान प्रणाली के विस्तार और दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान कतर की भारत में $10 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के जुड़ाव और द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देने पर विशेष बल दिया गया। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक के भीतरी इलाकों केरलम, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। और अब बात एशियाई खेलों की। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। पूजा ने महिलाओं की हाई जंप स्पर्धा में और गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाजी में नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम और अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत 6 स्वर्ण 21 रजत 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।

0: pretty clean role model cities across the country. India rejects unwarranted references made by Turkish President Tayyip Erdogan on Jammu and Kashmir during his UNGA address. Heavy rainfall conditions likely over interior Karnataka, Kerala and northeastern states tomorrow. And in Asian Games 2026, India clinches gold in women's 4x400m relay. Neeru Dhanda wins gold in women's trap individual event. Overall medal tally rises to 53, including 6 gold, 21 silver and 26 bronze. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिफाई तैयारी के सिलसिले में जोग्राफियाई अहमियत की हामिल सोच और हंगामी सूरतेहाल से निमटने की मंसूबाबंदी पर जोर दिया है। ज़राअत के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत एक कसीर रुखी हिकमत अमली पर काम कर रही है ताकि किसानों की पैदावार की माकूल कीमतों को यकीनी बनाया जा सके। प्रगति 50 के तहत इकदामात के नए सिलसिले का आगाज किया गया है जिसका मकसद मुल्क भर में 50 मिसाली शहर तैयार करना है। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली से अपने खिताब में तुर्की के सदर रजब तैयब उरदगान के जम्मू कश्मीर पर गैर जरूरी तस्करे को मुस्तरद कर दिया है। कल अंदरूनी कर्नाटक, केरलम और शिमाल मशरकी रियासतों में शदीद बारिश का इम्कान है। और एशियन गेम्स 2026 में भारत ने खवातीन की 4x400m रेले में सोने का तमगा जीता है। खवातीन के ट्रैप इन्फिरादी मुकाबले में नीरू धांडा ने सोने का तमगा जीता। भारत के तमगों की कुल तादाद बढ़कर 53 हो गई है जिनमें सोने के 6, चांदी के 21 और कांसे के 26 तमगे शामिल हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह ने आज इस बात पर जोर दिया कि बदलती हुई टेक्नोलॉजी, गैर यकीनी हालात और जोग्राफियाई इम्कानात से पैदा होने वाले चैलेंजेस के पेश नज़र भारत को जोग्राफियाई स्ट्रेटेजिक सोच और हंगामी मनसूबाबंदी को अपनी तैयारियों का लाजमी हिस्सा बनाना चाहिए। नई दिल्ली में भारतीय बहरिया के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क का हदफ वाजे है कि बहरान पैदा होने से पहले तैयारी मुकम्मल हो जानी चाहिए ताकि किसी भी बहरान से निपटा जा सके। वजीर दिफा ने मजीद कहा कि जारी ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने एक बार फिर भारतीय बहरिया की पेशावराना और अमली तैयारी को साबित कर दिया है जो मुल्क की तवानाई की सप्लाई लाइनों और कौमी मफादात के तहफ्फुज के लिए जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत बहरे हिंद के खित्ते में एक काबिल एतमाद और तरजीही सिक्योरिटी शराकत दार के तौर पर मजबूती से खड़ा है और एतमाद और भरोसे की इलामत बना हुआ है जिससे मुल्क के महासागर के विजन को तकवीयत फराहम हो रही है। वजीर दिफा ने कहा कि जनूबी बहरे चीन, बहरे रोम, बहरे ओकियानूस में भारतीय जंगी जहाजों की मौजूदगी मुल्क की बहरी ताकत की सलाहियत का इजहार करती है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत एक कसीर रुखे हिकमत अमली पर काम कर रही है ताकि किसानों को उनकी पैदावार की मुनासिब और माकूल कीमतें मिल सकें। इस हिकमत अमली में कटाई के बाद के बंदोबस्त, पैदावार को साइंसी तौर पर गोदाम में रखना और मार्केटिंग निजाम शामिल है। आज नई दिल्ली में रबी मुहिम 2026 पर कौमी जरी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन खिताब करते हुए जनाब चौहान ने तूर, उरद और मसूर की कम से कम इमदादी कीमत पर 100% सरकारी खरीद और 48 घंटे के अंदर अंदर अदायगी के इंतजाम की यकीन दहानी कराई।
2: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो वहाँ भी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
1: वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत बैनुल अक़वामी आज़ाद तजारती मुआहिदों के तवस्सुत से उभरने वाले बाजार के नए इम्कानात को भी बरूएकार लाएगा ताकि मुल्क की ज़रई पैदावार, फलों, सब्जियों और अनाज को आलमी बाजारों तक रसाई फराहम हो सके। जनाब चौहान ने कहा कि इससे किसानों को उनकी पैदावार की बेहतर कीमत को यकीनी बनाया जा सकेगा और भारत दुनिया के लिए खुराक के मामले में एक अहम

0: बन जाएगा। मकानात और शहरी उमूर के वजीर मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के तहत नए इकदामात के सिलसिले का आगाज किया, जिनका मकसद 50 शहरों के लिए इक्तसादी, सकाफती, विरासती, मजहबी, सियाहती और इंतजामी अहमियत के हामिल मिसाली शहर से मुतालिक तरीक़ेकार तैयार करना है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने जोर देकर कहा कि 24 रियासतों में ये 50 शहर मुल्क के बकिया हिस्से के लिए एक साफ सुथरे मिसाली शहरों के तौर पर उभरेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अहम शहरों, सकाफती अहमियत के हामिल शहरों, ज्यादा सयाहों वाले मकामात और इक्तसादी मराकज को इनमें शामिल करने को यकीनी बनाया है। इन इकदामात का मकसद एक मुकर्रा मुद्दत के दौरान निगरानी और जायजे के एक मुनज्जम तरीक़ेकार के तहत शहरों की सफाई सुथराई, ठोस कचरे के बंदोबस्त, इस्तेमाल शुदा पानी के बंदोबस्त और शहरियों की शमूलियत के जरिए नुमाया बेहतरी लाना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमात के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम तस्करा कर रहे हैं कि फवायद की बराह रास्त मुंतकली के जरिए इस नजरिए को किस तरह बरूहेकार लाया जा रहा है।
1: 2014 में शुरू की गई फायदों की बराह रास्त मुंतकली की स्कीम के तहत फलाही स्कीमों की फराहमी के निजाम में इनकलाबी तब्दीली आई है। इसके जरिए हुकूमत की जानिब से फवायद की रकम बराह रास्त अहल मुस्तफिदीन के खातों में मुंतकिल की जाती है। इस निज़ाम ने बिचौलियों के रोड को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और रुकूम में किसी भी तरह की खुर्द-बुर्द को रोककर शफाफियत पैदा की है। इस साल अगस्त तक फवायद की बराह रास्त मुंतकली के जरिए 320 स्कीमों के तहत 53 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम अहल मुस्तफिदीन के खातों में मुंतकिल की गई है। एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि फवायद की बराह रास्त मुंतकली सैकड़ों सरकारी स्कीमों के तहत की जा रही है और इस निज़ाम ने रकम की मुंतकली में किसी भी तरह की गड़बड़ के इम्कान को खत्म कर दिया है।
2: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है, इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
1: भानु की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अर्जुमंद अली खान।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली में अपने खिताब के दौरान तुर्की के सदर रजब तैयब उरुदगान के जम्मू कश्मीर पर गैर जरूरी तस्करी को मुस्तरद कर दिया है। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले का ताल्लुक भारत की इलाकाई सालमियत और खुदमुख्तारी से है और किसी बैरूनी फरीक को इस मामले पर रायजनी का हक नहीं है। इप्सा बयान पर जनाब जायसवाल ने कहा कि न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के मौके पर भारत, ब्राजील और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वज़राए खारजा सतह की एक मीटिंग हुई थी। उन्होंने मजीद कहा कि मीटिंग के बाद तीनों ममालिक ने एक मुश्तरक एलामिया जारी किया था, जिसमें तीनों मुल्कों के जामे नुक्ते नजर को शामिल किया गया था। जनाब जायसवाल ने कहा कि इसमें मुख्तलिफ इक्तसादी, तरक्याती मामलात और मुतालिका सियासी मामलात की अक्कासी की गई। सरहद पार दहशतगर्दी पर वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर की रायजनी पर जनाब जायसवाल ने इस बात को उजागर किया कि वजीर खारजा की रायजनी ने सरहद पार दहशतगर्दी को एक अहम तशवीश की वजह करार दिया है और ये कि इस आलमी लानत से निमटने के लिए ममालिक को एक साथ आना चाहिए।
3: विदेश मंत्री ने साफ किया है कि किस प्रकार का रुख और समझ भारत का है। आतंकवाद, खासकर सीमा पार आतंकवाद से लड़ने की जरूरत है।
0: 100% महसूल पर वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमरीकी कांग्रेस के वफद के साथ एक मीटिंग की।
3: अमेरिकी कांग्रेस के जो यहाँ पर डेलीगेशन आई हुई है, उनकी मुलाकात फॉरेन सेक्रेटरी से हुई और उस मुलाकात में अन्य विषयों के अलावे जो हमारी चिंताएं हैं इसको लेके कि इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है हमारे द्विपक्षीय रिश्तों पर और उसके अलावे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ऊर्जा की स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन चिंताओं के बारे में उनको दोहराया। उनसे
0: खलीज फारस में भारतीय बहरी जहाजों पर तर्जुमान ने मुतला किया कि खलीज फारस में भारत के परचम बरदार 6 कमर्शियल बहरी जहाज हैं। उन्होंने कहा कि वहां 6 गैर मुल्की परचम बरदार बहरी जहाज हैं जो भारत सामान लेकर आ रहे हैं। जनाब जायसवाल ने कहा कि जहाजरानी की वजारत मुसलसल इन जहाजों की नकलो हरकत की निगरानी कर रही है और सभी मल्लाहों की सलामती पर नजर रख

रही है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान भारत दरियाए गंगा आबी मुहिदे से मुतालिक एक सवाल के जवाब में जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत और बांग्लादेश का दरिया का एक मुश्तरक कमीशन है और दरियाओं से मुतालिक सभी मामलों पर इस कमीशन के तहत तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ भारत के ताल्लुकात गुज़श्ता बरस के मुकाबले अब बेहतर हैं। न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी की जानिब से मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सरहद पर तातुल के हल के बाद ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए। उन्होंने कहा कि भारत काफी वक्त से चीन से कहता रहा है कि बाहमी ताल्लुकात में किसी भी तरह की कमी किसी भी मुल्क के लिए मददगार नहीं होगी और तवील वक्त से तातुल भी किसी मुल्क के मफाद में नहीं है। इंतखाबी कमीशन ने आज राज्यसभा की 11 सीटों के लिए दो साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। बीजेपी लीडर और मरकजी वुजरा हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी रहनुमा राम गोपाल यादव, बीएसपी के रामजीत और छह दीगर की मुद्दतिकार 25 नवंबर को मुकम्मल हो रही है। कमीशन ने मगरबी बंगाल में राज्यसभा की एक सीट पर जिमनी चुनाव के लिए भी नोटिफिकेशन जारी की है। टीएमसी रुकने पार्लियामेंट रुक्मिनी मलिक के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी। आज से कागजात नामजदगी का सिलसिला शुरू हो गया है और पोलिंग 16 अक्टूबर को होगी। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा है कि भारत शहरी हवाबाजी के शोबे में एक अहम आलमी मरकज के तौर पर उभरने और मुतालिका मार्केट में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मरकज बनने की जानिब काम कर रहा है। आज नई दिल्ली में रूट्स एशिया 2027 से मुतालिक एक तारफी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब नायडू ने कहा कि भारत का 2047 तक मुसाफिरों की तादाद में 6 गुना इजाफा करके इसे मौजूदा 24 करोड़ से 130 करोड़ करने का मकसद है। भारतीय हाई कमिश्नर जनाब दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के उमूर खाजा के वजीर ममलिकत जनाब हुमायूं कबीर से एक खैरसगाली मीटिंग की। हाई कमिश्नर ने वजीर ममलिकत का ओहदा संभालने पर जनाब कबीर को मुबारकबाद पेश की। मीटिंग के दौरान फरीकैन ने दोनों मुल्कों के अवाम के लिए बाहमी सूदमंद नतायज पर मरकूज मुसलसल तआवुन के बारे में तबादला ख्याल किया। मुतअद्दिद कश्मीरी सियासी लीडरों, बैनुल अक्वामी हुकूक इंसानी के हामियों, सहाफियों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और समाजी कारकुनों ने जेनेवा प्रेस क्लब में मुनक्किदा एक बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इंसानी हकूक की बढ़ती हुई खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान की सख्त मजम्मत की। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जेनेवा में जारी अक्वामी मुत्तहिदा हकूक इंसानी कौंसिल के 63वें इजलास के मौके पर यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने किया था। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल अंदरूनी कर्नाटक, केरलम, माहे, क्राइकल और शिमाल मशरकी रियासतों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक अगले 3 से 4 रोज के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु और पुदुचेरी में गरज चमक के साथ चीटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने आसाम, मेघालय, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा और त्रिपुरा में भी कल गरज चमक के साथ चीटे पड़ने की पेशगोई की है। जापान के नागोया में एशियन गेम्स 2026 में आज भारत ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 8 तमगे जीते, जिनमें रिले, शूटिंग, एथलेटिक्स और बॉक्सिंग में सोने के 2, चांदी का 1 और कांसे के 5 तमगे शामिल हैं। भारत ने खवातीन के 4x400 मीटर दौड़ 3:29.69 में मुकम्मल करके सोने का तमगा जीता। भारत ने मर्दों की 4x400 मीटर दौड़ और मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में भी कांसे का तमगा जीता। इससे पहले नीरू धांडा ने जापान में खवातीन के इंफरादी ट्रैप मुकाबले में सोने का तमगा हासिल करके पहली भारतीय खातून शूटर बनकर तारीख रकम की। कुल 53 तमगे जीतकर भारत एशियन गेम्स 2026 में 10वें मकाम पर आ गया है। अब तक भारत सोने के 6, चांदी के 21 और कांसे के 26 तमगे जीत चुका है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एशियन गेम्स में खवातीन के ट्रैप टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने पर मनीषा कीर, नीरू धांडा और अशीमा अहलावत को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने उनकी कारकर्दगी की सताइश की। वजीर आजम ने पूरी टीम को मजीद कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिफाई तैयारी के सिलसिले में जोग्राफियाई अहमियत की हामिल सोच और हंगामी सूरत हाल से निमटने की मनसूबाबंदी पर जोर दिया है। ज़राअत के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत एक कसीर रुखी हिकमत अमली पर काम कर रही है ताकि किसानों की पैदावार की माकूल कीमतों को यकीनी बनाया जा सके।
प्रगति 50 के तहत इकदामात के नए सिलसिले का आगाज किया गया है, जिसका मकसद मुल्क भर में 50 मिसाली शहर तैयार करना है। भारत ने

अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली से अपने खिताब में तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान के जम्मू कश्मीर पर गैर जरूरी तस्करे को मुस्तरद कर दिया है और एशियन गेम्स 2026 में भारत ने खवातीन की 4400 मीटर रिले में सोने का तमगा जीता। खवातीन के ट्रैप इनफरादी मुकाबले में नीरू धांडा ने सोने का तमगा जीता। भारत के तमगों की कुल तादाद बढ़कर 53 हो गई है, जिनमें सोने के 6, चांदी के 21 और कांसे के 26 तमगे शामिल हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है प्रोग्राम उर्दू प्रोग्राम कहकशां।

आदाब। उर्दू प्रोग्राम कहकशा में मैं शीरीन खान आप तमाम सामईन का समीमे कल्ब से खैर मकदम करती हूँ। दोस्तों, उर्दू शायरी की दुनिया में बाज़ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो बुलंद आहंग होने के बजाय अपनी गहराई की वजह से देर तक सुनाई देती रहती हैं। ऐसी आवाज़ों को समझने के लिए सिर्फ शायर का कलाम पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसके पीछे मौजूदा जिंदगी, तजर्बे, मुशाहदे और फिक्र के सफ़र को भी महसूस करना पड़ता है। अंजुम रुमानी भी उर्दू अदब के ऐसे ही शायर हैं जिनके यहाँ जिंदगी के खारजी मनाजिर के साथ इंसान की दाखिली दुनिया भी अपनी पूरी पेचीदगी के साथ जलवागर होती है। उनका असल नाम फजलुद्दीन और अंजुम तखल्लुस था। 28 सितंबर 1920 को सुल्तानपुर लोधी रियासत कपूरथला मशरकी पंजाब में पैदा हुए। वो रियाजी के उस्ताद रहे और हलकाए अरबाब ज़ौक लाहौर से वाबस्ता भी रहे और साथ साथ फारसी और उर्दू अदब से गहरा शगफ रखते थे। उनकी शेरी तसानीफ में कुए मलामत, दुनिया के किनारे से सना और तरह की और कुल्यात अंजुम रुमानी शामिल हैं। उनकी शख्सियत का इम्तिजाज एक तरफ इल्म मंतिक और दूसरी तरफ शेर व एहसास उनकी शेरी मिजाज को एक मुनफरिद रंग अता करता है। शायद इसीलिए उनके यहाँ जिंदगी को देखने का अंदाज महज जज्बाती नहीं बल्कि गौर व फिक्र है। इंसानों के दरमियान रहते हुए भी इंसान के अंदर एक अलग दुनिया आबाद होती है और कभी यही दाखिली दुनिया उसे अपने अंदर इर्द गिर्द से एक फासले का एहसास दिलाती है। अंजुम रुमानी ने इस कैफियत को इस तरह इस शेर में सादगी के साथ कहा है। कुछ अजनबी से लोग थे, कुछ अजनबी से हम, दुनिया में ना हो पाए शनासा किसी से हम। ये शेर अंजुम रुमानी के उस शेरी मिजाज की अक्कासी करता है जहाँ जाती एहसास एक वसी इंसानी तजर्बे में ढल जाता है। यही वो मकाम है जहाँ अंजुम रुमानी की शायरी महज शायर की बात नहीं रहती बल्कि हमारी अपनी जिंदगी से हम कलाम होने लगती है। उनके फिक्र फन का यही पहलू आज की इस अदबी महफिल का नुक्ता आगाज है। सामीन, अब हम इस प्रोग्राम की पहली पेशकश की जानिब रुख करते हैं जहां हम सुनेंगे गुलकारा सविता सेठी की आवाज में ये खूबसूरत गजल। समाप्त कीजिए।

दोस्तों, अभी आप सविता सेठी की आवाज़ में गज़ल समात फरमा रहे थे। अंजुम रुमानी की शायरी में ज़िंदगी का ये एहसास सिर्फ ज़ाती तन्हाई या दाखली कैफियत तक महदूद नहीं रहता, ये अपने इर्द गिर्द की दुनिया तक फैल जाता है। वो अपने अहद के हालात, माशरती रवैयों और बदलते हुए माहौल को भी एक हसास शायर की निगाह से देखते हैं। उनके यहाँ मौसम सिर्फ मौसम नहीं रहता, हवा सिर्फ हवा नहीं रहती, ये सब इंसानी तजर्बे और फिक्र की अलामतें बन जाते हैं। इसलिए उनकी शायरी पढ़ते हुए महसूस होता है कि शायर अपने जमाने से आंखें नहीं चुराता, बल्कि उसे देखता, परखता और अपने मखसूस शहरी अंदाज में हमारे सामने रखता है। उनकी एक गजल में मौसम और हवा के इस्तारे के जरिए जिंदगी की इसी कैफियत को कुछ उन्होंने इस तरह समेटा है। मौसम का आहो नाला से अंदाजा कीजिए, ताज़ा हवा पे बनना दरवाजा कीजिए। कितनी खूबसूरत बात है कि ताज़ा हवा के लिए दरवाजा खुला रखने की बात करते हुए शायर जिंदगी के इम्कानात को

भी खुला रखने का एहसास पैदा कर देता है। अंजुम रुमानी के यहाँ यही शेरी अंदाज बार बार सामने आता है कि एक मामूली सा मंजर फिक्री वसत इख्तियार कर लेता है और अपने अहद की परेशानियों से भी वाकिफ है, मगर उनकी शायरी सिर्फ शिकवे पर खत्म नहीं होती, उसमें बिखरी हुई चीजों को समेटने की ख्वाहिश भी है। इसीलिए वो इस गजल में कुछ यूं कहते हैं, या लब पे लाइए ना परेशानियों की बात, या जमा बैठ कर कभी शिराजा कीजिए। ये लहजा अंजुम रुमानी के फिक्रोफन की एक नुमाया खसूसियत है। वो जिंदगी के दुख से आंखें नहीं चुराते, उनके यहाँ एहसास के साथ शऊर मौजूद है और यही शऊर उनकी शायरी को एक खास फिक्री गहराई अता करता है। इसी वजह से उनके अशार पढ़ते हुए हमें सिर्फ शायर की कैफियत नहीं मिलती, अपने माहौल को देखने का एक नया जाविया भी मिलता है। जिंदगी अगर बिखरती है तो उसे समझने की कोशिश भी जरूरी है, यही अंजुम रुमानी के शहरी सफर की एक खूबसूरत जहत है। सामीन, इस प्रोग्राम की अगली पेशकश गुलुकारा चित्रा सिंह की खूबसूरत आवाज में और कलाम है रईस अख्तर का, समाप्त कीजिए।

दोस्तों, अभी आप गुलकारा चित्रा सिंह की खूबसूरत आवाज में गजल समाअत फरमा रहे थे और कलाम था रईस अख्तर का। अपने मौजू पर हम वापस आते हैं और बात करते हैं अंजुम रोमानी की। उनके यहाँ फिक्रो फन का दायरा यहाँ आकर और वसी हो जाता है जब शायर होना सिर्फ अपने एहसासात को लफ्ज देने का काम नहीं रहता, बल्कि अपने जमाने के बदलते हुए चेहरों को देखना और उनके अंदर छिपी तब्दीली को महसूस करना भी शामिल हो जाता है। मुआशरा बदलता है तो इंसान के रवैये बदलते हैं, जिंदगी के अंदाज भी बदलते हैं और तरजीहात भी बदल जाती हैं। अंजुम रोमानी ने अपने अहद की इस तब्दीली को भी अपनी शायरी में महसूस किया। उनके यहाँ जमाना महज एक तारीखी मरहला नहीं, बल्कि एक ऐसा तजर्बा है जिसमें इंसान के रवैये, चाल ढाल और जिंदगी के तरीके तक तब्दील होते दिखाई देते हैं। जैसा कि उनका ये शेर, नई जिंदगी के नए मकरोफन, नए आदमी की नई चाल ढाल। यही बदलती हुई जिंदगी शायर को अपने जमाने के साथ मुकालमा करने पर मजबूर करती है। अंजुम रोमानी अपने माहौल से बेखबर नहीं है, तब्दीली को देखते हैं और इसके असरात को महसूस भी करते हैं। उनकी शायरी में सिर्फ मुशाहिदा नहीं, एक दाखिली सवाल भी मौजूद है। बदलती हुई दुनिया में इंसान खुद कहाँ खड़ा है, उसके असूल, उसकी जिम्मेदारियाँ और उसके अमल की अहमियत क्या रह जाती है, यही सवाल उनके लहजे को महज बयान से फिक्र की तरफ ले जाता है। वो अपने जमाने के रवैयों को देखते हुए अमल की जरूरत की तरफ भी इशारा करते हैं और अपने शेर में कहते हैं, जरूरत थी कि जो मैदान में निकले सर बकफ निकले, मगर हम हैं कि निकले भी तो लेकर चंगो दफ निकले। अंजुम रोमानी के यहाँ इस तरह के अशार उनकी शेरी मिजाज की एक अहम जहत सामने लाते हैं। वो अपने अहद को सिर्फ बाहर से नहीं देखते, उसमें मौजूद इंसान को भी सवाल के दायरे में लाते हैं। यही वजह है कि उनकी शायरी में फिक्र एक खुश्क फलसफियाना बहस नहीं बनती, वो जिंदगी के तजर्बे से पैदा होती है और शेर के रास्ते से हमारे सामने आती है। अंजुम रोमानी की शायरी का हुस्न यही है कि वो हमें किसी एक नतीजे तक पहुंचाने की बजाय सोचने की जगह फराहम करती है। उनके यहाँ रिवायत भी है, जदीद हसीयत भी है, जाती एहसास भी है और इज्तिमाही शऊर भी, और यही इम्तिजाज उनके फन को एक ऐसी अदबी शनाख्त देता है जिसमें शायर अपने अहद का गवाह भी है और इससे सवाल करने वाला भी। सामईन, अब इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश गुलकार तलत अजीज और पीनाज मसानी की आवाज में और कलाम है प्रभा माथुर का। ये खूबसूरत गजल समात फरमाइए।

दोस्तों अभी आप गुलुकार तलत अजीज और पीनाज मसानी की आवाज में गजल समात फरमा रहे थे और कलाम था प्रभा माथुर का। अंजुम रोमानी 13 अप्रैल 2001 को लाहौर में इंतकाल कर गए। अंजुम रोमानी को याद करना दरअसल उर्दू शायरी की उस रिवायत को याद करना है जहां शेर जिंदगी से अलग नहीं जिंदगी की ही एक गहरी आवाज बन जाता है। अंजुम रोमानी की शायरी के सफर को समेटते हुए ये कहना बेजा न होगा कि उनके फिक्र फन में जिंदगी का मुशाहिदा, इंसानी एहसास, अहद की आगाही और जबान का शेरी हुस्न एक साथ दिखाई देता है। वो उन शायरों में शामिल है जिनके यहाँ शेर सिर्फ कैफियत बयान नहीं करता बल्कि अपने अंदर एक सवाल भी रखता है। उनकी शायरी हमें अपने अंदर झांकने के साथ अपने इर्द गिर्द दुनिया को देखने का सलीका भी देती है। शायद यही वजह है कि अंजुम रोमानी का कलाम अपने जमाने की हदों से निकल कर आज भी कारी और सामे से रिश्ता कायम कर सकता है। हमें उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय और तजावीज हमें जरूर अरसाल करें क्योंकि आपकी आवाज़ कहकशा की रोशनी है। हमारा पता नोट फरमाइए, उर्दू प्रोग्राम कहकशा, मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड है 462002। उर्दू प्रोग्राम कहकशा को बरोज मंगल रात 9:30 बजे सुनना ना भूलें। अब अपनी दोस्त शीरीन खान को दीजिए इजाजत। आदाब।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाश।

0: हरियाणा के एक छोटे से शहर में जन्मी एक नन्ही लड़की को घर की बंदूक थामने का शौक लग गया। परिवार की दुनाली बंदूक से वो टीन के डब्बों पे निशाना लगाया करती, निशाने एकदम सटीक बैठते। उसके ममेरे भाई ने एशियन गेम्स 2018 में ट्रैप शूटिंग में रजत पदक पाया तो उसने भी सोचा अब ये मौका है गेम को सीरियसली लेने का। ट्रेनिंग में लग गई और 5-6 साल में ही गोली की स्पीड से शिखर पे जा पहुंची और आज उसने स्वर्ण पदक पे निशाना साधा, नया एशियाई रिकॉर्ड बना डाला। खेलों की दुनिया सपनों को सच्चाई में बदलने वाली ऐसी कितनी ही कहानियों से भरी हुई है। 20वें एशियाई खेलों के किताब में भी भारतीय नए पन्ने जोड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। एशियन गेम्स आईची नगोया पर आज के हाइलाइट्स कार्यक्रम के साथ हम हैं उपस्थित। नमस्कार, मैं हूँ अनुपम पाठक। आज की हेडलाइंस। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप में इतिहास रचा, स्वर्ण पदक और नया एशियाई रिकॉर्ड। महिला टीम के साथ देश के नाम किया आज का दूसरा पदक, रजत पदक। एथलेटिक्स के अंतिम दिन आया स्वर्ण पदक और साथ में 4 कांस्य पदक भी। बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल और परवीन हुडा ने शाम से फाइनल्स में एंट्री की तो नरेंद्र बेरवाल को मिला कांस्य पदक। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची और आर्चरी में भी 3 तीरंदाज रिकर्व स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल्स में। शूटिंग और एथलेटिक्स दोनों में ही शानदार प्रदर्शन आए आज, लेकिन एथलेटिक्स से पहले बात शूटिंग की। नीरू ने नया इतिहास रच दिया आज। शॉटगन की ये शेरनी खेलों के इतिहास में पहला महिला स्वर्ण पदक जीतने वाली शूटर बनी। निशाने इतने सटीक कि नया एशियाई रिकॉर्ड, और यही नहीं उन्हीं के दम पर बहुत कड़ी स्पर्धा में टीम रजत पदक भी भारत के खाते में गया। एक बार फिर तालियां बजाने के लिए सुनिए पूरा विवरण मुदिता से।
1: शूटिंग में भारत ने 1 स्वर्ण और 1 रजत के साथ यादगार प्रदर्शन किया। ट्रैप शूटिंग टीम इवेंट में भारतीय महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने कुल 328 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रही। चीन ने 346 अंकों के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया, वहीं कुवैत ने 325 के साथ कांस्य पदक जीता। और फिर आया गोल्ड मेडल जो नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में हासिल किया। 26 साल की भारतीय शूटर ने 30 में से 28 शॉट स्कोर किए और टॉप पर रही। उनकी सबसे करीबी प्रतिद्वंदी चीन की सुन युनोंग से वो 2 शॉट आगे रही। उनके स्कोर ने एक नया एशियन रिकॉर्ड और एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। इस जीत के साथ नीरू एशियन गेम्स में इंडिविजुअल ट्रैप शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इसके पहले 2025 में नीरू ने वुमेन ट्रैप इवेंट में अपना पहला एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता। 2026 में नीरू ने इटली के लोनाटो में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में वेमेन ट्रैप में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। आइए सुनते हैं उनके कोच मनशेर सिंह ने नीरू ढांडा के बारे में क्या कहा।
2: She joined the academy and then COVID hit. She went back home and she got COVID and we lost her in the hospital. We couldn't find her for 10 days. And something happened to her. Found her lying in a bed somewhere with the most distressful condition. Pulled her out of there, got her support in Chandigarh. Then psychologists had to get involved because she was so traumatized. So we didn't manage all that support, got her back into the academy. Today she's an Asian champion because of her life-changing experiences. Become the most strongest shooter in a final in the present group of shooters.
0: एथलेटिक्स के अंतिम दिन हुए सभी फाइनल्स में भारतीय उपस्थिति थी, जो दिखाती है भारतीय एथलीट्स के बढ़ते हुए स्तर को। लेकिन हाँ, अगर पदकों के हिसाब से आंकें तो जरूर पोडियम फिनिश में हम कहीं न कहीं थोड़े ढीले दिखे हैं। पिछले एडिशन में 6 स्वर्ण पदक दिलाने वाले इस खेल में इस बार अंतिम दिन तक पहले स्वर्ण पदक की बाट जोही जा रही थी और आज ये उम्मीद पूरी हुई। अंतिम से ठीक पहले की स्पर्धा में लड़कियों ने पूरी की 4x400 मीटर रिले में। पहले ही 1 पदक जीत चुकी विद्या रामराज ने अंतिम लैप में क्या जबरदस्त एंकर दौड़ लगाई, पूरी ताकत के साथ शानदार फर्राटा और भारतीय राष्ट्रगान की धुन फिजा में गूंज उठी। स्वर्ण पदक 3:01.61 के साथ। आज पूरे समय बारिश की फुहारों के बीच हुई स्पर्धाओं में भारत ने 4 कांस्य पदक और जीते। 4x400 मीटर पुरुषों में डिफेंडिंग चैंपियन था भारत, आज कांस्य पदक आया। लेकिन याद रहेगी तीसरे

0: मर पर जय की दौड़ जिसने भारत को लड़ाई की स्थिति में ला दिया और उसके बाद विशाल थिन्नारसु की अंतिम दौड़ बस देखने ही वाली थी। भारत को तीसरे स्थान पर ले आए वो। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जापान की टीम ने पाया। किसान परिवार में जन्मे फौज में भर्ती होने का सपना सच करने के लिए अलीगढ़ की सड़कों पर दौड़ की तैयारी करते करते फौज में आने के बाद उनका टैलेंट पहचाना गया और आज वो गुलवीर सिंह पिछले एक दो सालों में सबसे उम्दा प्रदर्शन करने वाले भारतीय एथलीट हैं। अपनी पेट 5000 मीटर स्पर्धा में वो 13:32.75 के साथ तीसरे स्थान पर आए और कांस्य पदक के साथ इन खेलों में अपना तीसरा पदक पाया। 40 साल बाद इन खेलों में 3 या ज्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने वो। ऊंची कूद में पूजा ने अपने 5वें प्रयास में 1.84 मीटर ऊंचाई पार की जो उन्हें दिला गई कांस्य पदक। स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान की बार्नोखोव ने 1.90 मीटर के साथ जीता। देव कुमार मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट में 7वां स्थान पाया, लेकिन उनकी तारीफ इसलिए कीजिए कि अपना बेस्ट झोंक दिया और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। कुलदीप 10वें स्थान पर रहे तो महिला हैमर थ्रो में तानिया चौधरी ने भी अपना बेस्ट दिया। 65.35 मीटर दूर तार गोला फेंका लेकिन चौथा स्थान ही पाया। महिला 800 मीटर में पूजा 7वें तो पुरुष 800 मीटर में मोहम्मद अफसल अंतिम स्थान पर रहे। एथलेटिक्स में भारत का अभियान 1 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 14 कांस्य पदक। मुक्केबाजों ने रिंग में भारतीय दबदबा आज भी बनाए रखा। पदक तो पहले से ही पक्के थे। आज सेमीफाइनल में 3 मुक्केबाज रिंग में उतरे, 2 के पंच उन्हें ले गए फाइनल्स में, जाने अब दांव स्वर्ण पदक पर रहेगा। वो दृश्य फिर से खींचने की कोशिश प्रेरणा शर्मा द्वारा।
1: इट वॉज एन इनक्रेडिबल डे फॉर इंडिया इन द बॉक्सिंग रिंग एज वेल। टू रिकैप द एक्शन फ्रॉम द मॉर्निंग सेशन, द इंडियन बॉक्सिंग कंटिंजेंट पुट ऑन एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंसेस, लॉकिंग इन 3 मेजर मेडल आउटकम्स। इन द वुमेन्स 65 केजी सेमीफाइनल, परवीन हुडा डिलीवर्ड अ डोमिनेंट डिस्प्ले, डिफीटिंग चाइनाज ली शू 5-0 टू स्टॉर्म इनटू द फाइनल। दैट फर्स्ट हाफ विन गारंटीड हर एटलीस्ट अ सिल्वर मेडल, पुटिंग इंडिया विद इन टचिंग डिस्टेंस ऑफ अनदर गोल्ड। ओवर इन द मेन्स 80 केजी सेमीफाइनल, अंकुश पंघाल पुट ऑन अ मास्टर क्लास, पुलिंग ऑफ अ ब्रिलियंट कमबैक टू आउटपंच उज़्बेकिस्तान्स फासलुद्दीन। हिज विक्ट्री सिक्योर्ड हिज प्लेस इन द फाइनल एंड अश्योर्ड टीम इंडिया ऑफ अनदर कंफर्म्ड सिल्वर मेडल एट मिनिमम। एंड इन द मेन्स प्लस 90 केजी सेमीफाइनल, हेवीवेट स्टार नरेंद्र बरवाल स्टूड टो टू टो इन अ फियर्स बैटल अगेंस्ट द वर्ल्ड चैंपियन एबेक ओरलबे। डिस्पाइट अ करेजियस एफर्ट, बरवाल वाज एज्ड आउट, साइनिंग ऑफ विद अ हार्ड अर्न ब्रॉन्ज मेडल फॉर द नेशन, हिज सेकंड कंसेक्यूटिव एशियन गेम्स ब्रॉन्ज। Two spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring. Parveen Hooda delivered a dominant display, defeating China's Li Shu 5-0 to storm into the final. That first half win guaranteed her at least a silver medal, putting India within touching distance of another gold. Over in the men's 80 kg semi-final, Ankush Panghal put on a masterclass, pulling off a brilliant comeback to outpunch Uzbekistan's Fazluddin. His victory secured his place in the final and assured Team India of another confirmed silver medal at minimum. And in the men's plus 90 kg semi-final, heavyweight star Narinder Barwal stood toe-to-toe in a fierce battle against the world champion Ebek Oralbe. Despite a courageous effort, Barwal was edged out, signing off with a hard-earned bronze medal for the nation, his second consecutive Asian Games bronze. Two spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring.
0: आज रिकर्व की एकल स्पर्धाएं थीं। धीरज देव बोमरा से तो उम्मीदें स्वाभाविक थीं, लेकिन नीरज ने भी शानदार तीर चलाए और कुमकुम ने कमाल कर दिया, यानी 3 धनुर्धर चिड़िया की आंख यानी स्वर्ण पदक की राह में क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए। और माइक की कमान मुदिता के पास आप तक ये विवरण पहुंचाने के लिए।
2: तीरंदाजी में धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने पुरुषों की रिकर्व एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नीरज चौहान ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रहे कोरिया के किम जे देओ को 6-4 से पराजित किया। वहीं टॉप सीड और मौजूदा एशियन चैंपियन धीरज बोमदेवरा ने ताइपे के चेंग शियांग हुई पर 6-2 से जबरदस्त जीत दर्ज की। अगले राउंड में सौ की रिकर्व इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में कुमकुम का मुकाबला रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कांग च्याय यंग से होगा। यंग ने भारत की ही दूसरी तीरंदाज कीर्ति शर्मा को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है।
0: स्क्वाश में महिला टीम पूरे रॉ में दिख रही है। नए स्टार्स पैदा कर रहा है ये गेम्स।

0: 18 बरस की अनहत सिंह तो स्क्वैश की नई पोस्टर गर्ल बन गई हैं। महिलाओं का जलवा आज भी जारी रहा। खुलासे के साथ मुदिता।
1: भारतीय महिला स्क्वैश टीम ने अपने आखिरी पूल सी मैच में ईरान को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। तन्वी खन्ना ने ईरान की नरगिस सुल्तानी के खिलाफ मैच जीता, जो खेल के बीच में ही रिटायर हो गईं। अनाहत सिंह ने फरिश्ते इख्तदारी को सीधे गेमों में 11-5, 11-4, 11-7 से शिकस्त दी। वहीं जोशना चिनप्पा ने भी अपना मैच ईरान के खिलाफ 11-1, 11-3, 11-9 से जीत कर 3-0 का क्लीन स्वीप पूरा किया। पुलसी में टॉप करने के बाद भारतीय महिला स्क्वाश टीम अब क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर से मुकाबला करेगी।
0: हाल ही में हुए डेविस कप मुकाबले में सुमित नागल दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी से हार गए थे और आज भी विपक्षी कोरिया से ही था, लेकिन सुमित के रैकेट के इरादे कुछ और थे। दूसरे राउंड के मुकाबलों में और भी भारतीय खिलाड़ी कोर्ट पर उतरे। टेनिस पर आज की कहानी अभिनव कुमार झा से।
2: एशियन गेम्स में टेनिस खिलाड़ियों के लिए मंगलवार का दिन अच्छा रहा। पुरुष एकल के दूसरे दौर में डीके सुरेश ने इंडोनेशिया के गुनावान त्रिसमोहन तारा को कड़े मुकाबले में 7-5, 7-6 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं सुमित नागल ने बारिश के कारण दो दिन तक चले मुकाबले में दक्षिण कोरिया के सियोंग चान होंग को 6-4, 6-0 से हरा कर अंतिम 16 में प्रवेश किया। उनका अगला मुकाबला उज्बेकिस्तान के सर्गेई फोमिन से होगा। आज भारतीय खिलाड़ियों के डबल्स मुकाबले भी कार्यक्रम में थे। पुरुष डबल्स के दूसरे राउंड में यूकी भामरी और डीके सुरेश की जोड़ी का सामना कजाकिस्तान की जोड़ी से हुआ, जहां भारतीय जोड़ी ने 6-1, 7-5 से मैच अपने नाम किया। जबकि अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना नेपाल के अभिषेक बस्तौला और प्रदीप खड़का से होना था, जहां पूरे मुकाबले में एक तरफा तरीके से 6-2, 6-1 के साथ भारतीय जोड़ी ने जीत दर्ज की। अब बात करें मिश्रित डबल्स की, तो मिश्रित डबल्स के पहले राउंड में अंकिता रैना और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना हांगकांग के यूडीस चोंग और कैरन थॉम्पसन से हुआ, जिसमें 4-6 और 4-6 के सीधे सेटों से भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा और इस प्रकार मिक्स डबल्स की इस जोड़ी का सफर एशियन गेम्स में यहीं समाप्त हुआ। हालांकि यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले के रूप में मिक्स डबल्स में भारतीय चुनौती अभी कायम है।
0: वॉलीबॉल में पूल सी में आज एक सुपर रोमांचक मैच हुआ। भारत कुवैत से पहले दोनों सेट हार बैठा, लेकिन इसके बाद वो जुझारूपन और संघर्ष दिखाया कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। भारत अपने पूल में टॉप पर और माइक पर प्रेरणा शर्मा।
3: इंडिया हैव प्रोड्यूस्ड अ सेंसेशनल कमबैक टू डिफीट कतर 3-2 इन देयर फाइनल पूल सी एनकाउंटर। इंडिया हैड ऑलरेडी बीटन वियतनाम एंड हांगकांग चाइना 3-0 इन देयर ओपनिंग मैचेस, बट कतर प्रोवाइडेड अ मच टफर चैलेंज। दे एज्ड द ओपनिंग सेट 28-26 आफ्टर इंडिया मिस्ड 2 सेट पॉइंट्स एंड देन टुक द सेकंड 27-25 डिस्पाइट इंडिया बिल्डिंग अ 4 पॉइंट लीड मिडवे थ्रू द सेट। 2 सेट्स डाउन इंडिया शोड ट्रेमेंडस कंपोजर टू टर्न द मैच अराउंड। दे केप्ट देयर होप्स अलाइव बाय taking the third set 25-23 before dominating the fourth to win 25-20 and level the contest. That sent the match into a deciding fifth set, which turned into another dramatic battle. India held their nerve in their extended tiebreak to win 24-22 and complete a stunning reverse sweep. With 3 wins from 3 matches, India finished unbeaten at the top of Pool C and advanced to the quarterfinals in style.
0: केनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ, बता रहे हैं अभिनव कुमार झा। केनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ, बता रहे हैं अभिनव कुमार झा।
2: केनो स्लैलम में भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ाया है। पुरुष कयाक सिंगल हीट्स में हितेश केवट ने 118.22 सेकंड के साथ 8वां स्थान प्राप्त किया, वहीं प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने 127.70 सेकंड के साथ 10वां स्थान प्राप्त कर सेमीफाइनल राउंड के लिए अपनी जगह पक्की की। बात करें महिला कयाक सिंगल हीट में, तो शिखा चौहान ने भी 344.87 सेकंड के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि महिला सिंगल में पल्लवी जगताप और रीना सेन ने हिस्सा लिया था, जहां पल्लवी जगताप ने 7वां स्थान प्राप्त करके तो वहीं रीना सेन ने 9वां स्थान प्राप्त करके सेमीफाइनल के लिए अपना नाम दर्ज कराया।
0: बहाव वाले पानी से अब चलते हैं अपेक्षाकृत शांत समंदर की ओर। मौसम और बारिश ने सेलिंग में आज खासा व्यवधान डाला। सर्फिंग में एक ही भारतीय स्पर्धा में बचा था, आज क्वार्टर फाइनल पुरुष शॉर्टबोर्ड में लहरों से उनकी गुफ्तगू कैसी रही?

0: जानते हैं अभिनव से।
1: Looking back at the earlier action from Pacific Long Beach in Tahara, surfing made its official Asian Games debut, a huge milestone for the sport. In the men's shortboard quarterfinals, Heat 4, India's Kishore Kumar Anbarasu went head-to-head against Toby Espejon of the Philippines. Kishore put up a spirited effort on the waves, finishing with a score of 5.37 to Espejon's 8.53, which unfortunately ended India's historic run just shy out of the medal rounds. Even though the campaign came to a close, Kishore's quarterfinal appearance marked a landmark moment for Indian surfing.
0: आज से साइकिलिंग ट्रैक की स्पर्धाएं आरंभ हो गईं। भारतीय दल में कुल 14 सदस्य हैं। कई स्पर्धाओं में भारतीय साइकिल सवार हवा से बातें करने की कोशिश करते दिखे। विवरण के साथ एक बार फिर अभिनव।
2: ट्रैक साइकिलिंग में भारत के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहा। महिला टीम स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में सेलेस्टिना, सरिता कुमारी, कीर्ति रंगास्वामी चिक्का और त्रिशा पॉल की भारतीय टीम छठे स्थान पर रही, जिसकी बदौलत उन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन फर्स्ट राउंड में चाइनीज ताइपे की टीम से हार का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसा ही सूरत हाल पुरुष टीम स्प्रिंट का भी रहा, जहां रोजित सिंह यांगलेम, डेविड बेकहम, एल्काटो चोंगो और रोनाल्डो सिंह लेतोन जाम की टीम को चाइना से हार के एशियन गेम्स से बाहर होना पड़ा। आपको बता दें श्रोताओं की इसी चाइनीज टीम ने इस इवेंट में यानी पुरुष टीम स्प्रिंट में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। हालांकि इस इवेंट में भी क्वालिफिकेशन राउंड में भारतीय टीम ने सातवें स्थान पर रहकर फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया था। वहीं बात करें महिला टीम परशूट में तो हर्षिता झाकर, पूजा बबन डानोले, मीनाक्षी और स्वास्ति सिंह की भारतीय टीम को फर्स्ट राउंड में ज्यादा समय लेने के कारण बाहर कर दिया गया। किंतु दिन की शुरुआत इन्होंने भी क्वालिफिकेशन राउंड में क्वालिफाई करके की थी, जहां इन्होंने पांचवां स्थान हासिल किया था।
0: कुराश में कल एक पदक आया था और आज अंतिम भारतीय एंट्री भी स्पर्धा में थी। हुआ क्या, बता रही हैं मुदिता।
3: कुराश में पुरुषों के 66 किलोग्राम भार वर्ग में विपिन कुमार का अभियान राउंड ऑफ 16 में खत्म हो गया। वे साउथ कोरिया के यून ह्यूनसो से 0-3 से हार गए और इस नतीजे के साथ गेम्स में उनका इंडिविजुअल कैंपेन खत्म हो गया। इसके पहले कुराश में पिंकी बल्हारा ने महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था।
0: स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के बारे में जानते हैं आप। आज की स्पर्धा की जानकारी अभिनव से।
2: स्पोर्ट क्लाइंबिंग की स्पर्धाओं में भारत की नजरें खास तौर पर महिला स्पीड क्लाइंबिंग पर रहीं। भारत की 19 वर्षीय जोगापूर्ति ने अपने एशियाई खेल पदार्पण में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वालिफिकेशन राउंड में 7.28 सेकंड के साथ 9वां स्थान हासिल करके महिला स्पीड क्लाइंबिंग के क्वार्टर फाइनल में तो जगह बनाई ही, साथ ही उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी दोबारा से अपने नाम किया। स्पीड क्लाइंबिंग में खिलाड़ी 15 मीटर की एक समान दीवार पर सबसे तेज समय में ऊपर पहुंचने की कोशिश करते, इसलिए शुरुआत, गति और संतुलन बेहद महत्वपूर्ण होता है। महिला स्पीड का क्वालिफिकेशन नागोया के पोर्ट में आयोजित किया गया। भारत के नजरिए से जोगा का क्वार्टर फाइनल में पहुंचना स्पोर्ट क्लाइंबिंग में देश की बढ़ती मौजूदगी का अहम संकेत है।
1: India has jumped from the 12th position to the 10th position with the courtesy of 2 gold medals today. India's total medal tally now stands at 52 medals, broken down into 6 gold, 21 silver and 25 bronze. China leads the table with 143 gold, 62 silver and 49 bronze, followed by Japan in second with 45 gold, 71 silver and 67 bronze medals, and the Republic of Korea in third with 24 gold, 27 silver and 44 bronze medals.
0: कल कुश्ती आरंभ होगी, जिसमें पदकों की खासी उम्मीद है। निशा और सुनील कुमार मैट पर होंगे। महिला हॉकी सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से भिड़ंत होगी। बॉक्सिंग में प्रिया और लवलीना सेमीफाइनल जीतने के प्रयास करेंगी। शूटिंग में 25 मीटर रैपिड फायर में अनीश होंगे और मिक्स्ड ट्रैप स्पर्धा भी होगी। आर्चरी में कंपाउंड के मुकाबलों में भारतीय पदकों की ओर बढ़ने के प्रयास करेंगे। स्क्वैश में महिला टीम सिंगापुर से भिड़ेगी क्वार्टर फाइनल में। जूडो भी कल शुरू होगा और गोल्फ भी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही मैदान पर होंगे। इसके साथ ही ई स्पोर्ट्स, सेलिंग, कैनो स्लालोम और साइकिलिंग में भी भारतीय खिलाड़ी दिखेंगे।
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में सरफरोश फिल्म का बहुत ही प्यारी सी गज़ल, लिखा है निदा फाजली ने और संगीत जतन ललित का।

आपकी रेडियो सेट पर आ रही है उमराव जान फिल्म की बहुत ही खूबसूरत गज़ल तलत अज़ीज़ की आवाज़ में। शायर हैं शहरयार और धुन बनाई है खयाम ने।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए सुनिए शिराज हुसैन खान का सारंगी वादन। राग है मेघ, तबले पर संगत की है रामेंद्र सिंह सोलंकी ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे शिराज हुसैन खान का सारंगी वादन। राग था मेघ, तबले पर संगत की थी रामेंद्र सिंह सोलंकी ने। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाश समाचार के साथ मैं भवतारिणी।

0: को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: India rejects the unwarranted references.
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: And no external party has any locus standi on this issue.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
3: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें दोनों व्यवस्था, एक MSP और एक विदाउट MSP, हम बाजार से कैसे जोड़ दें किसानों को। ये तय किया तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में 65वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में पुरस्कार पाने वाले 20 कलाकारों को सम्मानित किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन ललित कला अकादमी ने किया। इस मौके पर श्री शेखावत ने रचनात्मकता और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित सेवा ही संस्कृति पहल इसका अच्छा उदाहरण है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में श्रम संवाद नाम से जिला स्तर पर क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एक निजी कानून फर्म के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नियोक्ताओं और उद्योग से जुड़े लोगों को नए श्रम कानूनों के प्रमुख प्रावधानों और उनके पालन से जुड़ी आवश्यकताओं के बारे में जागरूक करना था। नागालैंड में कोहिमा पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए की 7,740 बोतल भारतीय निर्मित विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने आज जारी एक बयान में बताया कि ये खेप कल दोपहर जुब्बा थाना क्षेत्र में नियमित जांच के दौरान एक ट्रांसपोर्ट वाहन से पकड़ी गई। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में ले लिया है। मामले की जाँच जारी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली है। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Renuka. Defense Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amid challenges arising from evolving technology, unpredictability, and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi today, Mr. Singh said the country's goal is clear that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. The minister underlined that the ongoing Operation Urja Suraksha has once again demonstrated the Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interests.

हरिहरन और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में अभी आपने ये भजन सुना। दोस्तों, अगर हम जिंदगी में देखें तो इसमें थोड़ी खुशियां हैं और थोड़े गम हैं, थोड़ी हानि है तो थोड़ा लाभ है, थोड़ी आशा है तो थोड़ी निराशा भी है, और इसी का नाम ही जीवन है।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म पिया का घर से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, ये रंग बदलती दुनिया बिल्कुल पतंग जैसी है, कब कौन क्या रंग बदल लेगा कुछ पता नहीं, और ये भी नहीं पता कि इस पतंग को उड़ाने वाला कौन है। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में फिल्म पतंग से ये गीत।

सुबह के 5:30 और 20 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं, किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म शर्मीली से।